चादर से चेहरे को रहे छुपाए और पे वो दोष लगाकर अपने पाप छुपाए, उसको मान मिले जग में जो बेईमान बन जाए। माँ बाप को खबर

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: मेजोरिटी पीपल सिर्फ अगर अपने जीवन और अपने मन की एक्सरे करनी है उस क्षण चेक करें जब सुबह उठते हैं। अगर सुबह उठते ही फर्स्ट थॉट आती है कि मुझे थोड़ा और सोना है, इसका मतलब मेरी जो 6 घंटे के 8 घंटे की नींद थी मेरी उसमें रेस्ट और रिचार्जिंग नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? शरीर सो रहा था लेकिन मन अभी भी कंटिन्यूसली चल रहा था। मन की बात का समाधान नहीं मिला उसको। अब हमारा मन अगर उसको उसकी बात का समाधान नहीं मिलता है तो वो 5 दिन नहीं 5 साल चल सकता है उस प्रॉब्लम के साथ, 50 साल चल सकता है उस प्रॉब्लम के साथ। और अगर फिर भी समाधान नहीं मिला तो आत्मा शरीर छोड़ेगी, दूसरा शरीर लेगी और वो ही सोच और संस्कार अपने साथ लेकर जाएगी।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

खुशियों की फुहार लाएगी हर दिन त्योहार। अब हर दिन बजेंगे मन में ढोल, अपनेपन के रंग में अब रोज रंगेंगे, उड़ान भरेंगे सपनों के रॉकेट में, सिर्फ पुनेरी आवाज में 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: सपोज आपने मुझे अभी आकर कहा कि आपका शरीर कमजोर है, एक आपकी बात को इग्नोर कर दो, ठीक है। सेकंड, मैं कहूँ कि मैं कुछ नहीं कर सकती उस बारे में, है कमजोर तो है, आई कांट हेल्प, खाना ऐसा है, आजकल पानी ऐसा है, मौसम ऐसा है, तो ये कमजोर है। थर्ड ऑप्शन इज, ठीक है, आई स्टार्ट वर्किंग ऑन इट टुडे, एंड अगर मैं आज भी उस पर काम करना शुरू कर दूँ, चाहे मैंने 50 साल कोई काम नहीं किया उसके ऊपर एंड वो कमजोर हो चुका है, बिल्कुल कमजोर हो गया, लेकिन आज भी अगर उस पर काम करना शुरू कर दिया, आई एम मूविंग फ्रॉम डिजीज टू हेल्थ। आज अगर काम करना नहीं शुरू किया उस पर, देन इट्स डिक्लाइनिंग फर्दर फर्दर फर्दर। तो आज डिप्रेशन नहीं होगा ये बात सुन के, लेकिन आज अगर ध्यान नहीं रखा और कल अगर कोई बड़ी बात आ गई तो ताकत नहीं होगी उसको फेस करने में, तब डिप्रेशन होने का चांस होता है। आज इस बात को सुनने से नहीं होना चाहिए, आज एक रियलाइजेशन होने चाहिए।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

पुणेरी आवाज 107.8 एफएम वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट का सामुदायिक रेडियो। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: अजी सुनते हो?
1: हाँ सुनी तो रहा हूँ।
0: क्या सुन रहे हो?
1: रेडियो पुनेरी आवाज।
0: ओ रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो खुशियाँ बांटो।
2: नमस्कार दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में मैं ज्योत्सना आपका स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी हेल्दी वेल्दी होंगे। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारी जो भी मन वचन कर्म या हमारी इंद्रियों के द्वारा जो भी कार्य होते हैं, इससे बहुत कुछ फायदे भी हैं और इसका बहुत नुकसान भी है। तो आइए आज हम बात करते हैं इसे इंद्रियों की गुलामी पर। तो हमारा आज का विषय है इंद्रियों की गुलामी से जबकि हंसाई। कैसे होता है इंद्रियों की गुलामी? अगर मनुष्य ये सोचता है कि अहंकार वश या इंद्रियों की जो कमजोरी के वश कुछ ही गलत कर सकता है। एक समय की बात है, एक महान विद्वान सर्व वेदों के ज्ञाता एवं लेखक ऋषि अपने शिष्य राजा को शिक्षा दे रहा था कि राजन आप स्त्रियों से सदैव सावधान रहना। हाँ, राजा को कभी इस विषय में हार नहीं खानी चाहिए। तो राजा ने क्या किया, राजा के ही राज्य में रहने वाली एक खूबसूरत युवती उस राजा किसे विवाह करना चाहती थी। अब उसे पता चला कि उसकी इस इच्छा में गुरु ऋषि जी माधक बन रहे हैं। जब ये पता चला तो एक दिन किसी के माध्यम से उस युवती को पता चला कि गुरु जी का जो उनकी जो कंदरस प्रेमी है युवती

स्वयं एक काई का थी। उसने एक उपाय निकाला कि क्यों न गुरुजी के आश्रम में जाकर कुछ सुनाया जाए। वह वहाँ जाकर एक गाने की एक गुनगुनाने लगी। फिर क्या होता है कि गुरुजी ध्यान से सुनने लगे। कुछ देर सुनने के बाद स्वयं ही उसके पास आकर संपूर्ण गाना सुनने के लिए प्रार्थना करने लगे। युवती जो थी वो ऐसा ही गया अचा रहे थे कि मतलब जो भी है उसने झट पूरा गाना सुना दिया। गुरुजी ने कहा एक गीत और सुनाओ। युवती को गुरुजी की कमजोरी का जो बोध हो गया कि मतलब क्या होने वाला है, और यह भी समझ में आ गया कि गुरुजी को क्या है, वश में कैसे किया जाए। युवती ने दूसरा गाना चालू किया परंतु बीच में ही गाना बंद कर दिया। गुरुजी ने कहा कि पूरा गाना सुनाओ। युवती बोली कि बाकी कल सुनाऊंगी। राजा भी अपने गुरुजी से मिलने प्रतिदिन आश्रम में आया करता था। जैसे ही युवती आश्रम से बाहर निकली तो क्या होता है कि राजा से उसकी भेंट हो गई। युवती ने राजा से कहा कि राजन कल आप छुप कर देखना कि आपके गुरुजी क्या खेल करते हैं। अगले दिन निश्चित समय पर राजा गुरुजी के आश्रम में छुप कर खड़ा हो गया। उधर युवती ने आश्रम में पहुंचकर अपना गाना प्रारंभ किया। गुरुजी गाना बड़े ध्यान से सुन रहे थे। गाना पूरा होने पर गुरुजी दूसरा गाना सुनने की मांग करने लगे। इंद्रियां तो विषयों को पाकर क्या करती है, और की रट लगाना शुरू कर ही देती है। जितना गुरुजी सुनने के लिए व्याकुल होने लगे, युवती को भी अपनी मनोकामना पूरी होती हुई दिखाई देने लगी। युवती गुरुजी से बोली, गुरुजी देखो और तो मैं तब सुना सकती हूँ जब आप घोड़ा बने, आपके मुंह में घोड़े की तरह लगान डली हुई हो, और मैं आपके ऊपर सवार के रूप में बैठी हुई हूँ। सोचो मन और इंद्रियों के जो वशीभूत ज्ञानी पुरुष भी कितनी जल्दी बहक जाता है ना? किसी भी इंद्रिया के विषय को पूरा करने के लिए अपने समस्त आदर्श व ज्ञान की जो भी विद्वता है वो तुरंत वो क्या करते हैं, बलि चढ़ा देता है अपने उस नैतिक वैभव को जिसको उसने बहुत वर्षों तक परिश्रम करके अर्जित किया होता है, क्षणिक सुख के लिए ताक पर रख देता है, भुला देता है। हाँ, तो इसी के साथ हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद मैं आपसे फिर आकर मिलती हूँ, और तब तक के लिए आइए सुनते हैं इस गीत को।

तो दोस्तों फिर से स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में और हम अपने आगे की चर्चा जारी रखते हैं इंद्रियों की गुलामी से क्या होता है जब आसाई। तो हम चर्चा कर रहे थे कि एक राजा और गुरुजी की कहानी क्या होता है किसी भी इंद्रिय के विषय को पूरा करने के लिए अपने समस्त आदर्शों व ज्ञान को विद्वता को तुरंत बलि चढ़ा देता है कौन गुरुजी ने। फिर क्या होता है तनरस के प्रलोभन

में गुरु जी ने अपना सिर झुका दिया और मन को यह कहकर समझा दिया कि चलो यहाँ कौन देखता है, मेरा क्या बिगड़ता है। हाँ, ऐसे ही सही, मनुष्य दूसरे को धोखा देने के लिए तो थोड़ा प्रयास करता है, परंतु अपने आप को धोखा देने के लिए कुछ उपाय ही नहीं करता। उसे करना ही नहीं पड़ता है, केवल अपने मन को अंदर ही धीरे से कोई बात सुनानी होती है। उस वक्त मनुष्य का विवेक जो है वो सुन्न हो जाता है, अर्थात क्या होता है, विवेक जो है मन के वशीभूत हो जाता है और गलत कार्य कर बैठता है। बाद में क्या होता है, पश्चाताप करने लगता है। इसके लिए कहावत है कि अब पछतावे होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। युवती के प्रस्ताव को स्वीकार कर गुरुजी घोड़े के रूप में अपने क्या करते हैं, शरीर को झुका देते हैं। उनके मुख में लगाम की तरह एक रस्सी डाल दी जाती है। युवती गुरुजी के ऊपर बैठ जाती है। विद्वान गुरुजी घुटनों के बल घोड़ा बने हुए चल रहे हैं। युवती बीच बीच में ऊपर से धीरे धीरे चाबुक मार रही है। वाह रे इंद्रियों, ये विषय में इन्हीं के वश गुरुजी भी थे। ठीक है, वही छुपकर बैठा राजा यह सब देख रहा था। देखकर गुरुजी के सामने आया और बोला, गुरुजी यह क्या। गुरुजी ने घबराते हुए क्या किए बड़बड़ाते हुए उत्तर दिया कि राजन यह वही है, इसके लिए मैं आपको सावधान करता रहता था, आप ही सोच लो अब मेरा यह हाल है तो तुम्हारा वह आम आदमी का क्या हाल होगा। राजन मैं तुमको समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनो और उस पर अमल करना। मन की चंचलता ही बुरे कार्य करने को विवश कर देती है, अतः बुरा कार्य करने से पहले 100 बार सोचो। कहा भी गया है, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाए। उस कर्म के परिणाम के बारे में चिंतन मनन करो। यदि मैंने युवती के प्रस्ताव के परिणाम के बारे में सोचा होता तो आज मेरी यह दुर्दशा ना होती। इसलिए हे राजन, मन की चंचलता को रोकना होगा और यह तभी संभव है जब मन को प्रभु के हवाले कर दोगे। तो इसी के साथ हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद मैं फिर से आपसे आकर मिलती हूँ। और तब तक के लिए आइए सुनते हैं इस गीत को।

तो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में और हम अपने आगे की चर्चा इसी तरह जारी रखते हैं। तो आज हम सुन रहे थे किसकी कहानी, राजा की कहानी। इसमें एक राजा था, तो वो इंद्रियों के वश में था। उसके लिए गुरुजी से उन्होंने जो भी शिक्षा ली, लेकिन गुरुजी भी इंद्रियों के वश में थे। तो यहाँ पर यही पता चलता है कि इंसान जो है, मनुष्य अपने से ही अपनी

कि मुझे याद करो, यानी कि जिसका अर्थ है चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, सोते जगते, एक भगवान शिव को हाँ ही मन में रखो और उन्हें क्या करो, उनसे लगाव रखो और उनको याद करो। मतलब यह मत सोचो कि इंद्रियों की गुलामी करते हुए मुझे कोई देख नहीं रहा है, अपनी ही अंतरात्मा को देख। हाँ, अपनी जो अंतरात्मा है वो तो हमें देख ही रही है ना। अंतरात्मा को हमें देखना है कि अपनी ही अंतरात्मा तो देख रही है ना, परमात्मा पिता तो देख ही रहे हैं ना। हाँ, इसमें अगर किसी दूसरे ने देखने पर अपने मन को रोका तो वह कोई ज्ञान युक्त नियंत्रण नहीं है। इसका अर्थ हाँ तो यह हुआ कि अगर कोई दूसरा देखेगा नहीं तो हम पाप करते ही चले जाएंगे। अपने आप को रोकने के लिए अंकुश भी अपने आप के पास ही होना चाहिए। दूसरों का जो अंकुश कारगर सिद्ध नहीं होता, इसलिए एकांत में बैठकर अपने आप को यह पाठ पढ़ाओ कि मैं भगवान की संतान हूँ, मैं इंद्रियों का मालिक हूँ, इनका गुलाम नहीं। संसार से अगर सम्मान पाना है तो इंद्रियों को जीतो। इंद्रिय जीत ही माया जीत है और प्रकृति जीत है। हाँ, वही विश्वजीत राजा बनता है। तो इसी के साथ आज का कार्यक्रम हम यही समाप्त करते हैं और आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हंसते रहिए, गाते रहिए और कुछ गुनगुनाते रहिए। नमस्कार, ओम शांति।

हे महामाया, तेरी सदा ही जय हो। तूने भक्ति का दान देकर एक भक्त का जीवन सफल कर दिया है। इस नाचीज को अपने चरण की शरण देकर उसका जीवन खास बना दिया है। अब ये भक्त ताउम्र तेरे चरणों में रहना

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: जब हम भगवान को दोष देना शुरू कर देते हैं, दैट इज नॉट फेयर, बिकॉज पिता है, हम बच्चे हैं, वो कभी नहीं ये डिसाइड करेगा कि एक बच्चा ट्रेन ब्लास्ट का विक्टिम हो जाए और दूसरा बच्चा बिल्कुल ठीक है। एक पिता कभी ये नहीं कर सकता।

0: और अगर परमात्मा ये कर भी रहा है तो देन वी कैन क्वेश्चन ऑन व्हाट बेसिस। परमात्मा हमारी जीवन की यात्रा नहीं डिसाइड कर रहा है, हमारे अपने किए हुए कर्म, एंड दैट्स व्हाई थॉट्स लीड्स टू डेस्टिनी। उसमें सब थॉट्स जो अभी किए, जो बहुत सारे पहले, लेकिन वही थॉट्स अब उस डेस्टिनी को चेंज कर सकते हैं। अब जो हुआ हादसा वो पिछले किसी कार्मिक अकाउंट की वजह से हुआ, लेकिन उस हादसे के बाद अब क्या करना है, एटलीस्ट दैट इज इन माय कंट्रोल नाउ।
1: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

हकीकत के फासले को कम करते हैं, नई जानकारियों से नए अवसर खड़े करते हैं। सुनते रहिए पुनेरी आवाज़ 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ मत पूछो कहाँ कहाँ है संतोषी माँ अपनी संतोषी माँ।
1: 0102484 नए पन की कमांड रिजेक्टेड। अब हर चीज हर जगह तो नहीं मिलती, कुछ नयापन चाहिए तो सुनिए पुनेरी आवाज़ 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: पिछले एपिसोड में हमने देखा कि हम ज्योतिबिंदु रूप चैतन्य शक्ति आत्मा हैं और हमारे पिता परमात्मा का रूप भी ज्योतिबिंदु है। परमात्मा के साथ हमारा सीधा संबंध है और इस दिव्य अविनाशी संबंध की निरंतर स्मृति से हम आत्माओं में अनेक सकारात्मक परिवर्तन हो सकते हैं। आइए अब आगे सुनते हैं।
1: तो यहाँ जब मैंने भाषा के परे जाने का भाव अभी सीखा नहीं, या अभी मैं उस प्रोसेस में हूँ, तो मैं उस पूरे जो रिएक्शन है या जो मुझे मिल रहा है उसे अनुभव कैसे करूँ?
2: उसका सबसे पहला जो फर्स्ट क्या कहें, चेकिंग, मतलब अपना पैरामीटर चेक करना कि जैसे ही मैं परमात्मा को याद करूँ राइट तरह से एंड राइट एंटिटी को,
1: मतलब ओके पूरी पहचान के साथ
2: कनेक्टिंग टू द राइट एंटिटी इन द राइट वे, I will start experiencing those qualities जो हम सिर्फ कह रहे हैं अभी तक, I will start experiencing in myself and the result of that will be कि हमारे जो संस्कार जो आज दिन तक हम कहते थे ये तो मेरी नेचर है, ये तो चेंज नहीं हो सकती, मैं से ये नहीं होगा, मेरे से वो नहीं होगा, वो मेरे अंदर ऑटोमेटिकली इतनी पावर भरती जाएगी कि मेरे लिए अपने आप को परिवर्तन करना जो आज दिन तक हम समझ रहे थे बहुत डिफिकल्ट है। क्योंकि आप देखो कोई भी रिश्ता अगर बहुत स्ट्रांग है, हम उस रिश्ते में अगर हमें एनर्जी मिलती है तो हमें कोई भी रिश्ता एम्पावर कर सकता है। हम ये नहीं कह रहे कि जो ह्यूमन बींग्स के साथ हमारे रिश्ते हैं वो हमें एम्पावर नहीं करते हैं, लेकिन क्योंकि आज मेजोरिटी सोल्स थोड़ी सी
1: डिप्लीटेड
2: वीक हो गई हैं, तो इसलिए हमें सोल टू सोल कुछ बहुत ज्यादा मिल नहीं रहा है। नहीं तो आज किसी से मुझे इतना प्यार मिले अनकंडीशनल लव मिले तो मुझे अपनी कमजोरियों को ओवरकम करना डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन आज एक पेरेंट एज अ चाइल्ड मुझे बोलता ही रहे तुम तो हो ही ऐसे, तुम तो हो ही तुम, और अगर अच्छा अच्छा बोल भी रहा लेकिन खुद इतने दर्द में है तो उनकी दर्द की वाइब्रेशन मुझे मिलती है तो आई कंटिन्यू टू गेट डिप्लीटेड। इवन एज अ पेरेंट एंड चाइल्ड टूडे द बॉडी फॉर्म parent and a child, parents give a lot of love to children, but parents are in a lot of pain.
1: खुद किस सिचुएशन में है तो परमात्मा कभी खुद थोड़ा पेन में जाएंगे,
2: दैट्स द पॉइंट। तो जैसे ही आपका रिलेशनशिप उसके साथ जुड़ता है जो इतना पावरफुल है तो उससे आपको वाइब्रेशन कौन सी आएगी? आज एक पेरेंट भी एक बच्चे के साथ ये रिलेशनशिप जोड़ सकता है, नॉट लाइक गॉड, बट इफ अ पेरेंट हैज द पावर कि वो अनकंडीशनल लव दे स्टेबिलिटी के साथ, बच्चा कितना भी दर्द में है पेरेंट दर्द में ना जाए, तो पेरेंट की जो एनर्जी ट्रांसमिट होगी बच्चे को वो बच्चे को मदद कर देगी अपने दर्द से बाहर आने के। नाउ दैट बिकॉज वी आर नॉट बीइंग एबल टू गेट हियर सो व्हाट हैपेंस, रिलेशनशिप इज देयर लेकिन हम फिर भी हमारी स्थिति कैसे होती जा रही है, वी ऑल लव ईच अदर वी से बट सो मेनी कंडीशंस वी अप्लाई एंड दैट्स वाई वी आर गेटिंग डिसएम्पावर्ड। लेकिन जैसे ही हमारा कनेक्शन एक ऐसे आत्मा से जुड़ता है, यू नो जस्ट लुक एट हिम जस्ट एज अनदर सोल, वी आर लुकिंग एट हिम जस्ट एज अनदर सोल, इतनी सारी आत्माओं से रिश्ता जुड़ा है, अब एक ऐसी आत्मा से रिश्ता जुड़ रहा है जो कभी दर्द में नहीं जाता,
1: जिसका अपना कोई दर्द नहीं, वंडरफुल,
2: नो पेन, राइट, नो एंगर, नो स्ट्रेस, नन ऑफ ऑल दीज थिंग्स, एवर पावरफुल, एवर प्योर, एवर पीसफुल। अब एक ऐसी आत्मा से रिश्ता जुड़ रहा है तो उसका इफेक्ट क्या होगा मेरे ऊपर?
1: इट विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग,
2: दैट्स ऑल, that I will start experiencing कि मुझे जो अपने अंदर परिवर्तन लाना है ना वो एक्चुअली हम खुद ही लाते हैं, भगवान हमें चेंज नहीं करता, he doesn't do like this magic, लेकिन भगवान से जो वो अनकंडीशनल पावर लव प्योरिटी मिलती है दैट हेल्प्स मी टू ओवरकम माई पेन एंड ओवरकम माई ओल्ड संस्कार एंड दैट्स वाई रिलेशनशिप विद गॉड का जो सबसे फंडामेंटल रिजल्ट निकलता है दैट इज सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन। गॉड डज नॉट ट्रांसफॉर्म मी, वी हैव टू बी वेरी क्लियर। हम भगवान को अगर ये भी कहते रहे ना मेरा ये संस्कार ठीक कर दो, मेरा ये संस्कार, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। नहीं तो भगवान ऐसे करे और सबके संस्कार ठीक हो जाए, इट डजंट हैपन। हम खुद ठीक करते हैं, हमें अपने ऊपर मेहनत खुद करनी पड़ेगी, लेकिन यस being in the company of that ever pure, मुझे वो इतनी vibration, इतनी power मिलती है जिससे मैं अपने आप को ठीक करती हूँ,
1: इतनी शक्ति मिलती जा सकती है। Wonderful, this is a beautiful way to look at the relationship। अगर पूरे दिन में मैं अपने जीवन में देख

0: करती हूँ, तो जो भी मेरा कोई रिश्ता है उसका कोई ना कोई रोल होता है। मेरे जैसे आप हैं, आपके साथ मेरा क्या रिश्ता है, या उसका एक रोल है मेरी लाइफ में। कोई भी है, मेरी बेटी है अगर आप देखें तो उसका क्या रोल है। तो सिमिलरली अगर हम गॉड को देखते हैं, उसका मेरे जीवन में, मेरे दिन भर दिन में जितना भी मैं होती हूँ, क्या होगा रोल।
1: लेट्स टेक एनी रिलेशनशिप, क्योंकि परमात्मा के साथ हम कहते, एक तो हम उसको बाबा कहते हैं प्यार से एज अ फादर, लेकिन वो आत्मा है। एंड वी ऑलरेडी सीन कि रिलेशनशिप्स लेबल्स नहीं है, रिलेशनशिप है आत्मा का, आत्मा से कनेक्शन। हाँ, आज हमने उसको बहुत सारे लेबल्स दे दिए हैं, लेकिन एक हस्बैंड और एक वाइफ है तो रिलेशनशिप किसके बीच है? दो आत्माओं के बीच। एक पेरेंट और एक चाइल्ड है, रिलेशनशिप दो आत्माओं के बीच। अब एक आत्मा और परमात्मा का रिलेशनशिप है, तो अगेन रिलेशनशिप दो आत्माओं के बीच है। लेट्स से आई एम इन पेन, मेरे मन में कोई बात है, समथिंग इज बॉदरिंग मी, और कई बार होता कि अनलेस आई शेयर इट, जस्ट गोज ऑन इनसाइड, एंड मुझे चाहिए कि मैं किसी के साथ वो शेयर करूं। मैं वो बात किसी के साथ नहीं शेयर कर सकती, बिकॉज प्रोबेबली इट्स जस्ट टू पर्सनल। एंड शेयर करने का भाव भी क्या होता है कि इफ आई शेयर इट विद यू, आई वॉन्ट टू गेट फ्री फ्रॉम दैट पेन। यू नो, हम शेयर भी इसी भाव से करते हैं कि मैं किसी से शेयर करूं ताकि तुम्हारा दर्द ही मुक्त हो जाए। लेकिन आज अगर मेजोरिटी आत्माएं अपने अपने कॉम्प्लेक्सेस में, अपने इश्यूज में है, या खुद उतने एम्पावर्ड नहीं है, अगर उनसे हम अपनी कोई बात शेयर भी करते हैं, तो डू आई बिकम फ्री ऑफ माई पेन? अगर मुझे कोई राय देता भी है कि ऐसे नहीं, आप ऐसे कर लो, ऐसे आपको क्या पता मेरे साथ कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। सो आई कैन शेयर बट आई डोंट गेट द पावर, जिससे मैं अपने दर्द से मुक्त हो जाऊं। अब एक्सपीरियंस करें कि हम बात कर रहे हैं उस ऑलमाइटी अथॉरिटी, एवर पावरफुल आत्मा से, जो अनकंडीशनल लव करता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ मेरे से कितनी बड़ी गलती हो गई है, मैंने कितना बड़ा पता नहीं क्या कर दिया है। नाउ आई शेयर, शेयर कुड बी विद माय थॉट पावर, कि मैं जो भी है मैं बोलती जाती हूँ। रिटर्न में वाइब्रेशंस कैसे आ रहे हैं? सपोज मैं आपके साथ शेयर करूँ ना कि मैंने आपको पता है कितनी बड़ी गलती कर दी, या मेरे साथ ऐसा हुआ या ऐसा हुआ, आप ये एक ह्यूमन नेचर जैसे कहें, क्योंकि हम बहुत डिप्लीटेड हैं अभी, आप भले ऊपर से कहेंगे हाँ कोई बात नहीं सब ठीक हो जाएगा, अंदर कहीं ना कहीं जो वाइब्रेशन
0: देखा ये होना ही था,
1: या आपने ऐसा कर दिया, ये आप
0: इस हद तक,
1: यू नो, सो हम बोलेंगे नहीं, ठीक है। इवन आज एक बच्चे से भी अगर कोई गलती हो जाए तो पेरेंट बहुत प्यार करता है, लेकिन कहीं ना कहीं एक बच्चे से अगर कोई बहुत बड़ी गलती हो जाए तो एक पेरेंट के अंदर वो उस चीज का एक जो नेगेटिविटी का इम्प्रेशन है वो आ ही जाता है, और तब पेरेंट्स कहते हैं बच्चे ने ये कर दिया, या यू नो धोखा दे दिया, या वट एवर। तो वाइब्रेशन कौन सी पहुंचेगी? तो इसलिए हम शेयर नहीं कर सकते, और करते भी हैं तो हमें वो एम्पावर रिटर्न में नहीं मिलता। लेकिन जब हम उससे शेयर करते हैं जिसके ऊपर मेरी नेगेटिविटी का कोई ट्रेस नहीं आता, जिसकी वाइब्रेशन मेरी थॉट या बात सुनने के बाद चेंज नहीं होती, जिसका मेरे प्रति जो एनर्जी फ्लो है वो चेंज नहीं होता,
0: कभी भी नेगेटिव नहीं होगा,
1: वो चेंज नहीं होता, भले मैंने कुछ भी किया है या मैंने कितना भी दर्द क्रिएट किया। अब उसके साथ अगर मैं शेयर करूं अपनी बात, तो मुझे रिटर्न में क्या मिलेगा?
0: एंड
1: जब हम दर्द में होते हैं, हमें चाहिए सिर्फ क्या होता है? वी नीड लॉट ऑफ लव। आई नीड अ सोल हु विल गिव मी सो मच लव दैट आई विल बी एबल टू कम आउट ऑफ दैट पेन। लेकिन आज हम किसी से भी अपना पेन शेयर करें तो हमें रिटर्न में कोई, यू नो, वी स्टिल गेटिंग पेन। सो व्हेन आई शेयर माय प्रॉब्लम, माय कॉन्फ्लिक्ट, माय पेन विद हिम, इट इज नॉट दैट, यू नो, जस्ट द शेयरिंग डज द वर्क। एक तो शेयरिंग करते हुए मैं अपने आप को हल्का करते जाती हूँ, लेकिन वो जो इन रिटर्न मुझे फिर भी अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस मिलती कि आप जो हो जैसे हो, आई स्टिल लव यू, दिस हेल्प्स मी टू बिल्ड माई सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑल ओवर अगेन। तो परमात्मा के साथ रिलेशनशिप मतलब एक तो अपनी छोटी से लेकर बड़ी से बड़ी कोई भी बात हो हम शेयर कर सकते हैं। तो फिर हमें बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी कि मुझे किससे बात शेयर करनी है वो नहीं करनी पड़ती। पालना, मैं अपने जीवन की हर स्टेप पर जो भी कर रही हूँ, कर्म कर रही हूँ, हाँ मुझे अब ये ज्ञान है कि मेरा जो भी कर्म हो रहा है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। माई एवरी कर्मा स्टार्ट्स विद माई थॉट। बट वॉट अबाउट

0: thought to create. ये तो मुझे क्रिएट करना है. आई क्रिएट द थॉट. लेकिन अगर मैं एक ऐसी पावर से कनेक्ट हो जाऊं जिससे मुझे वो शक्ति मिलती रहती है, जिससे मेरा माइंड बिल्कुल साइलेंट और स्टेबल रहता है, तो नेगेटिव और वेस्ट थॉट्स खत्म होते जाते हैं.
1: मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं विजन भी क्लियर होने शुरू हो जाती है.
0: वो तो क्लियर है, लेकिन यू नो लाइक अभी क्या हो रहा है, हमें ये पता है कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है. लेकिन जब हम प्रैक्टिकल में जाते हैं तो हमारे पास वो राइट करने नॉलेज होने के बावजूद वो राइट करने की कहीं ना कहीं ताकत नहीं है, क्योंकि माइंड इतना वीक हो गया है कि वो फिर भी एक नेगेटिव या एक वेस्ट थॉट क्रिएट कर देता है. लेकिन अगर ये माइंड उस सोल से कनेक्टेड है जो कॉन्स्टेंटली ट्रांसमिटिंग पावर है, तो इसके अंदर क्या शक्ति आती है. परमात्मा मुझे थॉट्स नहीं भेजता है, लेकिन परमात्मा मेरे माइंड को, मुझे आत्मा को वो साइलेंस पावर देता है, वो शक्ति देता है, जिससे मैं आत्मा फिर राइट थॉट क्रिएट कर सकती हूँ. परमात्मा मुझे वो ज्ञान देता है, जो हमने पहले भी डिस्कस किया कि जो हमें ज्ञान, हम रोज सेंटर पर जाते और परमात्मा के महावाक्य सुनते, तो वो ज्ञान मुझे मिलता है जिससे मुझे इन्फॉर्मेशन राइट मिलती है, जिससे राइट थॉट क्रिएट करने की एक फाउंडेशन मिलती. तो एक नॉलेज मिल गई और साथ साथ एक पावर मिल गई. और सबसे इजी जो पावर मिलती है गॉड से, वो है सोल कॉन्शियस होने के. जब हम जिस कॉन्शियसनेस के संग में बैठेंगे ना, तो उनकी कॉन्शियसनेस का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता ही पड़ता है. तो जब हम एक ऐसे के सामने बैठेंगे जो 100% सोल कॉन्शियस है, तो हमारी कॉन्शियसनेस किस तरफ जाएगी. क्योंकि हमने पहले भी देखा कि जब दो आत्माएं कॉन्टेक्ट में आती तो एक का दूसरे के ऊपर प्रभाव पड़ता है. तो आज जब हम एक ऐसी आत्मा के कॉन्टेक्ट में आते हैं जो नेगेटिव ओरा की है, तो उसका नेगेटिव ओरा हम पे ओवर पावर करता है. अब जब हम एक ऐसी आत्मा के कॉन्टेक्ट में आते जो एवर प्योर है, तो उसकी पावर मुझ पर ओवर पावर करती है. एंड फिर सोल कॉन्शियस बनना ये इजी हो जाता है. कितनी बार ऐसा होता कि हम किसी को याद करते हैं,
1: उनका फोन आ जाता
0: है, तो वो कब होता है, जब राइट टाइम पर हमने जो थॉट क्रिएट की और वहां से थॉट आई और हमारी थॉट्स की फ्रीक्वेंसी मैच हो गई. अब हम एक ऐसी आत्मा से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं जिसके यहाँ क्लटर का तो कोई ट्रेस ही नहीं है. सो बेसिकली ही इज एवर रेडी.
1: अच्छा, ही इज रेडी, आई जस्ट हैव टू गेट कनेक्टेड. दिस इज व्हाट आई वांटेड टू नो कि इफ इन द होल डे इफ आई वांट टू गेट कनेक्टेड टू You are there personally. But if I want to get connected to my daughter or like anyone
0: else, I may not be there personally. Sometimes I could be sitting here, but I'm not here. If my mind is there. मेरा मन हो सकता है ना, मैं आपसे बात कर रही हूँ, लेकिन मन कहीं और है, तो आपको वो एक्सचेंज का अनुभव नहीं होगा. क्योंकि हर आत्मा अपने अपने बहुत सारे डिस्टर्बेंस से गुजर रही है. लेकिन अब हम किससे कनेक्ट कर रहे हैं,
1: तो मैं ही जानना चाहती हूँ, लोग भी ये जानना चाहेंगे कि व्हेन आई गेट कनेक्टेड टू हिम, मतलब जब मैं उनको याद करूं, तो क्या वो कनेक्टेड मुझसे है हमेशा.
0: दिस इज व्हाट आई थिंक, हमेशा ही कनेक्टेड है. यू नो इट्स लाइक अ ट्रांसमिटर जो कंटिन्यूसली ट्रांसमिट कर रहा है. अब सिर्फ रोल किसका बचा है,
1: मेरा,
0: रिसीवर, कि रिसीवर उस ट्रांसमिटर की फ्रीक्वेंसी पे ट्यून कर जाए. अब जो ट्रांसमिट कर रहा है वो एक आत्मा है, लेकिन मैं जो रिसीवर बैठी हूँ, मैं बॉडी कॉन्शियसनेस में बैठी थी आज तक, तो इसलिए रिसीवर और ट्रांसमिटर की फ्रीक्वेंसी नहीं मैच हो रही थी. तो मैंने सोचा कि मैं एक माँ हूं तो कौन याद आया, बच्चे, क्योंकि कॉन्शियसनेस माँ की थी. मैंने सोचा मैं एक ऑफिसर हूं तो कौन याद आया, ऑफिस याद आया. अब जैसे ही ये कॉन्शियसनेस शिफ्ट हुई कि मैं एक आत्मा हूं, तो तुरंत किससे कनेक्शन जुड़ा,
1: परमात्मा,
0: क्योंकि वो तो रेडी है, लेकिन मैं उस फ्रीक्वेंसी पे नहीं जा रही थी. आप जिस फ्रीक्वेंसी पे जाएंगे उधर का सिग्नल कैच करेंगे. तो अभी तक हम भगवान को याद करने की कोशिश कर रहे थे, इवन इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी या कॉन्शियसनेस, लेकिन खुद अपने को पहले सोल कॉन्शियस नहीं किया था.
1: तो अपनी पहचान बेसिकली वो तो था ही था.
0: वो तो है ही है, ही इज नॉट गॉन एनीवेयर, वो तो है ही है. लेकिन आई वॉज नॉट फर्स्ट इन दैट सेम कॉन्शियसनेस, एंड सेकेंड आई डिडंट नो हु आई वॉज कनेक्टिंग टू. अब नॉलेज के आधार पर ये दोनों चीजें मिल गई, कि पहले अपनी कॉन्शियसनेस की ये सब बातों की विस्मृति करके आई एम अ प्योर सोल. तो सोल को याद कौन आएगा, सुप्रीम सोल. फिर वो अनुभव करना, ही इज ऑलरेडी देयर. लेकिन द मिनट आई ट्यून इन, आई विल स्टार्ट एक्सपीरियंस. सेइंग द फ्लो. तो सारा दिन में जैसे सुबह हम मेडिटेशन करने बैठते तो क्योंकि ये शुरू शुरू का हमारा नया नया रिश्ता है, तो सुबह जब हम मेडिटेशन करने बैठते हैं वी आर सिटिंग विद द एम एंड ऑब्जेक्टिव कि हमारे सब कॉन्शियस माइंड में जो डीप रूटेड संस्कार्स हैं, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम परमात्मा को क्यों याद करते हैं. पहले हम याद करते थे कि प्रॉब्लम ठीक कर दो, बट नाउ वी अंडरस्टैंड दैट दैट इज माई कर्मा. अब हमें ये समझ में आता कि परमात्मा को हम इसलिए याद करते हैं ताकि हम उसकी शक्ति से अपने को ठीक करते हैं, स्व परिवर्तन करते. तो जो मॉर्निंग का टाइम है जो हम खास बैठते हैं मेडिटेशन करने के लिए ताकि हम अपने माइंड को साइलेंट करें, सब कॉन्शियस लेयर पे जाएं, क्योंकि कॉन्शियस माइंड के सारे थॉट्स को पुट असाइड करें, सब कॉन्शियस माइंड में जाएं जहां बहुत सारे पुराने बिलीफ्स, पुराने संस्कार डीप एम्बेडेड हैं, और परमात्मा की पावर हमें वो मदद करती है उस सब कॉन्शियस माइंड पे जाने के लिए. फिर परमात्मा की वो शक्ति, वो एक एक जो पावर है, हम उसको थॉट से अपने सब कॉन्शियस माइंड में इम्प्रिंट करते हैं. वी आर चेंजिंग आर बिलीफ सिस्टम. फर्स्ट माई बिलीफ वॉज आई एम अ बॉडी, गुस्सा ये वो तो मेरे संस्कार है. नाउ आई एम चेंजिंग इट, आई एम अ प्योर सोल, चाइल्ड ऑफ द ओशन ऑफ प्योरिटी. मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांति के सागर का बच्चा हूँ. आई वॉन्ट कि ये मेरे व्यवहार में दिखाई देना चाहिए, लेकिन इसको इम्बेड कहाँ करना पड़ेगा? यहाँ सब कॉन्शियस में. तो मॉर्निंग में साइलेंस में बैठकर कॉन्शियस थॉट्स साइड पे कर सब कॉन्शियस लेयर को, जैसे यू नो ऊपर की सारी चीजें को हटाकर नीचे की चीजों को लेकर आते, उसमें से पुराने बिलीफ्स के बदले ये नया जो सत्यता है, अभी वो बिलीफ ही है, उसको इम्बेड करते हैं और फिर उसको कार्य व्यवहार में लेके जाते हैं. तो सुबह का जो हमारा समय है वो है साइलेंस में बैठकर वो परमात्मा की शक्ति से अपने संस्कारों को ट्रांसफॉर्म करना, और सारा दिन में हम उसके साथ एक रिलेशनशिप कैसा एक्सपीरियंस कर सकते कि वन आई कैन गो ऑन कम्युनिकेटिंग विद हिम. अपने हर कर्म करने से पहले एक मिनट याद करें, फिर माइंड को साइलेंट करें, उसके साथ कनेक्ट करें, अपना काम करें. कोई मीटिंग के लिए आप जा रहे हैं, कोई डिसीजन आपको लेना है, कुछ भी करना है, कनेक्ट जो है. कोई बात बोझ है, शेयर विद हिम. तो जितना उस सुप्रीम पावर के साथ रिलेशनशिप जुड़ता जाएगा आपका रिलेशनशिप के ऊपर डिपेंडेंसी खत्म होती जाएगी बाकी सब. और फिर जो आपका रिलेशनशिप होगा बाकियों के साथ वो लेने के भाव से नहीं होगा कि मुझे आपसे ये चाहिए, वो होगा कि मेरे पास अब ऑलरेडी स्टॉक भर चुका है, नाउ आई कैन एक्सप्रेस इन माय रिलेशनशिप. फिर जो मेरा पर्पस ऑफ लाइफ था कि खुश रहना और खुश रहकर सब कुछ करना, तो वो करना आसान हो जाएगा. एंड देन आई विल स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग सैटिस्फैक्शन, लव, एंड बिकॉज आई स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग आई विल स्टार्ट एक्सप्रेसिंग, एंड व्हेन आई स्टार्ट एक्सप्रेसिंग आई गिव, एंड व्हेन आई गिव माय रिलेशनशिप्स बिकम वेरी क्लोज. जो हम मेडिटेशन में बैठते हैं तो तीन आत्मा के जो तीन फैकल्टीज हैं, माइंड, इंटेलेक्ट एंड एक्सपीरियंस, संस्कार, ये तीनों फैकल्टीज अपना अपना रोल प्ले करते. माइंड क्रिएट्स अ थॉट, इंटेलेक्ट उसको तुरंत विजुअलाइज करता है. जैसे आपने थॉट क्रिएट किया बेटी, तुरंत पिक्चर आ जाएगी. तो इसी तरह आत्मा ने थॉट क्रिएट किया गॉड, परमात्मा, सुप्रीम सोल, तो तुरंत एक फॉर्म आ जाता है कि जैसे मैं आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट, वैसे वो भी एक पॉइंट ऑफ लाइट. आप अगर अपनी बेटी को भी याद करो तो तुरंत आपका थॉट आएगा वो भी कहाँ पर है, क्या कर रहे हैं. तो इसी तरह जब हम परमात्मा को याद करते तो वो कहाँ पर है, तो हमें घर भी ऑटोमेटिकली याद आता. तो घर याद आता कि घर हमारा, द सोल वर्ल्ड इज गोल्डन रेड लाइट, कम्प्लीट प्योरिटी, एंड देयर दिस ओशन ऑफ प्योरिटी. तो हम फिर मन और बुद्धि से वहां चलते हैं. जैसे हम यहाँ बैठे अपने घर जा सकते हैं, वहां के बैठे हुए लोगों को याद कर सकते हैं, वैसे ही अब हम उस घर चलते हैं. तो माइंड और इंटेलेक्ट दोनों साथ साथ चलेगा. मन थॉट क्रिएट करेगा, इंटेलेक्ट उसको हल्के से, डू नॉट अगेन प्रेशराइज योर सेल्फ, डू नॉट ट्राई टू सी समथिंग, इट इज नॉट सीइंग लाइक दिस विद दीज आइज, इट इज जस्ट ट्राइंग टू विजुअलाइज इट. किस लिए? क्योंकि अगर वो विजुअल

0: रिकॉग्नाइज करते तो इंटेलेक्ट कहीं और नहीं चले जाते, क्योंकि अगर इंटेलेक्ट कहीं और चले जाती है तो मन उधर चला जाता है. यू नो, अगर मन ने कहा परमात्मा, अगर इंटेलेक्ट ने वो पिक्चर नहीं लाई तो इंटेलेक्ट किसी और की पिक्चर ले आएगा,
1: बस
0: फिर वो मन वहां चला जाएगा. तो बेसिकली माइंड और इंटेलेक्ट को इकट्ठे चलना पड़ेगा. दिस इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन. बट सम पीपल ट्राई टू बी वेरी यू नो हार्श विद देमसेल्फ, पिक्चर नहीं दिखाई दे रहा. तो इट्स नॉट अ पिक्चर. एज लॉन्ग एज आपके इंटेलेक्ट पर कोई और पिक्चर नहीं आ रहा, आपका मन कहीं और नहीं स्टे कर गया, यू आर ऑन द राइट ट्रैक. जस्ट विजुअलाइज इट वेरी लाइटली. मन और बुद्धि के द्वारा हम अपने पिता के पास जा रहे हैं, लेकिन उसके लिए सबसे पहले मुझे अपने आप को देखना है. ये सारे लेबल्स, नाम, प्रोफेशन, रोल जो मैंने आज दिन तक समझा मैं हूं, ये मेरे हैं. यहां तक कि ये शरीर भी मेरा है. दिस इज ऑल मैटर. आई एम एनर्जी, कॉन्शियसनेस, शक्ति. ट्राई एंड सी योरसेल्फ शाइनिंग इन द सेंटर ऑफ द फोरहेड, भ्रुकुटि के बीच में एक सुंदर सा चमकता हुआ सितारा, टाइनी स्टार, कॉन्शियसनेस. यहां से बैठकर मैं शरीर को चलाती हूं. मैं ही हूं जो हर आत्मा से संबंध अनुभव करती हूं. ये शरीर तो सिर्फ एक माध्यम है. संबंध अनुभव करने वाली मैं शक्ति हूं. मैं एक पवित्र आत्मा हूं. आई एम अ प्योर सोल. प्योरिटी, डिविनिटी, ये तो मेरी अपनी नेचर है. आई सी माई सेल्फ अपने घर की तरफ चलते हुए. अपने आप को देखे, वो पॉइंट ऑफ लाइट. इस शरीर से पार, इस सृष्टि से भी पार अपने घर की तरफ जा रहा है. धीरे धीरे अपने आप को देखने की कोशिश करें कि वो पॉइंट चांद सितारों की दुनिया को क्रॉस कर रहा है. और इस दुनिया को क्रॉस करते करते मैं आत्मा अपने घर में आकर पहुंची हूं. गोल्डन रेड लाइट, कंप्लीट स्पेस ऑफ प्योरिटी एंड पीस. आज दिन तक मैं इस घर को याद करती थी, अपने पिता को याद करती थी. आज मैं उनके पास आकर पहुंची हूं. अपने आप को देखे, मैं एक सुंदर सा चमकता हुआ सितारा. इस आत्माओं की दुनिया में मेरे सामने एक और बहुत सुंदर पावरफुल पॉइंट ऑफ लाइट, मेरे ही जैसा, मेरे ही जितना छोटा सा, सूक्ष्म बट पावर वाइब्रेटिंग ऑल ओवर. मैं अपने पिता के पास आकर बैठा हूं. आज दिन तक तो मैं ढूंढ ही रहा था. गॉड, ईश्वर, अलग अलग नाम से पुकार रहा था. मैं उनके सामने आकर बैठा हूं. मन पे कोई बात, कोई बोझ, कोई क्वेश्चन उनसे कर सकते हैं. मैं पवित्रता के सागर के सामने बैठा हूं. देखने का प्रयास करें पवित्रता की किरणें, शांति की किरणें, एनर्जी है जो मुझ पर फ्लो कर रही है. और मैं आत्मा उन शक्तियों को अपने अंदर भरती जा रही हूं. ओम शांति.
1: ओम शांति।

सिस्टर शिवानी, जिस तरह से परमात्मा का परिचय हमें मिला और जिस तरह से एक रिलेशनशिप, हमारा एक डायनामिक रिलेशनशिप जो मेरा और आपका या हमारा किसी भी और व्यक्ति के साथ है वो कायम हो सकता है, सिर्फ डिफरेंस ये है कि उसका तरीका थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा खुद को एलिवेट करके अपनी पहचान को करने की जरूरत है, बाकी रिश्ता इतना सुंदर, इतना डायनामिक हो सकता है, वहां से कनेक्ट हो सकते हैं हम जिसको हम अभी तक तलाश रहे थे। थैंक यू सो मच। शांति। हर बार की तरह आपसे यही कहना चाहेंगे कि ये कार्यक्रम आपका अपना है, सेल्फ मैनेजमेंट यानी खुद को समझते हुए खुद को मैनेज करने का ये जो पूरा प्रोसेस हम समझ रहे हैं, इससे जुड़ी कोई आपकी बात है, कोई सवाल है, आपका हम स्वागत करेंगे। आप हमें फोन पर या फिर ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर है 0999-344-555, 0999-344-666, 0987-366-555, 0999-744-555। हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@pkmail.org। अवेकनिंग विद रमा कुमारी इसमें हर बार की तरह आपको यही कहना चाहेंगे कि जितने भी हमारे सवाल होते हैं, जो भी हम प्रोग्राम में करते हैं, फीडबैक आप ही से मिलता है, आपका ढेर सारा प्यार हम तक पहुंचता है और साथ ही आपके सवाल भी आते हैं। इन सवालों का हम हर बार स्वागत करते हैं और आज इस कड़ी में इतना ही, लेकिन आने वाली कड़ियों में आप ही के सवालों पर आधारित बहुत सी बातें और करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे कुछ और सेल्फ मैनेजमेंट के बारे में। आपसे विदा लेते हैं। ओम शांति।

लिबास चाहे जो हो, अंदर से हम सब हिंदुस्तानी हैं, एकता की डोर में सबको बांधता। पुनेरी आवाज 107.8, खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: खुशी को निरंतर बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के प्रेरणादायी विचार।
1: तो वो लोग जो हमें छोटी छोटी बातों पर डांटते हैं, जो हमारी गलतियां निकालते हैं, जो हमारी निंदा करते रहते हैं, जो हमारी की हुई मेहनत का क्रेडिट ले लेते हैं, जो हमें धोखा दे देते हैं, जो हमारे पीठ पीछे गलत फैलाते हैं, कुछ भी लोग, वो छोटी ब्लैक बॉल हो सकती है, ग्रे हो सकती है या बहुत बड़ी ब्लैक बॉल हो सकती है, क्या हमारे पास पावर है कि हम ब्लैक का रिटर्न व्हाइट से भेजेंगे? वो हमारे साथ गलत करेंगे, हम उनको दुआएं भेजेंगे, इज दैट पॉसिबल? पहली बात, ये मेरे साथ गलत क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैंने कभी ना कभी वो बॉल भेजी थी, तो गलती इनकी या मेरी? मेरी। तो इनके ऊपर से जो मैंने ब्लेम लगाया हुआ था वो पहले खत्म, वन। सेकंड, अब मैं अगर व्हाइट भेजूंगी तो किसके फायदे के लिए? उनके ऊपर एहसान नहीं, अपने फायदे के लिए व्हाइट भेजने में भी सोचना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। उनके लिए नहीं भेज रहे, अपने फायदे के लिए भेज रहे हैं, क्योंकि अब जब हम व्हाइट एनर्जी भेजेंगे, मतलब दुआएं देंगे अपने फायदे के लिए।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: खुशी को निरंतर बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के प्रेरणादायी विचार।
1: जैसे गुस्सा एक एनर्जी है, खुशी भी एक एनर्जी है। जैसे कोई मुझे गुस्सा नहीं दिला सकता, वैसे कोई मुझे खुशी भी नहीं दिला सकता। ये एक एनर्जी है जो मेरे अंदर है, और बाहर की कोई भी फिजिकल चीज, एक कार, एक बंगलो, एक डेजिग्नेशन, वेरी बिग सैलरी फिगर या एक व्यक्ति, वो मेरे अंदर उस एनर्जी को नहीं क्रिएट कर सकता। दैट एनर्जी कैन ओनली बी क्रिएटेड बाय मी। बट व्हाट आई डू इज कि उस चीज को लेकर आई कैन क्रिएट दैट एनर्जी। ये लैपटॉप है, तो लैपटॉप मेरे अंदर हैप्पीनेस नहीं क्रिएट कर सकता। ये एक फिजिकल चीज है, ये एक एनर्जी है। ये फिजिकल चीज उस एनर्जी को नहीं क्रिएट करता, बट द थॉट दैट आई क्रिएट, नाउ आई हैव अ लैपटॉप, यू नो, ये थॉट जो क्रिएट कर ली, ये थॉट वो पॉजिटिव एनर्जी को क्रिएट कर देता है। तो सबसे पहली रियलाइजेशन ये है कि कोई भी बाह्य चीज या व्यक्ति उस फीलिंग को नहीं क्रिएट कर रहा है, मेरी अपनी थॉट्स, क्योंकि हमने चेन में देखा कि थॉट गिव्स राइज टू फीलिंग, नथिंग एल्स। कोई भी और चीज वो फीलिंग नहीं क्रिएट कर सकती है। तो नाउ इट्स इन माई हैंड कि लैपटॉप लाने के बाद मैं उस अच्छी फीलिंग को क्रिएट करूं, या बिना लैपटॉप के भी उसको क्रिएट कर लूं, या वेट करती रहूं, एक साल सेव करती रहूं कि जिस दिन लैपटॉप आएगा तब वो अच्छी वाली फीलिंग क्रिएट करूं। यू नो, इट्स इन माई हैंड कि मैं कितना देर खुश रहना चाहती हूं। डू आई वॉन्ट देन, नाउ वट इज हैपनेस, वी हैव मेड इट वेरी टेम्पररी कि ये होगा तो खुशी। दैट्स बिकॉज जब वो चीज होती है, हम अपने आप को उस तरह की अच्छी थॉट्स देते हैं, अच्छी फीलिंग आती है। लेकिन जब हमें समझ में आ जाता है कि ये मेरी अपनी क्रिएशन है, एंड आई कैन क्रिएट इट वेन, वेर एवर एंड फॉर हाउ एवर लॉन्ग आई वॉन्ट, सो देन इट्स माई चॉइस। सो नाउ इट्स योर चॉइस, आप जितनी देर खुश रहना चाहते हैं, क्रिएट इट।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
2: मित्रांशिवाय आयुष्य अपूर्णच, हसणं भांडणं आणि गाणं सगळं शेअर
3: करायचं।
2: जुन्या दिवसांची आठवण आली की मन पुन्हा शाळेत जातं।
4: लकडी की काठी, काठी पे घोडा,
2: मनात पीठ वाजल्या की शरीर अपोआप फिरकतं। त्याचसोबत
5: गावाची आठवण, मातीचा सुगंध,
2: जुन्या गाण्यांचा तोच सुगंध, तीच नशा,
3: पहला नशा पहला खुमार।
2: घेऊन येत आहे आपल्यासाठी पुणेरी आवाज 107.8 FM। आनंदी रहा, आनंद लुटा।
6: नमस्कार, मी मोनालीचा स्वागत, तुम्ही ऐकत आहात रेडिओ पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

ओम शांति अवेकनिंग ड्रामा कुमारी में आप सबका स्वागत। इन दिनों श्रृंखला चल रही है लाइफ स्किल्स की, जिंदगी जीने की कला, वो स्किल्स जो अब हम सीख रहे हैं, जीवन को परिवर्तित कर रहे हैं। बहुत बार बात करते हैं मेडिटेशन की, योग की, और उसके अनुभव भी प्राप्त करते हैं, लेकिन आज हम जानने की कोशिश करते हैं कि जब हम मेडिटेशन या योग में हैं तो क्या हमारे बॉडी पर और मन पर असर हो रहा होता है। बातचीत करने के लिए हर बार की तरह हमारे साथ हैं जाने माने साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर गिरीश पटेल, हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सशिवन, दोनों का स्वागत। हम शांति डॉक्टर पटेल, आज बात मेडिटेशन से शुरू करते हैं कि उसको हम काफी टाइम से उसके अनुभव कर रहे हैं और उनका अपनी लाइफ पर होता हुआ परिवर्तन देखते हैं, लेकिन अगर हम देखें तो हमें हमारे बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं जब हम योग में हैं या फिर मन पर

0: साइंटिफिक रूप से क्या प्रभाव पड़ता है?
1: बहुत अच्छा प्रश्न है, काफी इस पर रिसर्च भी हुई है। जो हमने थॉट्स की इफेक्ट के बारे में समझा था कि टॉक्सिक थॉट्स की क्या इफेक्ट होती है, तब मैंने आपको समझाया था कि कैसे शरीर को एक कार के साथ हम कंपेयर कर सकते हैं। कार में एक्सेलरेटर है और ब्रेक है, वो एक्सेलरेटर सिंपैथेटिक सिस्टम है और ब्रेक है वो पैरासिंपैथेटिक सिस्टम है। तो मेडिटेशन में वो ब्रेक लगती है कि सिंपैथेटिक एक्टिविटी कम हो जाती है और स्लाइटली पैरासिंपैथेटिक एक्टिविटी वो बढ़ती है। उसके कारण बहुत सारे फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स होते हैं। और इसको अगर पहले समझना हो बेसिक के भी होता भी कैसे है, तो ब्रेन को हम सहज रूप में समझ सकते हैं। अगर ब्रेन को ऐसे समझे कि एक ऊपर का हिस्सा है और दूसरा ब्रेन का अंदर का हिस्सा है, जो ऊपर का हिस्सा है वह है सेरिब्रल कॉर्टेक्स और अंदर का हिस्सा है थैलेमस हाइपोथैलेमस। तो आमतौर पर ये जो ऊपर का हिस्सा है वो अंदर के हिस्से को बार बार डिस्टर्ब करता रहता है, और वाइस वर्सा भी सत्य है कि जब हम लॉजिकली सोचते हैं, तर्क से सोचते हैं, तो ऊपर का हिस्सा नीचे के हिस्से पर प्रभाव डालता है, और जब हम इमोशनल होते हैं तो नीचे का हिस्सा है वो ऊपर के हिस्से पर प्रभाव डालता है।
0: तो ये दोनों कनेक्टेड स्पेस है दोनों के बीच में,
1: कनेक्टेड है, एक्चुअली कनेक्टेड है। सारे वो जो न्यूरॉन्स है वो बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स एक दूसरे से कनेक्टेड है। ये बड़ी सिंपल भाषा में समझा रहा हूं, परंतु मेडिटेशन में ही बात होती है कि ये दोनों के बीच में एक डिसकनेक्शन होता है, वो डिटैच होते हैं। जो मेडिटेशन के अभ्यास में भी जब हम शरीर से डिटैच होते हैं तो ये डिटैचमेंट भी होता है, और वो डिटैचमेंट के कारण फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स होना शुरू हो जाती है। पहली तो यही इफेक्ट कि सिंपैथेटिक जो अराउजल एक्सेलरेटर है उससे आपका पैर हट गया, तो क्या होगा? जो पहले भी समझाया था कि ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, हार्ट रेट बढ़ रही है, सांस की गति फूल रही है, वह सब कम होगा। वह नॉर्मल भी है, हमारा ब्लड प्रेशर आज नॉर्मल है, फिर भी थोड़ा सा कम होगा कि जो स्वास्थ्य के लिए बेनिफिशियल है। तो ये सबसे पहली बेसिक इफेक्ट है।
0: ओके, तो ये तो बात रही कि एक क्वाइट इंटरेस्टिंग वे हम दिख रहा है कि जब एक ब्रेन के दोनों जो पार्ट थे उनको जो मेडिटेशन है वो डिटैच कर देती है। तो शिवानी
2: को उससे एक लगा, आई डिडंट नो दिस बिफोर बट व्हेन आई वाज हियरिंग दिस नाउ, हम लोग जो एक्सपीरियंस करते हैं कि हम में से हर एक का पर्सनल एक्सपीरियंस है, किसी की पर्सनालिटी लॉजिकल ज्यादा डोमिनेटिंग है और किसी की इमोशनल ज्यादा डोमिनेटिंग है, लेकिन जब हम मेडिटेशन करते हैं तो कहीं ना कहीं दोनों का बैलेंस क्रिएट होने लग जाता है। यू नो, जो बहुत लॉजिकल है साथ साथ इमोशनल का भी बैलेंस क्रिएट करते हैं, और जो पहले बहुत भावनात्मक थे वो लॉजिकल, सो बेसिकली दैट लॉजिक एंड क्रिएटिव का भी बैलेंस आने लगता है। सो मे बी इट इज बिकॉज ऑफ दीज टू पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, आई डिडंट नो दिस बट दिस डेफिनेटली वी एक्सपीरियंस कि हमारा लॉजिकल एंड इमोशनल साइड दोनों कॉम्प्लीमेंट करके एक दूसरे को बहुत बैलेंस में चलना शुरू हो जाता है,
0: क्योंकि दोनों आस्पेक्ट देखना शुरू हो जाते हैं।
2: बेसिकली दोनों में से कोई एक डोमिनेंट नहीं रह जाता, यू नो, एंड ऑल्सो वी आर एबल टू, यू नो, जस्ट इट्स अ बेनिफिट दैट्स हैपनिंग ऑटोमेटिकली कि वेन एंड वेयर टू बी लॉजिकल and when and where to be emotional, that discrimination power automatically somewhere I think wo harmony mein ja raha hai. Kai baar pehle nahi to kahin emotional hone ki zarurat hai, hum bahut logical ho jate hain. Koi decision logically lene ki zarurat hai, hum emotionally lena shuru karte hain. But here somewhere, aur isiliye meditation se decision making capacity बहुत अच्छी हो जाती है, क्योंकि लॉजिक एंड इमोशन का बैलेंस क्रिएट होना शुरू हो जाता है।
1: दिस इज एट अ डीपर लेवल, और ये राजयोग की भी यूनिकनेस है, और भी कई मेडिटेशन की टेक्निक्स है जिसमें भी रिलैक्सेशन तो मिलता है, ये डिटैचमेंट हो पाता है, व्यक्ति रिलैक्स होता है। जो एक फंडामेंटल रिसर्च स्टडी जब हुई, आज से मैं समझूंगा करीब 40 साल पहले, जो फंडामेंटल रिसर्च स्टडीज हुई जिसमें जो योग कर रहे थे उन पर उन्होंने अभ्यास किया और यह पाया कि उनकी जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है, बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या है, शरीर एक इंजिन की तरह है, जैसे कुछ गाड़ियां ज्यादा पेट्रोल यूज करती है, कुछ कार कम पेट्रोल यूज करती है, तो जिनका इंजन फास्ट काम कर रहा है वो गाड़ी ज्यादा पेट्रोल यूज करती है। तो ऐसे ही जो हमारी बेसल मेटाबॉलिक रेट है वो जब ज्यादा होती है उसका मतलब कि वो ज्यादा एनर्जी को कंज्यूम कर रही है। जब मेडिटेशन का अभ्यास करेंगे तो कम फिजियोलॉजिकल रिसोर्सेस है उनका उपयोग होगा, और इस रिसर्च में यही देखा गया कि उनकी बेसल मेटाबॉलिक रेट थी वो करीब 40 से 50% कम।

0: हो गई, ऑलमोस्ट हाफ हो गई। और जब फिजियोलॉजिकल बेसल मेटाबॉलिक रेट कम हुई तो काफी फिजियोलॉजिकल एनर्जी की भी बचत हुई और साथ साथ साइकोलॉजिकल एनर्जी की भी बचत हुई। ये वास्तव में साइकोलॉजिकल इफेक्ट है कि हमारे थॉट प्रोसेस है वो स्लो डाउन होते, वो हार्मोनियस होने लगते, उसके कारण फिजियोलॉजी पर भी ये इफेक्ट होती है।
1: इसी से शायद हो रहा होगा कि अगर मन हल्का है तो बॉडी की भी थकावट नहीं महसूस हो रही, क्योंकि बॉडी की उतनी एनर्जी फिर शायद नहीं कंज्यूम हो रही। एंड वी आर डूइंग द कॉन्ट्ररी आज, अगर हम बहुत ज्यादा एजिटेटेड हैं तो बहुत कम काम करके भी शायद हम जल्दी थकावट महसूस करते हैं।
0: उसमें वो दूसरा इश्यू है जो हमने टॉक्सिक थॉट के समय भी डिस्कस किया था कि लैक्टिक एसिड का लेवल बढ़ता जाता है क्योंकि ब्लड वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है, कम ब्लड मिलता है, कम ऑक्सीजन मिलता है, इसके कारण ग्लूकोज का एंड रिजल्ट लैक्टिक एसिड होता है। अब मेडिटेशन में इसका रिवर्सल है कि जब मेडिटेशन करते सिंपैथेटिक अराउजल कम हो गया तो ब्लड वेसल्स पर प्रेशर कम आया, ब्लड वेसल्स थोड़ी सी डायलेट हुई, ज्यादा ब्लड पहुंचने लगा, ज्यादा ब्लड पहुंचा तो ज्यादा ऑक्सीजन मिला, ज्यादा ऑक्सीजन मिला तो लैक्टिक एसिड का प्रमाण कम हो गया। और ये भी जो हम स्लीप के बारे में जब डिस्कस कर रहे थे, इस बात की भी तुलना की गई है कि आप आधा घंटा नींद करो तो भी लैक्टिक एसिड लेवल कम होता है, परंतु अच्छे से अगर आधा घंटा मेडिटेशन का अभ्यास करो तो लैक्टिक एसिड का लेवल करीब 3 से 4 गुना ज्यादा कम होता है। तो जिससे सिद्ध होता है कि इट इज ऑलमोस्ट 3 to 4 टाइम्स मोर बेनिफिशियल टू रिड्यूस लैक्टिक एसिड एंड गिव रिलैक्सेशन।
1: दैट्स व्हाई वी फील हाफ एन आवर ऑफ मेडिटेशन इक्विवेलेंट टू ऑलमोस्ट 2 hours ऑफ स्लीप। तो अगर थोड़ा जल्दी उठ भी गए, नींद का त्याग किया भी है, अगर पहले 5-6 बजे उठते थे और अब 4 बजे उठे, जो ताकत, क्योंकि हमारी ये साइकोलॉजी है ना, मैं जल्दी उठा, आई हैव नॉट गॉट दैट एनर्जी। लेकिन जब आप अपने आप को ये समझाएंगे कि जो ताकत, जो एनर्जी मैं 2 घंटे सो कर क्रिएट कर सकता था, मैंने आधा घंटा मेडिटेशन करके क्रिएट कर ली एंड आई स्टिल गॉट 1.5 hours एक्स्ट्रा टू डू मोर वर्क।
0: ओनली थिंग, इसमें क्वालिटी मेडिटेशन चाहिए, अच्छे से मेडिटेशन का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब ये बेनिफिट होगा।
2: अब आते हैं कि मेडिटेशन हो पाना ही, यू नो, मेडिटेशन के अनुभव, जैसा आपने कहा कि वो अच्छा होना चाहिए, हाउ विल आई नो वेदर इट्स अ गुड मेडिटेशन या मैं ठीक से कनेक्ट नहीं हुआ, कैसे पता चलेगा?
1: सबसे पहले एकदम कॉन्शियस लेवल पर भी अगर देखें तो आप अपनी थॉट्स को चेक कर रहे हैं। अगर मैं मेडिटेशन करने बैठा हूं, और मेडिटेशन क्या है, जैसे गिरीश भाई ने कहा, अलग अलग प्रकार के मेडिटेशन है, कई मेडिटेशन टेक्निक्स आज हैं जिसमें भाई बहने ट्राई करते हैं कि सोचना ही बंद कर दें। मेजोरिटी पीपल फील दे स्टिल नॉट लर्नड मेडिटेशन, उन्हें लगता है मेडिटेशन मीन्स कोई एक पॉइंट पर फोकस करो एंड सोचना बंद कर दो। दैट्स नॉट व्हाट वी डू इन राजयोगा। पर कई मेडिटेशन टेक्निक्स में कोई एक पावरफुल वर्ड या पावरफुल यू नो सिलेबल लेकर उसको रिपीट करते जाते हैं, जिसको कहेंगे मंत्र रेपिटेशन। लेकिन राजयोगा मेडिटेशन में हम कॉन्शियसली प्योर एलिवेटेड थॉट्स चूज करते हैं और क्रिएट करते हैं। तो जब हमें ये लक्ष्य रखा हमने कि ये थोड़ा सा समय जो मैंने निकाला है इसमें मुझे कॉन्शियसली कौन सी थॉट्स क्रिएट करनी है, अपने बारे में, द सोल एंड परमात्मा के बारे में। अब अगर बीच में थॉट्स आ रहे हैं, ऑफिस, बच्चे या एनीथिंग एल्स दैट हैज हैपेंड, देन आई एम नॉट मेडिटेटिंग, आई एम ओनली सिटिंग। आई एम सिटिंग बट वो मेडिटेशन तो हो नहीं रहा, मैं अभी भी बैठ के शायद नेसेसरी थॉट्स या हो सकता है कई बार नेगेटिव थॉट्स या वेस्ट थॉट्स ही क्रिएट कर रहा हूं, तो वो सिर्फ बैठे हुए हैं लेकिन मेडिटेशन नहीं हो रहा। सबसे पहले तो उसी लेवल पर चेकिंग हो जाती है, फिर अगर वो राइट कॉन्शियसनेस में हम हैं और उसको राइट तरह से कर रहे हैं, धीरे धीरे उसका एक्सपीरियंस होने लगेगा ना, और फिर उसका प्रैक्टिकल जीवन में प्रूफ दिखाई देगा, संस्कार परिवर्तन, पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्मेशन, जिसका तो फिर जीवन पे हर एस्पेक्ट पे प्रभाव पड़ जाएगा।
2: डॉक्टर पटेल, ये बात तो रही कि जो सही मेडिटेशन है वो हमें अनुभव पता चलने लग जाएगा, अब उसको टेक्निक
0: तो, और मैं आपको थोड़ी फिजियोलॉजिकल इफेक्ट बताना चाहूंगा। और एक जो रियल चेंज होता है कि जिस पर हमने रिसर्च भी की, जैसे मैं ब्रेन का ये समझाया कि इस प्रकार से जब डिटैचमेंट होता है तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स की जो ओरिजिनल इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस है उस पर वो आ जाता है, अन्यथा हाइपोथैलेमस बार बार उसे डिस्टर्ब कर रहा है। और क्योंकि हम बहुत सोचते हैं ना, हर सेकंड हम सोच

0: हैं, तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस भी ब्रेन के वो बहुत फास्ट चलते हैं। आपने ईसीजी सुना होगा, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जो हार्ट की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है उसका एक ग्राफ है। ऐसे ही ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का भी ग्राफ निकाल सकते हैं। अलग अलग जगह पर ब्रेन में इलेक्ट्रोड्स को इम्प्लांट किया जाता है और दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में एक सेकेंड में कितने इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस जनरेट हुए उसको मेजर करना है। आमतौर पर देखा जाता है कि एक सेकेंड में करीब 25-30 जितने इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस आते हैं, जिसको कहा है बीटा वेव्स। और जब हम थोड़े रिलैक्स्ड है, पीसफुल है, तब 8 से 13 के बीच में इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस होते हैं, जिसको अल्फा वेव्स कहा। और जब व्यक्ति डीप रिलैक्सेशन में जाता है या तो गहरी नींद में है, तब थीटा वेव्स निर्माण होते हैं, कि जिसमें इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस है 4 to 7, और 4 से जो कम इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस है वह है डेल्टा वेव्स। तो इस प्रकार से इसको डिवाइड किया गया है। और ये जो हमने रिसर्च की सर गंगाराम हॉस्पिटल में, जो वहां के ही डॉक्टर्स थे, कुछ मैनेजमेंट स्टाफ भी था, उनको दो हिस्से में डिवाइड किया। किसी को नहीं पता था कि भी हम कौन से ग्रुप में आएंगे। दो चीट्स थी, एक में लिखा था M, एक में लिखा था C, और उन्होंने चीट्स उठाई। लोग हंसते हंसते आए, किसी ने कहा मेरा M निकला, किसी ने कहा मेरा C निकला। तो M का मतलब था मेडिटेशन, कि जिनका M निकला है उनको मेडिटेशन करवाना है, और जिनका C निकला है मतलब कंट्रोल, कि उनको म्यूजिक सुनाना है। कि इन सब का करीब 18 लोगों का किया था, उन सब का पहले तो बेसल उनका EEG लेवल मेजर किया, और फिर जिनका C निकला था उन्होंने करीब 20 मिनट सॉफ्ट म्यूजिक सुना। उसके बाद फिर से उनका EEG किया गया और फिर उनको एक स्टैंडर्ड मेंटल एरिथमेटिक दिया। पहले से ही सोचा था कि भी सबका एक जैसा स्टैंडर्ड मेंटल एरिथमेटिक हो, कि भी 100 में से 7 कम करो, उसमें से और 9 रिड्यूस करो, ऐसे एक सेटअप बनाई थी। वह जिनको म्यूजिक सुना है उन्हें भी वह कराया गया, और जिनको M निकला था उनको मेडिटेशन कराया। बस सिंपल, कुछ समझाया भी नहीं गया था, उन्हें पता भी नहीं था कि राजयोग क्या है। बस थोड़ा सा कहा कि अभी आपका M निकला है, आपको मेडिटेशन करना है, आप ऐसे आराम से बैठिए, मैं आपको कुछ पॉजिटिव थॉट्स दूंगा, उस पर आप बस मन को उसी में एकाग्र करना, वैसे ही आप इस बात को फील करना। और फिर से उनका भी EEG किया गया। रिजल्ट्स आप मानेंगे नहीं, वर अमेजिंग। और इतने तो अच्छे कि तुरंत ही उन्होंने उस स्टडी को पब्लिश कर दिया। पहले तो जो न्यूरोलॉजिस्ट एसोसिएट थे उनको भी इतना विश्वास नहीं था कि भी क्या रिजल्ट्स होंगे। एक जो बात तुरंत सामने आई, एक तो जो हंसी में मुझे भी ये लगा इस रिसर्च के दौरान कि हम मेंटल एरिथमेटिक में कितने वीक है। जब उनको कहते थे कि भी 100 में से 7 कम करो तो कहेंगे 93, फिर कहेंगे 9 रिड्यूस करो तो सोचने लगते थे। और जिन्होंने म्यूजिक सुना था, भल सुनते समय तो उनमें भी अल्फा पैटर्न आई, लेकिन जैसे ही मेंटल एरिथमेटिक शुरू हुआ ऑलमोस्ट सब में बीटा पैटर्न आ गया,
1: स्ट्रेस आ गया ना।
0: लेकिन जिन्होंने मेडिटेशन किया था उनमें ऑलमोस्ट 80% में बीटा पैटर्न नहीं आई,
1: अल्फा में।
0: हाँ, उनके अल्फा ग्राफ्स में भी देख सकेंगे कि उनमें जो अल्फा वेव्स है वो मेंटेन हुए। ये जो ग्राफ है जिसमें वो दोनों लेवल में भी, पहले बेसल और फिर मेंटल एरिथमेटिक के बाद डिफरेंस क्या है वह दिखाया गया है। जिन्होंने म्यूजिक सुना है उसमें आप देखेंगे अधिकतर सब में बीटा वेव्स बढ़ गए हैं, और अल्फा, थीटा और डेल्टा है वह कम हुए हैं। परंतु जिन्होंने मेडिटेशन किया उसमें मेजोरिटी में अल्फा मेंटेन हुए हैं। रिसर्चर्स को भी इतना आश्चर्य लगा कि ऑलमोस्ट 30% में थीटा और डेल्टा पैटर्न बढ़ी है।
1: अच्छा,
0: कि विच इज अमेजिंग। तो दिस इटसेल्फ शोज कि ये जो राजयोग की सरल विधि है, आमतौर पर तो ये मानते हैं कि आपको सालों का अभ्यास होना चाहिए तब आप मेडिटेशन कर सकते, लेकिन जैसे मैंने बताया उनको कोई बात समझाई नहीं गई थी, बस 5 मिनट का इंट्रोडक्शन दिया और फिर मेडिटेशन का अभ्यास कराया, तो इतना अच्छा परिणाम प्राप्त हुआ।
1: इससे एक और बात बहुत क्लियर हो

0: कराती। कई बार हम कहते कि स्ट्रेस है, आई यूज म्यूजिक एज अ रिलैक्सेशन, या कोई भी और स्ट्रेस बस्टर हम यूज करते हैं और अच्छा भी लगता है उस टाइम। लेकिन जैसे ये रिसर्च है, इससे समझ में आया कि उस टाइम तो अल्फा स्टेज में गए, लेकिन जैसे ही एक्टिविटी में आए फिर स्ट्रेस क्रिएट हो गया तो फिर बीटा स्टेज में चले गए। इसका मतलब सिर्फ आप जितनी देर उस स्ट्रेस बस्टर के साथ होंगे, चाहे वो म्यूजिक है, वो जॉगिंग है, जो भी है, आपका माइंड रिलैक्स्ड होगा, नॉट ड्यूरिंग द डे। लेकिन अगर मेडिटेशन कर रहे हैं तो सिर्फ उस टाइम नहीं अल्फा में है, उसके बाद जब आप एक्टिविटी में भी चले गए तब भी आप अल्फा में रहेंगे। अगर फर्स्ट टाइम जो कर रहा है, दैट पर्सन कैन गो इन टू अल्फा स्टेज। इसका मतलब अगर हम रेगुलरली करेंगे और फिर दिन में कई बार बीच बीच में करेंगे तो हम बीटा की बजाय अल्फा स्टेज में ही या शायद उससे भी लोअर स्टेज में शुरू रहना करेंगे। दादी जानकी जी जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है ब्रह्मा कुमारीज की, उनके ऊपर ये रिसर्च हुआ है और डॉक्टर्स ने और न्यूरोलॉजिस्ट ने ये बताया है कि दादी जी हमेशा डेल्टा स्टेज में होती हैं, ऑलवेज। उनको भी इसी तरह कोई प्रॉब्लम बताई, फिर कोई अरिथमेटिक इशू, फिर रिलैक्स, हर तरह के एक्सपेरिमेंट्स करके देख लिए, शी वॉज ऑलवेज इन द डेल्टा स्टेज बिकॉज दिस इज ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ मेडिटेशन।
1: यानी लैंगली पोर्टल साइकेट्रिक इंस्टीट्यूट में रिसर्च हुई जो शिवानी बेन बता रहे हैं, और उसमें बस यही बात उन्होंने देखी कि कैसे दादी जी वो डेल्टा को मेंटेन कर रहे हैं। और वहां भी ये बात आई थी और भी ब्रह्मा कुमारीज के मेंबर्स पर रिसर्च हुई थी, तो इयर्स ऑफ प्रैक्टिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट। कुछ थे उन्होंने बस एक साल ही मेडिटेशन का अभ्यास किया था, फिर भी अच्छा उनका अल्फा या थीटा पैटर्न है वो मेंटेन हो रही थी। और ये बेनिफिट क्यों होता है, यहाँ पर भी मैंने जो न्यूरोलॉजिस्ट थे उनको भी ये बात को एक्सप्लेन की कि ये टेक्निक ऐसी है भी, और टेक्निक में हम और कोई चीज का, एक्सटर्नल चीज का आधार लेते हैं, तो जब तक आपने उसका आधार लिया आपको बेनिफिट हुआ, परंतु जैसे ही बाहर आए परिवर्तन हो गया। परंतु इस टेक्निक में ही उनकी कॉन्शियसनेस को चेंज किया गया था भी, यू आर अ स्पिरिचुअल एनर्जी, आप में वो जो पॉइंट ऑफ लाइट है, स्पिरिचुअल एनर्जी है, दैट इज यू, और ये स्पिरिचुअल एनर्जी इज फुल ऑफ पीस, यू आर एम्बॉडीमेंट ऑफ पीस, यू कैन यूज योर बॉडीली ऑर्गन्स इन अ पीसफुल वे, वी आर टोटली डिटैच्ड।
2: व्हाई डोंट वी एक्चुअली एक्सपेरिमेंट, उसको अनुभव क्यों ना करें। अभी हमारे सब दर्शक भी हैं साथ जुड़े हुए, और इतना इंस्पायरिंग राइट नाउ तो है कि मेडिटेशन जो है वो हमारे जो थॉट की स्पीड है उसे डिक्रीज कर सकती है।
1: बिल्कुल, राजयोग के अभ्यास में जैसा सब जानते भी है कि हमें कोई स्पेशल पोस्चर की आवश्यकता नहीं है, आराम से सहज नेचुरल वे में बैठना है, संभव हो तो आंखें खुली भी हो, ताकि हम वही अभ्यास डालेंगे तो जब दैनिक कार्य कर रहे हैं तब भी उस अवेयरनेस को हम मेंटेन कर सकेंगे। तो मैं आपको एक थॉट पैटर्न्स देता हूं जो पॉजिटिव थॉट्स हम मेडिटेशन के दौरान जनरेट करते हैं। आमतौर पर तो कम से कम 10 मिनट मेडिटेशन का अभ्यास करना चाहिए, पर हम थोड़ी देर में उसका आपको एक टेस्ट देने की कोशिश करूंगा। मैं अपने आप को बाह्य जगत से न्यारा अनुभव कर रहा हूं। मैं एक दिव्य चेतना आत्मा हूं। मैं अपने विचारों को दो भ्रुकुटियों के मध्य में स्थिर करता हूं। यह शरीर एक साधन मात्र है, मैं आत्मा इस शरीर का उपयोग कर रही हूं। मैं एक ज्योति बिंदु, दिव्य आत्मा हूं। जैसे ही मैं इस दिव्य चेतना के बारे में सजग होता हूं, न्यारेपन का अनुभव कर रहा हूं। इस देह और देह की दुनिया से डिटैच हो जाता हूं। मैं आत्मा

0: शक्ति से भरपूर हूँ। मेरा स्वधर्म ही शांति है। जैसे ही मेरी बुद्धि इस बात पर एकाग्र होती है, गहरी शांति का अनुभव हो रहा है। मैं आत्मा अविनाशी हूँ। न मेरा जन्म होता है न मृत्यु। आत्मा जो अविनाशी है, इटर्नल है, इस बात को समझ करके ही मैं निश्चिंत हो रहा हूं। एकदम हल्कापन लगता है। मुझे जो कुछ भी चाहिए सब आत्मा में समाया हुआ है। बस इस सजगता को कायम रखते मैं अपनी सारी दिनचर्या एकदम हल्केपन से डिटैच होकर के कर सकता हूँ। धीरे धीरे मैं वापस इस शरीर के बारे में जागृत होता हूँ, परंतु मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। इस अनुभूति को कर्म करते हुए भी कायम रखूंगा। ओम शांत शांत। तो ये छोटा सा, वास्तव में बहुत ही शॉर्ट था, परंतु एक टेस्ट का अनुभव होगा। और गहराई में जाए तो और डीप अनुभूति मेडिटेशन में कर सकते हैं।
1: और सर शिवानी, जो ये अनुभव आज बहुत सारे लोग जो देख रहे हैं, अगर आज इसे यहाँ अनुभव करेंगे, अपने घर पे कर रहे हैं, तो किन थॉट पैटर्न्स पर रहे वो, ताकि वो सही रास्ते पर चल पाए।
2: जो अनुभव अभी किया, अभी पक्का करे कि रोज सुबह इसको शुरू करना है। इससे इमीडिएटली क्या किया आज दिन तक, शांति के लिए, रिलैक्सेशन के लिए क्या कुछ ना करने के लिए तैयार थे? 3 मिनट बैठे बैठे, ना कोई खर्चा, ना कोई मेहनत। वी एक्सपीरियंस्ड व्हाट वी बीन लुकिंग फॉर। इट वाज जस्ट दैट वी वर लुकिंग फॉर इट आउटसाइड, वी एक्सपीरियंस्ड इट हियर। आज दिन तक इसको प्राप्त करने के लिए और चीजों पर कॉन्सेंट्रेट किया, अपने को अपने पर कॉन्सेंट्रेट नहीं किया। तो लेट्स आज पक्का करें कि आज रात को सोने से पहले, सुबह उठते ही कम से कम 2 बार तो ये पक्का कि सुबह उठते ही, रात को सोने से पहले और बीच बीच में इस 2 मिनट्स, हाउ मच टाइम डिड इट टेक, जस्ट 2 मिनट्स इसको करेंगे तो हमारी भी ब्रेन वेव्स वो अल्फा स्टेज में रहेंगे। सो वी विल बी वेरी रेस्टेड एंड रिलैक्स्ड व्हाइल बीइंग वेरी बिजी आउटसाइड। अंदर इजी, बाहर बिजी। बाहर बहुत काम करना है, बहुत करना है, लेकिन अंदर इजी रहकर करना है तो और भी ज्यादा काम कर पाएंगे। ये कम्फर्ट लेवल,
0: वास्तव में टाइम कम था तो मैंने वो एंड में, अगर टाइम अधिक है तो ये जो हमने शांति का अनुभव किया कि मुझे आत्मा में वो शांति का खुट खजाना, इसको शरीर में भी हम भेज
1: पहले
0: वो जो वाइब्रेशंस फील हो रहे हैं उसको फील भी करो कि सारी बॉडी में स्प्रेड हो रहे, सभी बॉडीली ऑर्गन्स हार्मनी में जा रहे हैं। अगर स्पेसिफिक कोई बीमारी हो तो भी वो स्पेसिफिक वाइब्रेशंस है, वो हीलिंग है, उस ऑर्गन को भी हम भेज करके हील कर सकते हैं।
1: सिस्टर शिवानी, डॉक्टर पटेल, न सिर्फ ये अनुभव आपने हमें आज करवाया, बल्कि पूरा ज्ञान, हमें अपने बारे में अवेयरनेस, और जिस तरह से थॉट्स के पैटर्न और किन स्टेजेस में हम जाते हैं उसके बारे में हमें अवेयर कराया। थैंक यू सो मच। आज जो बात हमने की है, सचमुच अगर हम देखें, हमने बाहर बहुत सारे रिसोर्सेस को यूज किया है, क्योंकि हम रिलैक्स होना चाहते हैं, हम शांत रहना चाहते हैं, हम एंजॉय करना चाहते हैं, लेकिन आज इस मेडिटेशन के अनुभव ने

बता दिया कि सचमुच अपने अंदर है, अपने साथ ही काम करने की जरूरत है। ये सारे अनुभव तो हो जाएंगे, शांति को हमने अनुभव किया यहाँ बैठे बैठे, हर एक ने अपने अपना, हर एक का अपना अपना अनुभव रहा। प्रोसेस चाहे यहाँ हो रहा था, हम इस थॉट पैटर्न के साथ काम कर रहे थे, लेकिन यही अगर हम म्यूजिक सुनते तो बाहरी सोर्सेस पर हमें डिपेंड होना पड़ता। अगर ये जैसा कि कहा डॉक्टर पटेल ने, अखुट खजाना जो कोई नहीं लेकर जा सकता वो मेरे अंदर है, तो उसे अभी तक क्यों नहीं अनुभव कर रही थी। ट्राई करें, ये अनुभव सचमुच हमारी जिंदगी को बहुत खूबसूरत बनाएगा। मन में कोई बात है, कोई सवाल, आप हमें ईमेल करें या फिर फोन पर संपर्क करें। हमारे फोन नंबर्स हैं 9999344555, 9999344666, 9873666555। हमारा ईमेल आईडी है omshanti@vkmail.org। अवेकनिंग विद रमा कुमारी इसमें आज इतना ही, आगे भी मुलाकात होगी। ओम शांति।

बड़े मियाँ का हाल तो देखो, ये उम्र ये चाल तो देखो। मस्ती में है सब मस्ताने, प्यार नए कुछ दोस्त पुराने। मस्ती में है सब मस्ताने, प्यार नए कुछ दोस्त पुराने। शायर आ

0: हाँ तो मैं क्या कह रहा था?
1: हजूर आप अनंत बख्शी की लिखी चौथा मैदा की कहानी सुना रहे थे, सुनाइए ना।
0: अरे हाँ,

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: जब हम भगवान को दोष देना शुरू कर देते हैं दैट इज नॉट फेयर, बिकॉज पिता है, हम बच्चे हैं, वो कभी नहीं ये डिसाइड करेगा कि एक बच्चा ट्रेन ब्लास्ट का विक्टिम हो जाए और दूसरा बच्चा बिल्कुल ठीक है। एक पिता कभी ये नहीं कर सकता है, और अगर परमात्मा ये कर भी रहा है तो देन वी कैन क्वेश्चन ऑन व्हाट बेसिस। परमात्मा हमारी जीवन की यात्रा नहीं डिसाइड कर रहा है, हमारे अपने किए हुए कर्म, एंड दैट्स व्हाई थॉट्स लीड्स टू डेस्टिनी। उसमें सब थॉट्स जो अभी किए, जो बहुत सारे पहले, लेकिन वही थॉट्स अब उस डेस्टिनी को चेंज कर सकते हैं। अब जो हुआ हादसा वो पिछले किसी कार्मिक अकाउंट की वजह से हुआ, लेकिन उस हादसे के बाद अब क्या करना है, एटलीस्ट दैट इज इन माय कंट्रोल नाउ।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

सुनो एक बात सुनाओ, ओए सुनो रे सुनो एक बात सुनाओ। झूठ है या सच है ये तुम जानो, अरे झूठ है या सच है।

मैं हूँ गीतांजलि राव, फिल्म एंड टेलीविजन एक्ट्रेस। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: नो स्मोकिंग जोन जैसे बन गए हर जगह, वैसे नो एंगर जोन। इधर गुस्सा नहीं कर सकते, आया है तो बाहर जाओ, कर क्या। यहाँ नहीं कर सकते। क्यों? स्मोकिंग के लिए क्यों अलग जगह बनाई? क्यों नहीं कर सकते सबके बीच? क्योंकि कर आप रहे हैं, नुकसान हमारा हो रहा है। इसी तरह गुस्सा कर आप रहे हैं सारे वातावरण में और सब लोगों का नुकसान हो रहा है। तो आप जाइए, वहां वो कमरा है, उधर गुस्सा

0: पसंद का है, एक कार्यक्रम जो पसंद का है, और धीरे धीरे से छोटे छोटे पसंदीदा कार्यक्रमों को जोड़ते हुए सारा दिन ही कितना अच्छा लगता है सुनते हुए रेडियो को। ठीक ऐसे ही जब हम जीवन की छोटी छोटी खुशियों को चुनने लगते हैं, संभालने लगते हैं, तो सारा जीवन ही खुशहाल दिखने लगता है। ऐसा ही अनुभव है हमारे आज के अतिथि का। हमारे बीच आज रेडियो मधुबन के स्टूडियो में यशस्वी भारत कार्यक्रम में जुड़े हैं दिवाकर जी, जिन्होंने अपने सुरीले आवाज से सारे देश को, मैं तो कहूंगा सारी दुनिया को, एक ऐसी आत्मिक अनुभूति कराई है जो केवल वही करा सकता है जिसने संगीत को अपने आत्मा में बसाया है। आइए दोस्तों मिलते हैं दिवाकर जी से। दिवाकर जी आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। रेडियो मधुबन के सभी श्रोताओं की तरफ से मैं आरजे शांतनु आपका स्वागत करता हूं। थैंक यू सो मच कि आपने अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाला और आज आप हमारे बीच में हैं। वेलकम।
1: ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मैं यहाँ आप सबके बीच में हूँ और बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ये मौका देने के लिए कि मैं आप सबके साथ अपने जो अंतर्मन की जो जितनी बातें शेयर कर सकूं।
0: थैंक यू दिवाकर जी। आपको खैर सब जानते ही हैं, लेकिन फिर भी जब मैं आपकी बायोडाटा को पढ़ रहा था तो उसमें मुझे एक बहुत खास बात दिखी। उसमें ये लिखा था कि आप एक इटर्नल लर्नर हैं, आपको सदा सीखने की बहुत चाह रहती है। तो मैं समझता हूँ आप खुद को गायक कम बट साधक ज्यादा समझते हैं, राइट?
1: यस, बिल्कुल सही कहा आपने, ये बिल्कुल सच है। मैं ये फील करता हूँ कि किसी भी क्षेत्र में और किसी भी आर्ट फॉर्म में लर्निंग सबसे बड़ी चीज होती है, एंड लर्निंग ही आपको हमेशा ग्रो करवाती है। बिकॉज हर सेकंड आप कोई चीज नई लर्न करते हैं, नई चीज कोई ऑब्जर्व करते हैं, तो आप स्पिरिचुअली भी और उस आर्ट में भी हमेशा ग्रो करते हैं।
0: तो मैं यहाँ आपको पूछना चाहूंगा, अगर मुझे एक स्टूडेंट बनना है या मुझे अपनी फील्ड में ग्रो भी करना है लेकिन सीखते भी जाना, कई बार क्या होता है कि हमको वो नशा चढ़ जाता है कि भाई मैं तो अपने फील्ड में काफी आगे हूँ, लोग मेरी तारीफ कर रहे हैं, अब मेरे लिए सीखने के लिए क्या ही बचा है, यू नो देयर कम्स अ लिटिल काइंड ऑफ एन एरोगेंस। उससे खुद को कैसे बचाएं, हाउ टू स्टे अ गुड लर्नर, एक साधक कैसे बने रह सकते हैं, क्योंकि आपके से वो वाइब्रेशन आता है कि यू आर अ वेरी गुड साधक। तो कैसे आपने अपने को ऐसे मेंटेन किया हुआ?
1: इट वॉज मेरे लिए इसको मेंटेन करना इतनी मुश्किल बात इसलिए नहीं थी क्योंकि जो मेरे जो स्वभाव में और मेरे नेचर में एक बात थी जो किसी में भी आए तो वो ऐसा ही रहेगा पूरे टाइम। वो ये है कि आप अपने गुरु के प्रति और अपने आर्ट के प्रति जो समर्पण की भावना रखें, तो सरेंडर योरसेल्फ कम्प्लीटली विदाउट एनी यू नो इनहिबिशन बेसिकली, तो वो आपको जो वो भावना आपके अंदर आएगी कि आप अनक्वेश्चनिंगली और बिना जाने कि कल क्या होगा या आप जो कर रहे हैं उससे कल क्या होगा, अब क्या अब उस रास्ते को फॉलो करें, तो आपको वो चीज मिल भी जाएगी तब भी आपको पता नहीं चलेगा कि आप उस मंजिल पर या उस एक शिखर पर पहुंचे हैं, एंड रादर आपको इनकरेजमेंट मिलेगी कि आप आगे और उसी साधक के रास्ते को, उसी साधक की राह पर और आगे चलते रहें।
0: आई थिंक
1: समर्पण, सरेंडर,
0: सरेंडर, समर्पण था, ये बहुत ही खूबसूरत बात आपने सामने रखी आज हम सबके की। अगर समर्पणता है, टोटल सरेंडरेंस है, इसका मतलब क्वेश्चन नहीं होगा। प्रश्न है तो फिर समर्पणता नहीं है, और अगर समर्पणता है तो फिर प्रश्न की जगह ही नहीं बचती। ये आपने बहुत अच्छी बात रखी, लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक और चीज पूछना चाहूंगा कि समर्पणता आती है व्यक्ति में, और वो समर्पणता कई बार सामने वाले व्यक्ति को बहुत ऐसे परिस्थिति में भी डाल देते कि वो बहुत डिफिकल्ट परिस्थिति में पहुंच जाते हैं। ऐसे समय में खुद को कैसे संभाल के रखें? कई बार ऐसा होता है कि हम चाहते तो हैं कि हम समर्पण बुद्धि रहें, हम जो साधना कर रहे हैं, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो पाथ फॉलो कर रहे हैं, उसको हम जरूर फॉलो करें, लेकिन रास्ते में रुकावटें बहुत आती हैं, मुश्किलात बहुत आती हैं। तो ऐसे समय में समर्पणता के भाव को संजो के रखना और आगे बढ़ते रहना, ये कैसे संभव है?
1: ये सवाल काफी लोगों के मन में आता है, मैंने नोट किया है, क्योंकि काफी लोग ये सोचते हैं कि जो रुकावटें आ रही हैं, वो शायद काफी लोग उनके माइंड में ये आता होगा कि रुकावटें अगर आ रही हैं तो वो रोकने के लिए ही आ रही हैं, या इसको वो ईश्वर की मर्जी मानते हैं कि अगर रुकावटें आ रही हैं इसका मतलब ये चीज होनी नहीं चाहिए थी, लेकिन उसको जस्टिफाई करते हैं, लेकिन कि अगर रुकावटें आ रही है तो मुझे रुक जाना चाहिए, उनके साथ ही रुक जाना चाहिए। और इस जो होना ये चाहिए कि किसी भी साधक को ये मानना चाहिए कि वो रुकावटें नहीं बल्कि एक परीक्षा है, एक टेस्ट है,
0: अपॉर्चुनिटी
1: जैसे, कि अगर आपने उस सिचुएशन को क्रॉस कर लिया या उस जो भी

0: रास्ते में परिस्थितियां मिलेगी, उनको क्रॉस कर लिया, तो आपके तो आप अलग अलग जो स्टेप्स हैं अपनी साधना के, उनमें आगे बढ़ते जाएंगे।
1: जी, आई थिंक आप एक बहुत अच्छा उदाहरण है हम सबके लिए कि भले शारीरिक रीति कुछ रुकावटें हैं, लेकिन उन सबको एक बाजू में रख करके आपने सीधा अपने लक्ष्य को थामे रखा और साधना के पथ पे आप आगे बढ़ते रहे, और उसकी वजह से परमात्मा की अनुकंपा कहें या लोगों का प्यार कहें या फिर संगीत की शक्ति कहें, उसने सदा आपको आगे बढ़ाया है और आप इसका एक बहुत अच्छा जीता जागता मिसाल है। तो आप ट्रैवल भी बहुत करते हैं, आपका जो संगीत है आपको देश के कोने कोने में ले जाता है, ना केवल इतना बट विदेश में भी आपने काफी ट्रैवल किया है। तो जब आप विदेश और देश दोनों जगह पे इतनी बार ट्रैवल करते हैं, आपको भारत कैसे लगता है? कौन सी ऐसी बात है जो आपको महसूस कराता है कि भारत तो भारत है?
0: सबसे जो हमारे भारत की जो खास बात है, जो एक एक विशेषता है, जो खूबी है, वो ये है कि यहाँ चाहे वो यहाँ के लोग यहाँ बसे हों या यहीं के लोग जो हमें अब्रॉड मिलते हैं, विदेशों के जितने भी क्षेत्र हैं वहां पर मिलते हैं, उनकी ये खासियत ये है कि जो इमोशंस हैं, जो भावनाएं हैं, जो अपनापन है, वो कहने को, और सच बात है कि कहने को पूरी दुनिया पूरा वर्ल्ड एक्सप्रेस करता है, लेकिन एक सिंप्लिसिटी से, एक सादगी से एक्सप्रेस करने का जो अंदाज, जो एक खुशबू और एक तरीका जो भारतवासियों का है, वो शायद ही कहीं और आपको मिले। चाहे आप पूरी दुनिया, चाहे आप हर एक कॉन्टिनेंट में आप पूरा ट्रैवल करें, चाहे हर जगह अपने किसी भी अपने क्षेत्र में, अपने फील्ड में आगे बढ़ते हुए उसको लेके जाएं, लेकिन जो भारतवासियों की बात है, जो भारत वालों की जो एक सादगी है और एक्सप्रेस करने का जो अंदाज है, और आपको आपको एम्ब्रेस करने का, आपको वेलकम करने का एक जो एक खास अंदाज है, वो कहीं और मिलना पॉसिबल ही नहीं हो सकता।
1: तो ऐसा कोई एक अनुभव जो आप ने किया हो जब आप विदेश या देश में ट्रैवल कर रहे थे और आपके परफॉर्मेंसेस हो रहे थे, ऐसा कोई एक अनुभव जो आपको याद आता हो जिसने आपको आपके देश के और करीब ले आया?
0: जी, ऐसे अनेक हुए, लेकिन कीपिंग इन माइंड जो हम बात कर रहे थे, एक बहुत ही खास अनुभव मेरे जहन में अभी अभी आया। एक बार मैं वर्ल्ड टूर पे था और हम काफी जगह गए, यूएस गए थे, साउथ अमेरिका के जो कंट्रीज हैं, सुरिनाम वहां पर भी गए थे। तो पोर्ट ऑफ स्पेन जो है, ट्रिनिडाद एंड टोबैगो, वहां क्रॉस करते हुए जो वहां से परफॉर्मेंस होने के बाद ऑन रूट यू नो बैक टू इंडिया, एक बहुत प्यारा सा एक आइलैंड है जिसका नाम है कुरासाओ। वहां पर एक स्टॉप ओवर था, लेकिन वो स्टॉप ओवर एक बहुत ही पावन एक्सपीरियंस में परिवर्तित हो गया, क्योंकि वहां लैंड करते ही एक इंडियन कम्युनिटी है जिन्होंने एक बहुत खूबसूरत सा मंदिर बनाया है, राजन, एक जहां पर वो सब लोग गैदर करते हैं, सब लोग मिलते हैं, सब लोग एक दूसरे को वेलकम करते हैं और सब लोग वहां वक्त भी बिताते हैं साथ में हर फ्री टाइम में। तो मैं उस इंडियन कम्युनिटी से मिला भी, उन सब से मिला, उनके पास बकायदा सारे गानों के सीडीज होती हैं जो उस वक्त चार्टबस्टर से चल रहे हैं, उनके पास सारी मूवीज की डीवीडीज होती हैं जो उस टाइम वीडियो लॉन्च हो रही है, सब कुछ होता है उनके पास। प्लस जैसे हम उस मंदिर में हमने एंटर किया, मतलब हमने पूरे आइलैंड को एक्सप्लोर किया साथ में मिलकर, लेकिन जैसे उस मंदिर में एंटर किया तो वहां एक जो स्वागत की अनुभूति हुई, और उस इंडियन कम्युनिटीज ने, उन इंडियन फैमिलीज ने मिलकर सबके लिए खाना, सबके लिए भोजन प्रिपेयर किया और सबको इतने प्यार से और इतने यू नो वार्म फीलिंग से सबको यू नो सबको सर्व किया, और सबने, जो पूरी टीम ने, मैंने और म्यूजिशियंस ने इतना अच्छा फील किया, इतना, बिकॉज एक तो था जो शारीरिक थकान सबकी दूर रही, वो तो एक बात है ही, लेकिन साथ साथ इट वॉज जस्ट लाइक कि सब लोग वापस अपने इंडिया में ही हैं और ये हम एक फैमिली, हम एक कम्युनिटी इंडिया के किसी आइलैंड में अनुभव कर रहे हैं। इट वॉज अमेजिंग।
1: आई थिंक आपके इस बात से मुझे ये समझ में आता है कि चाहे ज्योग्राफिकली आप कितने भी दूर हैं, लेकिन अगर लाइक माइंडेड लोग हैं तो वो आपका घर बन जाता है। और ये जो आपने इतना सुंदर एक अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, ये आपके आवाज से समझ में आ रहा था कि आपने उस समय क्या फील किया होगा, लेकिन शुरू में अगर इसको अगर बयां करना हो तो कौन सा गीत, कौन सा

0: नगमा आपको गुनगुनाने का मन करता है?
1: गीत तो इतने सारे हैं जो मेरी भावनाओं को एक्सप्रेस करते हैं, लेकिन ये भावना और वो जो सादगी की भावना है उसको मैं एक गीत के थ्रू, कुछ लाइनों के थ्रू, कुछ पंक्तियों के थ्रू बयान करना चाहता हूँ।
0: जी बिल्कुल।

0: थैंक यू सो मच. आई थिंक आई एम स्पीचलेस और मुझे पता है हमारे श्रोता भी स्पीचलेस हो गए हैं. शब्द नहीं है हमारे पास आपको थैंक्स करने का. और इस गीत से मुझे एक चीज ख्याल में आया दिवाकर जी की, हमारे चाहे आप शास्त्रीय संगीत कहें या फिल्मी संगीत कहें, गीतों के द्वारा समाज की बहुत सेवा हुई है. आप मानते हैं इस बात को?
1: मतलब 100% मैं इसको 100% मानता हूँ. ये सबसे बड़ी जो गीतों से सेवा हुई वो लोगों के मन तक, लोगों की अंतरात्मा तक पहुंचना, क्योंकि लोगों की जो तकलीफें हैं, लोगों की जो संघर्ष हैं, उनको समझना और उनको एक उस भावना से बयान करना, एक अपने आर्ट फॉर्म से बयान करना, वो सबसे बड़ी बात रही है, सबके लिए स्पेशल बात रही है.
0: जी, तो ऐसे में मुझे ऐसा ख्याल आता है कभी कभी कि जैसे संगीत ने आपको इतना प्रतिष्ठित किया, ठीक है, आपको इतना आगे बढ़ाया, आपको इतना उल्लेखनीय व्यक्तित्व बना दिया जो आज हम सब देखते हैं, लेकिन कई चीजें संगीत ने आपको अंदरूनी ऐसे दी होंगी जो हमें नहीं दिखता लेकिन केवल आपको पता है. वो ऐसे कौन से गिफ्ट्स हैं या तोहफे हैं जो संगीत से आपको प्राप्त हुए हैं, इंटरनल अंदरूनी?
1: जो इंटरनल जो मैंने एक अनुभव की है चीज काफी वक्त से, जबकि इसको हम कह सकते हैं कि ये रिसेंट है, लेकिन ये अनुभूति मुझे पिछले 4-5 सालों से हुई है. मैं इसी बारे में आपकी जो आपसे चर्चा आपसे बात करना चाहूंगा, आपसे ये शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि इट्स वेरी ब्यूटिफुल. आई डोंट नो कितने लोग ये अनुभव करते होंगे कि जो रियाज है, जो रियाज है वो सिर्फ एक मतलब जिसे कह सकते हैं एक अभ्यास, एक रिहर्सल, एक आपके जो किसी भी आर्ट फॉर्म में और अगर म्यूजिक की बात की जाए तो उसमें उसमें घूमना फिरना, उसमें ही जो एक्सप्लोर करते हैं. रियाज दरअसल जो हकीकत में इससे काफी ऊपर है. रियाज एक्चुअली में इट्स अ फॉर्म ऑफ इनर मेडिटेशन. जो मुझे एक्सपीरियंस हुई जब से मैंने जो अपना जो रियाज है या अपनी जो इनर मेडिटेशन है अपने मंदिर में करने शुरू की, तब से मैंने रियलाइज किया कि जो मैं अपने म्यूजिकली जो करता हूँ वो तो करता ही हूँ, लेकिन मैं उसके अलावा काफी वक्त शांत बैठ के बिताता हूँ वहां पर, क्योंकि दैट इज लाइक कम्युनिकेटिंग विद माई सेल्फ, इट्स लाइक कम्युनिकेटिंग विद माई ओन सेल्फ. एंड जो संगीत के रियाज में वो चीज आउटवर्डली प्रोजेक्ट होती है, लेकिन जो शांति में वो मेरी अपने अंदरूनी और अपने

0: जो अंतरात्मा से जो बातचीत है उसमें वो बयान होती है। वो चीज मुझे एज अ पर्सन, एज अ म्यूजिशियन और एज अ सिंगर हमेशा ग्रो करवाती है।
1: बहुत सुंदर। आई थिंक सात जो सुर हम जानते हैं या सुनते हैं या देखते हैं या जिनका हमें पता है, उसके अलावा एक आठवां सुर होता है जो संगीत हमें परमात्मा से या अंतरात्मा से जोड़ने में मदद करता है। तो इसलिए संगीत का जो ये पावर है या किसी भी कला का जो ये एक पावर है कि वो हमें हमसे रूबरू कराता है और उसके नजदीक ले जाता है, ये अपने आप में बहुत पावरफुल देन है संगीत की। लेकिन यहाँ पर मुझे एक और बात याद आती है कि आप न केवल संगीत लेकिन पढ़ाई में भी बहुत आगे रहे शुरू से, और एंड ये बैलेंस कैसे किया आपने?
0: लेट मी से यू नो दिस जस्ट सेइंग दैट यू नो नेसेसिटी इज द मदर ऑफ ऑल इन्वेंशंस, राइट? सो बाय दैट टोकन आई वाज वेरी अडैप्टेबल, मतलब अगर देखा जाए तो मैं अपने आप को उस परिस्थिति के साथ अडैप्ट करता था
1: जी।
0: तो जैसे जैसे आप जानते हैं कि संगीत का सफर मेरा बहुत पहले शुरू हुआ, बचपन से
1: जी।
0: और हाई स्कूल से पहले जो यू नो सिक्स सेवन स्टैंडर्ड में ये जो सफर लोकप्रियता की यू नो मार्ग की तरफ चलने लगा टेलीविजन के थ्रू और यू नो कमर्शियल लाइन में ये काफी आगे जाने लगा, तो नेचुरली जो एग्जाम्स और जो डे टू डे जो एक जो स्टूडेंट की लाइफ होती है उसको उस पर थोड़ा सा असर आने लगा। लेकिन उसका मैंने एक तरीका भी उसका भी एक तरीका अपनाया, वो ये था कि जिस वक्त ये एक्टिविटीज नहीं हो रही उस वक्त पूरी तरह मतलब पढ़ाई लिखाई में उसको डिवोट किया जाए। एग्जाम्स अगर हो रहे हैं और सौभाग्य से अगर एग्जाम्स के वक्त ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा तो एग्जाम्स में डिवोट किया जाए अपनी एनर्जी पढ़ने लिखने में, और जब एग्जाम्स आए तो कम से कम एफर्ट लगे उस टाइम कम से कम, ताकि यू नो विद इन शॉर्ट नोटिस में उसको जो भी कम्प्लीट करना है उसे कम्प्लीट कर सकूं, ताकि आने वाले वक्त का कोई कुछ पता नहीं, हो सकता है कि अगले वाले एग्जाम्स में मैं उस स्थिति में ना हूं कि इमीडिएटली उसको ऐसा फॉलो करने के लिए। तो जितना अहेड ऑफ टाइम जितनी चीजें पूरी हो सके वो हो सके, ताकि कभी भी कल दिक्कत ना आए। और ये मैंने फिर पूरे लाइफ में तब से लेकर आज तक ये फॉलो किया और इसका मुझे काफी लाभ भी मिला, इसका पूरे टाइम इसका लाभ मिला, इसके काफी फायदे थे एंड इट वॉज वेरी बेनिफिशियल फॉर मी।
1: आई थिंक हमारे श्रोता साथियों को मैं यह बताना चाहूंगा कि दिवाकर जी न केवल एक उम्दा कलाकार हैं लेकिन साथ ही साथ ही हैज बीन अ टॉपर इन क्लास 12th एग्जामिनेशन, और केवल इतना ही नहीं वो शुरू से ही बहुत अच्छे स्टूडेंट रहे हैं। तो मैं समझता हूँ हमारे युवा साथियों के लिए स्पेशली वो जो म्यूजिक के फील्ड में भी आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन पढ़ाई लिखाई को भी बहुत अच्छे से आगे यू नो मेंटेन करना चाहते हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छा मैसेज है कि एकाग्रता, जब जो कार्य आप कर रहे हैं तब उसको बहुत ध्यान से करें ताकि अगली बार आपको उस पे ज्यादा मेहनत न करनी पड़े। ये आपने बहुत मैसेज दिया दिवाकर जी, लेकिन
0: और किसी भी फील्ड में ये एप्लीकेबल है, किसी भी फील्ड में लागू हो सकता है आसानी से, ना सिर्फ संगीत में, ना सिर्फ आपकी जो जनरल पढ़ाई है, इवन जो आपके यू नो रोजमर्रा के जो जितने भी आपकी एक्टिविटीज होती है उनमें भी अगर आप ऐसी एकाग्रता रखें तो जब कोई बड़ी परिस्थिति आएगी तो आपको छोटी चीजों में उतना वक्त देना नहीं पड़ेगा।
1: जी आई थिंक यू आर अ वेरी गुड स्टूडेंट, आप एक बहुत अच्छे स्टूडेंट रहे हैं और मैं समझता हूँ आपने संगीत की तालीम जो है गुरु शिष्य परंपरा में ली है। क्या है ये गुरु शिष्य परंपरा?
0: सबसे ये सौ बातों की एक बात है कि वो अपने गुरु के प्रति समर्पण है, जो आपको वो जो आपको उनके उनके उनकी वाणी से जो भी आपको जो ज्ञान मिले, जो आपको शिक्षा मिले, जो आपको सीखने की बात मिले, उसे आप समर्पण की भावना से विदाउट यू नो थिंकिंग अबाउट व्हाट दैट माइट ब्रिंग यू, आप उसे यू नो एक्सेप्ट करें और आप उसे अपने अंदर ढाल लें, तो दैट इज द एसेंस ऑफ गुरु शिष्य परंपरा। यू नो दैट्स द एसेंस ऑफ एनी साधक, एनी स्टूडेंट हु इज गिविंग हिज बेस्ट टू, हु इज ट्राइंग टू यू नो कंप्लीटली गिवन टू हिज गुरु।
1: तो मुझे एक सवाल यहाँ पर पूछना था जो कि हमारे श्रोताओं के लिए भी बहुत जरूरी होगा, कि जैसे कि आप जानते हैं गुरु शिष्य परंपरा भारत की एक अत्यंत पारंपरिक और अत्यंत अनूठी परंपरा है। यहाँ पर गुरु जो है वो स्टूडेंट को या डिसाइपल को, शिष्य को केवल शिष्य या छात्र नहीं समझता था लेकिन अपने बच्चे की तरह उसका पालना करना, उसको शिक्षा देना, उसको अपनी

0: तालीम दे देना, अपना सारा हुनर उसको सौंप देना, ये एक परंपरा होती थी। लेकिन क्या आज वो परंपरा है या लोगों को शायद इसका पता कम है? क्या दिखता है आपको गुरु शिष्य परंपरा का भविष्य क्या है, या हाउ डू यू सी इट नाउ,
1: लाइक हाउ द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर इज, यू नो?
0: जी जी,
1: क्योंकि हम मानते हैं कि हर एक यू नो एवरी पार्ट ऑफ आवर लाइफ वक्त के साथ इवॉल्व भी करती है, वक्त के साथ यू नो थोड़ा अपडेट भी होती है, वो अलग बात है। लेकिन जो मैंने ऑब्जर्व किया है वो ये है कि जो आजकल की जो यंगर जो युवा पीढ़ी है, यंगर जनरेशन है, उसमें वो समर्पण और वो पेशेंस वो काफी कम होता जा रहा है। किसी भी फील्ड में सीखने के लिए वो बहुत कम होता जा रहा है। वो चाहते हैं कि हमें जल्द से जल्द रिजल्ट्स मिले, और बेशक मैं मानता हूँ कि इसमें कोई बुराई नहीं, बेशक आपके जो तरीके हैं, जो आपके रोजमर्रा के इंटरेक्शन है अपने गुरु के साथ, उसमें काफी टेक्नोलॉजी और काफी उन चीजों का रोल हो सकता है, रोल क्योंकि दैट्स नॉट अ बैड थिंग। कभी हो सकता है कि आप किसी भी कारणवश बाहर हो, या आपके गुरु या आपके जो मेंटर्स हैं वो किसी कारणवश बाहर हो, इंडिया से या बाहर हो या शहर से बाहर हो, बट दैट डजंट मीन कि आपका जो पेशेंस है, आपके जो एसेंस है, आपके जो समर्पण है, और आपका जो उसको फॉलो करने का तरीका है वो चेंज हो। एंड सैडली वो चीज सीखने के जो जो आपकी अपनी जड़ों को मजबूत करने की जो भावना है वो यंगर पीढ़ी जो यंगर जनरेशन में काफी कम होती जा रही है। एंड सैडली आई वॉन्ट यू नो डू आई वॉन्ट टू से कि इट विल गेट बेटर, बट अनटिल और अनलेस जो लोग जिन्होंने भी लाइफ के इस चीज को फॉलो किया है वो उस चीज को आगे लोगों तक एक्सप्रेस नहीं करेंगे, ये चीज और हाईटेक होते होते लोगों से दूर होती जाएगी।
0: आई थिंक ये एक बहुत गहरा पहलू आपने सामने रखा है कि पेशेंस, धीरे धैर्यता, धीरज, ये बहुत जरूरी है अगर व्यक्ति सच में अपने को डेवलप करना चाहता है।
1: एंड इसको सादगी में, क्योंकि जैसे हमारे पास काफी लोग ऐसे हैं जो शायद उतनी इलैबोरेट भाषा भी यूज नहीं करते, इतने लोग हैं ना, तो फिर उनके लिए भी वो याद रखें कि धीरे धीरे चलना, बस धीरे चलना, मतलब ऑफकोर्स प्रोफेशनल लाइफ में धीरे नहीं चलना, बट सीखने में धीरे एंड स्टेडीली, धैर्य के साथ धीरे और एकाग्रता के साथ चलना धीरे। अगर वो इसको याद रखें, इसको लागू रखें, तो आप कभी भटकेंगे नहीं।
0: जी, तो आई थिंक ये मैसेज बहुत स्ट्रांग है कि चलते रहना है, इसलिए आपको लंबे समय तक सीखना है, इसके लिए आपको धीरे धीरे चलना है और एकाग्रता के साथ चलना है। जैसे आपके गीत ने मुझे बांध रखा था, मैं समझता हूँ हमारे सभी श्रोता साथियों को भी ऐसे ही बांध के रखा होगा। ना केवल आपके गीत दिवाकर जी, मुझे लगता है आपकी जो भावनाएं हैं, आप जो दिल से एक एक प्रश्न का हमारे सामने इतने प्यारा उत्तर दे रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे सुनते रहे। लेकिन क्या करें, घड़ी के कांटे रुकते ही नहीं। कोई बात नहीं दोस्तों, हम दोबारा मिलेंगे दिवाकर जी से अगले एपिसोड में। तब तक आप जरूर हमारे साथ बने रहिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन के साथ। दोबारा मिलते हैं यशस्वी भारत कार्यक्रम के एक और एपिसोड में हमारे प्यारे दोस्त दिवाकर।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: एक बहुत प्यारा इंसान दलप महमूद, मैं बहुत पसंद करता हूँ उनके करीबन सारे गाने, मैं बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। इंसान तो मैं क्या बताऊँ कि शायद ही कोई आदमी मुझे मिला जो तरत साहब के गाने दिल से नहीं पसंद करते और उनको दिल से नहीं पसंद करते।
2: मजबूर मुझे उसने।

0: रिश्तों में सरलता और प्यार बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: अभी कोई चाहे तो हमसे कुछ भी करवा सकता है, या हम खुद चूज करते हैं उठना है या उठना है, बैठना है, खड़े होना है, हाथ ऊपर करना है, नीचे करना है। ये शरीर हमारी मर्जी से चलता है या औरों की मर्जी से चलता है? हमारी मर्जी से चलता है। हमारे मूड आजकल किसकी मर्जी से चलते हैं? कोई हमसे प्यार से बात करे, हमें रिस्पेक्ट दे, सम्मान दे, आगे रखे, हमसे पूछे हर चीज, तो ऑटोमेटिकली हमारा मूड क्या हो जाएगा? और कोई हमसे नहीं प्यार से बात करे, रूडली बात करते, इरिटेट करे, तो ऑटोमेटिकली हमारा मूड क्या हो जाएगा? तो इसका मतलब हमारा मूड, हमारी मन की स्थिति किसके कंट्रोल में है? किस किसके पास हमारी मन की स्थिति का कंट्रोल है आजकल?
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
2: नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप सबने कई बार सुना होगा ना कि सूरज को दिया दिखाना मूर्खता होती है, ऐसे ही आज के जो हमारे अतिथि हैं, उनके बारे में अगर मैं आपको कुछ ज्यादा जिक्र करूं तो मैं ही मूर्ख कहलाऊंगा, क्योंकि वो और उनकी आवाज अपने आप में किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है। बात कर रहा हूं मैं हमारे प्यारे साथी दिवाकर जी का, जिनके आवाज ने देश के दिलों को छुआ है और पूरी दुनिया के दिल में जगह बनाई है। आइए दोस्तों, इस एपिसोड में भी हम दिवाकर जी से जानते हैं उनके जीवन के कुछ ऐसे पहलुओं के बारे में जो उन्हें यशस्वी भारत का यशस्वी पुत्र बनाता है। दिवाकर जी, दोबारा आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: जब आप गुरु शिष्य परंपरा में तालीम देना शुरू किया अपने संगीत का, तो आपके गुरु ने आपको भारतीय शास्त्रीय संगीत सिखाया और आज आप हर तरीके के संगीत के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसको पेश भी कर रहे हैं, लेकिन भारतीय शास्त्रीय संगीत में ऐसी क्या खास बात है जो कि आप हमारे श्रोताओं को बताना चाहेंगे?
4: ये इतना खूबसूरत, इतना ब्यूटीफुल सवाल है, मुझे आज इतना मजा आ रहा है आपके साथ ये सारी बातें शेयर करते हुए, क्योंकि मैं ऑनेस्टली कहूंगा इन पहलुओं पर बहुत कम बातचीत होती है किसी भी इंटरव्यू में, किसी भी जगह पर मेरे साथ। तो इट्स अ प्लेजर टू यू नो रियली टॉक अबाउट ऑल दिस। थैंक यू सो मच फॉर यू नो गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी।
2: जी,

0: शास्त्रीय संगीत जो हमें यू नो अपनी पूरी जो हमारे एंसेस्टर्स हैं उन सबसे मिला है, जो विरासत में मिला है, और हजारों सालों से जो हमारे पास है, जो उसके भी पहले वेदों में इतना प्रतिष्ठित है, इतना उसकी जड़ें हैं, यू नो, उसकी सबसे बड़ी खासियत है कि दैट इज द रूट ऑफ ऑल म्यूजिक बेसिकली. मतलब अगर कोई गाना है, कोई रचना बनती है, कोई चाहे वो गजल हो, चाहे वो एक प्योर यू नो एक सादा सीधा साधा भजन हो, चाहे वो एक फोक की धुन हो, उसके जो सुर हैं, उसके जो स्वर हैं, उसका जो एक यू नो पूरा वो है, वो उन सातों स्वरों से ही उत्पन्न होता है, और वो किसी ना किसी राग में ही उसकी पहचान होती है, किसी ना किसी राग में उसकी एक्सप्रेशन होती है. दैट इज द ब्यूटी ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, बिकॉज दैट गिव्स फॉर्म टू ऑल फॉर्म्स ऑफ म्यूजिक.
1: तो अगर इसका मतलब मैं इसको ऐसे कहूँ कि ये बीज है, ये स्टार है, ये रूट है, तो बाकी का जो संगीत जगत आज हम देख रहे हैं वो उसका विस्तार है, वृक्ष है, राइट?
0: वो सारे वृक्ष हैं, सारे फल हैं, सारे फूल हैं, जो आपको अलग अलग रंग रूपों में मिलते हैं उन्हीं के. जी.
1: तो इसका मतलब अगर किसी को काफी, अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि भाई मैं संगीत में वाकई में बहुत ऊंचा मुकाम हासिल करूं, तो उसको वास्तव में जड़ों पे जाना होगा, जड़ों को समझना होगा, राइट?
0: एग्जैक्टली. एंड ये मतलब जस्ट टू क्लेरिफाई, ये दोनों ही किसी भी फॉर्म ऑफ जो क्लासिकल म्यूजिक, वो सारे इसी रोल को फॉलो करते हैं, इसी रोल को पूरा करते हैं, चाहे वो आपका
1: या इंडियन क्लासिकल हो. बेसिकली क्लासिकल मतलब ही वो रूट है, राइट?
0: एग्जैक्टली, बेसिकली, या एग्जैक्टली. बिकॉज मैं इसी बारे में एक बात कहना चाहता हूँ, ये बहुत खूबसूरत बात है कि हम सब अगर संगीत को, बिल्कुल सच्चा संगीत को फॉलो करते हैं, तो वो संगीत को फॉलो करता है. दैट्स वर्ल्ड म्यूजिक. वही ईस्ट है, वही वेस्ट है, वही नॉर्थ में, वही दक्षिण भारत में, राजस्थान. तो इट्स बेसिकली म्यूजिक. और वो सारे म्यूजिक, उनका जो क्लासिकल जो एक्सप्रेशन है, वही आपको हेल्प करता है उसको एक्सप्रेस करने में, वही आपको हेल्प करता है उसे पेश करने में. क्योंकि जैसे अगर हमारे मंदिरों में है, वही चर्च में जो फायर्स होते हैं, जो देखो आपको पता है कितनी एंजेलिक साउंड होती है उनकी, वही बात है. तो जैसे परमात्मा के रूप है, नाम है, लेकिन है तो एक ही, वैसे ही संगीत के, क्लासिकल के भी अलग अलग रंग है, मतलब उसकी मैनिफेस्टेशन है, बट उसकी डेस्टिनेशन और उसका जो रास्ता है वो एक ही है.
1: इतना खूबसूरत आपने पेश किया इस सिंपल एंड पावरफुल स्टेटमेंट की संगीत जो है वो संगीत है, ना वो भारतीय है, ना वो यू नो वेस्टर्न है, या ये तो हमारे समझने के लैंग्वेजेस हैं, लेकिन संगीत वास्तव में संगीत है. और मैं समझता हूँ ये अगर कोई ट्रूली संगीत को फॉलो कर रहा है, तो वो बेसिकली बहुत स्पिरिचुअल भी है, बहुत आध्यात्मिक भी है.
0: यस यस, होना चाहिए राजन, बिकॉज अक्सर ऐसा होता है कि जो जिनमें ये कला होती है, उनमें एक यू नो इनसिक्योरिटी, असुरक्षा, यू नो वो असुरक्षित रहते हैं अंदर से. अक्सर वो ये चाहते हैं कि यू नो उनका एक फोकस नैरो हो जाता है, कि हम जो कर रहे हैं वही यू नो सर्वश्रेष्ठ है, हम जो एक्सप्रेस कर रहे हैं वही, दैट्स द ओनली वे टू गेट टू यू नो गॉड, और दैट्स द ओनली वे टू गेट टू देयर स्पेसिफिक गोल्स बेसिकली. बट दैट इज नॉट ट्रू एट ऑल. अगर सीखना और अपने गुरु को फॉलो करना समर्पण है, तो सबसे तो एक समर्पण भाव और भी है कि संगीत है, या आपकी जो संगीत वो आपकी अंदर की, अगर वो आपके अंदर की मेडिटेशन बन जाए, अगर आप यू नो उसमें जब उसमें तैरते हुए बिना किसी डेस्टिनेशन को माइंड में रखते हुए आप उसमें बहते जाएं, यू नो फ्लोटिंग एमलेसली विदाउट एनी डेस्टिनेशन ऑन अ रिवर, दैट इज ट्रू सरेंडरिंग योरसेल्फ. एंड उसके बिना आप में चाहे वो गुण भी हो, लेकिन आपका फोकस नैरो हो जाएगा अगर आप उसके, अगर आप अपने आप को, अपनी जो इनहिबिशन को, अपने जो अंदर बनाई हुई बाउंड्रीज को ना छोड़ें, तब तक आप बंद के रहते हैं.
1: So basically you're saying that you must trust the river also.
0: Yeah, just flow along with the river.
1: Sangeet pe bhi utna hi nishtha hona chahiye ki if I am a true sadhak, to sangeet bhi mere saath bana rahega. Right?
0: True. Yes, exactly.
1: So, ye bade bade sawalon mein se ek aakhri sawal main puchna chahunga ki deshbhakti ya rashtravad ya bhartiyata kya hai aapke liye?
0: Sabse jo badi baat hai wo ye hai ki

0: अपनी जड़ों के लिए और अपने जो मेरे लिए देशभक्ति और देश का भाव ये है कि जो अपनी जड़ों के लिए, अपनी रूट्स के लिए, अपने मदरलैंड के लिए प्रेम, उसके लिए रिस्पेक्ट, उस पर गर्व, उस पर फक्र, क्योंकि उसने मुझे, हम सबको और हमारे जो जितने हमारे पूर्वज हैं, जितने आदरणीय पूर्वज, उन सबको जन्म दिया, उन सबको एक पहचान दी, उन सबको एक यू नो एक आइडेंटिटी दी, उन सबकी जो लाइफ की जर्नी है वो शुरुआत उनकी जड़ों से हुई। एंड दैट प्लस जिस रफ्तार से हमारा भारत जा रहा है, उसके जो जिस तरह हमारे कल्चर और हमारे संस्कृति का नाम हो रहा है, उसपे हर एक भारतीय को, हर एक साधक को, हर एक इंडिविजुअल को गर्व होना चाहिए, क्योंकि हमारी स्पिरिचुअलिटी। एंड अगेन आई वांट टू से ऑन द सेम नोट एज आई बिफोर आई फॉरगेट कि इट्स नॉट कि हमारी स्पिरिचुअलिटी, हम उसे एक्सप्रेस करते हैं अपने अंदाज में, हम उसे एक्सप्रेस करते हैं अपने एक सादे सिंपल अंदाज में, लेकिन वो स्पिरिचुअलिटी काफी लोगों में भी है, इरिस्पेक्टिव ऑफ वो कहाँ से बिलोंग करते हैं। जैसे मैं लोगों से मिला हूँ जो इंडिया से बाहर हैं, या काफी लोग जो उस इंडियन कम्युनिटी का हिस्सा नहीं थे उस टेम्पल में, कोरेसाव में, बट वो भी उस वाइब को फील कर रहे थे, वो भी उनकी नेचर ही इतनी अच्छी थी कि इट डिडंट मैटर कि दे वर नॉट इंडियंस, बट दे वर एज स्पिरिचुअल एज इंडियंस, एज वी बिलीव ओनली इंडियंस टू बी। तो आपकी अपनी नेचर और आपकी अपनी जो जो आपकी अपनी जो एक समर्पण और आपकी अपना जो अंदर का जो साफ, अंदर की साफ भावना, वो अगर हर एक भारतीय में आ जाए तो उससे बड़ी देशभक्ति कोई हो नहीं सकती। भारत की जो हाइट्स ऑफ जो इमोशंस हैं, जो प्योरिटी है, अगर हर एक वासी वो उसको आगे लेकर चले तो हर एक भारतीय देशभक्ति बन जाएगा।
1: ब्यूटिफुली सेड। आई थिंक श्रोता साथियों, ये है हमारे दिवाकर भाई का हम सबके लिए बहुत ब्यूटिफुल मैसेज कि हमारे अंदर जो हमारी आत्मीयता है, जो हमारा अपनापन है अपने देश के लिए, उसमें कोई खोट ना हो, वो पूरा सच्चा, साफ और एकदम प्योर हो, और
0: ये किसी को पाने के लिए ना हो, वो किसी को आपको एक्सपेक्ट करने के लिए ना हो, वो आपको अपने ही परिवार में एक बड़ा सदस्य बनाने की होड़ में ना हो, तभी वो सफल होगा, तभी वो एक भारतीयता, आत्मीयता, एक प्योरिटी कहलाएगी।
1: एग्जैक्टली। तो इस मैसेज के साथ अब मैं शुरू करूंगा एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड दिवाकर जी आपके साथ। आई होप यू आर रेडी। तो इस राउंड में मैं आपको एक सवाल पूछूंगा और उसका जवाब आपको एक शब्द या एक लाइन में देना है, ठीक है? तो इजी वाला शुरू करते हैं, राइट? योर फेवरेट सॉन्ग।
0: बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत सारे, इतने सारे।
1: मुझे लगा ये इजी वाला होगा।
0: ये तो बल्कि सबसे मुश्किल था।
1: अच्छा,
0: लाइक थाउजेंड्स।
1: तो उसमें से जो भी सबसे पहला आपको याद आता हो।
0: ओके, लता जी का लग जा गले।
1: वेरी नाइस। फेवरेट स्टोरी जो बचपन में सुनी हो या देखी हो या जो भी।
0: सबसे ये भी बहुत सारी थी, मेरी फेवरेट्स भी थी, लेकिन जो इमीडिएटली माइंड में आती है, मेरे लिए सबसे फेवरेट स्टोरी थी यू नो सिंड्रेला। आई लव इट, सो ब्यूटीफुल।
1: वेरी नाइस। फेवरेट राग या रागिनी।
0: यमन कल्याण।
1: वेरी नाइस।
0: क्लोज टू माय सोल। एंड जबकि हर राग, एज आई टोल्ड यू, की हर एक चीज एक भावना एक्सप्रेस करती है, एक खुशबू होती है, लेकिन यमन एक्सप्रेसेस माय इनर स्पिरिट।
1: So how about just having little aro aro Yaman Kalyan?
0: Yes, a composition in that, you know, that is semi classical for everybody, you know.
1: Haji, haji, bilkul.
0: ये एक सूफी composition है Yaman में।

0: Wow. Thank you so much.
1: Thank you so much. Thank you so much.
0: So, अभी हम प्रश्नों को आगे बढ़ाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, शांति क्या है?
1: जब आपको ऐसा लगने लगे कि वक्त थम गया और बहुत बहुत तेज भी और बहुत धीरे भी चला, क्योंकि आप उसमें बहुत धीरे हर वक्त को हर मोमेंट को जीते हुए चल रहे, और तेज इसलिए क्योंकि आपके आसपास की चीजें आपसे भी ज्यादा तेज चले, वो शांति है.
0: वाओ, लिविंग एवरी मोमेंट बेसिकली.
1: मैं इस पे एक बात शेयर करना चाहता हूँ, इफ यू डोंट माइंड, एक छोटी सी बात इसी पे, कि जैसे मैंने कहा कि जिंदगी बहुत तेज और धीरे दोनों चले. धीरे आपके लिए क्योंकि आप मतलब एक शून्य में पहुंच गए, और तेज क्योंकि जो एक्सटर्नल वर्ल्ड है वो तेज चले, लाइक हाई स्पीड कैमरा विद स्लो मोशन इफेक्ट.
0: वाओ, वेरी नाइस. संगीत क्या है?
1: संगीत अपनी अंतरात्मा की जो एक्सप्रेशन है उसकी भाषा है, केवल और कुछ नहीं.
0: कर्तव्य क्या है?
1: सबका उद्धार और हर बुरे पहलू से जूझना और उसको परास्त करना.
0: वाओ, भारत क्या है?
1: अपनेपन का प्रत्यक्षीकरण.
0: वाओ, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, दिवाकर क्या है?
1: वो आग जो सौम्य रोशनी भी और रुद्र की आग भी.
0: ब्यूटिफुल. तो मुझे लगता है कि आपसे अच्छा जवाब आज तक किसी ने नहीं दिया इन रैपिड फायर राउंड्स का. सो यू हैव अगेन एक्सेल्ड. मुबारक.
1: थैंक यू सो मच. आई वाज सो नर्वस कि आई होप आई एम एबल टू यू नो डू जस्टिस टू दिस, बट थैंक यू सो मच.
0: तो चलते चलते मैं चाहूंगा कि आप एक मैसेज हमारे श्रोता साथियों को दे, भारत को दे, कि भारत क्या है, क्या फीलिंग आती है भारत कहते साथ ही आपके दिल में, क्या विजन है आपका भारत के लिए, क्या विजन आप शेयर करना चाहते हैं हमारे श्रोता साथियों के लिए. यू कैन गिव अ सेंटेंस, एक वाक्य में, एक मैसेज में आप एक मैसेज दे सकते हैं, और फिर चाहे तो कुछ गुनगुना भी सकते हैं.
1: बिल्कुल बिल्कुल. मैं उस दिन की प्रतीक्षा कर रहा हूँ, उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ, जब इस हाईटेक दुनिया में हाईटेक होते हुए भी और उन हाईटेक चीजों को प्रयोग करते हुए हर एक भारतवासी, हर एक युवक, जिन बातों पे, जिन पहलुओं पर हमने आज गौर किया, उनको एक्सपीरियंस करे, उन्हें एक्सप्रेस करे, और उन्हीं को आगे लेके जाए, और उन्हीं साधनों से, उन्हीं इन चीजों के माध्यम से जो जिस कर्तव्य की मैंने बात की थी, वही कर्तव्य हर कोई निभाए, और जितना हो सके अपनी जो ऑनेस्टी और अपनी सच्चाई के राह पर हर अपने फील्ड में आगे चले, तो वो भारत की और वो हमारे जो संस्कृति की, हमारे कल्चर्स की, वो सबसे बड़ी जीत होगी. दैट बी द विक्ट्री ऑफ द इंडियन वैल्यूज, द इंडियन मेंटेलिटी, द इंडियन स्पिरिचुअलिटी. और मैं जो आपने कहा कि इसी बात को एक गीत में एक्सप्रेस करना चाहता हूँ मैं, एंड ये गीत जो स्पिरिचुअल भावना है उसको कहते हुए, उसको शेयर करते हुए आप सबके लिए, और सबके लिए एक मैसेज है, क्योंकि मैं भी ब्रह्म कुमारीज में कुछ टाइम पहले आया भी था, वहां पर मैंने इस गीत को सबके सामने पेश किया, एंड ये गाना इस बात की सबसे बड़ी जो एक्सप्रेशन है. तो आई वांट टू जस्ट सिंग अ फ्यू लाइंस ऑफ दिस सॉन्ग फॉर यू.

0: Thank you so much.
1: Wow, thank you so much. I think इससे अच्छा अंत हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक आदि का शुरू, एक आदि का आगाज है कि अंतर मन में अगर हम ज्योति जगा लेते हैं तो हम न केवल खुद को प्रकाशमान रख सकते हैं लेकिन अपने आसपास भी अंधेरा मिटा सकते हैं। और भारत शब्द का भाव ही ये है कि प्रकाश में लीन, ज्ञान के प्रकाश में लीन। तो दिवाकर जी, आपने न केवल शब्दों से, न केवल भावनाओं से, बल्कि सुरों से भी हम सभी को, हमारे सभी श्रोताओं को ये जरूर जरूर अनुभव कराया कि प्रकाश, पावर एंड टुगेदरनेस। थैंक यू सो मच।
0: थैंक यू सो मच। ओम शांति।
1: ओम शांति। आपके फ्यूचर की बहुत बहुत शुभकामनाएं हम सबकी तरफ से। उम्मीद है आप हमसे दोबारा जुड़ेंगे, हमारे श्रोता साथियों को दोबारा सौभाग्य देंगे आपसे सुनने का, रूबरू होने का। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया।
1: भारत देश की महिमा हमने पढ़ी है, हमने देखी है, सुनी भी है, लेकिन आज दिवाकर जी के बातों से भारत का वो पहलू हमारे सामने आया है जो एक युवा अपने धड़कनों में लेकर के घूमता है। एक ऐसा नौजवान इस देश का जो अपने सुरीले स्वरों से पूरे देश के कोलाहल को सुरीले संगीत में बदलने की कोशिश कर रहा है। ऐसे नौजवान सिर्फ अकेले दिवाकर ही नहीं, मैं समझता हूँ हमारे श्रोता साथियों में भी कई हैं। तो साथियों, आप जो हैं, जहाँ हैं, जिस जगह पे हैं, वहाँ पर आप जो कर रहे हैं पूरे दिल से, पूरी शिद्दत से देश के लिए करते जाएं। मैं समझता हूँ हर कोई यशस्वी भारत की यात्रा में, यशस्वी भारत बनाने की यात्रा में जरूर कामयाब होगा। इन्हीं शुभ भावनाओं, शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। फिर मिलूंगा आपके साथ यशस्वी भारत कार्यक्रम के एक और एपिसोड में एक नए अतिथि के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए 90.4 FM रेडियो मधुबन।
2: पावसाच्या थेंबात दडलेलं जुनं प्रेम, आठवणींचा ओलावा। कधी कधी विरहातलं मौन सुद्धा गाण्यापेक्षा जास्त बोलतं।
3: अश्विनी
2: जीवन म्हणजे चालत राहणं, गाणं, हसणं आणि स्वप्न पाहणं।
4: वाऱ्यावरती गंध पसरला ना ते मनाचे।
2: आईचा आवाज म्हणजे मनाला शांती मिळवण्याचं संगीत। या सगळ्यांची सांगड कुठे बर घातली जाते? आपल्याच पुणेरी आवाज 107.8 FM वर। आनंदी रहा, आनंद लुटा।

0: रिश्तों में सरलता और प्यार बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: एंगर इज अ वेपन जिसको हमने हर परिस्थिति में यूज करना शुरू कर दिया है। व्हाट वी आर नॉट रियलाइजिंग दैट वेपन डजंट वर्क, इट्स नॉट प्रोवाइडिंग एनी रिजल्ट, लेकिन फिर भी हम उसी शस्त्र को बार बार यूज करे जा रहे हैं और उससे चोट दूसरे को नहीं लगती उतनी ज्यादा, वो भूल जाएगा। बॉडी के अंदर भी उसका इफेक्ट होता है, माइंड पर भी होता है। तो अगर हम ये याद रख लें कि ये एक हथियार है मेरे हाथ में जिससे मैं दूसरों को मारने की कोशिश कर रहा हूं, उसका किसी और पर कोई अच्छा इफेक्ट नहीं होने वाला है, वो सिर्फ मेरा ही नुकसान करे जा रहा है, तो हम उसको धीरे धीरे ऑटोमेटिकली खत्म कर देंगे। बहुत ईजी है खत्म करना, इट्स जस्ट दिस अंडरस्टैंडिंग ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। कि दूसरा, सबसे पहला निवारण यही होगा कि दूसरा मुझे गुस्सा नहीं दिला सकता, ये खुद मेरे हाथ में। तो आधा तो इसी से खत्म हो जाता है, क्योंकि अभी तक हमेशा कोई और मुझे गुस्सा दिला रहा। ये अंडरस्टैंडिंग ही अपने आप, क्योंकि मैं खुद से गुस्सा नहीं करना चाहूंगी जब मुझे समझ में आ गया कि उसका इतना डैमेज है, लेकिन मैं खुद से नहीं कर रही ना, आप मुझे दिला रहे, तो देन आई फील कि नथिंग इज इन माई कंट्रोल। सो दैट इट सेल्फ चेंजेस सो मच ऑफ द पर्सपेक्टिव देखने का।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो खुशियां बांटो।
2: नमस्कार प्रिय श्रोताओं, मैं हूं आपका मित्र विवेक जैन और आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम ज्ञान चिंतन। मित्रों, हमेशा की तरह मैं आज फिर एक नया विषय लेकर आया हूं और आज का विषय है भय, चिंता और शांति गीता के दृष्टिकोण से। हम सब कभी न कभी डरते हैं, भविष्य का डर, असफलता का डर, बीमारी का डर, रिश्तों के टूटने का डर। चिंता तो मानो हमारे मन की स्थायी मेहमान बन गई है। ऐसे में प्रश्न उठता है, क्या वास्तव में शांति संभव है? महाभारत के युद्ध क्षेत्र में खड़ा अर्जुन भी भय और चिंता से घिरा था। अपने ही सगे संबंधियों को सामने देखकर उसका मन कांप रहा था, धनुष हाथ से गिर पड़ा। वह कहता है, हे कृष्ण, मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं, मुख सूख रहा है, शरीर कांप रहा है। यानी अर्जुन की स्थिति भी आज के आधुनिक मनुष्य जैसी ही थी। भगवद गीता हमें सबसे पहले यह समझाती है कि भय का मूल कारण है आसक्ति और अज्ञान। श्री कृष्ण कहते हैं, जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है,

पर जीवन में उतारना कठिन है। आइए एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। एक किसान ने बीज बोए, वो रोज खेत जाकर देखता अंकुर निकला या नहीं, कभी बारिश की चिंता कभी धूप की चिंता। एक दिन उसने एक बुजुर्ग किसान से पूछा, भाई मैं इतना परेशान रहता हूं फिर भी फसल की कोई गारंटी नहीं है। बुजुर्ग किसान बोला, बेटे तू बीज बो, पानी दे, मेहनत कर, फसल भगवान की जिम्मेदारी है। यही गीता का संदेश है, मेहनत तुम्हारी, परिणाम ईश्वर पर छोड़ दो। अब प्रश्न आता है, शांति कैसे मिले? गीता कहती है शांति बाहर नहीं भीतर है। जब इच्छाएं अनियंत्रित हो जाती हैं तब चिंता जन्म लेती है। श्लोक का भाव है, जो व्यक्ति इच्छाओं को त्याग कर अहंकार और ममता से मुक्त होकर जीवन जीता है वही शांति पाता है। आज हम कहते हैं बस यह मिल जाए तो शांति मिल जाएगी, लेकिन मिलता कुछ और है। फिर एक नई चिंता, एक इच्छा पूरी होती है दूसरी खड़ी हो जाती है। गीता हमें सिखाती है कम इच्छाएं अधिक संतोष। श्री कृष्ण अर्जुन से रणभूमि में कहते हैं, मन चंचल है लेकिन अभ्यास और वैराग्य से इसे वश में किया जा सकता है। मतलब रोज थोड़ा थोड़ा अभ्यास, जैसे शरीर के लिए व्यायाम जरूरी है वैसे ही मन के लिए ध्यान जप प्रार्थना और सकारात्मक सोच जरूरी है। एक वास्तविक जीवन का उदाहरण देता हूं। एक व्यक्ति नौकरी खो बैठा, पहले दिन घबराया, दूसरे दिन उदास रहा, तीसरे दिन उसने खुद से कहा, मैं अपना कर्तव्य निभाऊंगा, परिणाम ईश्वर पर छोड़ूंगा। उसने रोज नियमित समय पर प्रार्थना शुरू की और साथ ही साथ अपने कौशल पर भी काम किया। कुछ महीनों में उसे नई नौकरी मिली जो कि पहले से भी बेहतर थी। वह कहता है, नौकरी नहीं गीता ने मुझे शांति दी। तो फिर गीता का दृष्टिकोण क्या है? गीता का दृष्टिकोण है, भय का कारण आसक्ति और अनिश्चितता है। समाधान कैसे मिले? कर्तव्य करो, फल की चिंता छोड़ो। शांति का मार्ग क्या है? शांति का मार्ग है संयम, संतोष और अभ्यास। मित्रों, चिंता भविष्य की कल्पना है और भय अतीत की परछाई, लेकिन जीवन तो वर्तमान में जिया जाता है। गीता हमें वर्तमान में टिकना सिखाती है। अंत में मैं एक पंक्ति के साथ विदा लेना चाहूंगा, जिसने स्वयं को जीत लिया उसने संसार को भी जीत लिया। मित्रों, इसी के साथ आज हम विराम लेते हैं। आप सुन रहे थे ज्ञान चिंतन। आज का विषय था भय चिंता शांति गीता के दृष्टिकोण से। अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे एक नए विचार और एक नई ऊर्जा के साथ। बने रहिए हमारे साथ रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर। नमस्कार, खुश रहें, खुशियां बांटें।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड, आज जितनी बीमारियां हो रही हैं, जबकि हम आज हेल्थ के बारे में ज्यादा अवेयर हैं, ज्यादा ध्यान रखते हैं, ज्यादा हमारे पास मेडिकल ट्रीटमेंट्स हैं, फिर भी बीमारियां ज्यादा है। ठीक है, चाहे वो हमारी साइकोसोमैटिक इलनेसेस हो गई कि हाई कोलेस्ट्रॉल हुआ, ब्लड प्रेशर हुआ, शुगर हुआ।

0: या आज के जो समय में है वो है ज्यादा मेंटल हेल्थ इलनेसेस, कि डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, पैनिक अटैक, दिस आर बिगिनिंग स्टेजेस। अब ये सारी चीजें क्यों हुई? क्योंकि बहुत बहुत बहुत सालों से हमारा जो थिंकिंग पैटर्न था वो एक अलग तरह से चलते चलते चलते, चाहे वो गुस्से को कहें, चाहे हर्ट को कहें, कोई भी इस तरह का जो कंफर्टेबल नहीं था, ना मन के लिए ना शरीर के लिए।
1: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: अरे हाँ, ये कौन सा महीना है?
1: जनवरी। ऋतु सुहानी झूमती है।
0: ये पुलिस क्यों घूमती है?
1: अरे बाबा, तुम्हें नहीं किसी चोर को ढूंढती है।

0: जनगणनेच्या पहिल्या टप्प्यात घर यादी व घरगणना म्हणजेच आपल्या घराची गणना होईल. या आपल्या भागीदारीने याला यशस्वी करूया आणि विकसित भारत 2047 च्या दिशेने अजून एक पाऊल उचलूया.
1: वेलकम टू अवेकनिंग विथ ब्रह्मा कुमारी. वेलकम सिस्टर.
2: ओम शांती.
1: आपका स्वागत है बीइंग ब्लिस में.
2: थैंक यू.
1: लास्ट एपिसोड में हमारी बात हो रही थी थॉट्स की, कि मैंने एनर्जी भेजी, एनर्जी आई, कौन सी गुड एनर्जी है, कौन सी बैड एनर्जी है. तो बार बार मुझे कहानी याद आ रही थी जो बचपन में सुना था. एक कहानी थी कि एक गांव में एक राजा के यहाँ वॉक पे राजा निकलता है सुबह अपने मंत्री के साथ, तो देखता है कि एक बहुत सुंदर सैंडलवुड को क्या कहते हैं,
2: चंदन,
1: चंदन की लकड़ियों का पेड़ किसी के पास थे चंदन की. उसमें वो घूमता फिरता है, घर आके कहता है यार ये किसका है. तो बोलता फलाने आदमी का है. बोलता उसे ले लो और उसको गांव से बाहर निकाल दो या कहीं और उसको कॉम्पेंसेट कर दो. तो ये बहुत विजडम वाला था वजीर. वहां जाता है और उससे मिलता है तो कहता है कि भाई मेरी बेटी की शादी है, मैं वैसे ही 6 महीने से परेशान हूं, मेरा बिजनेस डल है, मुझे पैसे चाहिए, मेरी लकड़ी बिक नहीं रही है, ऊपर से आप मुझे यहां से निकाल रहे हो, मेरी प्रॉपर्टी भी छीन रहे हो. तो उसने बोला कि देखो राजा ने ऑर्डर तो पास किया, मुझे करना है, लेकिन एक बात बताओ, क्या तुम्हारे मन में राजा के प्रति कोई भी नेगेटिव बात आई थी क्या? तो वो कहने लगा आपको कैसे मालूम? उसने बोला मुझे बताओ. तो उसने बोला कि देखिए 6 महीने से मेरे पास पैसा नहीं आ रहा है, मेरी बेटी की शादी है और रोज मैं दुआ करता था कि राजा मर जाए तो सारा शहर, सारा गांव ये लकड़ी खरीदेगा, मेरी चंदन की लकड़ी सब बिक जाएगी और उसकी वो अर्थी में काम आएगी. तो इसने कहा तुम ये भी तो सोच सकते थे ना कि राजा के यहाँ बहुत कोई खुशियां आए, यज्ञ हो, पूजा हो, हवन हो, तब मेरी लकड़ी बिके.
2: ब्यूटिफुल. बट मोस्ट इम्पोर्टेंट जो इसमें से मैसेज निकल कर आता है वो ये कि इसने जो थॉट क्रिएट की, जो फार्मर था या जिसका वो चंदन का बाग था पूरा, उसने जो क्वालिटी ऑफ थॉट क्रिएट की ना, जो हमने लास्ट टाइम भी देखा, आपने कहा जो मैं थॉट क्रिएट करूं क्या वो दूसरे को पता चल जाएगी. यू नो, हम यहाँ बैठे, हम दूसरे के लिए कोई थॉट क्रिएट कर रहे हैं या दूसरा हमारे लिए थॉट क्रिएट कर रहा है. और हमने पिछली बार देखा कि किसी के लिए हमारे मन में कोई ऐसी नेगेटिविटी नहीं है, सब ठीक चल रहा है, लेकिन सडनली हमें धीरे धीरे लगता है कि हम उनके बारे में अच्छा नहीं सोच रहे.
1: अच्छा अगर नहीं भी सोच रहे तो वो दुआएं जो देता था,
2: हाँ, वो
1: नहीं, वो प्यार जो निकलता था वो नहीं आ रहा.
2: और फिर सी अगेन, अच्छा नहीं सोच रहे हैं और दुआएं नहीं निकल रही है, ऐसा नहीं होता है, बिकॉज इट्स नॉट जीरो थॉट. अगर मैं वो दुआएं नहीं निकल रही या अच्छा नहीं सोच रही तो मैं कुछ क्रिटिकल, कुछ जजमेंटल, कुछ नेगेटिव उनकी बात, मैं तो या आपकी विशेषता देख सकती हूँ या आपकी कमजोरी देख सकती हूँ.
1: ये तो पॉइंट आपने सही, अच्छा
2: है ना, दोनों में से एक तो चलेगा ही,
1: बीच में न्यूट्रल नहीं होता.
2: न्यूट्रल मीन्स नो थिंकिंग हुआ. अब जो लोग हमारे आसपास हैं, परिवार है, फ्रेंड्स है, स्टाफ है, जिनके साथ हमारे स्ट्रॉन्ग कार्मिक अकाउंट्स हैं, दैट्स वाई वो हमारे क्लोज सर्किट में है ना, तो वो जिनके साथ स्ट्रॉन्ग कार्मिक अकाउंट है, मतलब हमारी सोच उनके लिए और उनकी सोच हमारे लिए चलती ही है.
1: नहीं, बट आपकी बात बहुत अच्छी लगी, मतलब जिसको मैं जानता नहीं सिर्फ उसके लिए नो थिंकिंग होती है.
2: हाँ.
1: अगर मैं नेबर को भी जानता हूँ, कभी मिला नहीं, एक ही बार समझो 10 साल में मिला, तब भी एक उसके बारे में थिंकिंग थॉट तो है,
2: उसके बारे
1: अच्छा
2: में
1: बुरा जो भी है,
2: राइट, या जैसे उसको मिले, जैसे ही उसको दिखे, सपोज आप अपने मकान से आप निकले, वो अपने मकान से निकला, एक हलोई क्रॉस की और अपने अपने काम पे चले गए, लेकिन जैसे ही हम सामने वाले को देखते हैं, मिलते हैं, एक फीलिंग क्रिएट होती है, किसी को देखकर बहुत अच्छा लगता है, दिल से लवली टू मीट यू, और किसी को देखकर ओके बेस्ट अवॉइडेड एक लाइन बोलते हैं और अपने काम पर चलते हैं.

0: तो दोनों में से एक थॉट तो आती ही है. एंड स्पेशली जो स्ट्रांग अकाउंट्स है, स्ट्रांग अकाउंट्स में कभी भी ये नहीं होगा कि नो थॉट. हम कहें ना, मैं इसके लिए अच्छा भी नहीं सोचता, मैं बुरा भी नहीं सोचता.
1: मेरे अंकल की यहाँ पर का होटल था हैदराबाद में, जहाँ हम शूट कर रहे हैं पास में, तो वो घर से निकले एक दिन रेस्टोरेंट खोलने के लिए, वापस आ गए 10. बोले हुआ क्या? बोले वो रस्ते में मिल गया. कौन मिल गया? वो मनोज. उसकी शक्ल देखता हूँ तो बिजनेस नहीं, तो वापस घर आए.
0: अच्छा, ये बात कई लोग बोलते हैं. अब हमें इसको भी अंडरस्टैंड कर लो कि हम जा रहे थे, रस्ते में वो मिल गया, इसलिए मेरा काम ठीक नहीं होगा. या शाम को कहेंगे आज दिन अच्छा नहीं था, काम ठीक नहीं हुआ, आज सुबह सुबह किसका चेहरा देखा था. और हम किसको फिर कह देंगे कि मनहूस, मतलब अनलक्की फॉर मी? सामने वाले को. सामने वाला नहीं मनहूस, उसको देखकर, उससे मिलकर मेरे अंदर क्या चला, मेरी दिन की शुरुआत उससे शुरू हुई थी. सुबह उठते ही फर्स्ट थॉट कौन सी क्रिएट हुई, वो स्टार्ट्स द डे. हमारा दिन किससे शुरू होता है कि सुबह सुबह चिंतन कैसा चला. इसीलिए हमने पहले भी देखा कि न्यूज ना पढ़ें सुबह, टीवी ना देखें, क्योंकि सुबह के दिन की शुरुआत किस थॉट से होगी, पूरा दिन उसी में बीतेगा. तब ये बना था कि आज सुबह किसका चेहरा देखा था, कि दिन या तो बहुत अच्छा बीता या दिन उतना अच्छा नहीं बीता. वो ना किसी और के चेहरे देखने से होगा, ना अपने चेहरा देखने से होगा. आज सुबह सुबह मन के आईने पर सबसे पहली थॉट कौन सी देखी थी, उससे दिन की शुरुआत होगी. अब अगर किसी के साथ हमारा थोड़ा सा अनप्लेजेंट है, या सपोज मुझे लगता है कोई मेरे लिए अच्छा नहीं सोचता, और हम घर से निकले और हम उनको मिले, या हम कहते उनकी शक्ल देखी या उनसे बात हुई, तो उनको देखने से हमारा दिन नहीं खराब होगा, लेकिन उनको देखते ही
1: जो थॉट मेरे मन में आई, मेरे
0: इवन ये थॉट आना, आज का दिन सुबह सुबह इसको देख लिया, सुबह सुबह ये मिला, अब कैसा काम होने वाला है, तो ये अपने को. एंड देन वी सॉ द यूनिवर्स ओनली रिटर्न्स व्हाट यू हैव एमिटेड. तो सुबह सुबह उसको मिलते हमने थॉट क्रिएट की, अभी आज इसको मिले ना, आज पता नहीं जो काम मैं करने जा रहा हूँ वो होगा कि नहीं. यूनिवर्स रिटर्न्स.
1: तो सुबह उठते क्या करना चाहिए? सीधा सुप्रीम फादर से बात करनी चाहिए.
0: सबसे मेडिटेशन क्यों सुबह सुबह करते हैं, सत्संग सुबह क्यों करते हैं, कुछ अच्छा पढ़ना, पूजा करना, मंत्र जाप करना, जो भी हम कर रहे हैं अपने घर में वो सुबह क्यों करते हैं? सिर्फ आज थोड़ा सा क्या हुआ, हम जो चीजें कर रहे हैं वो कई बार मुख लेवल पे कर रहे हैं, सिर्फ मुख से कर रहे हैं, शब्द बोल रहे हैं. जैसे किसी घर में भजन चल रहे हैं, तो वो भजन चल रहे हैं, हम गा भी रहे हैं साथ में, सुनने में भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, बट देन इट्स ओनली रिमेन्स अ नाइस सॉन्ग. कि सुनने में बहुत अच्छा है, बहुत सूदिंग है, उसकी एनर्जी बहुत अच्छी होती है, शब्द बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन वो मुझे प्राप्ति तब देगा जब उस भजन में से कम एक लाइन को मैं यहाँ फिट करूँ ना आज के दिन के लिए. नहीं तो पूरी सीडी बज गई. सुबह 6 बजे उठते ही लगा दिए, 10 बजे तक चल रहे हैं जब तक हम घर से बाहर नहीं निकले. एक एक शब्द उसमें सुंदर, श्रेष्ठ और पावरफुल होता है, लेकिन वो सिर्फ शब्द ही रह जाता है ना, सुनने में, गुनगुनाने में, भगवान का नाम लेने में भी. इवन अगर हम भगवान का नाम ले रहे हैं, लेकिन सिर्फ नाम ले रहे हैं ना.
1: इसलिए आपकी बात से मुझे इतनी सुंदर एक चीज अब समझ में आई, शब्द क्यों कहते हैं गुरु नानक के. गुरु जी के लिए
0: शब्द है ना, लेकिन उसको यहाँ ले. अभी सपोज मैंने 4 घंटे बहुत सुंदर गीत सुने, प्रार्थना की, पाठ भी किया घर पे, सब कुछ किया, और घर से बाहर निकले, और जैसे आपने कहा किसी को मिले कहेंगे आज का दिन कैसा बीतेगा, वेयर इज इट मैचिंग नाउ? कि इतनी सुंदर बात अभी हमने सुनी, इतना सब किया, लेकिन बाहर निकलते सोच तो वही है पुरानी, वही. तो फिर क्या हुआ, कुछ लिया नहीं वो 4 घंटे में से, या 5 मिनट की पूजा से भी कुछ लिया नहीं, सिर्फ किया. पूजा की, पाठ किया, उसमें से कुछ लिया नहीं. तो लिया नहीं तो वो जो दे सकता था हमें वो मैंने प्राप्ति नहीं की, तो वो जीवन में नहीं आया. हमारा रिलीजन, हमारी स्पिरिचुअलिटी, हमारे भजन, हमारे जीवन में ट्रांसलेट नहीं हुए. तो अभी हमें सिर्फ यही अटेंशन रखना है, जो आपने कहा सुबह सुबह क्या करें, वही चीजें जो चल रही हैं उनको सिर्फ सुनना नहीं है, उनमें से एक लाइन लेनी है. बहुत ज्यादा भी नहीं लेना होता पूरे दिन के लिए, एक लेनी है, सुनते सुनते उसका मनन करना है. सपोज उसमें एक लाइन

0: कि किसी से वैर नहीं, सबको क्षमा करो, है ना, जैसे होता है किसी से वैर नहीं, सबसे प्यार करो। अब ये तो हर हर प्रार्थना, हर धर्म, हर भजन सिखाएगा, तो बाहर जाके हम कैसे कह सकते हैं ये मनहूस है? हम कैसे बोल सकते हैं इसको देखकर मेरा दिन अच्छा नहीं बीतेगा,
1: मेरी थिंकिंग मनहूस है?
0: राइट। तो अगर मैं सिर्फ वो एक लाइन भी ले जाऊं बाहर घर से निकलने के टाइम कि किसी से वैर नहीं, सब परमात्मा के बच्चे बहुत प्यारे हैं।
1: बट मैंने एक चीज नोटिस की, जिस घर में भी ये सीडी लगते हैं ना भगवान की पूजा के या मंत्र भजन के इसके उसके, वो एक दिन दो दिन तीन दिन तक सुनते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं। अरे ये कितना अच्छा, सुनो ये नया सिंगर आया, सुनो ये फलाने वाले, सुनो ये मीरा के भजन सुनो। उसके बाद 15-20 दिन के बाद वो अपना चलता रहता है, आप अपने फोन पे रहते हो या न्यूज पेपर पढ़ते हो, चाय पीते हो, और पीछे कहीं बैकग्राउंड में चलता, मतलब एक जैसे ही हमको पता ही नहीं चल रहा ना सांस चल रही है।
0: That's what I said. It just becomes like a nice song then.
1: नहीं वो भी नहीं, अवेयर ही नहीं है,
0: बैकग्राउंड म्यूजिक
1: खत्म हुआ, आप ही बंद हो जाएगा, आप निकल भी गए घर से, ऑटोमेटिक स्टॉप हो जाएगा, वो फोन पे भी बात कर रहे हो, नाश्ता भी करने जा रहे हो, मतलब फिर वो मजा नहीं आ रहा।
0: उसका रीजन क्या है? क्योंकि हम शुरू से डे वन से उसको उस इंटेंशन से सुन भी नहीं रहे थे कि उसमें से कुछ लेना है, उसको सिर्फ सुन रहे थे। जैसे बहुत सारे भाई बहने हैं जो अवेकनिंग देखते हैं, अब ये कोई सुनने का प्रोग्राम नहीं है, इसमें से कुछ लेने का प्रोग्राम है, तो सभी अपना अनुभव सुनाएंगे। वो आधा घंटा हम अपना फोन भी साइड पे रख देते हैं, सब लोगों को भी घर में बोलते हैं अभी इस टाइम पे मुझे डिस्टर्ब नहीं करना, क्योंकि अगर आधे घंटा सुनने के टाइम दो मिनट भी ध्यान इधर उधर गया तो बात समझ में नहीं आएगी उसके बाद।
1: पहले क्या बोला?
0: हाँ, और मैं बैठा क्यों देखने के लिए? इंटेंशन इज वेरी क्लियर, जो भी आधा घंटे का समय निकाल रहा है देखने के लिए वो बैठे इसलिए है कि इसमें से मुझे कुछ लेना है। सेम वी हैव टू डू कि भजन सुन रहे हैं, मुझे इसमें से कुछ लेना है, तो फिर आपका ध्यान इधर उधर नहीं जाएगा। भले चार घंटे वो इट गिव्स अ नाइस फील, लेकिन पांच मिनट तो सुनने के लिए और समझने के लिए बैठना है उसमें से, इट विल गिव लॉट ऑफ बेनिफिट, लॉट ऑफ बेनिफिट। इंटेंशन हैज टू बी वेरी क्लियर कि हमें क्या करना है।
1: बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा।
0: इंटेंशन हैज टू बी वेरी क्लियर,
1: मैं यहाँ क्यों बैठा हूँ,
0: क्यों बैठा हूँ।
1: इंटेंशन एंड अटेंशन
0: किस लिए कर रहे हैं? करना है इसलिए कर रहे हैं, करना चाहिए इसलिए कर रहे हैं, सब करते हैं इसलिए कर रहे हैं, करके अच्छा लगता है इसलिए कर रहे हैं, अच्छा लगने के लिए नहीं कर रहे हैं।
1: नाराज ना हो जाए इसलिए कर रहा हूँ,
0: राइट,
1: देवी को खुश करने के लिए कर रहा हूँ।
0: बिलीफ सिस्टम, दैट्स व्हाई वी सो के वन बिलीफ सिस्टम डेस्टिनी को चेंज कर देगा। कैसे हुआ होगा? जैसे एक छोटा बच्चा है, ठीक है, छोटे बच्चे को पेरेंट्स कैसे सिखाता है? उसको सिखाना है ना कि आपको अच्छा बच्चा बनना है, आपको ये गलत काम नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, आप ऐसे गलत करोगे ना तो मम्मी पापा नाराज हो जाएंगे, फिर मम्मी पापा अगर नाराज हो जाएंगे तो आपको पनिश करेंगे, फिर चॉकलेट नहीं देंगे, फिर आपको डांटेंगे, इसलिए आपको अच्छा काम करना है। बच्चे को कभी ये नहीं सिखाया जाता आपको अच्छा इसलिए करना है क्योंकि उसमें आपका बेनिफिट है, आपकी लाइफ, यहाँ तक कि आपको पढ़ना भी किसके लिए, फिर मम्मी पापा खुश हो जाएंगे। यू ऑलवेज लर्नड इट दिस वे, आप इसलिए करो क्योंकि वो खुश हो जाएंगे, फिर वो खुश हो जाएंगे तो आपको गिफ्ट देंगे, नहीं खुश होंगे तो आपको डांटेंगे, पनिश भी करेंगे। अब इसे छोटे बच्चे को ऐसे सिखाएंगे तो बड़े बच्चों को कैसे सिखाएंगे? बड़े बच्चों को भी ऐसे ही सिखाएंगे। आपकी भाग्य परमात्मा और देवी देवताओं के हाथ में है, तो आप अच्छे बनो, अच्छे काम करो, वो खुश हो जाएंगे, तो उनकी कृपा आप पर होगी। एक्चुअली जो सभी स्क्रिप्चर्स लिखे हुए हैं और जो स्टोरीज, जैसे आपने बोला कि हमने बचपन से जो स्टोरीज सुनी है, तो हमने देवी देवताओं को, देवी देवता मीन्स जो दिव्य गुणों वाली आत्माएं हैं, परफेक्ट है ना, देवी देवताओं की अगर महिमा सुने, 16 कला संपूर्ण आत्मा, संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसा परमो धर्म है उनका। जो आत्मा 16 कला संपूर्ण है, संपूर्ण निर्विकारी है, उसके अंदर कोई विकार नहीं है, वो अहिंसा परमो धर्म है उसका, वो आत्मा नाराज कैसे हो सकती है? वो आत्मा गुस्सा कैसे कर सकती है? एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो आत्मा श्राप कैसे दे सकती है? श्राप तो हम भी नहीं देंगे आज अपने बच्चे को। तो वो जो 16 कला संपूर्ण है, चलो हम फिर भी, हमें गुस्सा आ जाए सपोज, तो हम कहेंगे तेरा पता नहीं क्या होगा, तो ये एक श्राप है। लेकिन जिसको कभी गुस्सा ही नहीं आएगा वो कैसे श्राप दे सकता?

0: सकते हैं, लेकिन ये बातों को एक्सप्लेन करने के लिए कि हमें अच्छा बनना है, हमें सही कर्म करने हैं, जो स्क्रिप्चर्स लिखे गए उसमें क्या दिखाया गया कि देवी देवताएं जो कहते थे वो सच हो जाता था। यही दिखाया ना, देवता ने वरदान दिया मुझे तो वरदान भी सत्य हुआ, देवता ने अगर श्राप दिया तो वो भी सत्य हो गया। तो ये हमें मैसेज मिला कि वो हमारे लिए जो कहेंगे वो हमारे जीवन में सच हो जाएगा। एक्चुअली वो मैसेज जो दे रही थी बात, वो ये था जो आपने कुछ दिन पहले हमारे लिए पढ़कर सुनाया था कि वट एवर वी थिंक एंड वट वी स्पीक, योर थॉट्स एंड योर वर्ड्स रेडिएट एंड देन दे कम बैक टू यू। वुड यू स्पीक एंड थिंक वट यू डिड यस्टरडे इफ यू कम टू नो दैट इट विल बिकम अ रियलिटी? That is what you read for us, which means आपकी सोच और आपकी बोल, जो आप करेंगे, जो सोचेंगे बोलेंगे, वो आपके पास ही वापस आएगा। अगर आपको ये बात समझ में आ जाती है तो जो आपने कल बोला और सोचा, क्या आप वो बोलेंगे अगर आपको पता चल जाए वो सत्य होने वाला है?
1: रिपीट नहीं करूंगा,
0: नहीं करेंगे। What is this saying? अब ये जो हमने दिखाया कि देवी ने श्राप दिया या देवी ने वरदान दिया, तो हमने दो एंटिटीज क्रिएट कर दिए, एक वरदान और श्राप देने वाला और एक लेने वाला। तो हमने कहा इन्होंने जो दिया वो मेरे जीवन में आया। एक्चुअली वो देवी देवता किसको सिंबलाइज कर रहे थे? मुझ आत्मा के गुणों को, कि मैं आत्मा अगर अच्छा सोचूंगी तो वो सत्य हो जाएगा, और मैं आत्मा अगर कुछ गलत सोचूंगी तो वो भी सत्य हो जाएगा। मेरे अंदर ही दिव्यता है और मेरे अंदर ही आज विकार है, एंड मैं आत्मा पावरफुल हूँ, तो वट एवर आई थिंक एंड स्पीक बिकम्स अ रियलिटी। जब हम कह रहे थॉट्स क्रिएट डेस्टिनी, ये साइकिल हमें क्लियर हो गया। थॉट्स क्रिएट डेस्टिनी मीन्स अच्छी थॉट्स भी डेस्टिनी एंड थोड़ी जो गड़बड़ वाली थॉट्स वो भी डेस्टिनी। तो वरदान और श्राप किसने मुझे देना है? अगर आप आज मुझे ब्लेस भी करें, मुझे वरदान भी दें, आज आपका दिन बहुत अच्छा बीतेगा। टुडे विल बी अ ब्यूटिफुल डे। आप जो काम करने जाएंगे आपके सारे काम आज बहुत अच्छे होने वाले हैं, ये आपने सुबह सुबह मुझे ब्लेसिंग दी। लेकिन मेरी स्थिति ठीक नहीं है, मेरा मन उदास है आज, मेरा मन परेशान है।
1: अगर मुझे विश्वास हो कि इनकी ब्लेसिंग लेकर जाऊंगा तो मेरा काम बहुत अच्छा होगा, तब मेरा मन भी ठीक हो जाएगा ना?
0: नहीं, सिर्फ इस बात से मेरा मन नहीं ठीक हो सकता।
1: मैं ब्लेसिंग आपके लिए, ठीक है?
0: देखो कितनी देर आप ब्लेसिंग देते हैं, मैं सुबह आपसे मिली और फिर पूरा दिन अपने काम पे निकले, राइट? तो सुबह आए, जैसे बच्चे पेरेंट्स के पास आते हैं या हम महात्माओं के पास, संतों के पास जाते हैं, तो हमें ब्लेसिंग कितनी देर के लिए उनसे मिलती है? 30 सेकेंड्स, 1 मिनट, 2 मिनट्स। लिया मींस हमने क्या लिया? मुझे उनसे मिलने से उन्होंने मेरे प्रति एक बहुत अच्छी, बहुत पावरफुल थॉट क्रिएट कर दी। लेकिन वो थॉट किसने क्रिएट की? उन्होंने किया।
1: मैं कह रहा हूँ आपने मुझे ब्लेस किया, तो मेरे अंदर एक थॉट या विश्वास है कि शिवानी बहन ने अगर मुझे बोल दिया तो पूरा दिन मेरा अच्छा होगा।
0: लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता,
1: क्यों? तब मेरी थॉट्स ब्लेसिंग में नहीं चलेगी कि अच्छी वाली?
0: नहीं, मुझे अब ये थॉट क्रिएट करनी पड़ेगी। उसके बाद मुझे अच्छी थॉट सारा दिन अब क्रिएट करनी पड़ेगी, तब मेरा दिन अच्छा बीतेगा। सिर्फ आपके मेरे लिए अच्छे थॉट क्रिएट करने से और मुझे उस बात में विश्वास होने से कि अगर आपने मेरे लिए अच्छा सोचा तो मेरा अच्छा दिन बीतेगा। आपने मेरे लिए अच्छा सोचा इज लाइक जैसे गाड़ी को पहला धक्का, फर्स्ट स्टार्ट, ब्यूटीफुल स्टार्ट फॉर द डे, कि मुझे किसी बड़े से, महात्मा से, पेरेंट से सुबह सुबह बहुत अच्छी एनर्जी मिली, इज लाइक द फर्स्ट पुश,
1: सेल्फ लगाए।
0: बाकी पूरा दिन तो गाड़ी मुझे चलानी है। आपकी 1 थॉट या 5 थॉट्स, 10 थॉट्स सुबह, लेकिन मेरी 50,000 थॉट्स सारा दिन, एंड माय थॉट्स क्रिएट माय डेस्टिनी। योर थॉट्स डोंट क्रिएट माय डेस्टिनी, योर थॉट्स क्रिएट योर डेस्टिनी, माय थॉट्स क्रिएट माय डेस्टिनी। आपकी पहली अच्छी सोच को मैं लेकर फिर उससे मैं अगर सारा दिन अच्छा सोचूं, तब मेरा सारा दिन अच्छा।

0: देखा, लेकिन आपने एक अच्छी थॉट क्रिएट की, पर मैं सारा दिन अपनी वो सारी थॉट क्रिएट कर।
1: ये भी बोल सकता हूँ, इन्होंने दिल से नहीं दी क्या दुआ, ठीक नहीं मिली मुझे आज।
0: क्यों? क्योंकि हमारे
1: क्योंकि सारा दिन फिर वही करूंगा ना,
0: क्योंकि हमें आदत है ना, क्रेडिट भी हम दूसरे को ही देते हैं और ब्लेम भी दूसरे को ही देते हैं। अपनी पावर की रियलाइजेशन ही नहीं है, अपने पोटेंशियल के बारे में पता ही नहीं है। तो अगर आपने मुझे ब्लेसिंग दी तो मैं उस थॉट को ले सकती हूँ, इन्होंने कितनी अच्छी बात मुझे कही है आज कि आज मेरा सारा दिन बहुत अच्छा बीतेगा, वो जो बिजनेस मीटिंग के लिए मैं जा रही हूँ मुझे सफलता उसमें मिलेगी, कितनी अच्छी थॉट दी है मुझे सुबह सुबह। मेरे अंदर डाउट था इनफैक्ट सुबह कि आज मेरी मीटिंग अच्छी होगी कि नहीं, जो मैं आज करने जा रही हूँ मेरे को लग रहा था आज अच्छा होगा कि नहीं। अब इन्होंने मेरे कॉन्फिडेंस को बढ़ाया है और इनको मेरे अंदर विश्वास है कि ये मेरा काम अच्छा होगा, तो मुझे अपने अंदर क्यों नहीं हो सकता विश्वास? तो लेट मी चेंज माई थिंकिंग, सो आई टेक योर थॉट एज अ फर्स्ट थॉट एंड फिर उस थॉट को मैं अपनी थॉट्स को चेंज करने के लिए अगर यूज करूं, तब आपकी ब्लेसिंग को मैंने रिसीव किया, नहीं तो रिसीव ही नहीं किया।
1: सपोजिंग मैं आपकी ब्लेसिंग लेने आया, किसी काम पे जा रहा हूँ, आपने मुझे दे दी, फिर मैं गाड़ी में बैठा, बोला इन्होंने ब्लेस तो कर दिया लेकिन यार वो काम बड़ा मुश्किल है,
0: तो आपने ब्लेसिंग रिसीव नहीं की। ब्लेसिंग को रिसीव करना मतलब एक्सेप्ट करना, उसको स्वीकार करना, और स्वीकार करना मतलब वो सोच मेरी बन जाना। फिर जब तक मैं आपकी सोच को स्वीकार करके अपनी नहीं बनाऊं, मैंने आपकी चीज को रिसीव ही नहीं किया। और इसी तरह जो हमने लास्ट टाइम देखा, अगर आपने मुझे ब्लेसिंग की बजाय ऑपोजिट भी आपने मेरे लिए सोचा, जो हमने कहा कि किसी की नजर लगी, किसी ने मेरे लिए अच्छा नहीं सोचा,
1: मैं रिसीव नहीं करूंगा,
0: मैं रिसीव नहीं करूंगा। हाउ डज इट मैटर, लेट एवरीबडी थिंक रॉन्गली अबाउट मी, हाउ डज इट मैटर, एक क्या, सब लोगों को सोचने दो मेरे लिए गलत। मैं रिसीव जब तक नहीं करता, उसको ग्रहण नहीं करता, वो मेरे लिए नहीं बनेगी रियलिटी, बन ही नहीं सकती। वो उनके लिए रियलिटी बनेगी क्योंकि उन्होंने नेगेटिव थॉट क्रिएट किए। थॉट क्रिएट्स डेस्टिनी फॉर इंडिविजुअल, माय थॉट माय डेस्टिनी,
1: योर थॉट। मैं थॉट क्रिएट करके आपकी डेस्टिनी नहीं बना सकता,
0: नो वे, नो वे।
1: बट आपकी थॉट्स को डिस्टर्ब कर सकता हूँ,
0: नहीं, आप मुझे थॉट भेज सकते हैं, आप मुझे थॉट दे सकते हैं। अब मेरे ऊपर डिपेंड करेगा कि मैं उस थॉट को कंज्यूम करूं या नहीं करूं। अगर मैंने नहीं स्वीकार किया तो मैं आपके वरदान को भी स्वीकार नहीं करूंगी, और नहीं स्वीकार किया तो मैं आपके श्राप को भी स्वीकार नहीं करूंगी, दुआ को भी स्वीकार नहीं करूंगी और बद्दुआ को भी स्वीकार नहीं करूंगी। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। आपने मेरे लिए पॉजिटिव क्रिएट किया लेकिन मेरा मन नेगेटिव है, तो मैंने आपकी ब्लेसिंग को भी स्वीकार नहीं किया। आपने मेरे लिए नेगेटिव क्रिएट किया लेकिन मेरा मन पॉजिटिव है, तो मैंने आपकी बद्दुआ को स्वीकार नहीं किया। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन वी फाइंड इट इजियर टू से इट्स बिकॉज ऑफ देम, इट्स बिकॉज ऑफ देम। तो ब्लेसिंग्स भी देने वाले को और ब्लेसिंग लेने वाले को, दोनों की इंटेंशन और अटेंशन यहां भी होनी चाहिए। इंटेंशन और अटेंशन हर स्टेप पर चाहिए, नहीं तो सब चीजें सिर्फ शब्दों का खेल बन गई है। वर्ड्स एंड रिचुअल्स, एनर्जी एक्सचेंज तो हो ही नहीं रहा। गॉड ब्लेस यू, चलो एक वर्ड बन गया है सिर्फ, ये वर्ड नहीं, उस समय उस स्थिति में बैठकर परमात्मा से वो, अगर हम कह रहे हैं गॉड ब्लेस यू मतलब गॉड्स ब्लेसिंग्स, तो परमात्मा से कनेक्ट होकर, इट्स 30 सेकेंड्स, ऐसा नहीं इसके लिए आधा घंटा बैठना है कोई, उस स्थिति में बैठकर परमात्मा आज इस आत्मा को जो ये कार्य के लिए जा रहे हैं, आप इसके साथ, आपकी शक्ति इसके साथ, ताकि ये कार्य को सही परखे, निर्णय ले और अपने जीवन में सही तरह से चले। जब तक ये सब थॉट्स नहीं क्रिएट की, मतलब अपने तरह से वट एवर, तब तक गॉड ब्लेस यू का कोई मीनिंग नहीं है, तब तक वो सिर्फ एक हेलो हाय गुड मॉर्निंग जैसा एक और एक लाइन है। तो शब्दों से पहले यहाँ, और अगर यहाँ करना शुरू कर दिया तो यहाँ तक तो बहुत ज्यादा लाना भी नहीं पड़ेगा, बिकॉज योर वाइब्रेशन विल रेडिएट। तो इंटेंशन एंड फिर करते टाइम अटेंशन, सपोज हमने किसी के लिए कहा गॉड ब्लेस यू, कर दिया, अब आपने ब्लेसिंग दी, अब चेक करें आपने ही साथ में डाउट तो नहीं क्रिएट कर लिया, आपने ही, देने वाले ने, अभी तो लेने वाले का कोई रोल नहीं है। बच्चा एग्जाम के लिए जाता है सुबह तो पेरेंट बहुत प्यार से कहता है ऑल द बेस्ट, डू वेल, गॉड ब्लेस यू, लेकिन अंदर से अगर एक थॉट पेरेंट ने क्रिएट किया,
1: तो टीवी देख रहा था, पढ़ा नहीं है, अभी मैं आशीर्वाद तो दे रही हूँ,
0: वो भी नहीं अगर सोचा, आशीर्वाद तो प्यार से दिया लेकिन ये थॉट क्रिएट किया, पढ़ा ही नहीं पूरा साल तो ये, इसका पता नहीं आज क्या होगा एग्जाम में, अगर इस बार भी नंबर अच्छे नहीं आए तो कैसे होगा। शब्द और थॉट्स
1: ना, कंपटीशन का जमाना है, आज के जमाने में मार्क्स तो 99 लोगों के आते हैं,
0: मतलब हमने खुद ही कह दिया माय ब्लेसिंग विल नॉट वर्क फॉर यू, ये हमने कर दिया क्योंकि हमने एक थॉट अच्छी भी दी लेकिन साथ में पांच थॉट्स ऐसी वाली भी क्रिएट कर दी, तो हमने ब्लेसिंग दी का, इसलिए इंटेंशन एंड देन करते समय अटेंशन, कि करते करते ही अच्छी थॉट के साथ साथ कहीं ऐसे वाली मिक्स तो नहीं हो गई। और ये क्यों हो जाता है, जो हम अच्छे बोल बोल रहे हैं वो एक पैटर्न में आ चुके हैं अभी, हाँ ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, यू नो, डू वेल, ये शब्दों में आ गया, तो हम अटेंशन नहीं देते हैं अपने सोच पर भी नहीं, अपने बोल पर भी नहीं। अब हमारे बोल अच्छे हैं, मीठे हैं, प्यारे हैं, क्योंकि हम चाहते भी हैं इनका दिन आज अच्छा बीते, आई वॉन्ट दैट, तो बोल में बोल दिया हैव अ लवली डे, ऑल द बेस्ट, डू वेल, गॉड ब्लेस यू, लेकिन नेगेटिव थिंकिंग की भी हैबिट हुई हुई है, वो भी एक पैटर्न बना है, तो ये पैटर्न भी चल रहा है, वो पैटर्न भी चल रहा है, अब वो पैटर्न में ये हो रहा है, पता नहीं आज क्या होगा, बहुत मुश्किल काम के लिए जा रहा है, होगा या नहीं होगा, अगर आज भी नहीं हुआ तो कैसे होगा, तो फिर वर्ड्स की पावर में कंपैरिजन में जो थॉट्स की पावर है वो तो कई गुना ज्यादा है, तो हमने भी उसको ब्लेसिंग की बजाय ब्लेसिंग का ऑपोजिट दे दिया, और जो रिसीव करने वाला है वो तो ऑलरेडी थोड़ा सा लो है, तो उसको हमने कौन सी एनर्जी दे दी, और वो एनर्जी उसके मन की स्थिति पर इन्फ्लुएंस करेगी, क्योंकि वो अभी तो कंज्यूमिंग मोड में है, कि जो मुझे थॉट भेजता है वो मेरे ऊपर प्रभाव तो डालती ही है, तो इसलिए जब ब्लेसिंग दे, दुआ करे, तो पहले अपनी स्थिति को ठीक करे, स्थिति पर अटेंशन रखे बिना दुआ नहीं दी जाएगी अभी के समय में, क्योंकि पैटर्न बहुत नेगेटिव हैबिचुएटेड है, तो स्टॉप करना होगा, इसको चेंज करना होगा, फिर उसको वर्ड्स में लाना होगा, और फिर एक बार आपने वो वर्ड बोल दिया कि हैव अ लवली डे, अब उसके बाद ये थॉट नहीं क्रिएट करें पता नहीं दिन कैसा बीतेगा, फिर अपने थॉट्स पे और अपने वर्ड्स पे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस, देन वी आर गिविंग ब्लेसिंग्स द होल डे, तो पहले ब्लेसिंग्स देना, फिर सेकेंड स्टेज उस ब्लेसिंग्स को रिसीव करना है।
1: ब्लेस यू सिस्टर,
0: थैंक यू,
1: बहुत अच्छी बातें बताई, थैंक यू सो मच, अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे,
0: ओम शांति,
1: ओम शांति। Thank you so much.
2: The thoughts we create are vibrations that radiate to the soul about whom they were created. These vibrations will trigger a similar quality of thoughts in them, and those will then radiate to us. Very soon, it is continuous exchange of energy. We need to be careful of the quality of thoughts. The thoughts we create in the early morning hours are the foundation for the day. So, begin the day with reading or listening to pure, powerful words, and then churn on them and implement them during the day. The soul has divine sanskars and also impure sanskars. When we create pure thoughts, we bless ourselves, and when we create impure thoughts, we curse ourselves. God, deities or saints will never curse or punish us. When someone blesses us, they are sending us powerful, positive vibrations. When we take that energy and then create

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: ट्रैक्स बने होते हैं एंड पानी उसमें बह रहा है, ठीक है, गार्डन है, रास्ते हैं, ट्रैक सपोज इधर ही इस सड़क पर एक ट्रैक बना हुआ है। अब वो रोज पानी उसी में बहता है, ठीक है। अब पानी का बहते बहते उस एरिया के अंदर वो एक ट्रैक बन ही गया ना। अब जैसे ही पानी आएगा वो दूसरी साइड पे कहीं जाएगा ही नहीं, राइट। वो ऑटोमेटिकली उसी ट्रैक में फ्लो होगा। होते होते होते वो ट्रैक उस पानी के लिए एक परमानेंट पाथ बन चुका है, राइट। अब अगर हम आज से चाहते हैं कि वो उस ट्रैक में नहीं जाए,

0: डायरेक्शन में वो पानी नहीं जाए लेकिन वो एक नए तरह से जाए। तो हमें थोड़े दिन के लिए, सिर्फ ज्यादा नहीं, थोड़े दिन के लिए जैसे ही वो पानी आता है, फ्लो होने लगता है, हमें उसको चैनलाइज करके एक डिफरेंट डायरेक्शन में जाना है। ऐसे ही माइंड भी जब एक थॉट क्रिएट करता है, फिर अगले दिन वही थॉट क्रिएट करता है, फिर अगली बार वो सिचुएशन आती है, फिर वो उसी तरह रिस्पॉन्ड करता है, तो एक फिक्स्ड पैटर्न बन जाएगा अंदर, जिसको हम कहते हैं ब्रेन में भी उसका एक ग्रूव बन जाता है। अब नेक्स्ट टाइम जब वो सिचुएशन आएगी तो आप चूज नहीं करते, आपकी थिंकिंग ऑटोमेटिकली उस पैटर्न से ही होती है, एंड करते करते करते वो ग्रूव एक बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न बन जाएगा, जिसको हम कहेंगे ब्रेन की मैपिंग, वो पैटर्न बन जाते हैं। अब हम एक जीवन अनेक जन्म उसी पैटर्न उसी मैपिंग से काम करते जा सकते हैं, लेकिन अगर हम आज डिसाइड करें तो हम आज चेंज कर सकते हैं।
1: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: कुछ दिन पहले एक भाई मिले, उन्होंने कहा सुबह क्या हुआ, कहते मैं उठा ऐसे बेड से उठा तो टेबल थी बेड के सामने, मेरा पैर लग गया टेबल से। तो मैंने सबको जोर जोर से डांट लगानी शुरू कर दी, दिखता नहीं, अपने सब स्टाफ को बुलाया, वाइफ को बुलाया, दिखता नहीं बेड के सामने टेबल रखी, उठा मेरा पैर लग गया, सबको डांट रहा था। तो धीरे से किसी ने आके कान में कहा, सर रात को आपने रखी थी। अब जैसे ही ये पता चला कि रात को आपने रखी थी, अब व्यवहार कैसा हो जाएगा। इसीलिए जीवन में जितने विघ्न हमें दिखाई दे रहे हैं, जिनके लिए हम औरों को डांट रहे हैं, औरों को जिम्मेवार ठहरा रहे हैं, औरों पर चिल्ला रहे हैं, वो

0: ये हम कहते हैं ना, उसने किया ही इतना, मैं कैसे क्षमा करूं। उनको नहीं क्षमा कर रहे, अपने आप को क्षमा कर रहे हैं।
1: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: अजी सुनते हो?
1: हाँ सुनी तो रहा हूँ।
0: क्या सुन रहे हो?
1: रेडियो पुनेरी आवाज।
0: ओ रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: आवाज
1: सामाजिक व सांस्कृतिक माहिती देणारे आपले झकास रेडिओ स्टेशन
0: पुणेरी आवाज
1: ऐकत रहा 107.8 एफएम
0: आनंदी रहा आणि आनंद लुटा।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडिओ पुणेरी आवाज 107.8 एफएम। खुश रहो, खुशियां बांटो। अभी सुनते हैं बच्चों की दुनिया ये कार्यक्रम।

0: अच्छा भुवना मैं जा रहा हूँ, बाय।
1: कहाँ जा रहे हो भैया?
0: मैं स्कूल जा रहा हूँ।
1: स्कूल की तो छुट्टियाँ हो गई, अब फिर भी स्कूल जा रहे?
0: क्या बात कर रहे हो, छुट्टियाँ हैं?
1: हाँ।
0: अरे मैं तो भूल ही गया, हमारे स्कूल की तो छुट्टियाँ पड़ गई।
2: लगता है पंकज अपने स्कूल को बहुत मिस कर रहा है, क्यों पंकज?
0: हाँ दीदी मैं बहुत मिस कर रहा हूँ।
2: और स्कूल की जब छुट्टियाँ होती हैं तो हम सभी

0: बच्चे स्कूल को बहुत मिस करते हैं ना?
1: हाँ दीदी।
0: तो सबसे ज्यादा स्कूल को कौन मिस कर रहा है?
2: मैं।
3: मुझे लगता है मैं मिस कर रहा हूँ।
2: नहीं मैं।
1: नहीं मैं।
0: मुझे लगता है तुम सबके सब स्कूल को बहुत ज्यादा मिस कर रहे हो।
2: हाँ दीदी।
0: तो भुवना मिस कर रही हो तुम स्कूल को?
1: क्योंकि हम बहुत मजे करती थी स्कूल पे, अब तो बहुत छुट्टियां, हम घर पे रहे, रोज स्कूल जाके फ्रेंड से बात करना, एंजॉय करना, पर घर पे कुछ भी नहीं दीदी, नो मस्ती।
0: नो मस्ती, नो फ्रेंड्स है।
1: हाँ।
0: और सैंडी तुम?
2: हाँ मुझे भी स्कूल की बहुत याद आ रही है, क्योंकि स्कूल में पढ़ाई के साथ खेलना कूदना मस्ती करना दोस्तों से बातें करना सबकी याद आ रही है।
0: खेलना कूदना घर में नहीं हो पाता ना जैसे स्कूल में होता है,
2: टीवी देखो फिर घर पे बोर पूरे दिन।
0: और पंकज तुम स्कूल को क्यों मिस कर रहे हो?
3: मैं स्कूल को मिस कर रहा हूँ, मैं अपने सारे फ्रेंड्स को मिस कर रहा हूँ। मुझे अपने फ्रेंड्स की याद आ रही है, क्योंकि मैं फ्रेंड्स के साथ हमेशा मस्ती किया करता था, लेकिन घर पे तो कोई फ्रेंड्स नहीं है, बिल्कुल अकेला फील कर रहा हूँ।
0: हाँ जब सुबह से शाम तक हम स्कूल में होते हैं तो इतने ढेर सारे फ्रेंड्स हमारे साथ में होते हैं, छुट्टियों में वो सब बहुत याद आते हैं ना।
3: हाँ
1: दीदी।
0: किसी को पढ़ाई की याद आती है क्या?
1: मुझे
2: नहीं।
1: मुझे आती है। हम ना क्लास में पढ़ाई के साथ मस्ती, टीचर्स के साथ इतना एंजॉयमेंट, हम जब पढ़ रहे हैं ना वो एक नया सा हम कुछ सीख रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं, इतना बड़ा अचीवमेंट करते हैं, ये बहुत अच्छा लगता है।
0: अच्छा तो मुझे एक बात बताओ भुवना, तुम्हारे स्कूल की सबसे अच्छी चीज क्या है?
1: अच्छी चीज मतलब हमारी क्लास।
0: तुम्हारी क्लास?
1: हाँ।
0: अच्छा मतलब और क्लास के टीचर्स भी बहुत अच्छे होंगे फिर तो।
1: हाँ।
0: तुम्हारी फेवरेट टीचर कौन है?
1: मेरी साइंस टीचर।
0: और वो तुम्हारी फेवरेट क्यों है?
1: क्योंकि वो इतनी अच्छी से समझाती है और हमारे साथ जोक्स बोलती है, एंजॉय करती है, सब कुछ करती है, जैसे हमारी बेस्ट फ्रेंड हो।
0: अरे वाह, मतलब पढ़ाई के साथ साथ मस्ती भी करती है और एंजॉय भी करती है, इसीलिए बच्चों की वो फेवरेट टीचर है।
1: हाँ।
0: अरे वाह। और सैंडी तुम्हारी फेवरेट टीचर कौन है अब तक?
2: अब तक तो फिफ्थ तक एक मैम थी, मंजू मैम, जो हमें इंग्लिश पढ़ाती थी।
0: और वो तुम्हारी फेवरेट क्यों थी?
2: क्योंकि वो बहुत अच्छा पढ़ाती थी और मस्ती मजाक स्टोरी सुनाती थी हमें।
0: स्टोरीज भी सुनाती थी। हाँ। और बच्चों को तो स्टोरी सुनना बहुत अच्छा लगता है ना? तो क्या कभी उनसे डांट पड़ी है?
2: मार भी खाई है मैंने।
0: मार भी खाई है? क्यों?
2: क्योंकि मेरी इंग्लिश वीक है ना।
0: अच्छा मंजू मैम इंग्लिश पढ़ाती थी।
2: हाँ।
0: क्यों, आप इंग्लिश का होमवर्क नहीं करते थे क्या?
2: करता था पर उतना नहीं जितना करना चाहिए,
3: हमेशा गलतियाँ।
0: हमेशा गलतियाँ। और पंकज की फेवरेट टीचर कौन है?
3: एक्चुअली मेरी फेवरेट टीचर कोई नहीं है।
0: फेवरेट टीचर कोई नहीं है? इतने साल स्कूल गए और एक भी फेवरेट टीचर नहीं है?
3: सब फेवरेट है,
0: मतलब सारे टीचर्स अच्छे होते हैं।
3: हाँ।
0: क्योंकि हमें हर टीचर से कुछ ना कुछ सीखने को तो मिलता ही है।
2: हाँ दीदी।
0: कम ज्यादा या सब्जेक्ट की नॉलेज तो हमें वही दे पाते हैं, है कि नहीं?
3: हाँ दीदी।
0: ठीक है ये तो हुई टीचर्स की बात, अब मुझे बताओ तुम लोग के फेवरेट सब्जेक्ट कौन से हैं स्कूल में?
2: मेरे अकाउंट।
0: अच्छा सैंडी को तो अकाउंट्स पसंद है।
3: और मुझे बायो पसंद है।
0: बायो पसंद है। और भुवना को?
1: सोशल।
0: सोशल साइंस। अच्छा सैंडी तुम्हें अकाउंट्स क्यों पसंद है?
2: इजी लगता मुझे अकाउंट ऐसे,
0: मतलब तुम्हें कैलकुलेशन अच्छे लगते हैं। और सबसे बोरिंग सब्जेक्ट कौन सा लगता है?
2: बीएसटी।
0: बीएसटी?
2: हाँ बिजनेस स्टडी।
0: बिजनेस स्टडीज क्यों, उसमें बहुत थ्योरी होती है?
2: हाँ सारे टॉपिक जैसे, तो बोरिंग बोरिंग लगता।
0: पर सबसे मजा आता है कैलकुलेशन करने में सैंडी में।
2: हाँ।
0: तो ठीक है चलो अब कोई भी कैलकुलेशन करनी होगी किसी को तो हम किसकी हेल्प लेंगे? सैंडी।
3: सैंडी जी।
0: ठीक है। और पंकज तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है?
3: मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है बायो।
0: बायो? बायो में क्या अच्छा लगता है?
3: बायो में मुझे सब कुछ अच्छा लगता है।
0: सब कुछ
3: मुझे बायो पढ़ना बहुत पसंद है।
0: क्या उसमें डायग्राम्स होते हैं या फिर ह्यूमन बॉडी के बारे में या फिर और क्या ऐसी चीजें तुम्हें अच्छी लगती है बायो में?
3: बायो में तो सब कुछ होता है, प्लांट्स के बारे में, ह्यूमन बॉडी के बारे में, तो सारी चीजें पसंद है मुझे।
0: मतलब तुम्हें उनके बारे में और जानकारी इकट्ठा करना अच्छा लगता है?
3: मुझे जीवों के बारे में जानना बहुत पसंद है। किसी
0: जीवों के बारे में? अच्छा मतलब उनके जो ऑर्गन्स होते हैं वो कैसे काम करते हैं, ये सब तुम्हें जानना बहुत अच्छा लगता है।
3: जी दीदी।
0: और भुवना तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है?
1: सोशल साइंस।
0: वो सब्जेक्ट तुम्हें क्यों अच्छा लगता है?
1: क्योंकि वो बहुत इंटरेस्टिंग है।
0: बहुत इंटरेस्टिंग है, उसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है हमें भी तो बताओ।
1: वो हिस्ट्री, जब हम हिस्ट्री में जाते हैं हम कहीं खो जाते हैं।
0: अच्छा हिस्ट्री पढ़ना आपको बहुत अच्छा लगता है?
1: और सिविक्स भी।
0: और सिविक्स भी, मतलब जानकारियाँ मिलती है कि हमारे देश में और दुनिया में पहले क्या क्या हुआ है, तो वो सब जानकारियाँ इकट्ठा करना आपको बहुत अच्छा लगता है।
1: हाँ। हमारा प्रेजेंट स्टेट कैसा है, हमारा पास्ट

0: स्टेट कैसा है, और ये मुझे मेरी एम के लिए भी बहुत सहायता करेगी कि मैं एक लॉयर बनना चाहती हूँ, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है।
1: जब हम छोटे से ही हमारा कोई फेवरेट सब्जेक्ट ऐसा तैयार करें।
2: क्या बात है, भुवना को हिस्ट्री इतनी पसंद है कि वो उसमें खो जाती है, और हम जब पढ़ते थे तो सो जाते थे।
1: हिस्ट्री पढ़ते हुए सो जाते
3: थे? मार भी खाई है इसके लिए।
1: अच्छा, क्यों, क्या हुआ था संडे?
3: क्योंकि हम क्लास में बैठे थे, मैं पंकज पास में, सर हमें पढ़ा रहे थे, सो साइंस हिस्ट्री था। पंकज सो गया बुक्स रख के, मुंडी नीचे करके सो गया, और सर पढ़ा रहे हैं। सर ने क्वेश्चन पूछा तो मुझे लगा मुझसे पूछा, तो मैं खड़ा के आंसर दे रहा हूँ। उन्होंने बोला नहीं, तेरे पास वाले को खड़ा कर। तो पंकज तो सो रहा है, फिर सर ने आके एक थप्पड़ मारा पंकज का।
1: तो मतलब पंकज को हिस्ट्री इतनी बोरिंग लगती थी कि उसको नींद आ जाती थी?
2: हाँ दीदी, मुझे बोरिंग।
1: आपको भी बोरिंग लगती थी?
2: पर मुझे जगना पड़ता था इसके लिए।
1: अच्छा, अरे वाह, मतलब दोस्ती के लिए पढ़ाई।
0: मुझे तो ज्योग्राफी में सोना था।
1: क्यों, ज्योग्राफी में नींद क्यों आ
0: रही? ना बोरिंग दीदी, की ये नेचर वो सब मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं है, और मेरी सोशल टीचर इतनी स्लो समझाती है ना, किसी को भी ऐसा लगता है रात हो गई चलो सोते हैं, दादी माँ की कहानियाँ सॉन्ग ऐसे सुनाती है क्लास।
1: हाँ, क्योंकि हम लोग का एक एक इंटरेस्ट होता है, और जो टॉपिक हमें अच्छा लगता है वो पढ़ने में तो मजा आता है, पर स्कूल में तो हमें सब कुछ पढ़ना पड़ता है।
3: हाँ दीदी,
1: है ना, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट तो सब में जगाना चाहिए।
0: हाँ दीदी,
1: ताकि हम एग्जाम्स में अच्छे नंबर से पास हो जाएं, और बाद में जो सब्जेक्ट हमें अच्छा लगता है उसे परस्यू करें।
3: हाँ दीदी,
1: है ना।
0: हाँ।
1: अच्छा मुझे ये बताओ, स्कूल में सिर्फ पढ़ाई होती है या और कुछ भी होता है?
0: स्पोर्ट्स
1: और
2: मस्तियाँ
1: और कल्चरल एक्टिविटीज।
0: हाँ, एनुअल डे,
1: स्पोर्ट्स डे, इतनी सारी चीजें होती है ना स्कूल में।
2: पिकनिक भी होती है दीदी? भी होती है।
1: पिकनिक और मस्ती तो सबको याद आती है, पहले मुझे ये बताओ स्पोर्ट्स कौन कौन खेलता है यहाँ पे?
0: मैं
2: भी।
1: सब लोग खेलते हैं? भुवना तुम कौन सा गेम खेलती हो?
0: मैं बास्केटबॉल खेलती हूँ।
1: बास्केटबॉल, अच्छा आपको बास्केटबॉल खेलना अच्छा लगता है?
0: हाँ।
1: अरे वाह, और सैंडी?
3: क्रिकेट।
1: क्रिकेट, तो मतलब तुम स्कूल की क्रिकेट टीम में हो क्या?
3: ऐसे गए नहीं कभी, पर खेले हुए।
1: खेले हो, अरे वाह,
3: हमसे अच्छे से खिलाड़ी है स्कूल में।
1: अच्छे अच्छे खिलाड़ी तो होते हैं, लेकिन स्पोर्ट्स अपने में एक अच्छी एक्सरसाइज भी है, और उसमें मजा भी तो आता है।
3: हाँ।
1: और पंकज?
2: मुझे भी क्रिकेट पसंद है।
1: और भुवना को कोई और गेम भी अच्छा लगता है क्या?
0: मैं खो खो खेलती हूँ, उसमें मुझे गोल्ड मेडल मिला।
1: गोल्ड मेडल, आपके स्कूल में कॉम्पिटिशन हुआ था या नहीं?
0: हाँ।
1: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, मतलब भुवना बहुत तेज भागती है।
2: तेज तो मैं भी भागता हूँ, मुझे रिले रेस में सेकेंड प्राइज मिला।
1: अरे वाह, और सैंडी?
3: मुझे कुछ नहीं मिला। मैं जिमनास्टिक में खेला हुआ।
1: अच्छा। हाँ। उसमें क्या करते हो?
3: उसमें एक्सरसाइज करनी पड़ती है,
2: योगा,
3: हैंड स्टैंड, हाथ पे खड़े होना,
2: गार्ड व्हील,
3: फिर उल्टी डाई, बिगोर्ड।
1: और ये सब आपको कौन सिखाता है?
3: ये टीचर,
2: पीटीआई टीचर।
1: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी चीज है। भुवना, आपने भी ये सब सीखा है क्या?
0: मैंने तो हुला हुप, जो रिंग है, रिंग
2: अपने वेस्ट के ऊपर घुमाना।
0: मैंने रिंग सीखी है, वो मैं घुमाती हूँ एटलीस्ट 2 मिनट्स तक।
1: 2 मिनट्स तक आप उस रिंग को घुमाते हो?
0: हाँ, ये तो मिनिमम है।
1: अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, मतलब आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है।
0: हाँ।
1: इसको तो आपको आगे भी कंटिन्यू करना चाहिए। है ना बच्चों, स्पोर्ट्स के बहुत सारे फायदे भी होते हैं, अगर आप आगे खेलते हैं स्पोर्ट्स में तो फिर उसके थ्रू आपके एडमिशन में भी आपको मदद मिलती है, और वो सर्टिफिकेट्स आगे भी काम में आते हैं, इसलिए हमें स्कूल में पढ़ाई के साथ खेलना भी चाहिए।
0: हाँ दीदी।
1: अच्छा ये बताओ मुझे, आप लोगों के क्लासमेट्स और फ्रेंड्स के बारे में कुछ बताओ।
3: मेरी क्लास में एक फ्रेंड है नितेश मेरा, जो मेरे साथ बैठता है, अच्छा फ्रेंड है, जो हमेशा मेरे साथ देता है, हमेशा मेरे साथ रहता है। क्लास में हम दोनों साथ में पढ़ते हैं, साथ में मस्ती करते हैं
1: क्लास में। अच्छा एक बात बताओ, कभी कुछ ऐसा हुआ जब आपकी पूरी क्लास में इकट्ठा होकर साथ में मस्ती की हो?
3: हाँ, हमने होली खेली थी।
1: होली?
3: हाँ, हमारे स्कूल में से होली अलाउ नहीं है खेलने का, पर हमारी क्लास कॉमर्स क्लास में शुरुआत तो मैंने करी थी, एंड फिर पूरी क्लास ने करी, उसके लिए मुझे पनिश भी किया गया था मैम ने।
1: पनिशमेंट मिला था? क्या पनिशमेंट मिला था सैंडी को?
3: जो हम लोगों ने कचरा करा था उसमें मुझे झाड़ू निकालना पड़ा था,
1: मतलब झाड़ू से पूरी सफाई की।
3: हाँ, सफाई करनी पड़ी मुझे।
1: बात तो सही, जब गंदा किया है तो साफ तो करना पड़ेगा।
3: पर मैंने ज्यादा नहीं खेला था, थोड़ा सा ही, बस एक को लगाया था।
2: शुरुआत तो तुमने की?
3: शुरुआत तो मैंने कर

0: और पंकज, तुम्हें ऐसा कुछ याद है?
1: हाँ।
0: क्या?
1: एक बार हमारे क्लास में टीचर्स नहीं थे तो मैं और मेरे सारे क्लासमेट्स क्लास में मस्तियाँ कर रहे थे, और हमारे स्कूल में फोन अलाउ नहीं था, लेकिन हम फोन लेके जाते थे और क्लास में गाने सुनते थे। तो गाने सुन रहे थे और प्लास्टिक की बॉल से कैच कैच खेल रहे थे। इतने में हमारे एक टीचर हैं, बायो के टीचर, वो क्लास में एंटर कर गए और किसी ने ध्यान नहीं दिया तो सब अपनी जगह पे बैठ के भाग के और बॉल क्लास में छोड़ गए। मैंने देखा कि बॉल अभी बाहर पड़ी है और सर अभी एंटर ही करने वाले थे, जैसे ही मैंने बॉल उठा के अपने पास रख लिया। लेकिन मैं जब बैठने गया अपनी प्लेस पे तो सर ने मुझे देख लिया जाते हुए, तो उन्हें लगा कि मैं क्लास में मस्तियां कर रहा था और उन्होंने बॉल की आवाज़ सुन ली थी बाहर से। तो वो मेरे पास आया और कहा कि तुम बॉल से खेल रहे थे? मैंने कहा नहीं। तो उन्होंने कहा चलो सब चेकिंग करवाओ अपनी बैग। तो इतने में मैंने कह दिया हाँ मैं ही खेल रहा था बॉल से। तो मेरे सारे दूसरे फ्रेंड्स तो बच गए लेकिन मैं फंस गया, और एक लड़का और था जो फोन में गाने चला रहा था, उसने गाना बंद नहीं किया था तो उसका फोन पकड़ लिया था सर ने।
0: क्योंकि कभी कभी जब टीचर्स अचानक से आते हैं तो हम डर जाते हैं।
2: होली से याद आया दीदी कि जब मैं होली होती है ना, जब मैं बस में चुपचाप बैठ जाती हूँ, कुछ भी नहीं करती हूँ, एक लड़का ने स्टार्ट किया दीदी इस होली पे, फुल बॉटल टू बॉटल पानी मेरे मुंह पर फेंक दिया। इतना बुरा लगा, मैं उनको जाकर क्या करूँ दीदी, और सारे शुरू हो गए, यहाँ पानी वहाँ पानी, फिर सीट पे भी पानी, और मेरे साइड जो बैठ रहा था ना वो भी पानी। इतना पानी यहाँ देकर मुझे ना इरिटेशन आ गया, तो मैं नेक्स्ट डे स्कूल भी नहीं गई। इतना बुरा लगा मुझे, तो छोड़ दो ये तो एक, और सारे जगह पानी पानी, इतना दीदी मैं गीला गीला कर गई। मेरी मम्मी पूछ रही थी तू क्या नहा के आई, ऐसे पूछ रही, मैं क्या बोलूं दीदी, फुल टोटल बस बस ऐसा हो रहा था, एक समुद्र जैसा बन गई आप। और वो ना कल वो बच्चा बोल रहा होली तो है एंजॉय करो, बस में कोई एंजॉय करता है दीदी, क्या इतना पानी।
0: एक्चुअली स्कूल में इतने सारे बच्चे होते हैं, सबके इंटरेस्ट अलग अलग होते हैं ना।
3: हाँ दीदी।
0: तो किसी को खेलने में मजा आता है, किसी को नहीं आता।
2: दीदी आपने कभी खेला आपके बचपन में?
0: मैंने तो बहुत होली खेली है।
3: आपको होली पसंद है दीदी?
0: हाँ मुझे होली बहुत पसंद है।
3: मुझे भी।
0: स्कूल में तो हमें परमिशन नहीं थी होली खेलने की उस टाइम।
2: दीदी आप सोच रहे थे हमारे स्कूल में परमिशन थी क्या? किसी भी स्कूल में परमिशन नहीं होती दीदी, ऐसे ही खेलते स्टूडेंट्स को।
0: हाँ मुझे भी याद है, एक बार हमारे टेंथ का बोर्ड का एग्जाम था और हम लोग दूर थोड़ा सा जाते थे, बस को थोड़ा सा दूर जाना पड़ता था बोर्ड के एग्जाम के लिए, तो वहाँ से लौटते समय हमारी बस में होली शुरू हुई थी। और फिर एक गर्ल्स की बस थी एक बॉयज की बस थी, दोनों बसेस में जो होली शुरू हुई थी कि 15 किलोमीटर तक वो होली चलती रही थी।
3: मजा आ गया फिर तो।
0: फेस्टिवल्स में भी स्कूल में मजा आता है ना?
2: हाँ,
0: और कोई ना कोई प्रोग्राम भी तुम लोग के स्कूल में जरूर होते होंगे?
2: हमारे में आर्ट के प्रोग्राम, साइंस फेयर होते हैं। मैंने एक बार साइंस फेयर में पार्ट ली तो मैं सिलेक्ट हो गई। मैंने एक सर्क्यूट बनाई जिसमें एक हट होती है, और मैंने एक सर्क्यूट बनाई उसमें एक बच्चा रहता है लेकिन उसको लाइट नहीं है। मैंने एक फॉर्मूला यूज करके सर्क्यूट बनाई ताकि उसको लाइट आए अंदर।
0: अच्छा आपने बनाया?
2: हाँ।
0: अरे वाह, तो इसके लिए तो आपके टीचर्स ने आपको बहुत अप्रिशिएट किया होगा।
2: हाँ, जो भी वहाँ आता है हमको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तो हमारे चीफ गेस्ट से एक आर्ट एंड कल्चरल प्रोग्राम के कुछ हेड थे, तो वो आए तो मेरे मुझको बोला वेरी गुड, मुझे बहुत वो कॉम्प्लीमेंट बहुत खुश लगी। साइंस फेयर
0: ये तो एक अच्छी चीज है, क्योंकि आपको अगर साइंस पसंद है, कोई भी सब्जेक्ट पसंद है, तो उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जब हम करते हैं तो कुछ नया नया निकल के आता है।
3: हाँ,
0: है ना। और यहाँ पे डांस किसको पसंद है, डांस या सिंगिंग?
2: मुझे
3: मुझे जी।
0: अरे वाह,
3: आता नहीं डांस।
0: कोई नहीं, पसंद तो है ना।
3: हाँ बहुत।
0: और डांस एंजॉय करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है। रूपना ने डांस सीखा है क्या?
2: मैं डांस नहीं सीखती हूँ, लेकिन मैंने एक प्रोग्राम की शिव तांडव की मैंने।
0: अच्छा आपने शिव तांडव किया?
2: हाँ।
0: कब?
2: हमारे स्कूल पे अम्मा आई थी जो स्कूल का हेड है, तो उन्होंने ये स्कूल बिल्ड किया, और उन्होंने जब आते हैं उनको हगिंग सेंट बुलाते हैं, तो सारे लोग हग करते हैं और चलते ऐसा बोलते हैं कि जब हमको हग करते हैं ना कुछ अच्छा होता है हमारे जीवन में, ऐसा बिलीफ है। तो वहाँ जो लोग बैठते हैं ना उनको एंटरटेनमेंट होना चाहिए, तो हम सब लोग अमृता स्टूडेंट्स क्या क्या करते हैं ना, बहुत सारे प्रोग्राम्स बनाते, स्किट, ऐसे मैंने स्किट भी पार्ट ली, स्किट में, और मैंने डांस की।
0: शिव तांडव किया आपने, तो आपको बहुत अच्छा लगा होगा।
2: हाँ।
0: और लोगों ने भी पसंद किया होगा।
2: हाँ।
0: क्योंकि शिव तांडव करना तो बहुत डिफिकल्ट है।
2: हाँ,
0: है ना।

0: मैंने ना एक वीक टू वीक प्रैक्टिस की बैठ के.
1: उसके एक्सप्रेशंस कैसे होते हैं पूर्णा?
0: लाइक तब ना शिव की थर्ड आई ओपन होता है, तो बहुत एंगर ऐसा होना चाहिए
1: आपके डांस में, वो दिखना चाहिए और एक्सप्रेशन हाँ. में भी है ना. अरे वाह. और सैंडी आपने कुछ किया है या कभी स्कूल में ऐसा परफॉर्मेंस?
2: नहीं, मैंने कभी नहीं किया.
1: सिंगिंग, डांसिंग, स्किट?
2: मुझे इंटरेस्ट नहीं.
1: इंटरेस्ट नहीं है. हीरो किसको बनना है यहाँ पे?
2: बनना तो मुझे भी है.
1: फिर डांसिंग और स्किट?
2: हीरो तो सिर्फ पंकज ही बनेगा. नहीं, मैं बनूंगा.
1: अच्छा, पंकज ने तो जरूर पार्टिसिपेट किया होगा. अभी हीरो बनना है पंकज को तो कुछ तो किया होगा. पंकज बताओ.
3: हाँ, मैंने डांस में पार्टिसिपेट किया था.
1: अच्छा, कब?
3: शांति उनमें ही किया था.
0: ग्रुप डांस था भैया?
3: ग्रुप डांस भी था और सोलो भी था.
0: ओ, आपने सोलो भी की?
1: कौन से सॉन्ग पे किया था?
3: ग्रुप डांस किया था बम बम बोले, जो तारे जमीन पे का सॉन्ग है उस पे किया था.
1: ठीक है, कोई नहीं. और बताओ, तुम लोग के स्कूल में और किस किस तरीके के प्रोग्राम होते हैं जिनको तुम सबसे ज्यादा एंजॉय करते हो?
2: रिपब्लिक डे. और
0: मैं स्पोर्ट्स डे को एंजॉय करती हूँ दीदी, क्योंकि सर मुझे हर बार कराटे को सेलेक्ट करते हैं और मैं ब्रिक्स को ब्रेक करती हूँ.
1: अच्छा, आप कराटे में ब्रिक्स को ब्रेक करते हो? कितने ब्रिक्स को ब्रेक करते हो आप?
0: एक साथ दो ब्रिक्स को ब्रेक कर सकती हूँ.
1: अरे वाह.
0: क्योंकि ग्रीन बेल्ट है ना.
1: ग्रीन बेल्ट कराटे
2: अच्छा,
1: में
2: तुम जूडो खेली हुई हो?
1: कराटे.
2: कराटे, हाँ सर, कराटे.
1: वेरी नाइस, ये तो बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है. कराटे, जूडो, ऐसा कुछ तो हम सबको.
0: और पिरामिड्स भी बनाते हैं हम.
1: पिरामिड बनाते हो?
2: तो घूमने से डर के रहना पड़ेगा.
1: ये तो बहुत अच्छी बात है. क्या आपके स्कूल में ये सिखाया जाता है?
0: हाँ.
1: कराटे की क्लास होती है डेली?
0: हाँ होती है, एवरी फ्राइडे होती है.
1: एवरी फ्राइडे? अरे वाह. और पंकज और सैंडी?
2: हाँ दीदी.
1: आप लोगों को क्या अच्छा लगता है इन प्रोग्राम्स में?
2: मुझे, हमें तो क्रिकेट ही बहुत पसंद है.
1: जैसे रिपब्लिक डे का प्रोग्राम होता है या फिर इंडिपेंडेंस डे पे प्रोग्राम होता है, तो उसमें सबसे अच्छा क्या लगता
3: sports
1: है?
3: स्पोर्ट्स डे.
1: स्पोर्ट्स डे अच्छा लगता है?
3: हाँ दीदी,
1: क्योंकि स्पोर्ट्स में हम लोग खेलते हैं गेम्स.
3: हाँ, स्पोर्ट्स में सब कुछ आता, मस्तियाँ करते.
1: अच्छा, लेकिन मैंने सुना सिंगिंग तो यहाँ पे सबको पसंद है.
3: सिंगिंग?
1: तो फिर कभी स्कूल में गाना नहीं गाया?
0: दीदी, मैं स्कूल में खॉयर ग्रुप में हूँ, तो मैं रोज गाना, प्रेयर्स, वो सब नहीं गाती हूँ.
1: अच्छा, आप रोज गाना गाते हो?
0: नहीं, प्रेयर्स होते हैं ना रोज स्कूल को स्टार्ट करने से, नेशनल एंथम में, और मेरी फ्रेंड रोज खॉयर ग्रुप में गाते हैं.
1: अरे वाह. और आप लोग की मॉर्निंग प्रेयर्स में आप लोग कुछ नहीं करते?
2: मैंने, हम पीछे खड़े रहते हैं.
3: मैंने अपनी 4th to 6th क्लास में मैंने प्रेयर्स की है.
1: प्रेयर्स की है? क्योंकि वो प्रेयर्स में जब हम पार्टिसिपेट करते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि नहीं?
2: हाँ,
1: स्टेज पे आके.
2: हाँ,
3: तो मैंने एक बार रिपब्लिक डे पे सिंगिंग भी की थी.
1: अच्छा, उसके बाद बंद क्यों कर दिया तुम लोगों ने?
2: हाँ, नहीं, मुझे
1: कोई तो रीजन होगा, सोच के बताओ.
2: अब अच्छा नहीं लगता, पहले थोड़ा है.
1: अच्छा नहीं लगता या कोई और वजह है?
0: स्टेज फियर
1: कि दोस्त क्या कहेंगे, कुछ गड़बड़ हो गई तो क्या होगा, है ना?
3: हाँ, लेकिन जब छोटे थे तब तो ये सब समझ में नहीं आता था.
1: और जब थोड़े बड़े हो जाते हैं तो ये फियर्स हमारे अंदर आ जाते हैं.
3: हाँ दीदी,
1: लेकिन फियर्स को हटाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है बताओ?
2: नहीं पता, आप बताओ दीदी.
1: भुवना, आप बताओगे?
0: मुझे लगता है एक है सेल्फ कॉन्फिडेंस.
1: फियर्स को फेस करने के लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस तो चाहिए, लेकिन सबसे अच्छा तरीका है जब आप फियर को फेस करने की बस हिम्मत दिखाते हो. ट्राई तो करो, एक बार आप फेस करोगे फिर कॉन्फिडेंस आता जाएगा.
0: नेवर लूज हो.
1: हाँ, और स्कूल तो बच्चों ऐसा टाइम होता है जब आपको ये सब मौके मिलते हैं.
3: हाँ दीदी.
2: हाँ दीदी.
1: और बाद में जब हम बड़े हो जाते हैं तो ये सब मौके हमें उतना नहीं मिल पाते, है ना? तो हाँ, इसीलिए अगर आपके अंदर कोई फियर हो, दोस्त क्या बोलेंगे, टीचर्स क्या बोलेंगे, गलती हो गई तो ये सब भूल के हमें ट्राई करना चाहिए, ताकि अपनी गलतियों से हम सीखें और हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाए.
2: ओके दीदी.
1: ओके
0: ओके.
1: और
0: दीदी, आपको पता है मैं स्कूल में टॉप भगवद गीता सिंगर हूँ.
1: अच्छा, आप भगवद गीता गाते हो?
0: हाँ.
1: पूरी?
0: पूरी नहीं, थोड़ी थोड़ी चैप्टर्स बताएंगे.
1: तो आप हमें कुछ गा के सुनाओगे?
0: मैं एक श्लोका सुनाऊंगी 12th चैप्टर की.

0: अरे वाह, बोलना बहुत ही अच्छा था, इसकी जो जोरदार ताली हो जानी चाहिए, है ना?
1: धन्यवाद।
0: तो मतलब स्कूल्स में हमारे ये सब टैलेंट भी बहुत विकसित होते हैं, है कि नहीं?
2: हाँ दीदी।
0: अच्छा मुझे ये बताओ कि स्कूल में क्या कोई ऐसी चीज है जिससे आपको डर लगता है?
2: हमारे हेडमास्टर।
0: सैंडी को हेडमास्टर से डर लगता है, और भुवना को?
1: मुझे तो मेरी इंग्लिश टीचर से।
0: इंग्लिश टीचर से डर लगता है?
1: हाँ।
0: क्यों?
1: डांटती रहती, इतनी बुरी मूढ़े मूढ़ होती है दीदी। जब हमको रॉन्ग काउंटिंग की टेस्ट कॉपी में हम जाते, वो अच्छी मूड में है तो ठीक है मार्क्स डालती है, नहीं तो नहीं डालती है। और वो इतनी डांटती दीदी, ऐसी डांटती है, आर यू बालू, आर यू चिंपैंजी, ऐसा लगता है मुझे डर लगता है उनको देख कर ही। क्लास में एंटर होते ही इतना बैड मूड देख के सबको ऐसा लगता है कि आज का दिन गया यार। जब भी ना हमको मैम एब्सेंट होती है ना, इतनी खुशी होती है कि हम बर्थडे की मस्ती इतना नहीं कर सकते।
3: आर यू बालू?
0: एक्चुअली टीचर्स के पास, टीचर्स तो बड़े होते हैं तो उनके पास बहुत सारे अपने भी टेंशन होते हैं।
1: हाँ,
0: है ना? और जब हम बच्चे होते हैं तो हम उन टेंशन से बहुत दूर होते हैं। तो इसलिए कभी कभी टीचर अगर बैड मूड में हो या थोड़ा स्ट्रिक्ट हो तो हमको क्या करना चाहिए? पेशेंस रखना चाहिए, है ना? क्योंकि टीचर है ना।
1: हाँ।
0: तो बस इसीलिए जैसे हमारे फ्रेंड्स अपने होते हैं वैसे हमारे टीचर्स भी अपने होते हैं, है ना? तो उनका रिस्पेक्ट और रिगार्ड हमेशा बनाए रखना चाहिए।
1: हाँ।
0: अच्छा ये बताओ, स्कूल में तुम लोग को सबसे ज्यादा, क्योंकि स्कूल लाइफ जीवन की सबसे अच्छी लाइफ होती है, तो स्कूल में तुम्हें सबसे ज्यादा याद क्या आता है? कोई ऐसी मेमोरीज या कोई ऐसी बातें हैं जो तुम बहुत मिस करते हो?
2: हमारे क्लासरूम।
0: क्लासरूम। और पंकज?
3: अपने फ्रेंड्स को।
0: फ्रेंड्स को बहुत मिस करते हो?
3: हाँ दीदी।
0: क्योंकि जब स्कूल खत्म हो जाता है तो याद तो आते
2: हैं दीदी,
0: है ना? उसमें सबसे ज्यादा याद क्या आता है? कोई ऐसा दिन हो या कोई ऐसी बात जो आपको मेमोरीज के रूप में अब याद आती हो?
1: मुझे सबसे अच्छा मेमोरी तो चिल्ड्रंस डे, जब हम स्कूल में इतने अच्छे से मनाते हैं। क्या की ना, हमने इस बार 3 डेज चिल्ड्रंस डे बनाई, मेरी प्रिंसिपल ने ऐसा बनाया कि हम 3 डेज एंजॉय एंजॉय स्कूल के। तो हमने इतना खेला दीदी, मॉर्निंग टू इवनिंग इतना खेलते थे, और कलर ड्रेस पहन के आ सकते थे, और बहुत सारे गेस्ट होते थे वो आते थे, और बहुत सारे कॉम्पिटिशन, इतना मजा आता था।
0: 3 दिन चिल्ड्रंस डे मनाया? अरे वाह, मतलब फुल मस्ती।
1: हाँ दीदी।
0: और सैंडी आपको कुछ याद है ऐसे?
2: हाँ, मुझे भी चिल्ड्रन डे अच्छा लगता है क्योंकि उस दिन मेरा बर्थडे आता है। उस दिन
0: चिल्ड्रन डे के दिन आपका बर्थडे होता है?
2: हाँ।
0: अच्छा, अरे वाह, मतलब डबल मस्ती,
3: डबल मजा,
2: डबल मजा।
0: और उस दिन कलर ड्रेस भी अलाउड होती है?
2: अलाउ होती है, एक बार मैं पहन के जाता हूँ। स्कूल में रूल्स तो फॉलो करने पड़ते हैं ना?
0: नहीं बिल्कुल, रूल्स तो फॉलो करने भी चाहिए। और पंकज, आपकी कोई ऐसी मेमोरी है, खास मेमोरी जो आपको अब स्कूल के बाद याद आती हो?
3: हमारे क्लासरूम में तो हर दिन मस्ती होती थी, इसलिए हर दिन मुझे याद है। सारे दिन ऐसे हैं जो यादगार हैं।
0: एग्जाम टाइम किसको याद आता है?
1: मुझे मुझे एग्जाम से
3: अभी एग्जाम खत्म हो गया और रिजल्ट नहीं आया, इसलिए अभी तो हर दिन एग्जाम टाइम याद आता है।
1: मुझे एग्जाम्स बहुत पसंद है दीदी।
2: अरे
1: सबसे फेवरेट तो मेरी एग्जाम ही है, तो कितनी अच्छे से लिख सकते हैं।
2: तुम इसी दुनिया के हो ना?
1: हाँ।
0: एग्जाम्स क्यों अच्छे लगते हैं भुवना तुम्हें?
1: क्योंकि सारे फ्रेंड्स हम बहुत कुछ सीखते हैं, जो हम ज्ञान वो पेपर में लगाते हैं और इतना लिख सकते हैं, और बहुत कुछ सीखते हैं दीदी एग्जाम पे हम, और इतना मजा आता है। मुझे एग्जाम तो फेवरेट है सच में, बोली
3: आस पास के पूछ के लिखता हूँ मैं।
1: नहीं सच में मैं कॉपी करना इतना पसंद नहीं।
0: बिल्कुल नहीं ना?
1: बिल्कुल नहीं।
3: थोड़ा बहुत तो होगा।
1: नहीं मैं कभी कॉपी नहीं करती।
2: अच्छा, मैं तो पूरी कॉपी,
3: हमारी तो स्टार्टिंग ही कॉपी करने से हुई।
0: अच्छा एग्जाम टाइम में डर लगता है क्या?
2: डर तो लगता है,
1: एक्साइटमेंट होती है।
3: मुझे भी।
0: अच्छा मतलब पढ़ाई लास्ट मोमेंट शुरू होती है लग रहा है।
2: हाँ, हम लोग एक लास्ट मोमेंट होती है।
0: अच्छा एग्जाम टाइम में 3 घंटे तो मिलते हैं सबको, तो एग्जाम पूरा हो जाता है ना?
3: हाँ, पूरा हो जाता है।
0: तो फिर क्यों डर लगता है?
2: कंफ्यूजन रहता, क्वेश्चन गलत है कि सही है,
0: क्वेश्चन गलत है कि सही है,
1: पेपर,
2: सॉरी आंसर गलत है।
1: पेपर मिलने से पहले पूरा डर दीदी, पेपर मिलेगा तो ना हाँ किया, इतना इजी पेपर ऐसा लगता है।
3: और जब हार्ड पेपर आ जाए तब
1: तो क्या हमको अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि

0: पे टाइम लगाना है ताकि हम समझ सके और फिर पेपर लिखना इजी।
1: अच्छा, तुम्हारी लाइफ में कभी ऐसा एग्जाम था जो तुम्हें टफ लगा?
0: लास्ट ईयर की मैथ्स एग्जाम।
1: तब कैसा फील हुआ था?
0: थोड़ा लाइक आई, मुझे सब कुछ नहीं आया, थोड़ी मैं छोड़ दी, फिर भी अच्छा लगा।
2: अच्छा, मुझे ये बताओ, तुम लोग को अगर अपना स्कूल अपने हिसाब से चलाने के लिए बोला जाए, लेकिन उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स भी हो जिनका फ्यूचर भी तुम लोग को देखना हो, तुम लोगों पे डिपेंड करता हो, तो वो स्कूल कैसा होगा?
1: मंडे टू मंडे स्कूल, बाकी छुट्टी।
3: बाकी दिन छुट्टी?
2: बाकी दिन छुट्टी, मतलब सिर्फ दो दिन स्कूल और बाकी दिन छुट्टी। और उसमें पढ़ाई क्या क्या करवाओगे? उनका फ्यूचर भी आप लोगों पे ही डिपेंड करता है, ये भी याद रखना साथ में।
1: ओके, तो फिर कुछ और सोचना पड़ेगा।
2: क्या करोगे बताओ? क्या कोई नया तरीका है तुम लोगों के पास स्कूल में पढ़ाई करवाने का, या फिर कोई ऐसी चीज है जो तुम्हें लगता है इससे और अच्छे से हम पढ़ सकते हैं?
0: हाँ दीदी।
2: क्या?
0: जब हम स्पोर्ट्स करते हैं ना, हमारा माइंड फ्रेश हो जाता है, तभी हम और पढ़ाई करेंगे ना, वो अच्छे से हम समझ जाएंगे। ऐसे तरीका, हाफ मस्ती हाफ पढ़ाई, ऐसा कुछ।
2: मतलब अगर हम थोड़ा सा स्पोर्ट्स खेलें और फिर पढ़ाई करें तो और अच्छी होगी पढ़ाई, ये भूमना कहना चाहती है। और पंकज,
1: हमें हर क्लास के बाद एक एंटरटेनिंग पीरियड रखना चाहिए जिसमें बच्चे वापस एंटरटेन हुए और वापस उनका माइंड फ्रेश हो जाए और वो वापस अच्छे से पढ़ाई में ध्यान दे सके।
0: ऐसा हुआ तो 3:30 तक हम टाइमिंग भी बढ़ाना चाहिए ये सब का।
2: फिर तो हमारा स्कूल बहुत लंबा हो जाएगा अगर हर क्लास के बाद एक एंटरटेनमेंट होगा।
0: तो 24 आवर स्कूल पे ही रहेंगे हम।
1: 20 मिनट के लिए तो होने चाहिए।
2: हाँ,
3: टीचर्स ऐसे होने जो फ्रेंडली, जो मिलजुल के रहें। जो कोई कोई टीचर इतने स्ट्रिक होते हैं कि उनका फिर अटेंड करना डर लगता है, ऐसे टीचर होने चाहिए जो हमेशा हमारी बात को समझे, मिलजुल के रहें।
2: तो आज हमें स्कूल के बारे में बातें करके बहुत सारा मजा आया है ना बच्चों?
4: हाँ दीदी।
2: तो अगली बार मिलेंगे और फिर खूब सारी बातें करेंगे नए टॉपिक पर। तब तक के लिए बाय बाय।
4: बाय बाय।
5: स्कूल है, पढ़ाई है, फिर भी इतनी मस्ती। एग्जाम है, उसका फियर है, फिर भी इतनी मस्ती।
6: इसलिए तो हम स्कूल जाते हैं
1: मस्ती करने,
7: एंजॉय करने
6: और बहुत कुछ सीखने के लिए। तो चलो दोस्तों, छुट्टियों के बाद
4: स्कूल।

तो अभी हमने सुना बच्चों की दुनिया ये कार्यक्रम। मिलते हैं अगली कड़ी में, तब तक के लिए सुनते रहो रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुश रहो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: जैसा अन्न वैसा मन, तो तामसिक भोजन का पर्यावरण पे तो असर हो रहा है, लेकिन तामसिक भोजन का हमारे मन पर क्या असर हो रहा है? अगर उस भोजन में नफरत की, क्रोध की, दर्द की ऊर्जा है, तो हमारी मन की स्थिति भी वही हो जाएगी उसको ग्रहण करने के बाद। तो अगर आज हम सिर्फ दो प्रतिज्ञा ले, एक हमारा अन्न सात्विक हो और दूसरा हम सिर्फ आज एक संस्कार का त्याग करें, वो है क्रोध, तो सही मायने में हमने आज इस यज्ञ में आहुति डालकर विश्व में शांति लाने की सेवा की, वो सच्ची सेवा है।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: जब तक हम चाहिए चाहिए करते हैं तब तक हम औरों पे डिपेंडेंट हैं। अब हमें समझ में आ गया कि हम खुद भरपूर हैं, हमें उसका सिर्फ ध्यान रखना है। जैसे ये कप है, अब अगर मुझे लगे कि ये जो मेरा कप है ये खाली है, तो आई विल कीप टेलिंग यू कि इस कप को भरिए,

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: उन्होंने धोखा दिया, उन्होंने मुझे नीचे खींचा, उनकी वजह से ऑफिस में मेरा नाम खराब हो गया, उनकी वजह से पूरे सर्कल में मेरा नाम खराब हो गया। वो उन्होंने किया, मैंने उनके प्रति कितना गुस्सा, कितनी नफरत, कितना हर्ट, कितनी इरिटेशन क्रिएट की, या मैंने क्षमा कर दिया, ये चॉइस किसके पास है। अगर कोई हमारे साथ गलत करे और बड़ा वाला गलत करे, क्या उनके लिए अच्छा सोचना पॉसिबल है?
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

मेरी पीढ़ी देखो तमा सुहाना कैसा यारो यारो नीलाम करो सुस्ती हमसे उधार ले लो मस्ती हर हस्ती का नाम तंदरोती यारो नीलाम करो सुस्ती हमसे उधार ले लो मस्ती हर हस्ती का नाम तंदरोती यारो नीलाम करो सुस्ती आँख ना चुराओ ना चुराओ रूठ कर न जाओ आँख ना चुराओ रूठ कर न जाओ ए न जाओ आँख ना चुराओ आँख ना चुराओ रूठ कर न

0: रेडिओ पुणेरी आवाज 107.8 FM. आनंदी रहा, आनंद लुटा.
1: यहाँ के हम सिकंदर. पात्र परिचय: आदित्य प्रकाश, यश, पंकज, वेदांत, सृष्टि, सैंडी, आदित्य. लेखिका: सुधा पुरी.
2: ये कितना अच्छा हो गया ना कि हमारे स्कूल में ये नया तरणताल खुल गया है.
3: मजा ही आ गया. मैंने तो तैराकी सीख भी ली है.
4: मुझे तो पहले से ही आती थी, बस इस तरणताल का इंतजार था.
3: वो देखो, उधर दीदी भी आई हुई है.
5: वो तो क्लास लेती है ना, सिखा रही है तैरना बच्चों को. बहुत अच्छा सिखाती है.
6: ये तुम लोग यहाँ तैरने आए हो या बातें करने? चलो चलो, कोई पानी में यूं ही खड़ा ना दिखाई दे.
2: दीदी, मैं तो तैर रहा था, इन्होंने जबरदस्ती रोक लिया.
3: अच्छा, कितने भोले बनते हो.
4: भोले या चालाक.
6: ये आजकल गर्मियों की छुट्टियों के यही तो मजे हैं. नई नई चीजें सीख लो. कोई गिटार सीख रहा है तो कोई हारमोनियम.
4: मैं तो कैलीग्राफी सीख रहा हूँ.
3: मैं भी सुंदर लिखाई या कह लो सजावटी लिखाई की कला सीख रहा हूँ.
5: काश इस धरती पर भी हम अपने कारनामे सुंदरता से लिख पाते.
6: मतलब?
5: दीदी, हम उस दिन बात कर रहे थे ना कि किस प्रकार हम मानव अपनी गतिविधियों के कारण धरती पर विनाश की गाथा लिख रहे हैं.
6: ओहो, तुम तो बड़ी फिलोसोफर बन रही हो.
3: हाँ दीदी, लगता है ये बड़ी होकर कोई पर्यावरण अधिकारी बनेगी.
4: वो तो हम सबको बनना चाहिए, चाहे हम वो नौकरी करें ना करें, पर पर्यावरण का ध्यान तो रखना ही पड़ेगा.
2: अगर मेरा बस चले तो सबसे पहले मैं अपने देश की सभी नदियों को एकदम स्वच्छ बना दूंगा.
3: मैं भी, मैं तो पूरे संसार की नदियों को.
4: और मैं सारे संसार के सागरों को.
5: और मैं सारे महासागरों को.
6: ये तो अच्छी सोच है. तुम्हें पता है, एक समुद्री जहाज दुर्घटनाग्रस्त होता है तो कई दिनों तक पानी पर फैले हुए तेल से हजारों समुद्री जीव नष्ट हो जाते हैं.
5: हाँ दीदी, विज्ञान में पढ़ा था हमने.
7: सिर्फ मछलियाँ ही नहीं, उन पर आश्रित कई पक्षी आहत होते हैं.
8: पूरी की पूरी जल प्राणियों की श्रृंखला ही तीतर बीतर हो जाती है.
6: जानते हो, कई कई वर्ष लग जाते हैं सब ठीक होते होते.
3: पानी दूषित होता है वो अलग.
6: पता भी है, यूनाइटेड नेशंस के अनुमान के अनुसार लगभग 4000 बच्चे हर रोज गंदा पानी पी के मर रहे हैं.
8: पर हम सब जानकर अनजान बनते हैं.
7: हम मानो कब देखेंगे सब.
6: चलो चलो, अभी तो तैराकी करते हैं, उसके बाद इस पर और भी बातें करेंगे. सब रात का खाना जल्दी से खा लेना और मेरे घर आ जाना. मैं तुम्हें अपने कंप्यूटर पर कुछ दिखाऊंगी भी.
9: ओके दीदी.
4: चलो चलो, सब तैरने की रेस लगाते हैं.

0: दीदी भी ना जानकारी का भंडार है।
1: चलो जल्दी जल्दी चलो ना, फिर अंधेरे होने से पहले घर भी पहुंचना है।
2: चलो भाग के चलते हैं, रेस।
3: हाँ हाँ।
4: ओहो आ गए तुम, आओ आओ बैठो।
5: क्या कर रही हो दीदी?
4: अरे मुझे भी तो कई प्रोजेक्ट बनाने हैं अपने कोर्स के लिए, उसी पर लगी हुई हूँ।
6: आप आज सुबह क्या बात बता रहे थे हमें पर्यावरण के बारे में?
4: ये देखो यहाँ ये मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिली है।
2: किसके बारे में?
4: वही प्रदूषण के बारे में। तुम लोग एसिड रेन के बारे में जानते हो?
0: नाम तो बहुत ही खतरनाक लग रहा है।
1: हाँ दीदी, जरा सा एसिड हाथ पर लग जाए तो शरीर में कितनी जलन होती है।
7: और क्या, और अगर पूरी बारिश की एसिड की हो तो, हे भगवान।
4: हाँ मैं भी यही सोच रही थी, ये मैं बताती हूँ कैसे होता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड जैसे प्रदूषक हवा में जब मिक्स होते हैं तो उसके मॉइस्चर के साथ मिलकर वो बदल जाते हैं एसिड रेन में।
7: पर ये सब प्रदूषक आते कहाँ से हैं?
4: फैक्ट्रियों के, वाहनों के धुओं से और कहाँ से?
0: अच्छा, और फिर?
4: फिर धरती पर फिर से गिरते हैं एसिड रेन की तरह।
1: बल्कि तेज हवाएं इस एसिड रेन को प्रदूषण के इलाकों से बहुत दूर भी ले जाती हैं।
2: मतलब कि जैसे प्रदूषण हुआ हो चीन में और असर पड़े अफ्रीका में।
7: हाँ तो इससे तो और भुगतते हैं वन, जिसके साथ पेड़ इस एसिड रेन में मर जाते हैं बेचारे।
4: बिल्कुल ठीक समझा है तुमने। और जब यह बारिश नदियों, तालों, झरनों पर गिरती है तो उनका पानी भी एसिडिक हो जाता है और सब मछलियाँ मर जाती हैं। ऐसे ताल को पता है फिर क्या कहते हैं?
6: क्या?
4: उसे फिर मृत ताल कहते हैं।
5: पर इसका तालों पर ही क्यों, धरती पर भी बुरा असर पड़ता होगा।
4: तो और क्या, धरती पर इसका कम बुरा असर होता है?
1: वो कैसे दीदी?
4: सब तरह के पत्थर, खास करके संगमरमर तो घिस ही जाते हैं।
0: पर दीदी हमारे देश में तो इतनी सुंदर सुंदर इमारतें हैं।
1: कितने ही सुंदर मकबरे,
7: सुंदर ऐतिहासिक इमारतें इस एसिड रेन से तो बहुत खराब हो जाती होंगी।
4: वो तो है ही, ताजमहल का ही हाल देख लो, कितना फीका पड़ता जा रहा है। शुक्र है भारत सरकार ने कुछ रिफाइनरीज पर रोक लगाई है, काफी फर्क पड़ा है उससे।
0: पर दीदी जैसे हर ताले की चाबी होती है, उसी प्रकार से हर समस्या का हल भी तो होता है।
4: वो तो है ही,
1: और ढूंढने निकलोगे तो सब हल प्रकृति में ही मिल जाएंगे।
4: बिल्कुल ठीक।
2: तो आपने तो कितना कुछ पढ़ा है, हमें भी तो कुछ बताओ ना।
4: देखो सबसे पहले तो उतने ही पेड़ काटने चाहिए जितनी कम से कम जरूरत हो।
7: बल्कि दीदी मैं एक बात कहूँ?
4: क्या?
7: लकड़ी के बजाय किसी और पदार्थ का प्रयोग करना चाहिए मकान फर्नीचर आदि बनाने में, जो पर्यावरण को नुकसान भी ना पहुंचाए और आसानी से मिल भी जाता हो।
4: गुड आइडिया।
6: और दीदी मैं तो कहती हूँ यही नहीं, अगर पेड़ काटे भी तो एक के बदले दस दस पेड़ लगाए।
5: और दीदी सिर्फ लगाए ही नहीं उनकी रक्षा भी तो करे, एक नवजात शिशु की तरह उसका लालन पालन, समय पर पानी, समय पर खाद।
0: एक और बात, हमें कूड़े को या सूखी हुई पत्तियों को जलाना नहीं चाहिए, इससे धुआं होगा और प्रदूषण।
4: बिल्कुल ठीक, बल्कि उन्हें जमीन में दबाकर कंपोस्ट बनाना चाहिए।
6: और पानी, हमारी नदियाँ?
0: मैं बताऊँ, फैक्ट्रियों का कूड़ा नदियों में नहीं डालना चाहिए।
1: तो फिर क्या करें उसका?
4: अगर डालना भी हो तो उपचार करके डालना चाहिए। देखा है क्या हाल कर रखा है अपनी पवित्र यमुना का, गंगा मैया का।
7: दीदी मैंने पढ़ा था कि हमारे देश का राष्ट्रीय जल पशु जलीय डॉल्फिन अब विलुप्त होने की कगार पर है।
6: पर दीदी हमारे रीति रिवाज, हमारे कई त्योहार जैसे गणपति विसर्जन, बंगाल में नवरात्रि की पूजा,
4: हर बात का हल निकाला जा सकता है, बस इरादा होना चाहिए।
5: जैसे दीदी गणपति विसर्जन हो या माँ दुर्गा विसर्जन, मूर्तियाँ ऐसे पदार्थ से बनाई जा सकती है जो पानी में सही से घुल जाए।
6: यही नहीं, पूजा के तुरंत बाद पूजा सामग्री बटोर कर अगर उनकी घाट बना ली जाए
4: तो सही मानों में देवी देवताओं का विसर्जन भी होगा और मानव पर उनकी कृपा भी।
0: समय के साथ बदलना तो प्रकृति का पहला नियम है।
4: जो नहीं बदले उनका

0: अश्रय जानते हो ना?
1: हाँ दीदी, आपने बताया था जो पौधे पानी के वेग के आगे झुकते नहीं टूट जाते हैं।
0: धरती माँ जो पूरी मानव जाति का बोझ उठाती है उसे सब माँ कहकर बुलाते हैं। उसके संरक्षण के लिए ये सब कुछ करना तो जरूरी हो गया है अब।
2: आइडिया दीदी, आजकल हम सबको स्कूल से ही कई पर्यावरण से संबंधित प्रोजेक्ट मिले हुए हैं। क्यों ना हम अपनी सोसाइटी में एक प्रदर्शनी लगाएं और सबको बुलाकर धरती पर होने वाले प्रदूषण संबंधित अत्याचारों के बारे में बताएं।
3: हाँ, और अगर एक्स्ट्रा मॉडल या चार्ट बना लेते हैं तो स्कूल खुलने पर इसी तरह की प्रदर्शनी अपने स्कूल में भी लगा सकते हैं।
4: तब तो हमारे साथ और स्टूडेंट्स भी मिल जाएंगे।
5: कुछ के तो माता पिता भी इस काम में दिलचस्पी लेकर हमारी मदद करने को तैयार हो जाएंगे।
1: सोचो हमारा पर्यावरण संरक्षण का संदेश कितने लोगों तक पहुँचेगा।
6: पर फिर भी होगा तो सागर में एक बूंद की तरह ही।
0: मदर टेरेसा कहती थी, मैं जो भी मानव जाति के लिए करती हूँ वह सागर में एक बूंद की तरह है। पर अगर उतना भी न हो तो सागर में एक बूंद की कमी तो आ ही जाएगी।
7: तो चलो अब सोचना कैसा, आज से ही शुरू हो जाएंगे।

0: रेडिओ पुणेरी आवाज 107.8 FM. आनंद रहा, आनंद लुटा.
1: 0102 बोरियत की एरर, नएपन की कमांड रिजेक्टेड. अब हर चीज हर जगह तो नहीं मिलती, कुछ नयापन चाहिए तो सुनिए पुणेरी आवाज 107.8. खुश रहो, खुशियाँ बांटो.

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: हम खुश बैठे हैं, हम प्यार से वो चीज खा रहे हैं जो हमें पसंद है, तो पूरी सिचुएशन तो हमारी एक्चुअली। सी द सिचुएशन इज ऑल अबाउट मी। मैं आराम से इस कुर्सी पे बैठी हूँ, मेरे सामने मेरी फेवरेट मिठाई है, मैं प्यार से खा रही हूँ, एवरीथिंग इज परफेक्ट, हैप्पी हैप्पी। और सामने से कोई आया, किसी ने एक लाइन बोल दी। इस केस में लाइन इतनी बहुत ज्यादा कड़वी भी नहीं है, लेकिन हो सकता है किसी ने कोई कड़वी लाइन भी बोल दी, कोई अब्यूजिव लैंग्वेज यूज कर ली, किसी ने झूठ बोल दिया, किसी ने डांट दिया। इस केस में तो कुछ भी नहीं था, इस केस में थोड़ा सा बोला कि आपको थोड़ी परहेज करनी चाहिए थी। हियर माई वर्ल्ड वॉज परफेक्ट, सब कुछ मेरे अनुसार था, लेकिन सामने से कोई आया, सामने से किसी ने एक लाइन बोली और वो एक लाइन ने मेरे पूरे वर्ल्ड को आउट ऑफ कंट्रोल कर दिया। मन डिस्टर्ब्ड, फीलिंग्स डिस्टर्ब्ड, फिर वर्ड डिस्टर्ब्ड, काफी देर तक डिस्टर्ब्ड। मीनिंग वन लाइन, किसी की एक लाइन मेरी इस दुनिया को एक घंटे के लिए डिस्टर्ब कर सकती है। और ये भी हो सकता है कि अगली बार जब वो उनसे मिलेंगे तब भी आपको वो वाली बात याद आ जाएगी। सो इट विल नॉट इवन रिस्ट्रिक्ट टू दिस वन आवर। ये हो सकता है कि इट स्टेज ऑन माई माइंड एंड इट कम्स बैक टू माई माइंड लेटर ऑन। शायद कभी जब वो लड्डू खा लिया तब वो बात याद आ जाएगी, या शायद वो बहन सामने कभी आ जाएगी तो वो बात याद आ जाएगी। मतलब माई माइंड, ये हमारा एक्सरे है।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
2: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो पुणेरी आवाज। अब हम आपके लिए रेडियो मधुबन द्वारा निर्मित एक विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत करने जा रहे हैं।
3: मधुबन सार्थ पॉइंट

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के स्पेशल एपिसोड में। आशा करूंगा बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। आइए आज बात करते हैं विशेष करियर के बारे में। जी हाँ, करियर के बारे में हम लोग हर हफ्ते आपसे जुड़ते हैं और बातें करते हैं। तो आज हम लोग जिस विषय को लेकर आपके पास आए हैं, तो ये बहुत ही नया करियर ऑप्शन है जिसके बारे में हम लोग बातें करने वाले हैं। नया इसलिए क्योंकि आज के समय में ये बहुत ज्यादा ट्रेंड पे है, यानी बहुत ज्यादा इसका उपयोग हो रहा है। आप चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म से, अगर किसी भी वेबसाइट से आप अगर सामान मंगाते हैं, तो निश्चित तौर पे ये जो करियर है उसी में का एक है, जिसको आज के जमाने में कहते हैं ई कॉमर्स। जी हाँ साथियों, सही सुना आपने, ई कॉमर्स। इस विषय को लेकर हम लोग बातें करने वाले हैं। ई कॉमर्स में आप अगर अपना अच्छा काम करना चाहते हैं, इसको समझना चाहते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा जो है करियर का ऑप्शन बन सकता है और आपके लिए एक बहुत ही अच्छा कमाई का जरिया हो सकता है। नौकरी के साथ साथ खुद का भी बिजनेस स्टार्टअप करने का एक बहुत बड़ा विकल्प है। तो आइए इस विषय को लेकर हम लोग आपसे जुड़ेंगे और आपको पूरी जानकारी देंगे। लेकिन उसके पहले आइए आगे बढ़ते हुए समझने की कोशिश करते ई कॉमर्स है। ई कॉमर्स में कुछ लोग जैसे कि ई कॉमर्स मैनेजर, स्टोर मैनेजर और ऑपरेशन एक्सपर्ट जैसे अलग अलग पोस्ट पोजीशंस इसमें होते हैं। ये तेजी से बढ़ता क्षेत्र है जो व्यवहारिक कौशल और तकनीक को समझकर लोगों को जोड़ता है। इसमें डिजिटल मार्केटिंग, डेटा एनालिटिक्स, इवेंट मैनेजमेंट और ग्राहक सेवा जैसे जिम्मेवारियां शामिल है, जो इसे एक गतिशील करियर बनाता है। शुरुआत के लिए इंटर्नशिप पर एक बेहतरीन जो है तरीका हो सकता है इसे सीखने के लिए, समझने के लिए। तो आइए कैसे सीख सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं, तो पूरी जो है जानकारी आज आपको मिलने वाला है आज के इस करियर ऑप्शन कार्यक्रम में। मैं हूँ आपका हम सफर आरजे रमेश, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार। छोटे से ब्रेक के बाद ई कॉमर्स में करियर के लिए कुछ मुख्य क्षेत्र है जिसके बारे में मैंने थोड़ी थोड़ी जानकारी आपको दी है। ई कॉमर्स मैनेजर पूरी ई कॉमर्स रणनीति, वेबसाइट ऑटोमेशन और मार्केटिंग की देखरेख जो करते हैं उसे ई कॉमर्स मैनेजर कहते हैं। दूसरा, ऑनलाइन स्टोर के दिन प्रतिदिन के संचालन जैसे कि उत्पाद लिस्टिंग, मूल्य निर्धारण और ग्राहक सहायता को संभालता है, उसको कहा जाता है ई कॉमर्स स्टोर मैनेजर। और तीसरा, ऑर्डर प्रोसेसिंग, लॉजिस्टिक, शिपिंग और रिटर्न को प्रबंधित करना, ये कहा जाता है ई कॉमर्स ऑपरेशंस एक्सपर्ट। इसके बाद एक और विकल्प, दो और विकल्प है। एक विकल्प ये भी है कि ई कॉमर्स परियोजनाओं को शुरू से अंत तक फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड तक प्रबंधित करता है, मैनेज करता है, उसे कहा जाता है ई कॉमर्स प्रोजेक्ट मैनेजर। और आखिरी में एक और विकल्प ये भी है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की सुरक्षा और डेटा उल्लंघन से सुरक्षा सुनिश्चित करना है, यानी पूरे डाटा को संभाल के रखना है क्योंकि इसमें कई जानकारियां हो

करते हैं उसे सुरक्षित रखने के लिए सूचना सुरक्षा विश्लेषक का भी काम आता है। तो ये सारी जो चीजें हैं बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसके बारे में मैंने जिक्र किया और थोड़ा विस्तार से भी मैं बताने वाला हूँ। अगर आप विद्यार्थी हैं, टेंथ या ट्वेल्थ में है, तो जरूर कॉपी पेन लेके बैठिएगा, ताकि आपको कुछ अच्छी जानकारी मिल रही है तो उसे नोट डाउन करें और आगे आप अपने करियर के लिए से चुन भी सकते हैं। तो ई कॉमर्स करियर के लाभ क्या है अगर मैं बता दूं सबसे पहले, तो ये आपके लिए आकर्षण का केंद्र बन सकता। अब देखिए, ई कॉमर्स जो है एक तेजी से बढ़ता उद्योग है। ये आपको नए कौशल सिखाने और अपने करियर में तेजी से आगे बढ़ने में मदद करता है। तीसरा, इसमें व्यवसायिक कौशल और तकनीकी समझ का मिश्रण होता है, जो इसे बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव यानी आकर्षित बनाता है। आप अपना खुद का ऑनलाइन व्यवसाय शुरू करने के अवसर भी तलाश सकते हैं यानी कर सकते हैं। तो शुरुआत कैसे करें ये भी आप सोच रहे होंगे। इंटर्नशिप, किसी कंपनी में इंटर्नशिप करके अनुभव प्राप्त करें, क्योंकि सबसे अच्छा ये तरीका होता है। अगर आपको खुद का स्टार्टअप करना है तो पहले ऐसे ही कंपनीज में अपने आप को जो है अप्रेंटिस पे या इंटर्नशिप पे या छोटी सी नौकरी के रूप में भी आप कुछ समय तक 2-3 साल काम करके देखिएगा, इससे आपको अनुभव मिल जाएगा। फिर दूसरी एक और विकल्प ये हो सकता है कि ई कॉमर्स में डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स भी आप 12वीं के बाद कर सकते हैं। तीसरा, अपना खुद का एक छोटा सा ऑनलाइन स्टोर शुरू करने पर विचार करें, या ड्रॉप शिपिंग जैसे तरीकों से शुरू कर सकते हैं। आप किसी कंपनी का माल ले और उसे शिपिंग के जरिए या कुरियर के जरिए आप उन तक पहुंचाइए जिनकी वो पार्सल है। तो ये भी एक छोटा सा तरीका हो सकता है कि आपको इसकी पूरी जानकारी मिलने तक। मेन होता है कि कस्टमर को सेटिस्फेक्शन तब मिलता है जब वो समय पर चीज उनको मिल जाए। तो अगर इस पे भी आप मास्टरी करते हो तो आपके लिए बहुत बड़ा विकल्प मिल जाता है इस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। तो आइए आगे बढ़ते हैं, एक और सुंदर गीत सुनते हैं, उसके बाद फिर आपसे रूबरू होते हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन पर करियर ऑप्शन। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर एक बार करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में। और हम लोग बात कर रहे थे आज ई कॉमर्स पर, तो चलिए मैं सबसे पहले ई कॉमर्स मैनेजर के करियर पथ में एक क्या क्या चीजें होना चाहिए वो बता देना। एक डिग्री शुरुआत आपको लेनी है, व्यवहारिक अनुभव प्राप्त करना है और फिर वरिष्ठ भूमिकाओं जैसे डिजिटल मार्केटिंग निदेशक या ई कॉमर्स बिक्री निदेशक में प्रगति करना शामिल है। करियर में आगे बढ़ने के लिए विशेष

विशेषज्ञ नेतृत्व कौशल और इसके अतिरिक्त प्रमाण पत्र आपके पास होना बहुत अनिवार्य है। चलिए इसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं अगर मैं बताऊं आपको, तो शिक्षा और योग्यता के साथ इन चीजों को आप ले सकते हैं। सबसे पहले बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या मार्केटिंग या ई कॉमर्स सूचना प्रौद्योगिकी या संबंधित क्षेत्र में आप डिग्री हासिल करके इसमें आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा, ई कॉमर्स में डिजिटल मार्केटिंग या बिजनेस मैनेजमेंट में MBA जैसे मास्टर डिग्री आपको बड़े संगठनों में विशेष भूमिका के लिए योग्य बना सकता है। तो मास्टर डिग्री एक लेना बहुत जरूरी है, अगर लेते हैं तो अच्छा है। या फिर आप डिप्लोमा भी कर सकते हैं या प्रमाण पत्र सर्टिफाइड कोर्स भी कर सकते हैं, जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग सर्टिफाइड कोर्स या फिर SEO गूगल एनालिटिक्स और विभिन्न ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म प्रबंधन में आप सर्टिफाइड कोर्स यानी प्रमाण पत्र प्राप्त करके आप शिपिंग व इन चीजों के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं या इसमें आगे बढ़ सकते हैं। तो शुरुआत में जो है कुछ चीजें ऐसी हो सकती है कि ई कॉमर्स एसोसिएट, डिजिटल मार्केटिंग एसोसिएट या फिर ई कॉमर्स समन्वय जैसी भूमिकाओं में आप काम करना शुरू कर सकते हैं। दूसरा, अनुभव के लिए जैसे मैंने शुरुआत में बताया था, व्यवहारिक अनुभव प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन मार्केटिंग अभियानों में, वेबसाइटों के प्रबंधन या ग्राहक डेटा के विश्लेषण में आप विशेषज्ञ हासिल करें काम करके, या अनुभव प्राप्त करने के लिए आप विशेष सोशल मीडिया मार्केटिंग या वेब एनालिटिक्स जैसे ई कॉमर्स के किसी विशेष क्षेत्र में आप हासिल कर सकते हैं प्रमाण पत्र काम करके भी और कोर्सेस करके भी। तो इस तरह से ये चीजें जो है आपके लिए बहुत अच्छा काम करेंगी। और चौथी बात मैं अगर कहूँ, ई कॉमर्स में या ई कॉमर्स समन्वय के रूप में अनुभव के साथ आप ई कॉमर्स निदेशक या डिजिटल मार्केटिंग जैसे वरिष्ठ भूमिकाओं तक पहुंच सकते हैं। इसके लिए आपको जो है दक्षता हासिल करनी होगी, डिजिटल उत्पाद प्रबंधन या डिजिटल परिवर्तन सलाहकार जैसे भूमिकाएं भी उपलब्ध हैं जिसमें आप अपना रोल अदा कर सकते हैं। आपको अक्सर कई परियोजनाओं को एक साथ मैनेज करना होगा जिसमें बिक्री डेटा का विश्लेषण करना होगा, मार्केटिंग के जो बातें हैं उसमें नेतृत्व करना या टीम के साथ सुपरवाइज करने का भी काम अगर आपको आता है तो आप इस क्षेत्र में अच्छा कर सकते हैं। तो ये सारे विकल्प जो मैंने बताया, और इसकी खूबसूरती ये है कि कई बार ये डिजिटल होने के नाते आप घर से भी मैनेज कर सकते हैं। आपको कहीं भी अगर बिजनेस करना हो तो आप बहुत सारे कंपनियों के साथ टाई अप करके उनके प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाने का जो ई शिपिंग का काम है वो आप कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं। आपके पास अगर किसी कस्टमर का डिमांड आता है कि आपको ये चीजें चाहिए और आपको वो चीजें कहाँ से मिलता है ये अगर पता है तो वहां उनको ये ऑर्डर प्लेस करके आप अपना कमीशन भी ऑनलाइन ले सकते हैं। तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। तो है ना कमाल की बात कि आप घर बैठे भी इन सभी चीजों को मैनेज अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी खूबसूरती है इन चीजों का। तो आइए आगे बढ़ते हुए एक और छोटा सा ब्रेक लेते हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर करियर ऑप्शन। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

नमस्कार। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर एक बार स्वागत है और बातें कर रहे थे हम लोग ई कॉमर्स के बारे में। जी हाँ साथियों, अगर मैं बात करूं ई कॉमर्स स्टोर मैनेजर का, तो ये भी एक बहुत ही अच्छा करियर का बहुत सुंदर मौका है, जिसे ऑनलाइन बिक्री, डिजिटल मार्केटिंग और व्यवसाय के संचालन का प्रबंधन शामिल है। इस भूमिका के लिए आप एक डिग्री हासिल करें, आमतौर पर व्यवसाय या विज्ञापन में भी आप ले सकते हैं, और मजबूत विश्लेषणात्मक कौशल हो आपके पास। डिजिटल मार्केटिंग टेक्निक को आप अगर समझ लेते हैं तो ये आपको बहुत बड़ा काम आ सकता है, और इस करियर पथ में आप ऑनलाइन बिक्री के टेक्निक को विकसित करके वेबसाइट ट्रैफिक का प्रबंधन करने से ग्राहकों का बेहतर अनुभव जो है आप हासिल कर सकते हैं या उनको बेहतर अनुभव दे सकते हैं। इसकी जिम्मेवारी अगर आप लेते हैं तो ई कॉमर्स स्टोर मैनेजर आप बन सकते हैं। इसमें कुछ चीजें बहुत जरूरी है, जैसे कि एक ऑनलाइन बिक्री या ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के प्रदर्शन की देखरेख करें, जिसमें वेबसाइट का प्रबंधन, उत्पाद लिस्टिंग और ग्राहक अनुभव शामिल है। दूसरा, आप अगर स्टोर मैनेजर बनते हैं तो बिक्री बढ़ाने और ब्रांड जागरूकता बढ़ाने के लिए डिजिटल मार्केटिंग की एक सिस्टम बनाना होगा, जैसे कि सीईओ, पीपीसी और सोशल मीडिया अभियानों को विकसित करके आप इसे अच्छी तरह से कर सकते हैं। तीसरा, डेटा, जो डेटा आपके पास है उसका उपयोग करके ग्राहक व्यवहार और बाजार के रुझानों को समझकर उसमें एक रणनीति बनाकर निर्णय लेने से आपको बहुत फायदा हो सकता है, कंपनी को भी। चौथी बात यहाँ पर आता है, सफल संचालन सुनिश्चित करने के लिए टीम के प्रदर्शन की निगरानी करें और कार्य को समय पर पूरा करें, क्योंकि यहाँ पर मेन होता है डिलीवरी। अगर आपने डिलीवरी का टाइम जो दिया है, अगर कोई कस्टमर आज आपकी बुकिंग करता है और दो दिन के बाद अगर आपने उसमें ऑनलाइन दे दिया डेट, उसी समय उसके पास वो चीजें पहुंचनी चाहिए। अगर उस समय पहुंच जाता है तो ये आपके लिए बहुत बड़ा काम आ सकता है।

नमस्कार। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ ई कॉमर्स बिजनेस पर हम लोग बातें कर रहे थे, इस करियर पर बातें कर रहे थे। एक रोमांचक और चुनौतीपूर्ण क्षेत्र है जिसमें किसी संगठन के नेटवर्क सिस्टम और डाटा को साइबर हमले और खतरों से सुरक्षित रखा जाता है। उसको कहा जाता है सूचना सुरक्षा विशेषज्ञ। तो ये भी ई कॉमर्स में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आप इसमें अगर मास्टरी किया है तो ई कॉमर्स बिजनेस जो करते हैं उस कंपनी में आपको एक अच्छी पोजीशन मिलती है। इंटरनेट पर जो बढ़ती निर्भरता आज के समय में लोगों की है, तो इस क्षेत्र में अगर आप स्पेशलाइजेशन किया है तो ये आपके लिए बहुत बड़ा काम करता है। तो एक सूचना सुरक्षा विश्लेषक की जो भूमिका है ई कॉमर्स में वो क्या है वो मैं बताता हूँ। संभवतः सुरक्षा खतरों और कमजोरियों को पहचानना और उनका मूल्यांकन करना। दूसरा है साइबर हमलों से बचाव, के लिए फायरवॉल और अन्य सुरक्षा सॉफ्टवेयर को स्थापित करके उसको इंस्टॉल करना और उसकी देखरेख करना। किसी सुरक्षा उल्लंघन या साइबर हमले की स्थिति में प्रतिक्रिया देना, उसकी जांच करना और उसे ठीक करना। हैकर द्वारा उपयोग किए जाने वाले तकनीकों को समझना ताकि कमजोरियों का पता लगाया जा सके और सिस्टम को अधिक सुरक्षा महसूस करा सके या मजबूती दे सके। और संगठन के लिए सुरक्षा नीतियों को या मानकों को और रूपरेखाओं को बनाना और उसे लागू करना, ये भी इसी सुरक्षा विशेषज्ञ का काम है। दुर्भावनापूर्ण गतिविधियों की निगरानी के लिए नेटवर्क ट्रैफिक और डेटा का विश्लेषण करना बहुत जरूरी है। तो ये सब जो है एक सूचना सुरक्षा विश्लेषक का काम है। तो इसमें आप अगर दक्षता हासिल करते हैं तो आप ई कॉमर्स में अपनी जगह

रक्षित कर सकते हैं। तो चलिए, मैंने चार प्लेटफॉर्म आपको बताए हैं मुख्य रूप से ई कॉमर्स में, वो आपको मैंने सबसे पहले बता दिया। फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, पांच ऐसे विशेष पोजीशंस हैं जहाँ पर ई कॉमर्स में आप अपनी दक्षता के माध्यम से अपना करियर को बहुत अच्छा बना सकते हैं या खुद का भी ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो सबसे पहला ई कॉमर्स मैनेजर, दूसरा है ई कॉमर्स स्टोर मैनेजर, तीसरा है ई कॉमर्स ऑपरेशन एक्सपर्ट, चौथा है ई कॉमर्स प्रोजेक्ट मैनेजर और पांचवा है ई कॉमर्स में सूचना सुरक्षा विशेषज्ञ। तो इन पांचों ही अलग अलग विधाओं में अगर कहीं भी आप एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो जरूर बने और ई कॉमर्स के करियर को बहुत अच्छी तरह से आप फ्रेमअप करके अपने फ्यूचर को गाइड करें। इन्हीं शुभ आशाओं के साथ ढेर सारी खुशियां। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

नमस्कार, मैं हूँ पेंटल। आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: हम दो लोग बिजनेस कर रहे हैं, बहुत साल हमने अच्छे से किया, करते करते एक की नियत खराब हो गई तो उन्होंने हमें चीट किया, हमारी दुकान के सामने एक और दुकान खोल दी। अब हमें अपनी दुकान में बैठकर चॉइस है कि हमने उनके बारे में क्या सोचना है। हम ये भी सोच सकते हैं कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसके साथ इतना बुरा हो इसको पता चले कि दुख क्या चीज होती है। कई लोग तो इतना भी कहते हैं भगवान इसको दिखाए कि इसने मेरे साथ क्या किया है। अगर भगवान है तो मुझे प्रत्यक्ष दिखाई देना चाहिए कि इसको दुख कैसे मिलता है। ये भी एक तरह की सोच है। हम इतना ब्लैक बॉल फेंक सकते हैं, इतनी ब्लैक बॉल फेंक सकते हैं कि उनके फ्यूनरल पर भी जाके आ सकते हैं बैठे बैठे दुकान में। कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्योंकि नेगेटिव सोचने की कोई लिमिट नहीं है, कितना भी हम सोच सकते हैं। जैसे नेगेटिव सोचने की लिमिट नहीं है, वैसे किसी के लिए अच्छा सोचने की भी कोई लिमिट नहीं है। हम ये भी सोच सकते हैं जो हुआ हमारा कोई हिसाब किताब था, पूरा हुआ, अब ये अपना बिजनेस अलग करे, मैं अलग करूं, मेरा भी बहुत अच्छा चले, इनका भी बहुत अच्छा चले। क्या मुश्किल होगा ऐसा सोचना? जब हम किसी के लिए अच्छा सोचेंगे, सबसे पहला फायदा हमें होने वाला है। व्हाइट बॉल जब हम फेंकेंगे तो वो जाएगी, हिट करेगी, वापस आएगी, वो तो होगा बाद में, फेंकते हुए फायदा किसका होने वाला है? आज जब हम किसी के प्रति पुरानी बातें पकड़ के रखते हैं, दर्द पकड़ के रखते हैं, नफरत पकड़ के रखते हैं, तो नुकसान किसका हो रहा है? मेरा। तबीयत किसकी खराब हो रही है? मेरी। घुटना किसका दर्द हो रहा है? सर्वाइकल किसका दर्द हो रहा है? मेरा। हार्ट की ब्लॉकेज किसको हो रही है? मेरे को। वो एंजॉय कर रहे हैं लाइफ। तो हमने अगर व्हाइट बॉल भेजनी तो किसके फायदे के लिए भेजनी? अपने। हमने क्षमा करना अगर उनको, तो हमने एक्चुअली किसको क्षमा किया? दुनिया में कहते ईंट का जवाब पत्थर से देना। अब अगर ईंट का जवाब पत्थर से देंगे तो क्या हो जाएगा? पहली बार ईंट फेंकी थी इसलिए ईंट आई। अब अगर पत्थर फेंकेंगे तो पत्थर आएगा। अब ईंट का जवाब किससे भेजें?
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: कुछ दिन पहले एक भाई मिले, उन्होंने कहा सुबह क्या हुआ, कहते मैं उठा, ऐसे बेड से उठा तो टेबल थी बेड के सामने, मेरा पैर लग गया टेबल से। तो मैंने सबको जोर जोर से डांट लगानी शुरू कर दी, दिखता नहीं, अपने सब स्टाफ को बुलाया, वाइफ को बुलाया, दिखता नहीं बेड के सामने टेबल रखी, उठा मेरा पैर लग गया, सबको डांट रहा था। तो धीरे से किसी ने आके कान में कहा, सर रात को आपने रखी थी। अब जैसे ये पता चला कि रात को आपने रखी थी, अब व्यवहार कैसा हो जाएगा। इसीलिए जीवन में जितने विघ्न हमें दिखाई दे रहे हैं, जिनके लिए हम औरों को डांट रहे हैं, औरों को जिम्मेवार ठहरा रहे हैं, औरों पर चिल्ला रहे हैं, वो जीवन में विघ्न हमारे किसने रखे थे, किसने रखे थे? वो हमने ही रखे थे। अब औरों पर डांटने की बजाय हमें क्या करना है, हमें क्या करना है कि आज उसको ध्यान से साइड पे रखना है। तो जो मेरे जीवन में हो रहा है, अगर मुझे ये क्लैरिटी है कि जैसा कर्म वैसा कॉन्सिक्वेंस, तो मुझे उंगली फिर किसी और पर नहीं, उंगली यहाँ और ठीक करने की उंगली भी यहाँ। वी आर नॉट डूइंग अ फेवर टू एनीबडी एल्स। ये हम कहते हैं ना, उसने किया इतना, मैं कैसे क्षमा करूं, उनको नहीं।

0: क्षमा कर रहे अपने आप को क्षमा कर रहे हैं।
1: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
2: आइए आइए, दरवाजे पे क्यों खड़े हैं? अंदर आइए। ये घर है मुस्कुराहट का, यहाँ बसती है खुशियाँ। ये है पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।
3: बात पुरानी बड़ी सुहानी, मनात खोलवर रुजलेल्या चित्रपट, साहित्य, संगीत, गाणी यांच्या आठवणींचा नॉस्टैल्जिक खजिना।
4: बात पुरानी बड़ी सुहानी,
3: फक्त रेडिओ पुणेरी आवाज 107.8 FM वर। संकल्पना आणि सादर करते श्री धनंजय कुलकर्णी।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: हम जब कहते हैं ना क्षमा करना तो बहुत डिफिकल्ट है, नहीं

0: सकते हम, उनकी गलती इतनी बड़ी थी, और अगर हम क्षमा कर देंगे तो वो रियलाइज कैसे करेंगे, और अगर वो रियलाइज नहीं करेंगे वो उसी गलती को दोबारा करेंगे। ये सब चीजें सोचकर हम उस बात को, उस घाव को, उस दर्द को पकड़ते रहते हैं। जितना हम किसी भी घाव को पकड़ के रखेंगे और हम कहेंगे मैं इसको ठीक नहीं करने वाला हूं, सपोज पांव पे चोट लगी, दीक्षित जी ने हथौड़ा लिया, जोर से मारा, चोट लग गई, फिजिकल घाव लग गया, और मैंने कहा इस घाव को मैं जीवन भर भरने नहीं दूंगे, ये कहा, तो फिर उस घाव के पांव को लेकर चलते गए जीवन में। कई और लोग मिलेंगे जो हथौड़ा मारेंगे, मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? मिलेंगे। जितना घाव को नहीं भरेंगे तो अगला वाला हथौड़ा, अगली वाली चोट और जोर से लगेगी, जितनी और जोर से लगेगी दर्द और जोर से होगा। हम कहेंगे इस बात को भी मैं नहीं भूलूंगा, अगली बार कोई मारेगा तो क्या होगा, और जोर से लगेगी। तो घाव को रहने दें या भरते जाएं? घाव को रहने देना चाहिए या भरना चाहिए? भरना चाहिए, ऑब्वियस है। हर चीज फिजिकल तो ऑब्वियस होती है और हर चीज इमोशनल इम्पॉसिबल होती है। फिजिकल चीज को भरना है ऑब्वियस है। आप शाम को चाय पी रहे हैं, चाय पीते पीते सोफे पर आप बैठे हैं, सोफे पे चाय गिर गई, तुरंत क्या करेंगे? तुरंत क्या करेंगे? चाय गिर गई चाय पीते पीते, अभी कप में चाय है, लेकिन तुरंत क्या करेंगे? उठकर साफ करेंगे। ये ऑब्वियस है, ये बात ऑब्वियस है, नेचुरल है। क्यों तुरंत उसी टाइम बैठ उठकर साफ करना है? कल सुबह भी तो साफ कर सकते हैं। इसका मतलब अगर सोफे पे कुछ गिरा उसी टाइम साफ करना है, अगर उसी टाइम साफ नहीं किया तो क्या हो जाएगा? दाग लग जाएगा। और यहां कुछ गिरा, यहां कुछ गिरा, कोई आया कुछ कह दिया, दूसरा कोई आया कुछ और कह दिया, तीसरा कोई मिला उसने और कुछ कह दिया, चीजें गिरती गई गिरती गई गिरती गई। लास्ट कब साफ किया? और धीरे धीरे धीरे इतने दाग पड़ते गए कि क्या हो गया, कि ओरिजिनल कलर ही भूल गया।
1: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: अध्यात्म और मूल्यों से सजा कार्यक्रम रंग नवे जरूर सुने।
1: नमस्कार, आप एकताहित रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: नमस्कार, आप उन्हें कटाए रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: नमस्कार, मैं मोनालिसा वागत, तुम्ही ऐकत आहात रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: असर्टिवनेस विदाउट जेनरेटिंग एंगर, तभी वो रियल मायने में असर्टिवनेस होगा, क्योंकि असर्टिवनेस इनर स्टेबिलिटी। तो हम ये नहीं कह सकते कि हम गुस्सा भी है और स्टेबल भी है, क्योंकि जैसे ही गुस्सा अंदर जेनरेट हुआ, चाहे वो सप्रेस कर दिया, लेकिन हम स्टेबल नहीं होते हैं तब, यू नो। तो देन आई कैन नॉट से कि आई एम इंटरनली स्टेबल बट नाउ आई एम बीइंग असर्टिव। तो इंटरनल स्टेबिलिटी मीन्स यू नो नो ट्रेस ऑफ एंगर, उसको जो पूरा खत्म होगा, इंटरनली बिल्कुल काम एंड इन कंट्रोल है, लेकिन फिर भी आपको डिसिप्लिन करना, यू नो। एंड असर्टिव जब हम होते हैं, हमें बहुत कम बोलना पड़ेगा, बहुत ज्यादा यू नो, और बहुत सोच समझ के एक एक बोल निकलेगा, क्योंकि आप फुल इन कंट्रोल है। एंगर में या सप्रेशन वाली स्टेज में आप इंटरनली डिस्टर्ब्ड है कि वो हो सकता है कि मुख से कोई ना कोई ऐसा बोल निकल ही जाए कि दूसरे को भी बुरा लगेगा और खुद को भी पश्चाताप हो।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: किसी का एक लाइन ना, इवन अगर कल बीत गया, इट डजेंट मैटर, आज भी तो कोई ना कोई कुछ लाइन बोलेगा, आज भी तो लाइन्स आएंगी, आज भी तो बातें आएंगी। तो जब ऐसी कोई बात होती है, इवन अगर हमें उस टाइम याद नहीं रहता, हम उस पर रिफ्लेक्ट करके नेक्स्ट टाइम के लिए चेंज करते हैं अपने आप को।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी, इसमें आज फिर आप सबका स्वागत। हम बात कर रहे हैं इन दिनों सेल्फ मैनेजमेंट की। बहुत सी मैनेजमेंट की चीजों को समझा था, लेकिन सेल्फ मैनेजमेंट में अभी तक हम अपनी जिंदगी की मैनेजमेंट कर रहे थे, लेकिन सेल्फ को मैनेज करना इन दिनों हम सीख रहे हैं। और बहुत सुंदर तरीके से हमारे सामने जो है वो चीजें निकलती आ रही हैं। सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में समझा कि मैं किस तरह से रिस्पॉन्ड करता हूं, मेरी एबिलिटी क्या है किसी भी सिचुएशन को रिस्पॉन्ड करने की, वो मुझ पर डिपेंड करती है। कहीं ना कहीं परिस्थिति हावी होती जब नजर आती है, तब मेरा रिस्पॉन्स कैसा होता है उस सिचुएशन को लेकर, ये मेरी सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। आगे जानते हैं कि सेल्फ को मैनेज कैसे करना है। हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी, सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: सेल्फ को जब हमने आपसे बात करके इस प्रोग्राम के जरिए समझा कि इट गोज डीप इन, यू नो, और अंदर का जो थॉट प्रोसेस था मेरा, उसको मैनेजमेंट करने की समझी बात समझ में आई। आगे बढ़ते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी को थोड़ा और आगे लेकर जाते हैं, और कहां तक पहुंचेंगे।
1: हमने पहले भी देखा कि सेल्फ मैनेजमेंट हम चार पहलुओं पर करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर रिलेशनशिप्स, फिर हमारे रोल्स एंड हमारे रिसोर्सेस, जितनी हमारे पास शक्तियां हैं। तो उसमें सबसे पहले हमने फिर पिछली बार देखा सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि जैसे ही रिस्पॉन्सिबिलिटी शब्द आता तो हर एक के पास एक लिस्ट होती है कि वो किन किन लोगों के लिए और किन किन कहें कार्यों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। But their own name never comes on the list. It never comes on the list. And I've been sharing this with a lot of people, and then they just stare at you. Acha, responsible for the self. I thought I was responsible for children, husband, parents, and whatever. You know, kai baar you're a social worker, you're responsible for a lot of other people. Or I'm responsible apni team ke liye. ऑफिस में आई एम रिस्पॉन्सिबल कि इतने टाइम में ये काम पूरा हो जाना चाहिए। तो हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी बाहर थी, और डेफिनेटली क्योंकि सिंसियरिटी हमारी नेचर है, तो जिन चीजों के लिए हम जिम्मेवारी लेंगे उन चीजों के प्रति हम अपना पूरा अपनी अपनी कैपेसिटी में, तो वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, लेकिन हम अपनी पूरी एनर्जी पूरा अटेंशन उस पर लगाते हैं।
0: और मैक्सिमम लोगों को कहा भी जाता है कि आप बहुत रिस्पॉन्सिबल हैं, ही इज अ वेरी रिस्पॉन्सिबल मैन।
1: एंड जब हम कहते हैं आप बहुत रिस्पॉन्सिबल हैं, हम यही कह रहे हैं कि आप जो चीज उठाते हैं, जो जिम्मेदारी उठाते हैं, आप उसको बहुत अच्छी तरह से निभाते हैं। लेकिन फिर सबसे पहले जिम्मेवारी, अब क्या हुआ क्योंकि मेरे अपनी स्थिति की जिम्मेवारी वॉज नॉट कमिंग ऑन द लिस्ट, सो उसका रिजल्ट क्या हुआ, वी वर नॉट टेकिंग केयर ऑफ दैट। सी, आपकी जिम्मेवारी मेरी लिस्ट पर थी तो आई वॉज टेकिंग केयर ऑफ यू, लेकिन मेरी अपनी जिम्मेवारी, और जहां अपनी जिम्मेवारी भी आती है अगर बात, तो जिम्मेवारी क्या होती, फिजिकल नीड्स कि मुझे अपने शरीर का ध्यान रखना है, मुझे अपने खाना टाइम पर खाना है, ऑल दीज लिटिल लिटिल थिंग्स, बट मुझे अपने मन की स्थिति रखना है, दिस जस्ट डजंट कम ऑन द रिस्पॉन्सिबिलिटी लिस्ट, एंड द ओनली थिंग इज अबाउट पुटिंग इट ऑन द रिस्पॉन्सिबिलिटी।
0: इनफैक्ट यू नो व्हाट हैज हैपेंड नाउ, आई थिंक हम सब दर्शक जिस जर्नी पर हैं वो भी हो रहा होगा कि पहले क्या होता था, जो हमें काम करते जाने हैं और कोई चीज जो है वो साथ साथ चलती जा रही है, तो हम उसको ध्यान नहीं देते थे और हम उस पर काम अपना काम करते जाते थे,
1: क्योंकि वो हमारी जिम्मेवारी है।
0: हाँ,
1: इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो, क्यों हम बार बार इसको रब इन कर रहे हैं, क्योंकि ये एक ह्यूमन नेचर है कि जिस

0: जाएंगे या कहीं आप सिर्फ सारा दिन मेडिटेशन तो नहीं कर रहे कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं करेंगे. यस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज से दूर नहीं होंगे, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिस्ट में
1: सबसे पहले मैं आ जाऊंगी.
0: मैं आ जाऊंगी और मैं भी मैं मतलब मेरी मानसिक स्थिति कैसी है, बिकॉज आफ्टर ऑल हम सबको जो कर रहे हैं इट्स फॉर द डीप डिजायर फॉर हैप्पीनेस एंड लव, तो व्हाई नॉट पुट दैट एज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी. इसमें कुछ ज्यादा करना नहीं है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना हमें आता है, इसलिए वो सीखना नहीं है. पूरी तरह से निभाना हमें आता है, उसके लिए हम कुछ भी त्याग करने के लिए रेडी है, वो भी हमें आता है. कि एक बार मैंने कहा ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आई विल डू एनीथिंग टू फुलफिल दैट, दैट्स हाउ गुड वी आर एट दैट. सो सिर्फ उसमें एक ऐड करना है, दैट्स ऑल. कि मन की स्थिति को स्टेबल रखना ये मेरी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि ये ठीक होगा तो बाकी सब कुछ ठीक हो जाएगा. अब क्या हो रहा था, काम करना भले मैं अपसेट हो गई,
1: ओ आदत ही हो चुकी है मुझे. हाँ. इतनी आदत हो चुकी है कि मैं अपसेट हूँ, सब कुछ है, लेकिन मुझे काम तो करते जाना ना, मुझे सबके लिए कुछ कुछ जो जो चीजें करनी है वो करते जाना.
0: अब जैसे आपने अभी कहा, लेट्स से फैमिली एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वर्क एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन दोनों में भी हम प्रायोरिटाइज करेंगे ना, तो फैमिली ऊपर आती है. तो सपोज आप वर्क पे गए, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन सपोज आपको बीच में कुछ मैसेज मिला कि घर पे ऐसा कुछ हुआ है आपको आना है, तो आप इधर इम्पोर्टेंट भी होगा तो भी इसको आप छोड़कर आप उधर जाएंगे. यू विल टेल योर टीम आई एम सॉरी बट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी आई हैव टू गो. इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत क्लियरली प्रायोरिटाइज होती
1: है. माई प्रायोरिटी इज देयर.
0: प्रायोरिटी तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि मेरे जीवन की क्या प्रायोरिटीज है. तो जैसे फैमिली बहुत इम्पोर्टेंट है, वैसे ही मैं बहुत इम्पोर्टेंट हूँ. तो अब इसमें एटलीस्ट जैसे वर्क और फैमिली को करने में कई बार लोग एक प्रॉब्लम में आ जाते हैं कि ऑफिस में भी आज काम है लेकिन आज मेरे बच्चे की भी तबीयत ठीक नहीं है, व्हाट डू आई डू. यू नो वहां भी जाना बहुत जरूरी है, यहाँ भी रहना बहुत जरूरी है. सो दे काइंड ऑफ गेट इनटू अ लिटिल कॉन्फ्लिक्ट के व्हाट डू दे डू. बट जहां तक अपने प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इट्स नॉट अबाउट टेकिंग आउट टाइम, इट्स जस्ट अबाउट टेकिंग केयर व्हाइल डूइंग एवरीथिंग. इसलिए आप कभी भी इस कॉन्फ्लिक्ट में नहीं आएंगे कि अपना ध्यान रखो या काम का ध्यान रखो, अपना ध्यान रखो या बच्चों. नो दैट विल नेवर हैपन. सिर्फ करना क्या है, अपना ध्यान रखते हुए इनका ध्यान रखना है,
1: दैट्स ऑल. एंड हैपनिंग यू नो बिकॉज समवेयर द मोमेंट यू स्टार्ट नाउ व्हाट हैज हैपन्ड विद मी. मेरे साथ मैं अपने सभी दर्शकों का शेयर करूं कि अगर मैं जरा सा भी कहीं काम जो करती, जैसे मैं प्रोग्राम भी कर रही हूँ, चलिए इसी को काम लेते हैं, और पहले क्या होता था कुछ कुछ कुछ कुछ चल भी रहा है तब भी प्रोग्राम कर सकते हो या कुछ भी कर सकते हो. आप अगर कुछ कुछ कुछ कुछ चल रहा है जो, और वो पता नहीं चलता है कि किस चीज ने कहाँ किया, लेकिन वो जब कुछ कुछ चल रहा है तो वो रुक के आप उसी टाइम पे उसको ठीक कर सकते हैं.
0: नाउ इफ यू डू दिस व्हाट विल हैपन द रिजल्ट. पहले भी प्रोग्राम आप कर रहे हैं, कोई भी प्रोग्राम अभी भी कर रहे हैं, लेकिन अब आप पहले अपना ध्यान रख रहे हैं फिर प्रोग्राम कर रहे हैं. व्हाट विल हैपन इज यू विल एंजॉय द वर्क मोर एंड यू विल डू मोर जस्टिस टू द वर्क.
1: बिकॉज
0: यू नो आप यहाँ बैठे हैं लेकिन आपका मन कहीं और है. हाउ इज दैट जस्टिस टू द प्रोग्राम, इट्स नॉट फेयर. तो क्या होता है जब हम अपना ध्यान नहीं रख पाते, तो एक्चुअली इन द ट्रू सेंस हम अपनी बाकी जिम्मेवारियां भी
1: नहीं निभा रहे हैं. वेरी ट्रू.
0: That we have to, somewhere it has to hit me. Ki you know, ki main keh to raha hu. Let's say I just asked someone the other day, I said, what's your first responsibility? To kaha, my children. I said, okay, very good. What about your children? They said, achhe school mein dalna, achhi tarah se unko bahut strong banana, ye karna. But nowhere was he talking about making them emotionally strong.
1: बिकॉज वो तो सोचा ही
0: तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी में नहीं डाला ना, क्योंकि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में नहीं आया तो ये भी नहीं ध्यान आया कि मेरे बच्चों के प्रति जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसमें भी ये आता है. हमने सिर्फ देखा कि फिजिकली उनको सब कुछ अच्छा मिलना चाहिए, एजुकेशन उनको अच्छी मिलनी चाहिए, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. इमोशनली उनको स्ट्रांग बनाना ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? हु विल डू इट? इज द स्कूल गोइंग टू डू इट? Go and talk to any principal. Are you ready? She says, oh, so many children.
1: And nobody knows how to do it also.
0: कैसे करेंगे? हम तो नहीं कर सकते. आप किसी भी स्कूल में प्रिंसिपल या टीचर से मिले, they're only saying, क्या करें आजकल के बच्चे, देखो कोई स्कूल में रो रहा है, कोई चिल्ला रहा है. I actually met a boy in a school, he says, I beat myself. मतलब इस तरह के केसेस प्रिंसिपल्स और टीचर को हैंडल करने पड़ते हैं. सो यस, इट्स अ बहुत बड़ा चैलेंज है उनके लिए. एंड ये बच्चा काफी बड़ा

0: not के इससे ही मेरे को इतनी frustration हो जाती है, जब मैं जिसके साथ नाराज हूँ या जो frustration है मैं उनको कुछ नहीं कर सकता. I beat myself. Look at the situations they have to handle. Now that's a sign कि वो emotionally बहुत weak है, वो अपने आप को manage नहीं कर पा रहा. ये किसकी responsibility है? जहाँ आज हम इसी illusion में चल रहे हैं ना कि हमारी responsibility family, family, family, family में भी children. So are we really fulfilling that responsibility? अगर मेरे बच्चे आज emotionally weak हैं, then time to wake up. I am not fulfilling my responsibility.
1: Yes, very true, you know.
0: जब आप अपने emotions पर ध्यान रखना शुरू करेंगे, अपनी स्थिति पर, तो फिर आप अपने बच्चों के भी you will be able to take care. And if you find your child is going through pain, you can help. लेकिन अगर वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिस्ट में ही नहीं आता, या अगर आता भी है तो हैंडल करना नहीं आता, तो फिर कहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी.
1: राइट, इनफैक्ट यू नो दिस इज हाउ बहुत बार पेरेंट्स आते हैं कि वो इस तरह के क्राइसिस में हम क्या करें. तो वो ये क्योंकि हमने अगर अपने आप को ही हैंडल करना सीख गए होंगे, सो आई थिंक नाउ आई विल बी एबल टू डू ऑल. फिर मैं बाकी सबकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको भी, इमोशनल प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करने का सही परिप्रेक्ष्य बता पाऊंगे.
0: क्योंकि खुद जब तक नहीं करेंगे, आई मीन बोलना बहुत इजी है ना बच्चों को कि ये राइट है, ये रॉन्ग है, ऐसे नहीं वैसे नहीं, बट दे गो थ्रू सो मच कॉन्फ्लिक्ट इनसाइड. उनको कितना अंदर दर्द है, हु इज गोइंग टू हेल्प. एंड फिर वी से कि स्कूल में काउंसलर है, स्कूल में जो काउंसलर है उनसे बात करो. आई मीन स्कूल्स डोंट नीड टू हैव काउंसलर. दिस वॉज द रोल ऑफ द पेरेंट. पहले कहाँ था, हम जब स्कूल में थे तो वी डिडंट हैव अ काउंसलर, क्योंकि काउंसलिंग का कार्य तो काउंसलिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स की है. क्यों आज मुझे बाहर एक थर्ड पर्सन के पास जाना पड़ रहा है? बिकॉज दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नॉट गेटिंग फुलफिल्ड. देन आई एम फाइंडिंग द नीड टू टॉक टू समवन एल्स. तो समवेयर वी नीड टू स्टॉप, अपनी लिस्ट फिर से बना लें रिस्पॉन्सिबल एंड एक्चुअली सिट डाउन एंड डू इट. एंड फिर कहीं लगे कि हाँ ये तो बहुत बड़ी मेरी लिस्ट है. और फिर कई बार कई लोग कहते इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में अपनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट इसके लिए एक्स्ट्रा टाइम नहीं निकालना, सिर्फ ध्यान रखना. और जैसे आपने कहा खुद करेंगे तो बच्चे को कराना
1: आसान हो जाएगा.
0: अच्छा, बच्चे को कराना आसान हो जाएगा, अपनी टीम को ऑफिस में. आई मेट वन ब्रदर इन अ प्रोग्राम, ही इज हेडिंग अ कंपनी, नॉट वेरी बिग, 40-50 लोगों की. तो इससे पहले तो मुझे इतना गुस्सा आता था एंड मैं ऐसे चिल्ला देता था, लेकिन सब मेरे से डर कर चलते थे, मेरा पूरा ऑफिस. लेकिन फिर प्रोग्राम देखकर जैसे जैसे अपने पर वर्क किया, इससे तब तो मैं बिल्कुल गुस्सा नहीं करता. एंड ही वॉज शेयरिंग विद एवरी वन के बिना गुस्से के भी काम हो जाता है, यू नो ऑफिस में चलता है. बट द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट ही केम एंड शेयर, ही सेइंग मेरे ऑफिस के बहुत सारे लोग अपनी प्रॉब्लम मेरे साथ अब शेयर करते हैं. दैट वॉज एन आई ओपनर. एंड एवरी वन सेड कि अपनी प्रॉब्लम अपने बॉस के साथ आकर कौन शेयर करेगा, नहीं तो यू नो अपने घर की, अपने हस्बैंड की, हु विल कम एंड शेयर. ही सेज दे कम एंड शेयर एंड समवेयर दे लुक एट मी लाइक दिस नाउ, कि कहीं ना कहीं मेरे पास एक आंसर है उनके लिए. जस्ट बिकॉज आपको कोई एक दिखाई दे रहा है, तो आपको जैसे ही कोई ऐसा दिखाई देगा, मिलोगे आप जैसे हु इज एबल टू टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ फर्स्ट, यू नो दैट पर्सन विल बी एबल टू हेल्प यू. तो आप देखो पूरा पर्सपेक्टिव ही चेंज हो गया. ऑफिस वही है, लोग वो हैं, लेकिन आपका काम करने का तरीका चेंज हो जाता. तो लेट्स पुट सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द लिस्ट. हैव यू पुट इट ऑन योर लिस्ट?
1: यस.
0: देखो हम एक बिलीफ के साथ स्टार्ट करते हैं. एवरीथिंग विल स्टार्ट विद अ बिलीफ. सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से हम दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा अच्छा ले लेंगे, ये एक बिलीफ है. लेकिन जैसे आप उसको एक्सपेरिमेंट करते हो, now that becomes the truth. And that's why we say take it back, experiment. Reject kar diya, so then nothing works out for you. It's another belief.
1: You know, husband wife ke case mein bahut hota hai, unhe ye acha nahi lagta, unhe mera ye karna acha nahi lagta, aur isliye main ye karti jati hu.
0: Bhale karo, agar karte bhi ho to pehle apni responsibility lekar ki main khush rahungi wo karte hue, फिर करो. देन इट्स ओके. इवन इफ यू नो आई हैव टू डू समथिंग फॉर समवन, बट माय फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज आई विल स्टेबलाइज माई सेल्फ, देन डू इट. नॉट आई विल गो इनटू पेन एंड देन डू इट.
1: मुझे आपके लिए करना पड़ रहा है, मुझे उनके लिए करना पड़ रहा है, उनके लिए.
0: नॉट वर्थ इट. क्योंकि जो एनर्जी एक्सचेंज होगा वो तो दर्द का ही होगा. तो जैसे ही हम सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर ही हमारी एक और जो बात आती वो है डायरेक्शन इन लाइफ. माई सेल्फ डायरेक्शन. कहा जाता द गिफ्ट ऑफ लाइफ इज गिफ्ट ऑफ टाइम. ये जीवन कितने समय के लिए ये है मालूम नहीं. डू वी नो?
1: नो.
0: कितना टाइम? वी डोंट नो हाउ मच टाइम वी हैव. यू नो इट्स लाइक मुझे नहीं पता.

0: मेरे पास कितना समय है, लेकिन मेरे पास ये चॉइस है कि ये जितना समय मुझे मिला है इसका मुझे क्या करना है, हाउ डू आई हैव टू क्रिएट माई लाइफ। अब ये मुझे जितना समय मिला है, मेरे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो इसको अपने कंट्रोल में लेकर बहुत क्रिएटिवली जिस तरह का अपना मैं ड्रामा बनाना चाहूँ, यू नो द वे आई वुड वॉन्ट माई रोल टू इवॉल्व, आई डू इट। द अदर थॉट इज मेरे हाथ में तो कुछ है ही नहीं, दूसरे लोग मेरे जीवन को चलाते हैं। तो समय उतना ही मिला है, जीवन वो उतनी ही मिली हुई है, लेकिन उसको हम कैसे बिताते हैं ये किसकी जिम्मेवारी है?
1: मेरी अपनी
0: भी। तो अगर मैं उस स्मृति से चलती हूँ कि ये सब कुछ मेरे हाथ में है एंड आई कैन क्रिएट, व्हेन विल आई बी एबल टू क्रिएट? क्योंकि लेट्स से फॉर एग्जांपल आप अभी मुझे बुरा भला कहते हैं, लेकिन जब मैं रियलाइज करती हूँ कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो मैं अपना सीन अपने अनुसार क्रिएट करती हूँ। तो भले आप जैसे भी थे, लेकिन अभी अभी मैंने अपना सीन कैसा क्रिएट किया, जिस तरह मैं क्रिएट करना चाहूँ, एंड दिस इज एप्लीकेबल टू एवरी सीन, एवरी सीन। अगर आप इस एक्टर पर ध्यान देना शुरू कर दो तो आपकी पूरी जीवन की ये जो यात्रा है वो कौन क्रिएट कर रहा होगा?
1: मैं खुद करूंगी।
0: आप क्रिएट कर रहे हो।
1: दूसरा नहीं लिखेगा मेरी कहानी, दूसरा मेरा डायलॉग नहीं लिखेगा। वेरी ट्रू।
0: लेकिन अगर मैं जीवन इस स्मृति से चल रही हूँ कि वो क्रिएट कर रहे हैं, वो क्रिएट कर रहे हैं, तो फिर मेरी जीवन की जो पूरी यात्रा चलेगी वो कोई ना कोई और क्रिएट करता है।
1: आपने ऐसा क्यों बोला? आप कौन होते हैं करने वाले?
0: यू नो स्पेशली फॉर सिस्टर्स, कहते हैं पहले जीवन उस तरह चली जिस तरह पिता चाहता था, फिर जीवन उस तरह चली जिस तरह पति चाहता है, फिर जीवन उस तरह चली अब जब
1: बेटा।
0: दिस इज अ फीलिंग ऑफ
1: कंप्लीट हेल्पलेसनेस।
0: हेल्पलेसनेस। सो ऐसा व्यक्ति अपने प्रति अंदर कैसे सोचेगा, क्या सोचेगा अपने प्रति? यू नो इज दैट पर्सन एंजॉयिंग लाइफ? नो, दैट पर्सन इज जस्ट सेइंग कि आई एम लीडिंग माय लाइफ अकॉर्डिंग टू दिस पीपल। सो समवेयर हमें रुक कर सोचना पड़ेगा कि एम आई लीडिंग माय लाइफ अकॉर्डिंग टू माय सेल्फ और एम आई लीडिंग माय लाइफ अकॉर्डिंग टू अदर पीपल। ये सेंटेंस बहुत सिंपल साउंड कर रहा होगा, बट आई एम टेलिंग यू many people वो एक चीज बोलते हैं, I have no choice.
1: Maximum, yes.
0: I have no choice. वो अपनी परिस्थितियों की एक ऐसी ऐसी लिस्ट बना लेंगे, कहेंगे I have no choice. Take this sentence, I have no choice, and explore. कौन सी ऐसी परिस्थिति है जिसमें आपके पास चॉइस नहीं है? क्योंकि जिस बार आपने अपने आप को एक बार भी ये सेंटेंस दिया I have no choice, मतलब आपके जीवन आपके हाथ से निकल गए।
1: लेकिन मुझे उस सपोज टीचर के साथ पढ़ना ही है जो मुझे बार बार संभव वो मुझे नाराज है। बहुत सारे बच्चों के सामने भी ये बात आती है कि टीचर इज नॉट लाइकिंग मी, यू नो दिस इज अ मेजर प्रॉब्लम विद स्टूडेंट्स। तो वो मुझे उसके क्लास को अटेंड करना ही है, लेकिन वो बार बार मुझे निग्लेक्ट करता है या मुझे पॉइंट आउट करता है, ये बहुत बच्चे बोलते हैं। तो तब इस सिचुएशन में मेरे पास कोई चॉइस नहीं है।
0: क्या चॉइस कौन सी चीज की? नहीं
1: कि मुझे उनके पास उन्हीं से पढ़ना ही पड़ेगा।
0: हाँ।
1: मुझे वो सब लेना ही पड़ेगा।
0: हाँ।
1: बट मैं रिस्पॉन्ड क्या करूंगा
0: वो मेरी चॉइस है। देखो चॉइस, वी आर नॉट टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ अगेन, अब आपकी जिनसे शादी हुई है अब थोड़ी आप अपनी चॉइस एक्सरसाइज करेंगे। हाँ, उस केस में भी हम कर देते हैं आजकल। या आपके जो पेरेंट्स हैं, आपके जो बॉस है, आपका जो टीम है, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट चॉइस देयर। वी आर टॉकिंग अबाउट हर सीन में, हर स्टेप पर रुक कर हमें अपने आप को देखना पड़ेगा कि कहीं भी गलती से भी हम अपने आप को ये तो नहीं कह रहे कि आई डोंट हैव अ चॉइस। ये एक बहुत, क्योंकि फिर एक बार ये सेंटेंस सेट इन हो जाता है तो हम हर सिचुएशन में इसको अप्लाई कर देते हैं। आई हैव नो चॉइस। यू नो अ सिंपल थिंग लाइक कई ऑफिसेस में कई लोगों को अपने सीनियर के प्रेशर के अंडर कुछ कई बार गलत काम करना पड़ जाता है, या करप्शन या झूठ बोलना या व्हाटएवर व्हाटएवर। अब वो करते हैं, ठीक है, करते हैं, खुद करते हैं, लेकिन करते करते पता क्या कहेंगे? आई हैव नो चॉइस। कौन कर रहा है? आई एम डूइंग इट। व्हाट डू आई मीन व्हेन आई एम सेइंग आई हैव नो चॉइस? हम क्या कर रहे हैं?
1: लेकिन मैं अगर नहीं करूंगा तो मेरी नौकरी चली जाती है सपोज,
0: दैट्स ऑल्सो अ चॉइस।
1: हाँ, बट देन मेरे घर पे फिर कैसे हो?
0: नो इट्स ओके, आप कर रहे हैं। वी आर नॉट सेइंग कि आपको करना है या नहीं करना है, वी आर नॉट डिबेटिंग ऑन दैट। कि आपको करप्शन अगर आपको करनी पड़ रही है, ब्राइब लेनी पड़ रही है ऑफिस की तरफ से, तो आपको लेनी चाहिए या नहीं?

0: यानी छह, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट. क्वेश्चन इज कि आप दोनों में से जो भी ऑप्शन कर रहे हैं,
1: कर तो आप रहे हो ना,
0: वो फिर भी आपकी चॉइस है. अपने आप को ये कहकर नहीं करवाना कि आई हैव नो चॉइस. व्हाई वी आर सेइंग दिस, क्योंकि ये सेंटेंस हमें अंदर ही अंदर खाली कर देता है कि मेरे जीवन मेरे हाथ में तो है ही नहीं. एंड दिस इज अ फीलिंग ऑफ होपलेसनेस फॉर एनीबडी.
1: नो, बट गिवन द चॉइस आई वुड नॉट लाइक टू लीड माय लाइफ लाइक दिस. दिस इज व्हाट पीपल
0: एक्सरसाइज योर चॉइस. देन एक्सरसाइज योर चॉइस. आई मेट एन ऑफिसर, उनको इट वॉज ऑन अ बिग लेवल डील, तो वो कुछ ऐसे 6 करोड़ की डील थी. एंड उनको कहा गया था कि उनको ऐसे वेंडर से वो लेना है ताकि दैट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट वुड गेट 6 लाख्स आउट ऑफ इट. ही डिडंट डू इट. ओके, ही सेड इट जस्ट डजंट गो वेल विद मी, तो मैं नहीं कर रहा. तो वो सीनियर ने उसी टाइम कह दिया कि यू विल हैव टू पे फॉर दिस व्हाट यू हैव डन. ही सेज ओके. तो नहीं किया, तो अपनी चॉइस उस टाइम एक्सरसाइज की. अब क्या हुआ उसके बाद, उनके नीचे वालों की प्रमोशन हो गई और इनकी नहीं की गई. नाउ दिस ब्रदर हैज गॉन इनटू डिप्रेशन. ठीक है, सो ही सेज मेरा मुझे डिप्रेशन हो गया. अब डिप्रेशन किस बात से हो गया कि मेरी प्रमोशन नहीं हो रही, मैं वहीं रुक गया हूँ, कोई रीजन नहीं दिया जा रहा, कुछ नहीं हो रहा. सो आई सेड इज देयर एनी रीजन. ही सेज आई थिंक दिस इज द रीजन कि मैंने उनकी वो बात नहीं मानी थी. सो आई हैव टू बी वेरी क्लियर कि जब मैं अपनी चॉइस एक्सरसाइज कर रहा हूँ, आई ऑल्सो हैव टू बी रेडी कि उस चॉइस के साथ मुझे जो भी रेपरकशन आएंगे, दैट इज ऑल्सो माई रिस्पॉन्सिबिलिटी. बेसिकली अपनी जीवन की हर निर्णय की, हर डिसीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो जैसे ही रियलाइज दैट, इसे ठीक है, तो मैंने ही चूज किया था ना कि मुझे नहीं करना है वो काम, तो उसका जो भी रिजल्ट हो वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. यस, इट्स फाइन ना. सो बेसिकली दोनों अब उस चॉइस में कि आप ब्राइब ले या ना ले, डिसीशन वट एवर यू टेक, दैट्स नॉट द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज दोनों डिसीशंस आपकी ही चॉइस है. अगर आप अपने आप को ये कहते हैं कि मुझे अपने परिवार को संभालना है, मेरे पास कोई और जॉब नहीं है, तो वो भी मेरा ही डिसीशन है, वो भी मेरी ही चॉइस है. मेरी सिचुएशंस के अनुसार, मेरी जजमेंट पावर मुझे जो भी कर रही है, ये डिसीशन मैं ले रही हूँ. लेकिन प्लीज डू नॉट टेल योरसेल्फ आई हैव नो चॉइस. दिस इज द चॉइस आई एम मेकिंग. अगर नहीं लेते हैं, उसका जो भी रिपरकशंस फेस करना है, दिस इज ऑल्सो द चॉइस आई एम मेकिंग. क्योंकि हर स्टेप पर ऐसी कोई सीन ही नहीं होती जिसमें हम चॉइस नहीं लेते हैं. सिर्फ ये है, हम अपने आप को कहते क्या है, आई हैव नो चॉइस. तो वो कहने से हम एक जो जीवन की यात्रा पर चलते हैं, वी नॉट वेरी एम्प्टी इनसाइड के मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं है, सब कुछ ऐसे चल रहा है. एक्चुअली हर चॉइस हर डिसीजन हम ले रहे हैं, लेकिन लेते हुए भी क्या कहते हैं
1: कि आई
0: हैव नो चॉइस. दैट्स अ वेरी वेरी डिमोटिवेटिंग सेंटेंस फॉर माई सेल्फ.
1: लेकिन शिवानी, इनफैक्ट हमारे पास वक्त नहीं है, लेकिन इसमें मैं बात ये करना चाहूंगी कि कई बार हम चाहते नहीं है उस राह पर चलना, और तब हमें वो करना पड़ता है. अगर मजबूरी इतनी ज्यादा,
0: कौन कराता है?
1: नहीं, हम खुद ही कर रहे हैं, हम खुद ही कर रहे हैं. लेकिन अगर हम वो नहीं करें, ठीक है, तो फिर कहा जाता है कि ये जो बात कही जाती है कि सच की राह बहुत मुश्किल है और उस पर बहुत कांटे आएंगे और ये होगा, तो फिर हम क्या सेक्रीफाइस करते जाएं?
0: क्या सेक्रीफाइस कर रहे हैं आप?
1: कहीं ना कहीं मेरे पूरे परिवार को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा.
0: सो इट ऑल डिपेंड्स ना आपके जीवन में आपकी प्रायोरिटीज क्या है. दैट्स व्हाई इट विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल. दैट्स व्हाई वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट कि आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. क्वेश्चन इज कि दोनों में से जो भी करोगे, जस्ट रिमेम्बर दैट इट्स योर चॉइस. नो वन गॉट इट डन फ्रॉम यू. ये कहना कि उन्होंने मुझसे ये करवा लिया या उनकी वजह से ये हो रहा है, मेरे पास कोई चॉइस नहीं है.
1: लेकिन एक्चुअली अगर हम ये कहते हुए करते हैं कि आई हैव नो चॉइस,
0: इट जस्ट मेक्स मी फील गुड. नथिंग एल्स.
1: आई नो.
0: दैट्स ऑल.
1: So again, my first responsibility is towards me, that I have to feel good.
0: Not feel good like this.
1: I have to be happy.
0: You're not being happy when you say I have no choice. You know, agar mujhe aaj bribe leni bhi pade, let's say now it like this. If I tell myself I am choosing to do this, then I'm more in control rather than I'm doing it, but I'm not choosing to do it. To andar kya hoga? Kyunki uska jo repercussion aane wala hai. हर डिसीशन का जो रिपरकशन आने वाला है, वो फेस कौन करने वाला है? मैं फेस करने वाली हूँ. वेदर इट कम्स इन द लॉ ऑफ कर्मा और विच एवर वे, आई हैव टू फेस द रिपरकशन. एंड जब

0: रेपरकशन मेरे सामने आएगा, आई शुड बी रेडी टू से हाँ ये मैंने किया था और इसका ये मेरे सामने रिजल्ट है।
1: तो मैं
0: अगर आई से ये मैंने नहीं किया था, ये मेरे बॉस ने करवाया था या ये मेरी वाइफ ने करवाया था, या देन वो रिजल्ट मेरे सामने जब आएगा आई विल नॉट बी एबल टू फेस इट। सो बेसिकली माई होल लाइफ गोज आउट ऑफ कंट्रोल। जब एक्शन कर रहे हैं तो भी कंट्रोल में नहीं, और जब उसका रिजल्ट आ रहा है तो भी कंट्रोल में नहीं।
1: इनफैक्ट इट्स आई कैन अंडरस्टैंड यू नो व्हाट यू आर ट्राइंग टू से कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज क्या है कि अदरवाइज हम बहुत मजबूर अपने आप को फील करते हैं, और वो मजबूरी और हेल्पलेसनेस वाला जो पूरा फैक्टर है वो कहीं ना कहीं हमारे आगे की जिंदगी में भी एक वन हमें हमारा ये संस्कार बन जाता है। दूसरा कहीं ना कहीं मैं अपने आप को जस्टिफाई करने लगती हूँ, जस्टिफिकेशन देती हूँ अपने आप को पूरे ओपन
0: जाऊँ। हम गलत या सही जो भी है करते भी जाते हैं और ये भी बोलते रहते हैं आई हैव नो चॉइस, मैं कर रहा हूँ। झूठ बोल रहे हैं, बोलते जाएंगे और हर बार क्या बोलेंगे, मेरे पास चॉइस नहीं है, उन्होंने करवाया। तो उससे क्या होता है, आई गिव माई सेल्फ परमिशन टू डू सर्टेन थिंग्स विच एक्चुअली आई इंटरनली फील आई डोंट वॉन्ट टू डू।
1: अगेन इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर हम और बातचीत करेंगे, बिकॉज कई सारी चीजें अभी हैं जो अगर मैं उतना स्ट्रांग नहीं हूं, अगर तो मैं वो स्ट्रेंथ कहां से लेकर आ सकती हूँ, वट इज इट दैट कैन गिव मी स्ट्रेंथ, यू नो दैट लॉट ऑफ थिंग्स इसके ऊपर जिसपे हम बातचीत कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल थैंक यू सो मच आज की बातचीत के लिए। ओम शांति। आज की इस बातचीत से जुड़ी कोई बात अगर आपके पास आती है तो आपका हम स्वागत करते हैं। आप हमें फोन पर या फिर ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर है 0999-344-666, 0987-333-555, 0999-744-555। हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@bkmail.org।

अवेकनिंग विद धर्मा कुमारी इसमें आज इतना ही, लेकिन सेल्फ मैनेजमेंट से जुड़ी अभी बहुत सी बातें जानना बाकी है और देखना बाकी है कि किस तरह से हम इसे अपने जीवन में अपना सकते हैं। फिलहाल आपसे विदा लेते हैं, ओम शांति।

0: रिश्तों में सरलता और प्यार बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: एंगर इज अ वेपन जिसको हमने हर परिस्थिति में यूज करना शुरू कर दिया है। व्हाट वी आर नॉट रियलाइजिंग दैट वेपन डजंट वर्क, इट्स नॉट प्रोवाइडिंग एनी रिजल्ट, लेकिन फिर भी हम उसी शस्त्र को बार बार यूज करे जा रहे हैं और उससे चोट दूसरे को नहीं लगती उतनी ज्यादा, वो भूल जाएगा। बॉडी के अंदर भी उसका इफेक्ट होता है, माइंड पर भी होता है। तो अगर हम ये याद रख लें कि ये एक हथियार है मेरे हाथ में जिससे मैं दूसरों को मारने की कोशिश कर रहा हूं, उसका किसी और पर कोई अच्छा इफेक्ट नहीं होने वाला है, वो सिर्फ मेरा ही नुकसान करे जा रहा है, तो हम उसको धीरे धीरे ऑटोमेटिकली खत्म कर देंगे। बहुत ईजी है खत्म करना, इट्स जस्ट दिस अंडरस्टैंडिंग, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। कि दूसरा, सबसे पहला निवारण यही होगा कि दूसरा मुझे गुस्सा नहीं दिला सकता, ये खुद मेरे हाथ में, तो आधा तो इसी से खत्म हो जाता है, क्योंकि अभी तक हमेशा कोई और मुझे गुस्सा दिला रहा है। ये अंडरस्टैंडिंग ही अपने आप, क्योंकि मैं खुद से गुस्सा नहीं करना चाहूंगी जब मुझे समझ में आ गया कि उसका इतना डैमेज है, लेकिन मैं खुद से नहीं कर रही ना, आप मुझे दिला रहे हैं, तो देन आई फील कि नथिंग इज इन माई कंट्रोल, सो दैट इट सेल्फ चेंजेस सो मच ऑफ द पर्सपेक्टिव देखने का।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: तैयारियों से नए अवसर खड़े करते हैं। सुनते रहिए पुणे की आवाज़ 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।
1: कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जिंदगी तेरी जुल्फों की नरम छाँव में गुजरने पाती तो शादाब हो भी सकती थी। ये रंजो गम की स्याही जो दिल पे छाई है तेरी नजर की शुआओं में खो भी सकती थी, मगर ये हो न सका। मगर ये हो न सका और अब ये आलम है कि तू नहीं, तेरा गम, तेरी जुस्तजू भी नहीं। गुजर रही है कुछ इस तरह जिंदगी जैसे इसे किसी के सहारे की आरजू भी नहीं। न कोई राह, न मंजिल, न रोशनी का सुराग, भटक रही है अंधेरों में जिंदगी मेरी। इन्हीं अंधेरों में रह जाऊंगा कभी खोकर। मैं जानता हूं मेरी हम नफस, मगर यूं ही कभी
0: 0102 बोरियत की एरर, नएपन की कमांड रिजेक्टेड। अब हर चीज हर जगह तो नहीं मिलती, कुछ नयापन चाहिए तो सुनिए पुणे की आवाज़ 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज फिर आप सबका स्वागत। जीवन जीने की कला को हम सीख रहे हैं लाइफ स्किल्स की इस श्रृंखला में। अपने विचारों को देखा, जाना कि कितनी तरह के विचार होते हैं। अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो थॉट्स या विचार हम क्रिएट करते हैं क्या असर डालते हैं। हर बार की तरह हमारे साथ हैं जाने माने साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर गिरीश पटेल, हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सुश्री शिवानी। आप दोनों का स्वागत। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: डॉक्टर पटेल, एक बड़ा खुलासा हुआ है हमारे सामने है अब खुली किताब की तरह कि हम क्या क्रिएट कर रहे हैं। जो भी विचार है, जिस तरह के जितनी तरह के विचार हैं आपने कहा, वो हमारे द्वारा क्रिएट होते हैं। अभी तक हम अवेयर नहीं थे, अब धीरे धीरे पता चल रहा है। ये जो विचार हैं, ये जो थॉट्स हम क्रिएट कर रहे हैं, ये हमारे जीवन पे तो डाल रहे हैं असर। अगर है क्या हमारे बॉडी पर भी इनका असर होता है?
2: नहीं, डेफिनेटली पहला असर तो बॉडी पे होता है क्योंकि नहीं, आत्मा शरीर से रिलेटेड है तो फर्स्ट इफेक्ट तो बॉडी पर ही है, फिर सारे जीवन पर है, लाइफस्टाइल पर है। और मानते हैं कि शरीर में 75 ट्रिलियन सेल्स है, तो आपका प्रत्येक विचार यह सभी 75 ट्रिलियन सेल्स पर इफेक्ट करता है।
0: बॉडी और ये पर्सनालिटी, दे आर टू डिफरेंट एस्पेक्ट। तो जो जो हम थॉट कर रहे हैं वो इस शरीर पर, इस पर भी असर डाल रहा है, ऑर्गन पर भी डाल।
2: बिल्कुल, हाँ, थॉट भी डालेगा और जो पर्सनालिटी बनेगी तब तो वो थॉट आपका बार बार रिपीट होगा। हाँ। और उससे अच्छा और जो नेगेटिव या पॉजिटिव इफेक्ट है वो बढ़ती जाएगी।
0: ओके।
2: बात तो है कि भी वन सिंगल थॉट अफेक्ट्स प्रैक्टिकली ऑल द 75 ट्रिलियन सेल्स ऑफ बॉडी।
0: ओके।
2: है ना, मतलब इतनी इसको अगर हम समझ ले तो इट्स क्वाइट एन डीप रूटेड थिंग कि भी प्रत्येक विचार पर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि विचार में थोड़ी सी भी नेगेटिविटी है तो नेगेटिव इफेक्ट हो रही है, अगर उसमें पॉजिटिविटी है तो पॉजिटिव इफेक्ट हो रही है।
0: ओके। और ये कैसे डाल रहा है?
2: आत्मा का स्थान नहीं, ब्रेन का एक सेंट्रल पोर्शन है जिसको हाइपोथैलेमस कहते हैं। हाइपोथैलेमस को ये भी माना गया है कि वो दिमाग का भी दिमाग है। तो वहां पर आत्मा निवास करती है और हाइपोथैलेमस इमोशन से सबसे ज्यादा सेंसिटिव है, और जब एक भी नेगेटिव विचार आया तो हाइपोथैलेमस पर इफेक्ट होगी और उसका असर फिर सारे शरीर पर होगा, क्योंकि हाइपोथैलेमस का सारा कनेक्शन ब्रेन के साथ भी है, डिफरेंट सिस्टम्स के ऊपर भी है।
0: ओके। तो मतलब मेरा एक एनर्जी, एक जो थॉट है वो हाइपोथैलेमस को अफेक्ट कर रहा है।
2: हाइपोथैलेमस में कई सेंटर्स है। अगर ने आम भाषा का उपयोग करना हो, मेडिकल लैंग्वेज को बाजू में रख दे, तो ये एक स्विच बोर्ड की तरह, जैसे भी एक स्विच अपने ऑन की, फैन स्टार्ट हो गया, दूसरा स्टार्ट किया, गीजर स्टार्ट हो गया, तो ऐसे ही हाइपोथैलेमस में अलग अलग स्विचेस है। एक स्विच पर इफेक्ट हुई तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, एसिडिटी।
0: अच्छा।
2: बढ़ जाएगी।
0: मतलब कोई एक इमोशन से एसिडिटी
2: बढ़ गई। हाँ।
0: दूसरा इमोशन से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ गया, तीसरे इमोशन से घबराहट बढ़ गई, ऐसा
2: ये भी हो सकता है। और जो

0: दूसरी बात विच इज साइंटिफिकली प्रूवन कि अगर एक सेंटर हम कह भी डिफरेंट स्विच हाइपरथैलेमस में है, एक स्विच अगर ऑन हो गई तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, हार्ट अटैक आ सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा इससे, दूसरी स्विच ऑन हुई तो डिफरेंट इफेक्ट्स होगी और इमोशंस की भी इफेक्ट पॉसिबल है। ये अपने आप में एंटायरली डिफरेंट सब्जेक्ट है कि कैसे क्रोध की क्या इफेक्ट होगी, लोभ की क्या इफेक्ट होगी, अगर क्रिटिसिज्म हुआ तो क्या इफेक्ट होगा।
1: मेरे ऑर्गन में जो प्रॉब्लम आई है मैंने वहीं तक सीमित रखा, उस दवाई के साथ ही उसको रिलेट किया या फिर मैंने वो फिजिकल एक्सरसाइजेज और उन तक किया। मतलब व्हाई आई लिव्ड इन दिस फूल्स पैराडाइज, मुझे समझ में क्यों नहीं आया।
2: नो, इट्स नॉट दैट हमें समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि आज इस बात की भी अवेयरनेस है कि माइंड इज हैविंग एन इफेक्ट ऑन द बॉडी। ये बात की भी अवेयरनेस है कि अगर आप बॉडी का कितना भी ध्यान रख लें तो भी अगर माइंड हेल्दी नहीं है, सो मेनी यंग प्रोफेशनल्स टुडे आर सफरिंग फ्रॉम हार्ट अटैक्स एट अ वेरी यंग एज। और इनसे अगर बात की जाए तो ये कहेंगे हम स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन हैं, हम अल्कोहल भी नहीं लेते, हम हर मॉर्निंग अपनी वॉक पर जाते हैं, हम फिजिकली भी ओबीस नहीं है, कुछ नहीं है। तो लॉजिकली देर इज एब्सोल्यूटली नो रीजन के ऐसे हेल एंड हार्टी एंड जो राइट लाइफ स्टाइल, जो हम कहते हैं ना राइट लाइफ स्टाइल, वो लीड कर रहे हैं तो फिर इसको इतनी यंग एज में मिड थर्टीज और समथिंग या अर्लियर देन दैट हार्ट अटैक हो रहा है। दैट्स बिकॉज वी आर इग्नोरिंग वन पर्टिकुलर एस्पेक्ट कि इनका मन कितने टर्मोइल से गुजर रहा है सारा दिन। तो जबकि ये अवेयरनेस आ गई, अब जैसे हम बॉडी का ध्यान रखते थे हमें मन का रखना है, लेकिन हम मन का क्यों नहीं रख रहे थे, क्योंकि हमने कहा वो तो विदाउट बिकॉज ऑफ द सिचुएशन है। सो वी एक्सेप्टेड स्ट्रेस, सी वी एक्सेप्टेड, ये सारी इमोशंस जो आज हम सोच रहे हैं कि वी आर क्रिएटिंग, वी आर अंडरस्टैंडिंग दैट अर्लियर वी थॉट वी आर नॉट क्रिएटिंग, दे आर हैपनिंग बिकॉज ऑफ द सिचुएशन। सो इफ आई एम अ कॉर्पोरेट लीडर और इफ आई एम वर्किंग इन अ मल्टीनेशनल जहां ना दिन है ना रात है, सुबह निकलना है रात को आना है, फैमिली टाइम नहीं है, स्ट्रेस बहुत है, कॉम्पिटिशन बहुत है, तो दीज इमोशंस आर अ पार्ट ऑफ माई लाइफ एंड इफ दीज इमोशंस आर अ पार्ट ऑफ माई लाइफ देन दीज डिजीजेज ऑल्सो
1: पार्ट ऑफ माई लाइफ। इनफैक्ट ओ हो येस, बिकॉज आई कैन नॉट चेंज,
2: आई कैन नॉट चेंज देम। दे थॉट टू चेंज मीन्स फिर आप अपनी जॉब छोड़ दो या आप अपने एम्बिशंस को कम कर दो, संन्यास नहीं भी तो भी यू नो इफ यू टेल समवन थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाओ, थोड़ा सा कहेंगे कॉम्पिटिशन इतना कि अगर मैं थोड़ा भी स्लो हो गया तो। आज लीडर छोड़ो, एक नॉर्मल जॉब के लिए भी, जॉब एक है, लाइन में 100 लोग खड़े हैं जो उस जॉब के लिए रेडी है, थोड़ा सा आप स्लो डाउन हो जाओ द कंपनी विल से ओके यू आर नॉट नीडेड, लेट अनदर पर्सन वॉक इन। सो वी हैव एक्सेप्टेड दैट सिचुएशंस चैलेंजिंग है तो स्ट्रेस तो होना ही है, द बिगेस्ट सो कॉल्ड रॉन्ग बिलीफ सिस्टम, यू नो, जिसकी वजह से हम अपना कितना नुकसान कर रहे थे। जब तक सिचुएशन नहीं चेंज होगी इमोशन नहीं चेंज हो सकती, और जब तक इमोशन नहीं चेंज होगी तो हेल्दी होना पॉसिबल नहीं
1: है।
2: सो वी एक्सेप्टेड, सो वी थॉट कि चलो जितना मैं ध्यान रख सकता हूँ उतना रख लेता हूँ, एंड दैट वाज ऑल फिजिकल। बट द आयरनी इज कि इतना ध्यान रखने के बावजूद बीमारियां तो, लेट्स गो बैक 20 इयर्स बैक, नो कॉन्सेप्ट ऑफ मिनरल वाटर, नो कॉन्सेप्ट ऑफ जॉगिंग पार्क्स, डायट अवेयरनेस, आज तो हर न्यूज़पेपर में डायट पर आर्टिकल है, आज हम स्प्राउट्स खा रहे हैं, मतलब नेचुरोपैथी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं और बीमारियां फिर भी बढ़ती जा रही है, बिकॉज वन इम्पोर्टेंट डायमेंशन इज बींग कन्वीनियंटली इग्नोर्ड जस्ट बाय सेइंग टू योरसेल्फ कि ये तो पॉसिबल है ही नहीं। तो जितना इस तरफ ध्यान रख सकते हो रखो, फिजिकली सारा रख लो ताकि कुछ तो एक बैलेंस, विच इज वेरी गुड कि एटलीस्ट वी आर टेकिंग केयर ऑफ सेल्स फिजिकली, लेकिन बैलेंस तो मतलब जो एक डोमिनेंट फैक्टर है कि इफ इट इज माइंड ओवर मैटर। आज दिन तक हम कहते थे अगर हेल्दी होंगे तो खुश होंगे, इट वॉज सपोज टू बी अगर खुश होंगे तो हेल्दी होंगे। यू नो यू आस्क समवन क्या चाहिए, खुशी चाहिए, खुशी कैसे मिलेगी, हेल्दी होंगे तो खुश होंगे, हेल्दी होंगे तो खुश होंगे नहीं, खुश होंगे
1: तो हेल्दी
2: होंगे। तो इक्वेशंस ही तो सारे,
0: लेकिन गहराई में भी नहीं गए, जो शिवानी बहन बता रहे हैं कि ये तो समझ में आता है कि स्ट्रेस की इफेक्ट होती है, लेकिन वो डीप में क्या है, क्यों हो रहा है, उसको हम अंडरस्टैंड अच्छे से आज तक नहीं कर पा रहे। और आपने भी जो शुरू में पूछा ना, वो बात भी एक प्रकार से सही है कि लोग आज ये समझने लगे कि हम आसन कर लेंगे, कुछ प्राणायाम कर लेंगे, ठीक हो जाएंगे, ये मन पर ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये गहरी बात है, हमें समझ में नहीं आया
1: और हमारे बस में ही नहीं।
0: हाँ, ये भी
1: कि हम उस पर कुछ कर ही नहीं सकते, और वो मतलब क्योंकि अगर वो करना है तो मुझे अपना लाइफ स्टाइल बदलना

0: पड़ेगा, मुझे अपनी एम्बिशन छोड़नी पड़ेगी। लेकिन अगर हम ये सोच रहे हैं कि ये फीलिंग्स मैं क्रिएट कर रहा हूँ, सिचुएशन बाउंड नहीं है, अगर हम ये रियलाइज कर लें, देन लेट्स लुक एट इट कि क्या असर पड़ता है हमारी बॉडी पे, क्योंकि उस तरफ तो हमने जाने की कोशिश नहीं की, तो क्या असर डालती हैं ये फीलिंग्स।
1: हमारे शरीर में एक प्रणाली है जिसको कहते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, क्योंकि ऑटोमेटिक काम करती है, जिससे शरीर के मसल्स को कंट्रोल करना हमारे बस में, हाथ को ऊपर नीचे करना, परंतु जो इंटरनल सिस्टम्स हैं, जैसे कि हार्ट की एक्टिविटीज, डाइजेशन, किडनी का फंक्शन, ये सब ऑटोमेटिक चलते हैं। अब जब नींद में सोए हैं तब भी वो अपना नियमित रूप से कार्य कर रहे हैं, इसी के कारण उसको ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कहा। ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के दो पार्ट है, एक है सिंपैथेटिक और दूसरा है पैरासिंपैथेटिक। जो सिंपैथेटिक प्रणाली है, अधिकतर जो हमने टॉक्सिक इमोशंस कहा, वो सभी टॉक्सिक इमोशंस सिंपैथेटिक सिस्टम को बहुत तेज चलाएंगे, और सिंपैथेटिक सिस्टम वो एक्सेलरेटर की तरह है, और जब सिंपैथेटिक सिस्टम फास्ट काम करती है तो हार्ट रेट बढ़ जाएगी, सांस की गति तेज हो जाएगी, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, जो हृदय की अपनी धमनियां है, ब्लड वेसल्स है, वो भी छोटी सी हो जाएगी, मसल्स है वो सारे टेंशन में आएंगे, मुंह सूखने लगेगा।
0: तो ये जो हमें फिजिकल सिम्टम्स दिखते हैं जब हम यू नो इन इमोशंस को महसूस कर रहे होते हैं, सो इट्स बिकॉज ऑफ द
1: सिंपैथेटिक ओवर एक्टिविटी।
0: ओके,
1: जैसे कि सिंपैथेटिक ओवर एक्टिविटी में डाइजेशन खत्म, आपको भूख नहीं लगेगी, इवन कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, मसल्स कॉन्ट्रेक्शन में जाते तो बैक पेन होता है, इवन माइग्रेन हेडेक कैन रिजल्ट बिकॉज ऑफ ओवर एक्टिविटी ऑफ सिंपैथेटिक सिस्टम। तो ये सारा एक चेन ऑफ रिएक्शन है। और जो दूसरी सिस्टम है पैरासिंपैथेटिक सिस्टम की, जो एक प्रकार से ब्रेक की तरह है, और जब पॉजिटिव इमोशंस हो, खुशी का अनुभव हो, सुख का अनुभव हो, सेटिस्फेक्शन का अनुभव हो, तो थोड़ी सी पैरासिंपैथेटिक सिस्टम ज्यादा काम करती है कि जो अच्छा है। आज वर्तमान 21वीं सदी में ब्रेक पर तो हमारा पैर ही नहीं है, ब्रेक फेल हो गई है और एक्सेलरेटर बहुत ही फास्ट चल रहा है, इसके कारण बहुत सारी जो बीमारियां हैं वह हो रही है।
0: ओके, डॉक्टर पटेल, एक मेरे को बात जाननी है। आपने कहा कि जैसे ही हमारे टॉक्सिक इमोशंस जो हैं वो आती हैं हमारे पास, यानी कि हमारे थॉट्स जो है बहुत फास्ट चलने लगते हैं, तो ये जो सिंपैथेटिक और पैरासिंपैथेटिक एस्पेक्ट्स हैं, जो ऑटोनॉमस है, ये नॉर्मल जो है नॉर्मल लाइफ में, अगर दोनों कुछ नहीं हो रहा, कोई भी इमोशन इस वक्त नहीं है, तो वो क्या एक बैलेंस में चलेंगे?
1: हाँ, तो ऑलवेज वो बैलेंस में चलेंगे। सिंपैथेटिक ओवर एक्टिविटी भी नहीं है, पैरासिंपैथेटिक भी नहीं है, और आप हेल्दीली चल रहे हो। लेकिन जब कोई ऐसी सिचुएशंस आए, क्योंकि परिस्थितियां तो आनी है, मैं नहीं कह सकती परिस्थिति
0: उसमें
1: नहीं आई,
0: वो इमोशंस क्रिएट की बार बार, आई थिंक वी नीड टू रब इनटू आवरसेल्फ,
1: कि भी वो पॉजिटिव इमोशंस को भी लाना है, मुझे थोड़ा डिटैच होना है, पीस ऑफ माइंड को अनुभव करना है, तब पैरासिंपैथेटिक सिस्टम भी एक्टिवेट होगी और हमारा जो स्वास्थ्य है वह सही रूप से चलेगा।
0: पैरासिंपैथेटिक अगर एक्टिवेट हुआ तो क्या क्या बॉडी पर इफेक्ट होता है?
1: वो अधिकतर इससे अपोजिट है।
0: अच्छा, मतलब हार्ट रेट आपका कम होगा,
1: हार्ट रेट कम होगा, ब्लड प्रेशर कम होगा, मसल्स है वो रिलैक्सेशन में जाएंगे, प्रॉपर सिक्रीशन होगा डिफरेंट जूस का, इवन हार्मोनल सिस्टम पर भी उसकी कुछ इफेक्ट है, वो बैलेंस होगी।
0: ओके, मतलब अगर पैरासिंपैथेटिक ज्यादा,
1: बहुत ज्यादा तो बुरा है,
0: तो बुरा है,
1: बट दैट इज एक्सट्रीम। अदरवाइज जो नॉर्मली है वह नेगेटिव इमोशंस है वो सिंपैथेटिक पर इफेक्ट करते हैं।
0: तो अब हमने कोशिश की थी कि गुस्सा आ रहा है तो उसके ऑपोजिट के इमोशन को क्रिएट करने की कोशिश करें, यू नो, या बिकॉज समवेयर वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हो क्या रहा है।
2: समवेयर आई थिंक अपने बिलीफ सिस्टम्स पर वर्क कर लें, क्योंकि बिलीफ सिस्टम से थॉट्स है। तो जब मुझे ये रियलाइज हो रहा है कि मेरा एक एक थॉट, एक एक गुस्से का थॉट मेरा डैमेज कर रहा है, दूसरे का तो कर रहा है, काम का तो कर रहा है, लेकिन सबसे पहले मेरा डैमेज कर रहा है, और शायद दूसरे भी से भी ज्यादा मेरा ही डैमेज कर रहा होगा। यू नो, कई बार ऑफिस में अगर किसी सीनियर को आदत हो गई है गुस्से से काम कराने की, तो कई बार जो जूनियर्स हैं उन पर अब उस बहुत बात का असर नहीं पड़ रहा, यू नो, देयर इम्यूनिटी सिस्टम बिकम्स मच स्ट्रॉन्गर मेंटली ऑल्सो, कि ये तो ऐसे शोर मचाते रहते हैं, समटाइम्स पीपल जस्ट लाफ अबाउट इट, लेकिन जो कर रहा है उसका तो नुकसान हो ही रहा है ना,
0: कि हर अंग का, जैसे कहा,
2: एंड फिर उसकी वो नेचर बनती जा रही है। एंड होता भी क्या, अगर मैं किसी को देखकर

0: irritate ho jao. I might shout at them once, lekin wo baat mere mind mein to kat, you know, kuch minutes tak to kam se kam rahegi. Ye log aise hi hain. Jab tak in par chillao nahi, fir main apne aap ko justification de rahi hoti hu apne behavior ke liye. To shor to ek minute mein machaya, lekin kam se kam 15 minute uske thoughts chal rahe honge. Iska matlab kitna ye damage ho raha hoga andar wala. This I am not realizing.
1: Even hatred. जिसको हम कभी बाहर शो नहीं करते कितनी बार और अंदर अंदर हम मतलब हेट में जी रहे हो.
0: क्यों सप्रेशन भी क्यों नहीं सप्रेस्ड. आज बहुत सारे वाइव्स फील करते हैं हम बोल नहीं पाते हम अपनी बात नहीं रख पाते हस्बैंड मेरे ऊपर प्रेशर डाल रहा है तो अंदर अंदर अंदर सप्रेशन अपनी थॉट्स को नहीं चेंज कर रहे देन इट इज मैनिफेस्टिंग इन सम काइंड ऑफ अ डिजीज ना. तो हेल्दी रहने के लिए अगर मुझे ये समझ में आ जाए एटलीस्ट मैं अपने कुछ बिलीफ सिस्टम्स को तो चेंज कर दूं. इवन इफ आई एम एक्सेप्टिंग कि स्ट्रेस तो होना ही है चलो लेट्स डू दैट सेकेंडरी. क्या मैं आज ये बिलीफ सिस्टम सिर्फ ले लूं कि मैं गुस्सा करे बिना काम कराऊंगा. ये तो मेरे हाथ में
1: आपको हेल्दी रखना.
0: हाँ, ये तो मेरे हाथ में है
1: ना.
0: एंड इट्स ओनली योर प्रोग्रामिंग ना. मैं बार बार अपने आप को ये बात कहूंगा कि मैं गुस्सा करे बिना काम कराऊंगा. व्हाई विल आई नॉट बी एबल टू डू इट. इट्स अ बिलीफ सिस्टम दैट आई हैव टू चेंज. एटलीस्ट वो इफेक्ट इमीडिएटली मुझे दिखाई देने लगेगा अपने ऊपर. धीरे धीरे मुझे ये अंडरस्टैंडिंग होगी कि अच्छा मैं अगर ध्यान रखूं आई कैन यू नो स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ माई थॉट्स देन आई विल बी एबल टू टेक केयर ऑफ स्ट्रेस ऑल्सो देन आई विल बी एबल टू टेक केयर ऑफ फियर ऑल्सो बिकॉज मुझे रियलाइज होगा कि ये सारी नेगेटिव इमोशंस मेरी अपनी क्रिएशन है. इट्स ओनली एक किसी स्टेप से शुरू करना पड़ेगा. एंड आई नॉर्मली फील कि एंगर इज एन इजियर वन टू स्टार्ट विद क्योंकि एंगर बाहर मैनिफेस्ट होता है. आज हमें अपने आप को अंदर देखना थोड़ा सा अभी भी मुश्किल है कि कहाँ वरी है कहाँ जेलसी है. जो हमें बाहर अपने आउटबर्स्ट दिखाई दे रहे हैं ना मैं क्रिटिसाइज करती हूँ एटलीस्ट आई कैन सी दैट. मैं गॉसिप करती हूँ आई कैन सी दैट. मैं शाउट करती हूँ आई कैन सी दैट. लेट मी जस्ट स्टार्ट वर्किंग एटलीस्ट ऑन दीज बिहेवियर्स. आई विल नॉट डू दिस आई विल नॉट डू दिस आई विल रियलाइज कि एटलीस्ट जहां मैंने अटेंशन दिया आई वॉज एबल टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज. जिन चीजों को मैंने अभी तक कहा था कि ये नेचुरल है धीरे धीरे आई विल बी एबल टू गो डीपर टू फियर्स इनसिक्योरिटीज रिजेक्शन.
1: आई थिंक क्योंकि अभी तक रियलाइजेशन ये ही नहीं था कि दीज आर माई क्रिएशन.
0: ये भी था कि दीज आर नेचुरल
1: होगा ही
0: करना नेचुरल. ये इतना नेचुरल नेचुरल कहने से इतनी सारी अननेचुरल चीजें हो रही थी.
2: और इवन ये बात भी की एक थॉट की इफेक्ट है. जैसे नहीं एक सिंपल थॉट कि आई एम अ पीसफुल सोल वो तो सिंपल है ना. और कुछ चीजें भले आप बिलीव नहीं भी करो दैट ऑल्सो कैन हैव अ वंडरफुल इफेक्ट. हमारी गुलजार दादी एक बहुत अच्छा उदाहरण सुनाते हैं जो एंगर की बात कही ना कि भी एक बॉस थे वो माउंट आबू में आए उन्होंने मेडिटेशन को सीखा और ये बात आई कि भी आई एम अ पीसफुल सोल. और फिर ऑफिस में गए सचमुच पीसफुल रहने लगे. लोगों को भी आश्चर्य हुआ कि भी क्या बात है. पहले तो हमारा बॉस आता था गुस्से में ही बात करता डांटता था हम लोग भी कांपते थे आते ही. अब इसमें क्या हो गया तो पीसफुल हो गया सचमुच लोगों में भी चेंज आया. दादी कहती यहां तक कि उसके जो सबॉर्डिनेट थे मेरे पास आए और कहा दादी इनको रोज आप मेडिटेशन सिखाना दो चार महीने में तो जरूर इनको कुछ न कुछ मेडिटेशन की बात सिखाना. कहा क्यों तो कि दादी ये जरूर आप करना क्योंकि पहले जब आता था ना तो हमको लगता था कि काल आ गया. अभी जब भी हमारे बॉस आते हैं तो हमको लगता है बाप आ गया. रियल थिंग ना दादी एक्सप्लेन दिस.
1: डॉक्टर पटेल अगर ये सारी चीजें इतना इफेक्ट कर रही हैं जैसा आपने कहा कि सिंपैथेटिक और पैरासिंपैथेटिक का एस्पेक्ट आ जाता है.
2: इवन देर आर अदर थ्री एस्पेक्ट्स हैं जिस पर इफेक्ट होती है. जैसे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है ऐसे दूसरी एंडोक्राइन सिस्टम. ये छोटी छोटी ग्लैंड है आपने भी सुना होगा कि गले में थायराइड ग्लैंड है साथ में पैराथायराइड है यहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड.
1: मुझे तो कई बार लगता है कि 80% जनता जो है वो हाइपोथायराइड से जूझ रही है मतलब हाइपो या हाइपर से जूझ रही है.
2: किडनी के ऊपर दो ग्लैंड है जिसको एड्रिनल कहते हैं ऐसे नहीं ओवरीज और टेस्टीज उसमें से भी कुछ हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं. तो ये जो सभी एंडोक्राइन हॉर्मोन्स है वो बहुत सूक्ष्म मात्रा में होते हैं और साथ साथ में वो केमिकल सीधा खून में चला जाता है और केमिकल्स है वो सीधे खून में नहीं जाते हैं. तो ये जो एंडोक्राइन सारी सिस्टम है वो कहते हैं कि ऑर्केस्ट्रा की तरह है.
1: डक्टलेस ग्लैंड कहते हैं.
2: हाँ डक्टलेस ग्लैंड क्योंकि वो सीधा खून में जाता है. और यह जो डिफरेंट सिस्टम्स है वो ऑर्केस्ट्रा में अगर एक इंस्ट्रूमेंट भी ठीक से नहीं बजे तो पूरा आनंद किरकिरा हो जाता है. तो ऐसे ही कहते हैं कि भी एक भी ग्लैंड में

0: थोड़ी भी दिक्कत हो तो सारी सिस्टम गड़बड़ा जाती है। और इसका कंट्रोल भी हाइपोथैलेमस में है।
1: अच्छा,
0: हाइपोथैलेमस से जो डिफरेंट ग्लैंड्स है उनको रेगुलेट करने के लिए डिफरेंट केमिकल्स रिलीज करते हैं। जैसे थायराइड एक हार्मोन रिलीज करता है थायरोक्सिन। अब थायरोक्सिन को रेगुलेट करने के लिए हाइपोथैलेमस थायरोक्सिन रिलीजिंग फैक्टर सिक्रेट करता है, दूसरा है थायरोक्सिन इनहिबिटिंग फैक्टर
1: TSH वगैरह।
0: तो अभी TSH को रिलीज भी करना है, बढ़ाना भी है, वो बैलेंस भी हाइपोथैलेमस में। और जो हमारे इमोशंस है उससे उसमें इम्बैलेंस आ जाता है, और एक इम्बैलेंस हुआ सारे के अंदर डिस्टर्बेंस निर्माण होगा। तो बात यह है कि ये इश्यू बड़ा सेंसिटिव है कि छोटा सा भी विचार आपके सारे हार्मोन्स में डिस्टर्बेंस ला देगा।
1: तो ये जो टॉक्सिक इमोशंस हैं ये इम्बैलेंस क्रिएट करते हैं,
0: वो हाइपोथैलेमस पर इफेक्ट करेंगे।
1: अच्छा, तो
0: रिलीजिंग या इनहिबिटिंग जो इफेक्टर्स है वो डिस्टर्ब होंगे, वो डिस्टर्ब होंगे तो हार्मोन्स पर भी इफेक्ट होगी। ऐसे दूसरा एक हार्मोन है कॉर्टिसोल, कि जो किडनी के ऊपर छोटी सी ग्रंथि है। अब कॉर्टिसोल की जरूरत भी है हमें क्योंकि उससे एनर्जी भी आती है, परंतु कॉर्टिसोल की मात्रा अगर बढ़ जाए तो भी उसकी बहुत नेगेटिव इफेक्ट है, यहां तक कि ब्रेन भी डैमेज हो सकता है। तो इसके कारण स्ट्रेस से या टॉक्सिक इमोशन से कॉर्टिसोल की मात्रा बहुत बढ़ जाती है।
1: हाइपोथैलेमस इफेक्ट होता है।
0: हाइपोथैलेमस पहले इफेक्ट होता है, फिर उस पर इफेक्ट।
2: इसीलिए कहते होंगे ना, जब गुस्सा आता है तो मुझे लगता है मुझे एनर्जी मिली।
0: एक बार
3: गुस्से में आप कुछ भी कर सकते
2: हैं, मस्ट बी गिविंग दैट सर्ज ऑफ एनर्जी एट दैट टाइम, लेकिन वो टेम्पररी हुआ और बार बार करने से उसका लॉन्ग टर्म फिर
0: इवन एवरी टाइम हर बार आपको गुस्सा आया भले एनर्जी लगी परंतु तो ब्रेन पर भी इफेक्ट हुई और ब्रेन डैमेज हुआ।
1: अच्छा,
0: हार्ट पर भी नेगेटिव इफेक्ट हुई, हार्ट भी डैमेज हुआ।
1: अच्छा, अगर कॉर्टिसोल ज्यादा रिलीज हो रहा है
0: तो ब्रेन पर भी डैमेज हो रहा है,
1: असर पड़ रहा है उसका।
2: एंड दैट्स व्हाई इफ वी सी मोस्ट ऑफ दीज डिजीजेस थायराइड और वंस यू गेट द प्रॉब्लम यू आर लिविंग विद इट फॉर अ लाइफ टाइम।
3: हाँ, मतलब
2: क्योंकि हम रूट को तो अगर रूट थॉट्स है उसको तो मैनेज करने के बारे में हमने नहीं सोचा, तो इनमें से जो भी इलनेसेस हैं एक बार हो गई तो हम सिर्फ दवा ले लेके उसको बस चलाते रहते हैं, उसके बैलेंस को क्रिएट कर रहे हैं। रूट को अगर ठीक कर लेते तो प्रॉब्लम भी एबल टू कम आउट।
0: और एक देखो मैकेनिज्म है, कहते पूरी आज नई ब्रांच डेवलप हो रही है मेडिसिन की, जिसको कहा है साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी, कि कैसे साइकिक फैक्टर्स है वह ब्रेन पर इफेक्ट डालते हैं और इन टर्न वो इम्यून सिस्टम को गड़बड़ा देते हैं। इम्यून सिस्टम वो एक हमारी डिफेंस मैकेनिज्म है।
3: बार बार बीमार जो हम पड़ते हैं, मतलब हम बच्चों के लिए भी कहते हैं कि बार बार बीमार
0: पड़ते हैं, तो नहीं, डिफेंस मैकेनिज्म पर नेगेटिव इफेक्ट होता है। और साथ साथ इम्यून सिस्टम जो है वो कैंसर भी निर्माण कर सकती है।
1: अच्छा,
0: जो कहीं कैंसर होते हैं ना, कहते पता नहीं क्यों कैंसर हो गया, कि वो तो स्मोकिंग नहीं कर रहा है, ठीक से एक्सरसाइज कर रहा है, वेट भी ठीक है, डाइट ठीक है, तो क्योंकि ये इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब हो गए। इम्यून सिस्टम उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाई। वास्तव में बॉडी को यह है कि भाई ये मेरी बॉडी है, उसको डिस्ट्रॉय नहीं करना है। लेकिन इम्यून सिस्टम अगर रिकॉग्नाइज नहीं करे, इसे नहीं, हमारे सोल्जर है वो हमारे लोगों को मारने लगे, रिकॉग्नाइज नहीं करेगी, दे आर अवर ओन पीपल, तो है ना, ऐसा इम्यून सिस्टम में होता है।
1: Okay.
0: और इसके कारण कैंसर होने की संभावना भी बढ़ जाती है।
2: अपने ही डिफेंस मैकेनिज्म को अटैक कर दिया
0: नहीं, क्योंकि वो फॉल्टी हो गया और रिकॉग्नाइज नहीं करने लगा।
3: वही जैसे कंप्यूटर है, उसके सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम आ गई, कोई वायरस ऐसा आया, तो उसका पूरा वो कोलैप्स ही हो गया।
2: अच्छी वैल्यूएबल फाइल्स को ही
0: डिलीट कर दिया, सारी फाइल को डिस्ट्रॉय कर दिया।
3: अच्छा, ये जो कॉर्टिसोल था, क्योंकि किडनी के बारे में बात की आपने, ये डायबिटीज को एक्टिवेट करने में भी क्या ये रिस्पॉन्सिबल?
0: कॉर्टिसोल ऐसा हार्मोन है जिसकी काफी इफेक्ट है। जैसे कॉर्टिसोल इज एन एंटी इंसुलिन हार्मोन, वो इंसुलिन से अपोजिट काम करता है, तो कॉर्टिसोल बढ़ेगा तो इंसुलिन सप्रेस होगा और डायबिटीज पर भी उसकी इफेक्ट होगी। एटलीस्ट जो कंट्रोल है डायबिटीज का वो तो डिस्टर्ब हो जाएगा। और एक जो बात गहराई से समझने की है कि जो अभी भी साइंस अब मानने लगा है, 100% नहीं मान रहे हैं, वो यह कि हमारे विचार भले यह कोई मैकेनिज्म न भी हो, अब तक तो डॉक्टर्स यही सोचते थे कि भाई मन में जैसे गुस्सा आया तो क्या मैकेनिज्म होगी ताकि मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ा, लेकिन अब तो ये मानने लगे कि विचार है वो भले मैकेनिज्म न भी हो,

0: सेंस एंटी डायबिटिक हार्मोन पर भी नेगेटिव इफेक्ट हो सकता है,
1: तो वो वाटर रिटेंशन जो होती
0: हो जाएगा
1: है।
0: या तो एक्सेस नहीं, ज्यादा यूरिन होगा और वाटर है वो शरीर के बाहर निकल जाएगा,
1: और फिर स्वेलिंग हो जाती है, ज्यादा रिटेन हो जाती है,
0: रिटेन होने से स्वेलिंग होगी।
1: हाँ।
0: तो अब तो ये मानने लगे कि वो फिजिकल कनेक्शन की भी जरूरत नहीं है, मन बॉडी पर डायरेक्टली इफेक्ट कर सकता है।
1: अमेजिंग शिवानी, मतलब दिस इज समथिंग, इट्स अ रेवोल्यूशन। और इस प्लेटफॉर्म पे अगर हम आज बात कर पा रहे, व्हाट डू यू से, लाइक
2: आई थिंक इट गिव्स अ बिग होप टू ऑल ऑफ अस दैट वी डोंट नीड टू लिव विद दीज डिजीजेस। इट्स अ बिग होप कि जैसे परिस्थितियां मैं अपने कंट्रोल में ला सकता हूँ, रिश्तों को कंट्रोल में ला सकता हूँ। हमने इतनी बार इस प्लेटफॉर्म पे कहा कि रिश्ता, चाहे उसमें दूसरा व्यक्ति इन्वॉल्व है, हम अपने सोच को ठीक कर लें, रिश्ता ठीक हो जाएगा। आज हमें समझ में आया, हम अपने सोच को ठीक कर लें, शरीर ठीक हो जाएगा, तभी तो कहीं एनर्जी इन्वेस्ट होगी। सिवाय वी लुकिंग एट इट शॉर्ट टर्म, हमें ये पता है अगर लाइफ में बॉडी ठीक नहीं चली तो जो भी चीजें हम अचीव करना चाहते थे वो नहीं कर सकते। तो आज उल्टा इट्स अ होप, इट्स फैक्ट, इट्स अ गुड न्यूज फॉर ऑल ऑफ अस कि एक और चीज मेरे कंट्रोल में आ गई है। था पहले मेरा माइंड मेरे कंट्रोल में आ सकता है, मेरे रिश्ते मेरे कंट्रोल में आ सकते हैं, आज ये कि मेरा शरीर भी मेरे कंट्रोल में आ सकता है। नहीं तो अभी तक कह रहे थे वो बीमारी हो गई, अब बीमारी हो गई तो अब ये रहेगी। आज हमें ये पता चलता है बीमारी भी मैंने क्रिएट की थी, ठीक भी इसको मैं ही करूंगा। और अगर अभी कोई बीमारी नहीं है तो मैं अगर ठीक चलूं यहाँ तो यहाँ कोई बीमारी नहीं होगी। दिस इज लाइक वंडरफुल न्यूज फॉर ऑल।
0: मैसेज तो एक इम्पोर्टेंट है कि भी डरने की बात नहीं, ये सब जान के
2: तो जैसे आपको नॉलेज मिलती है कि सब कंट्रोल में आ गया है, तो एक्चुअली तो अच्छी बात है ना कि ये चीजें मेरे कंट्रोल में।
0: पॉजिटिव समझो कि दिस इज इम्पोर्टेंट।
1: नो तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एग्जिस्ट कर रही है, आज बीमारियों से हम जूझ रहे हैं, हम उनको ठीक करने के भी रिवर्सल प्रोसेस भी कर पाएंगे।
0: डेफिनेटली वी कैन डू इट।
1: सोच को अपनी चेंज
0: करके।
1: डॉक्टर पटेल, प्रोफेसर शिवानी, थैंक यू सो मच, क्योंकि अभी तक जिंदगी के कई, जैसे आपने कहा कि रिश्तों को ठीक करने की कोशिश कर रहे थे परिस्थितियों में, अपने आप अपने थॉट को चेंज करके, लेकिन आज अगर इन बीमारियों को भी हम रिवर्स कर सकते हैं प्रोसेस को, तो उससे बड़ी तो कोई मिरेकल नहीं हो सकता। ओम शांति। सचमुच आज जो हमने बात की है, हाँ थोड़ी थोड़ी घबराहट, जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा कि डरने की जरूरत नहीं, लेकिन एक जैसे रियलाइजेशन होता है, जैसे हमें पहली बार समझ में आया था कि हमारे थॉट्स जो हैं वो हम खुद क्रिएट करते हैं, बहुत डिफरेंट लगा था। सिमिलरली हमारे ही द्वारा क्रिएट किए गए ये थॉट्स और फीलिंग्स मेरे शरीर के जितने भाग हैं, जितनी बीमारियों से आज मैं जूझ रही हूं, उनको क्रिएट करने में सहायक हुए हैं। इनफैक्ट उनके द्वारा बहुत हेल्प मिली है ये बीमारियां क्रिएट होने में। पहले ये पता चला, अब हम उसको रिवर्स करने के प्रोसेस को भी जानेंगे, लेकिन पहले इसको अच्छी तरह से आप एक्सेप्ट करें, समझें, जानें कि क्या क्या हो रहा है आपके शरीर में। और जैसे हमने थॉट्स को देखा, शायद अगर शरीर के बारे में सोचना शुरू करेंगे हमें ये रियलाइज होना शुरू हो जाएगा। कोई बात आपके मन में है, आप हमें संपर्क कर सकते हैं ईमेल पर या फिर फोन पर। हमारे फोन नंबर हैं 9999344555, 9999344666, 9873666555। हमारा ईमेल आईडी है omshanti@bkmail.org। आगे जानने की कोशिश करेंगे कि आप इस प्रोसेस को रिवर्स कैसे करें। अगर ये थॉट्स मुझे इन बीमारियों की तरफ लेकर जा सकते हैं, तो यही थॉट्स, यही इमोशन जो मैं क्रिएट कर रहा हूं, इन बीमारियों को ठीक भी तो कर सकते हैं। इसी आशा के साथ, इसी होप के साथ आपसे विदा लेते हैं। ओम शांति।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: जब हम भगवान को दोष देना शुरू कर देते हैं, दैट इज नॉट फेयर, बिकॉज पिता है, हम बच्चे हैं, वो कभी नहीं ये डिसाइड करेगा कि एक बच्चा ट्रेन ब्लास्ट का विक्टिम हो जाए और दूसरा बच्चा बिल्कुल ठीक है। एक पिता कभी ये नहीं कर सकता है, और अगर परमात्मा ये कर भी रहा है तो देन वी कैन क्वेश्चन ऑन व्हाट बेसिस। परमात्मा हमारी जीवन की यात्रा नहीं डिसाइड कर रहा है, हमारे अपने किए हुए कर्म, एंड दैट्स व्हाई थॉट्स लीड्स टू डेस्टिनी। उसमें सब थॉट्स जो अभी किए, जो बहुत सारे पहले, लेकिन वही थॉट्स अब उस डेस्टिनी को चेंज कर सकते हैं। अब जो हुआ हादसा, वो पिछले किसी कार्मिक अकाउंट की वजह से हुआ, लेकिन उस हादसे के बाद अब क्या करना है, एटलीस्ट दैट इज इन माई कंट्रोल नाउ।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

आइए आइए, दरवाजे पे क्यों खड़े हैं? अंदर आइए। ये घर है मुस्कुराहट का, यहाँ बसती है खुशियाँ। ये है पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: Assertiveness without generating anger, तभी वो रियल मायने में असर्टिवनेस होगा, क्योंकि असर्टिवनेस इनर स्टेबिलिटी। तो हम ये नहीं कह सकते कि हम गुस्सा भी है और स्टेबल भी है, क्योंकि जैसे ही गुस्सा अंदर जनरेट हुआ, चाहे वो सप्रेस कर दिया, लेकिन हम स्टेबल नहीं होते हैं तब, यू नो। तो देन आई कैन नॉट से कि आई एम इंटरनली स्टेबल बट नाउ आई एम बीइंग असर्टिव। तो इंटरनल स्टेबिलिटी मीन्स यू नो नो ट्रेस ऑफ एंगर, उसको जो पूरा खत्म होगा, इंटरनली बिल्कुल काम एंड इन कंट्रोल है, लेकिन फिर भी आपको डिसिप्लिन करना, यू नो। एंड असर्टिव जब हम होते हैं, हमें बहुत कम बोलना पड़ेगा, बहुत ज्यादा यू नो, और बहुत सोच समझ के एक एक बोल निकलेगा, क्योंकि आप फुल इन कंट्रोल है। एंगर में या सप्रेशन वाली स्टेज में आप इंटरनली डिस्टर्ब्ड है कि वो हो सकता है कि मुख से कोई ना कोई ऐसा बोल निकल ही जाए कि दूसरे को भी बुरा लगेगा और खुद को भी पश्चाताप हो।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: हिंदुस्तान हमारा स्वाधीनता संघर्ष की महाकथा आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथा के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने अनुसूचित जाति और जनजाति सहित सभी अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाएं
1: मुगल हुकूमत के अंतिम बादशाह थे बहादुर शाह जफर। क्रांति के लिए नायक की जरूरत होती है मगर 1857 की क्रांति का नायक कौन बनता। भारत में कोई ताकत ऐसी न थी जो अंग्रेजों का सामना कर पाती। ऐसे में क्रांतिकारियों की निगाहें दिल्ली के बादशाह बहादुर शाह जफर पर जा टिकी और उन्हें क्रांति का नायक बना दिया गया। बादशाह के नेतृत्व में 4 महीने तक जंगे आजादी के मतवालों ने अंग्रेजी फौज का मुकाबला किया। हर कदम पर खूनरेज मुकाबला हुआ। जब अंग्रेजी फौजें लाल किले की तरफ बढ़ने लगी तो बहादुर शाह जफर को लाल किला छोड़कर हुमायूं के मकबरे में पनाह लेनी पड़ी जहां उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। सिर्फ युद्ध में शिकस्त की बात होती तो और बात थी। अंग्रेजों ने बर्बर

अमेरिका की सभी सीमाओं को पार करते हुए उनके चारों शहजादों को कत्ल कर दिया और उनके सिर बादशाह के सामने भिजवा दिए। बादशाह ने अपना जज्ब नहीं खोया। शहजादों की लाशें शहर कोतवाली के सामने लटका दी गईं और उनके कटे हुए सिर जेल खाने के सामने खूनी दरवाजे पर। जफर, जो एक शायर भी थे, सिर्फ इतना ही कह सके, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। बादशाह को कैद करके बर्मा भेज दिया गया। बादशाह से कहा गया था कि यदि वे अंग्रेजी हुकूमत से दया की याचना करें तो उनकी सजा माफ हो जाएगी, मगर बादशाह ने ऐसा अपमानित और गैर शाही कदम उठाने से इनकार कर दिया। रंगून के जेलखाने में भारतवर्ष के अंतिम मुगल बादशाह ने 7 नवंबर 1862 को प्राण त्याग दिए।

0: क्या बात है काका, आज बड़ी फुर्सत में बैठे।
1: अरे फुर्सत निकाली है, सारे जरूरी काम निपटा कर ही बैठा हूँ।
0: वो क्यों?
1: अरे मेरे कुछ खास लोग आने वाले हैं, उन्हीं की राह देख रहा हूँ। शायर लेखक लोग हैं, पिछली दफे उन्होंने बहादुर शाह जफर के बारे में बताया था पर जिक्र अधूरा रह गया था।
0: अच्छा, तो आज आप अधूरी बात पूरी करना चाहते हो?
1: हाँ, लो वो आ गए। चल चल तू अंदर, काम दे काम दे काम।
2: क्या हाल है काका?
1: इंतजार जफर में बंदा काफिर बना घूमता है, न इधर कुछ सोचता है न उधर कुछ सोचता है।
3: भाई वाह, आप तो पूरी तरह जफर के ही रंग में रंगे।
1: हाँ, और जो बाकी है वो आज पूरा हो जाएगा। भला हो आप लोगों का जो आप लोग आ गए।
2: भाई कैसे नहीं आते, जफर से जफा तो हम भी नहीं कर सकते थे। बस जल्दी से स्पेशल चाय पिला दो तो मुकेश भाई पिछली बात को आगे बढ़ाएं।
1: हाँ हाँ अभी मंगाते हैं।
4: छोटू, ओ बेटा छोटू, चाय लगाया स्पेशल।
1: हाँ बढ़िया
3: भाई, पिछली दफा बात बहादुर शाह जफर पर मुकदमे की खबर तक तो पहुंची गई थी।
2: हाँ मुकेश बिल्कुल, तो क्या मुकदमा चला बादशाह पर?
3: अब अपने ही दीवाने खास के बाहर एक कैदी की तरह इंतजार करने को मजबूर था हिंदुस्तान का बादशाह। 82 बरस की उम्र में भी एक नूर से जगमगाने वाला चेहरा बुझा बुझा सा था उसे। खामोश तो वो अक्सर रहते थे क्योंकि खामोशी की उस दीवार के पीछे शेर व शायरी की महफिल सजी होती थी, लेकिन उस रोज एक अजीब सी बेचैनी थी उनकी खामोशी। दिलो दिमाग में शायरी नहीं बल्कि वो सवाल, वो तोहमतें गूंज रही थी तो शायद उन पर लगने वाली थी। घंटे डेढ़ घंटे की उस जद्दोजहद के बीच आखिरकार जब घड़ी ने 12:30 बजे का घंटा बजाया
5: अबू जफर सिराजुद्दीन मोहम्मद बहादुर शाह जफर हाजिर हो,
1: चलिए हुजूर।
6: उधर बैटल टीनो,
3: अपने ही दीवाने खास में जफर एक ऐसी जगह बिठाए गए जो हिंदुस्तान के बादशाह की शान के खिलाफ थी, लेकिन अफसोस कि कुछ नहीं कर सकता। उनका सबसे वफादार नौकर उनके पीछे खड़ा था और उनकी बुढ़ापे की संतान जवां वक्त उनके बनकर और वो खुद फर्श पर तकियों के ढेर के सहारे बैठे थे। शुरू शुरू में तो ऐसा लगा कि जैसे वो बेचैनी के समंदर में गोती लगा रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे कार्रवाई आगे बढ़ी एक सिफर फंसा गया उनके दिमाग में और उस सिफर से घिरे हुए जफर बस आंखें बंद किए हुए सुनते रहे कि अपने ही मुल्क में अपने ही घर में क्या क्या तोहमतें लगाई जा रही है।
7: डोंट वरी मिस्टर जफर, कोई सजा सुनाने का पहले तुमको हम तुम्हारा गुनाहों का लिस्ट सुनवाएगा। रीडर प्लीज रीड द लेटर।

0: ब्रिटिश सरकार के पेंशन भोगी होते हुए भी बहादुर शाह जफर ने तोपों की रेजिमेंट के सूबेदार मोहम्मद बख्त खान की सेना के अफसरों और सिपाहियों को ईस्ट इंडिया कंपनी की जानकारी के बिना राज्य के खिलाफ विद्रोह और बगावत करने में 10 मई 1857 से अक्टूबर 1857 के बीच दिल्ली में रहते हुए मदद की और उकसाया भी।
1: हुजूर, ये
2: अब्बा, अब्बा हुजूर आप कुछ बोलते क्यों नहीं? अब तो बताइए कि ये सब गलत है।
3: कोई फायदा नहीं, क्योंकि ये वक्त सिर्फ सुनने का है, बोलने का नहीं।
4: साइलेंस प्लीज। दूसरा जुर्म बताया जाए।
0: आपने दिल्ली में ही 10 मई 1857 से अक्टूबर 1857 के बीच हिंदुस्तान के उत्तरी पश्चिमी राज्यों, दिल्ली के रहवासियों और खुद अपने ही पुत्र मिर्जा मुगल, जो कि ब्रिटिश सरकार का गुनहगार था, इन सभी को सरकार के खिलाफ विद्रोह और युद्ध करने के लिए उकसाया।
5: अरे खुदा से डरो, गलती कर रहे हो तुम लोग। तुम हिंदुस्तान के बादशाह से गुस्ताखी कर रहे हो।
4: Shut up, you bloody servant. Yes, mister. You carry on.
0: ब्रिटिश सरकार की तमाम बंदिशों के बावजूद बहादुर शाह जफर ने 11 मई 1857 को दिल्ली में एक देशद्रोही की तरह अपने को सत्ता संपन्न हिंदुस्तान का सत्तारूढ़ शासक घोषित कर दिया। इसके अलावा सोच समझकर अपने बेटे मोहम्मद बख्त खान और दूसरे वतन परस्त बगावत करने वालों के साथ मिलकर राज्य के खिलाफ सेना इकट्ठी कर जंग की घोषणा की।
6: बाप रे, इतनी सारी तोहमतें लगाई उन पर।
7: अरे अभी तो सबसे बड़ी तोहमत आती थी, कत्ल तक का इल्जाम लगाया गया उन पर।
0: और अब गुनाह अजीम, जिसे अंग्रेजी सरकार कभी माफ नहीं कर सकती। 16 मई 1857 के दिन दिल्ली के किले के भीतर बहादुर शाह जफर ने 49 लोगों को कत्ल किया है। इसके अलावा एक और संगीन जुर्म, 10 मई 1857 से 1 अक्टूबर 1857 के बीच बहादुर शाह ने सिपाहियों और तमाम छोटी छोटी रियासतों के हिंदुस्तानी शासकों को ईसाई और यूरोपीय लोगों का कत्ल करने की छूट दी। इसी छूट के चलते ही कई यूरोपीय औरतों और बच्चों को मौत के घाट उतार दिया गया।
6: राम राम राम, इतने संगीन जुर्मों का गुनहगार बनाया गया बादशाह को, और उन्होंने कुछ नहीं किया।
7: करते भी क्या था? मालूम था उन्हें कि उनकी नहीं सुनी जाएगी। पूरे 21 दिनों तक चली इस न्यायिक जांच के दौरान अपने ही महल में गुनहगारों की तरह 27 जून से 9 मार्च 1858 तक रोज झूठे और बेबुनियाद आरोप उनके सर मढ़े गए, और उन आरोपों की बिना पर बादशाह को 16वें अधिनियम के तहत गुनहगार ठहरा दिया गया। बतौर सजा उन्हें बेगम जीनत महल और बेटे जवान बख्त के साथ रंगून भेज दिया गया।
8: लेकिन अंग्रेजी सरकार ने ये सब किया क्यों? क्या लगाए गए सभी आरोप वाकई गलत थे?
7: अब भाई, अगर अपने मुल्क को अपना कहना गलत है तो वो गलत थे। असल में इस गलत जांच और बादशाह पर लगाए गए विश्वासघात और देशद्रोह के गलत आरोपों से कंपनी सरकार ये बात साबित करने में सफल हो सकी कि हिंदुस्तान पर अब भी किसी बादशाह का नहीं बल्कि कंपनी सरकार का ही अधिकार कायम है।
8: मतलब ये सब इसीलिए किया गया ताकि एक तो बादशाह जफर के बढ़ते असर को रोका जा सके, और दूसरा ये कि उनका ये हश्र देखकर फिर कोई क्रांति की चिंगारी ना जला सके।
7: हाँ, इसलिए जल्द से जल्द उन्हें और उनके परिवार को बतौर सजा रंगून भेज दिया गया। हिंदुस्तान का बादशाह और उसके अपने शाही लाल किले से एक सादे कमरे में आ गए। कुछ उम्र का असर था और कुछ हालात का, जो बादशाह की तबीयत बिगड़ती ही चली जा रही थी, और ऐसे में उनकी कलम से जैसे मायूसी का झरना ही फूटा।
9: बादशाह सलामत।
10: आओ आओ सीता।
9: अब तबीयत कैसी है आपकी?

सच कहें तो कितना सुकून है जिंदगी में, न आवाम की फिक्र, न मातहतों की और न कोई मसरूफियत। गोया की हर जिम्मेदारी से छूट गए हम। अब हम सो सकते हैं।

0: जरा जरा कुछ सुर तो छेड़, शायद शायद कुछ जान आ जाए हम में।
1: जी अभी लीजिए अब्बा हुजूर। ये क्या है?
0: ये बस यूं ही दिल में बसी उतासी को कागज पर उतार दिया।
1: अगर इजाजत हो तो इसे ही सुरों में पिरो दूं?
0: क्यों नहीं बेटी। इरशाद,

0: इस कम नसीब बादशाह के गुनाह को माफ कर। अब्बा मादर वतन की रखवाली कर। आया को अमन चैन बख्श। इस बंदे की फरियाद सुन अल्लाह। इस बंदे की फरियाद
1: हिंदुस्तान के बादशाह की ऐसी बेबस मौत।
2: न सिर्फ हिंदुस्तान का बादशाह बल्कि एक अजीम शायर, मुगलिया सल्तनत का सिरमौर और उस सबसे बढ़कर एक बेहतरीन देशभक्त इंसान।
3: हाँ, और इसी बात की तो सजा मिली उन्हें। मुल्क के आसमान पर छाए अंग्रेजी हुकूमत के बादलों ने ढक दिया वो सितारा।
2: पर उस सितारे की चमक अब तक बरकरार है रजा भाई। मुल्क के लिए उनकी वफादारी भरे कारनामों और उनकी शायरी के चलते ये सितारा यूं ही चमकता रहेगा, जिससे हमेशा हर दम रोशन रहेगा हिंदुस्तान हमारा।
3: अच्छा चलते हैं काका, आप भी आओ कभी शहर की तरफ।
4: शुक्रिया शुक्रिया, बिल्कुल रजा भाई बिल्कुल। अरे भाई अब आप लोग ही तो मेरे परिवार हैं शहर में है?
2: राम राम काका।
4: राम राम राम राम। अपना ध्यान रखिए रजा भाई, खुदा हाफिज।
5: जान है तो जहान है।
6: निर्देशन श्रुति धर्मेश, परिकल्पना श्रीराम तिवारी, समन्वय संजय यादव, निर्माण और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग।

0: शिव जी का ये रूप नया है।
1: आंख खोपड़ी पलके भारी समझा पुरुष ज्योति।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: सपोज आपने मुझे अभी आकर कहा कि आपका शरीर कमजोर है, एक आपकी बात को इग्नोर कर दो, ठीक है। सेकंड मैं कहूँ कि मैं कुछ नहीं कर सकती उस बारे में, है कमजोर तो है, आई कांट हेल्प, खाना ऐसा है, आजकल पानी ऐसा है, मौसम ऐसा है, तो ये कमजोर है। थर्ड ऑप्शन इज ठीक है, आई विल स्टार्ट वर्किंग ऑन इट टुडे। एंड अगर मैं आज भी उस पर काम करना शुरू कर दूँ, चाहे मैंने 50 साल कोई काम नहीं किया उसके ऊपर एंड वो कमजोर हो चुका है, बिल्कुल कमजोर हो गया, लेकिन आज भी अगर उस पर काम करना शुरू कर दिया, आई एम मूविंग फ्रॉम डिजीज टू हेल्थ। आज अगर काम करना नहीं शुरू किया उस पर, देन इट्स डिक्लाइनिंग फर्दर फर्दर फर्दर। तो आज डिप्रेशन नहीं होगा ये बात सुन के, लेकिन आज अगर ध्यान नहीं रखा और कल अगर कोई बड़ी बात आ गई तो ताकत नहीं होगी उसको फेस करने में, तब डिप्रेशन होने का चांस होता है। आज इस बात को सुनने से नहीं होना चाहिए, आज एक रियलाइजेशन होने चाहिए।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो खुशियां बांटो।
2: अला अला अला।

0: आवाज सामाजिक व सांस्कृतिक माहिती देणारे आपले रेडिओ स्टेशन ऐकत रहा 107.8 FM आनंदी रहा आणि आनंद लुटा.
1: गाण्यांच्या सुरात दडलेली संस्कारांची गोडी, पिढ्यानपिढ्या चालत असलेल्या परंपरेचा गंध आणि मनाला स्पर्श करणारी भावांची संगती, आणि हे सगळं ऐका फक्त आपल्या पुणेरी आवाज 107.8 FM वर. आनंदी रहा, आनंद लुटा.
2: अगर इच्छाएं मुझे चला रही हैं, तो मैं उसकी दास हूं, और अगर मैं इच्छाओं को चला रही हूं तो मैं मालिक हूं. क्योंकि सतयुग और कलयुग में फर्क ही यही है. इस समय हम हर चीज के दास हैं और उस समय हम हर चीज के मालिक होते हैं. अभी अधीन हैं, फिर अधिकारी होते हैं. तो मैं हर चीज की मालिक बनूं, मैं अपनी इच्छाओं की मालिक बनूं, न कि इच्छाओं की दास.

0: पुणेरी आवाज
1: सामाजिक व सांस्कृतिक माहिती देणारे आपले झकास रेडिओ स्टेशन
0: पुणेरी आवाज
1: ऐकत रहा 107.8 FM
0: आनंदी रहा आणि आनंद
2: नमस्कार. वेलकम टू अवेकनिंग विथ ब्रह्मा कुमारी. सिस्टर आपका स्वागत है बीइंग दिस में.
3: ओम शांति.
2: ओम शांति. कुछ दिनों से हम लोग बात कर रहे थे, एक प्रश्न पूछना था आपसे. ये जो हमारे पास्ट कार्मिक अकाउंट्स की आप बात कर रहे थे, तो कल मैं सोच रहा था कहीं ये एक मेरे लिए बहाना तो नहीं बन गया, चलो पिछले जन्म का है, पास्ट कार्मिक अकाउंट है, क्योंकि इसका मीनिंग मैं प्रॉपरली समझा नहीं.
3: सी, बहुत बार अपने जीवन को देखकर या आसपास किसी और के जीवन को देखकर माइंड में क्वेश्चन उठता है कि इतने ऑनेस्ट है, इतने हार्ड वर्किंग है, अपना 100% से ज्यादा लगाते हैं, फिर भी सक्सेस नहीं मिल रही. दूसरी तरफ कोई और दिखाई देता है जो शायद दूसरे तरह के तरीके यूज कर रहे हैं, उतने ऑनेस्ट भी नहीं है, लेकिन फिर भी प्रतीत होता है कि उनके पास सब कुछ बहुत अच्छा है. कोई है बहुत गरीब है, कोई बहुत अमीर है, कोई हेल्दी है, कोई बचपन से बीमार, तो बहुत सारे माइंड में क्वेश्चन उठते हैं. और फिर उठता है कि ये सब कुछ डिसाइड करने वाला कौन, मेरी डेस्टिनी, मेरा भाग्य, मेरा फेट, ये डिसाइड करने वाला कौन. और जब नहीं मिलता कि किस पर उसका ब्लेम लगाएं या किसको उसके लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराएं, तो हम कहेंगे परमात्मा ने डिसाइड किया.
2: सिस्टर, मेरी किस्मत ऐसी है, भगवान ने मेरी ऐसी किस्मत बनाई, अब क्या करे, भगवान शायद नाराज है, पता नहीं क्या मुझसे, मैंने पिछले जन्मों का पास है, क्या अजीब अजीब थॉट्स आती हैं.
3: राइट. मेरी किस्मत ऐसी है इज ओके. किस्मत मतलब मेरे साथ जो हो रहा है, मेरा भाग्य, माय डेस्टिनी. मेरी किस्मत ऐसी है, ये इज फाइन, दिख रही है मुझे कि ये मेरी किस्मत ऐसी है, लेकिन ये किस्मत बनाई किसने, वो आंसर अगर ठीक मिल जाए तो एटलीस्ट उस किस्मत में कुछ चेंजेस लाने के लिए हमें ये पता होगा कि हमें किसके पास जाना है. तो दो बिलीफ सिस्टम, अगेन वी सेड बिलीफ सिस्टम, थॉट

0: डेस्टिनी, राइट। तो दो बिलीफ्स है इसमें जो हमने बचपन से सुने। दो बिलीफ्स क्या, जो आपने एक कहा भगवान ने मेरी किस्मत ऐसी लिखी, सारी दुनिया भगवान की मर्जी से चलती है, परमात्मा मेरा भाग्य लिखता है। दिस वॉज वन बिलीफ सिस्टम विच वी हर्ड एज चिल्ड्रन। सेकेंड बिलीफ सिस्टम वॉज जैसा कर्म आप करेंगे वैसा फल आपको मिलेगा। दोनों बिलीफ सिस्टम सुने हैं, दोनों बिलीफ सिस्टम हर रिलीजन में है आज।
1: एज यू सो सो यू रीप,
0: एंड ये भी कहते हैं एवरीथिंग इज हैपनिंग अकॉर्डिंग टू गॉड्स विल। तो दोनों कहते हैं,
1: शायद ऊपर वाले को मंजूर नहीं है।
0: अब आप सोचो, पहली बात ये दोनों बिलीफ सिस्टम चेक करने से पहले पहला तो क्वेश्चन मन में ये उठना चाहिए कि दोनों कैसे वैलिड हो सकते हैं। सी इफ सपोज आई से योर गॉड राइट नाउ फॉर मी, ओके सपोज दिस इज एंटिटी गॉड एंड आई से मेरे जीवन में जो कुछ हो रहा है ये आपकी मर्जी से हो रहा है, कि मैंने आपको वो पावर दे दी परमात्मा गॉड, आपकी मर्जी से मैं उठ रही हूँ, चल रही हूँ, बैठ रही हूँ, खा रही हूँ, आपकी मर्जी से। ये वन बिलीफ सिस्टम। दूसरा बिलीफ सिस्टम, जैसा कर्म मैं कर रही हूँ वैसा फल मुझे मिल रहा है, तो उसमें आपका तो कोई रोल ही नहीं है। तो दोनों बिलीफ सिस्टम इतने कॉन्ट्रडिक्टरी है, इतने अलग है कि एक बिलीफ सिस्टम में पूरा ही कंट्रोल आपका है कि आपकी मर्जी से सब कुछ, और दूसरे बिलीफ सिस्टम में पूरा ही कंट्रोल मेरा है और आपका बिल्कुल नहीं है। एंड वंडरफुल इज कि हम बचपन से दोनों बिलीफ सिस्टम को सुनते हैं और दोनों को एक्सेप्ट किया है।
1: हम एक्सेप्ट तो हम भगवान वाले को कर लेते हैं ना, कि कुछ भी बुरा हुआ तो यार भगवान की मर्जी।
0: लेकिन ये वाला भी सब मानते हैं ना, जैसा कर्म अच्छे कर्म किए होंगे, इसका अच्छा भाग्य है, ये श्रेष्ठ कर्म करके आया होगा, कोई कुछ गलत कर रहा है तो उसको हम बोलते हैं गलत कर्म नहीं करो, इसका रिटर्न अच्छा नहीं होगा। दोनों चल रहे हैं, सारा दिन दोनों चल रहे हैं। सिर्फ जब कोई बहुत बड़ी बात होती है वो इट्स इजियर टू से भगवान की मर्जी। तो एक ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जब हम बिलीफ सिस्टम्स को सुनते हैं तो पहले चेक तो करें कौन सा राइट है कौन सा सच है, वो तो सेकेंडरी बात, लेकिन दो कॉन्ट्रडिक्टरी बातों को कैसे सच मान सकते हैं।
1: सही बात।
0: क्वेश्चन भी नहीं किया मन ने कभी कि दोनों बातें सही कैसे हो सकती है।
1: हाँ ये सही कह रहे हैं आप,
0: ये तो प्रश्न
1: क्यों नहीं किया,
0: नहीं करते क्वेश्चन,
1: मतलब बुद्धि नहीं चलती है जब बिलीफ सिस्टम में।
0: नहीं ऐसा नहीं सुनते हैं।
1: मुझे अभी ये दिख रहा है आपसे बात करते करते कि बिलीफ सिस्टम इतना हावी हो जाता है, इतना स्ट्रांग और इतना हेवी हो जाता है सर, कि हमने कभी अपना मन उसमें बुद्धि लड़ाई नहीं कि ये लॉजिक देखिए।
0: देखो बिलीफ सिस्टम हावी होता है वो तो फैक्ट है, बिलीफ सिस्टम ही हावी होने वाला है। हावी मीन्स स्ट्रांग। सी इट्स लाइक आपका कंप्यूटर, उसका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही सबसे पावरफुल चीज है। आप या विंडोज यूज कर रहे हैं या आप मैक यूज कर रहे हैं, तो हम कहेंगे ये दो डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्लैरिटी, एक बार आपने एक ऑपरेटिंग सिस्टम चूज किया और अपने कंप्यूटर पे उसको इंस्टॉल किया, अब आप जो कुछ करेंगे उस कंप्यूटर पर वो उस ऑपरेटिंग सिस्टम से चलेगा। सॉफ्टवेयर भी वो वाले ही चलेंगे जो उस ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्क करेंगे। लेकिन आप कहें मैं ये भी चलाऊं हाँ ये नहीं होगा।
1: इसीलिए लेटेस्ट वर्जन ऑफ ओएस लेते हैं ना, हाँ, ताकि दूसरे
0: एब्सोल्युटली
1: अब ऑपरेट बन जाएं,
0: दूसरे सॉफ्टवेयर्स भी उस पे
1: तो पुराने ओएस पे नए सॉफ्टवेयर नहीं आते,
0: नहीं चलेंगे। और फिर समय के साथ अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को भी क्या करना चाहिए,
1: अपग्रेड
0: करना चाहिए।
1: दैट्स अ नाइस वन,
0: राइट। यू हैव टू अपग्रेड। अपग्रेड मीन्स चेक कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम मेरे लिए कंफर्टेबल है। देखो समय बदलता है, वातावरण बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, बीच बीच में ऑपरेटिंग सिस्टम को चेक करना होता है।
1: लेकिन जैसे आपने कहा उस दिन कुछ ना कुछ सुबह उठ के पढ़ लेना चाहिए, समथिंग स्पिरिचुअल, ये भी तो अपग्रेड होता ही है ना इसी इन चीजों से।
0: नेचुरली
1: सफाई भी होती है, हम जो क्लीन भी करते हैं
0: एब्सोल्युटली
1: अपने डिस्क को, और जो भी आप कहते हैं
0: हार्ड डिस्क को क्लीन नहीं करेंगे अगर तो इतना कुछ सारा अक्यूमुलेट हो जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम भी है, मशीन भी हाईली एफिशिएंट है, लेकिन क्लटर्ड है, टू मच डेटा है एंड यूजलेस डेटा है, तो वो अननेसेसरी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है ना। तो इसलिए जो आपने कहा ऑपरेटिंग सिस्टम इतना स्ट्रांग है, यस ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रांग है, लेकिन क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम इतना स्ट्रांग है सो वी हैव टू बी केयरफुल कि राइट ऑपरेटिंग सिस्टम हो। क्योंकि लाइक वी सॉ बिलीफ सिस्टम, थॉट

0: feeling, attitude, action, habit, personality, destiny, which means belief system will create destiny. अगर मैं अपने जीवन में एक गलत बिलीफ सिस्टम लेकर चलूं, तो उसका प्रभाव डायरेक्ट मेरे भाग्य पर आ रहा है. इसलिए बिलीफ सिस्टम की चेकिंग बहुत जरूरी है, इम्पोर्टेंट है.
1: जैसी मान्यता वैसा भाग्य,
0: वैसा भाग्य जो मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम है. क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम से सब थॉट्स चल रहे हैं. मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम एक हो और मैं थॉट को चेंज, जैसे बहुत कॉमन है, गुस्सा नेसेसरी है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम में बैठा हुआ है, स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम. थॉट्स पे, नहीं नहीं आज मुझे प्यार से बात करनी है, आज मुझे शांति से सबके साथ चलना है, वो नहीं होगा, वो होगा ही नहीं. एक बार
1: बिलीफ सिस्टम को कैसे निकालें फिर?
0: बिलीफ सिस्टम को चेंज करना पड़ता है, थॉट को नहीं चेंज कर सकते. मतलब थॉट को अगर चेंज करेंगे, एक बार होगा, दूसरी बार फिर गुस्सा करेंगे.
1: पता नहीं कितने जन्मों से बिलीफ सिस्टम आया हुआ है, बचपन से आया हुआ है, ये जाता नहीं है ना फिर?
0: जाता नहीं, इट्स अ प्रोग्राम. बिलीफ सिस्टम भी एक प्रोग्रामिंग ही है ना, उसको हम चेंज कर सकते हैं. कैसे करेंगे? एक नया बिलीफ सिस्टम लेंगे, पुराने बिलीफ सिस्टम के साथ काफी समय से चल रहे हैं, डेस्टिनी देखी क्या बनी.
1: इसको पैरेलल चलाएं,
0: थोड़े दिन के लिए
1: इसको
0: पुराने वाले को साइड पर रखिए. क्यों पैरेलल नहीं चल सकता? क्योंकि पुराना वाला बहुत स्ट्रांग है. इफ आई से गुस्सा नेसेसरी है एंड अब आई से प्यार से सबसे अच्छा काम हो सकता है, तो मैं अब दो को ऑपोजिट को पैरेलल नहीं चला सकते ना. हम ये कह सकते थोड़े दिन के लिए मैं एक नया बिलीफ सिस्टम लेकर ट्राई करके एक्सपेरिमेंट करके देखती हूँ, लेट मी सी व्हाट इज द रिजल्ट.
1: सही बात.
0: इफ मेरा काम हो गया अच्छी तरह से, मेरे रिश्ते अच्छे होने लगे, मुझे अच्छा होने लगना, लाइट फील लगने लगा, देन आई विल से दिस बिलीफ सिस्टम इज बेटर, हेल्दी, दिस इज द ट्रूथ. तब हम पुराने वाले को हटा देंगे.
1: ट्राई करने में क्या है?
0: ट्राई करने में क्या है? यही तो स्पिरिचुअलिटी है. स्पिरिचुअलिटी मीन्स एक्सपेरिमेंटेशन. स्पिरिचुअलिटी डजेंट मीन, अभी तक जो आपने बोला ना, हमने बुद्धि क्यों नहीं लगाई उस पर? क्योंकि हमने क्या किया, किताब पढ़ी, सत्संग में गए, कहाँ ले रहे हैं विजडम? ऐसी जगहों पर जाएंगे ना, या किसी का प्रवचन सुना और ऐसे ऐसे किया.
1: वाह वाह.
0: यस नहीं, यस अच्छा लगा सुनते हुए. देखो कहीं भी कोई बात सुनेंगे जो पॉजिटिव होगी, पावरफुल होगी,
1: अच्छी म्यूजिक भी सुनते तो इतना अच्छा मजा आता है, मन
0: तो अच्छी लगे, मन को एक जैसे यू नो जिसको कहेंगे सूदिंग, जैसे कोई मसाज कर रहा है मेरे मन को. मन इतना थका हुआ है, इतना थका हुआ है, कोई आकर उस पे मसाज कर रहा है माइंड को, ब्यूटीफुल वर्ड्स, अच्छे भजन, सूदिंग लेक्चर, बहुत अच्छा लगता है. अब वो सूदिंग इफेक्ट में इतना हम खो जाते हैं कि उसके ऊपर लॉजिक कई बार नहीं यूज करते हैं कि ये राइट या ये राइट, दिस इज कम्फर्टेबल और नॉट. वी जस्ट से हाँ सो ब्यूटीफुल, ऐसे ऐसे ऐसे चले जाते हैं.
1: जैसे एक मधुमक्खी सनफ्लावर में मस्त हो जाती है ना, जब खाती खाती खाती ये भी भूल जाती है कि सनसेट होने वाला है और फ्लावर बंद हो जाता है, वो बेचारी अंदर ही मर जाती है उसी में, और वो समझती है कि आई एम सूदिंग सूदिंग सूदिंग. हम सारा जीवन ऐसे ही कर रहे हैं.
0: नहीं तो इसमें हुआ क्या, वो सूदिंग में इतने खो गए.
1: वही मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मैं क्या अपने सारा जिंदगी सारा जीवन सूदिंग सूदिंग में खो जाऊं और ऐसे ही मर जाऊं, तो व्हेन विल आई ग्रो, मेरा ये अपग्रेड कब होगा मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम?
0: जो भी हम वर्कशॉप अटेंड करेंगे या किताब अच्छी कोई पढ़ेंगे या सत्संग सुनेंगे, उसमें कभी कोई गलत बात तो मिलेगी नहीं. देयर विल ऑलवेज बी समथिंग विच इज इम्पोर्टेंट इज टू अंडरस्टैंड इट द राइट वे. सी अगर आप मुझे कुछ सुना रहे हैं, वो आप अपनी अंडरस्टैंडिंग,
1: पहले सुनाने वाले को भी तो अंडरस्टैंड होना चाहिए,
0: वेरी इम्पोर्टेंट. तो आप सुना रहे हैं, नहीं कई बार ये भी होता है कि सुनाने वाले से ज्यादा सुनने वाले की अंडरस्टैंडिंग में क्लैरिटी हो.
1: हाँ.
0: आप एक लाइन लेंगे,
1: हर आदमी अलग अलग मीनिंग निकालेगा.
0: आप हमें इतनी अच्छी अच्छी बातें ढूंढ के लेकर आते हैं, अब ये कहीं लिखी हुई है ना जहां से आप लेकर आ रहे हैं, लेकिन आपने पढ़ा, आपने और 100 लोगों के साथ शेयर किया, बात एक ही है, लेकिन बात की अंडरस्टैंडिंग, बात की तह तक डेप्थ में जाकर उसकी मीनिंग को समझना एंड सबसे इम्पोर्टेंट उस बात को इम्प्लीमेंट करके देख लेना. सूदिंग था, बातें सूदिंग थी जो हर जगह सुनी, राइट थी रॉन्ग थी चेक हुआ ही नहीं, क्योंकि एक्सपेरिमेंट में नहीं लेकर आए उन बातों को. हम गए, इट्स लाइक यू नो गए

0: मसाज किया, अच्छा लगा, बैक टू वर्क, अपना ऑफिस, अपना काम, अपने वहां तो प्रॉब्लम्स है ही, फिर कल सुबह जाएंगे, फिर अच्छा अच्छा फील करेंगे, फिर आएंगे। तो इसलिए चेकिंग तो हुई नहीं ना कि व्हाट वर्क्स फॉर मी, व्हाट डजंट वर्क फॉर मी, क्योंकि आई डिडंट डू एनीथिंग विद इट, आई ओनली वेंट, फेल्ट नाइस, केम बैक। अब क्या होगा, कौन सा बिलीफ सिस्टम मेरे लिए राइट है, मेरे लिए नहीं राइट है, वो तब पता चलेगा। सुना, उसको एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट करके आई विल डिसाइड। हो सकता है मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम था कि गुस्सा नेसेसरी है, आज मैंने दूसरा वाला यूज किया, मुझे यूज करके नहीं ठीक लगा। हो सकता है, बिकॉज उसमें भी कितना समझा, किस तरह से यूज किया, कितनी डिटर्मिनेशन से यूज किया, और क्या उसका मुझे रिजल्ट मिला। अगर मुझे रिजल्ट मिला, देन आई विल से लव वर्क्स फॉर मी, नहीं मुझे वो रिजल्ट मिला, आई विल से नहीं, मेरे से नहीं होता, मेरे लिए वही वाला ठीक है।
1: सपोजिंग मैं, मेरा एक बिलीफ सिस्टम है, मैंने कभी ये सोचा भी नहीं कि गुस्से के बिना यार काम नहीं चलता आज के बिना, और इतने बच्चे हैं, इतने नौकर, इतना स्टाफ है, किस किस को प्यार करूं मैं, अब रूल बनाओ, डांट दो और अपना मिलिट्री बनाओ। तो मैं ये सोच रहा था आपसे बात करते करते कि जब रिजल्ट तो चलो पॉजिटिव सपोजिंग मिल भी गया, लेकिन मेरी सेहत, वो रिजल्ट, वेल, इज इट वर्थ इट कि मैं सारा गुस्सा करके अपनी सेहत खराब करके अपना कर्म, जैसे आपने अभी बताया पास्ट कार्मिक अकाउंट भी बना रहा हूँ, सेहत भी खराब कर रहा हूँ, पैसे भी दे रहा हूँ स्टाफ को और फिर डॉक्टर को भी दे रहा हूँ, फिर बाद में अंत में मेरा रिजल्ट निकल रहा है जो मैं चाहता हूँ।
0: रिजल्ट मतलब सिर्फ वो रिजल्ट नहीं है, रिजल्ट यही इम्पोर्टेंट है। सी, दिस इज क्लैरिटी। जब आप अपना रिजल्ट चेक कर रहे हैं कि इस बिलीफ सिस्टम का रिजल्ट क्या है, तो रिजल्ट डजंट मीन सिर्फ काम हुआ कि नहीं ना। अब दिस इज इंटेलिजेंस। कोई अगर लिमिटेड आउटलुक से है, विजन से है, वो रिजल्ट सिर्फ यही चेक करेगा, और शुरू शुरू में वो बोलेंगे काम नहीं हो रहा, लोग बिगड़ गए, लोग कहना नहीं मानते, लोग मुझे फॉर ग्रांटेड ले रहे, क्योंकि उनके लिए रिजल्ट की डेफिनेशन सिर्फ उतनी है कि काम हुआ कि नहीं। आपने अभी जो रिजल्ट की डेफिनेशन सुनाई,
1: नहीं, मैंने कहा आपसे कि सपोजिंग मैं अपने ओल्ड बिलीफ सिस्टम से कि गुस्से के बिना काम नहीं होता, करने के बिना मेरी फैक्ट्री चल गई, मेरी पिक्चर बन गई, मेरा घर का सब काम पूरा हो गया बराबर, गाड़ी में पेट्रोल था, ये था वो था, सब लोग अपने काम करने लग गए, लेकिन उसका असर जो मुझ पर हुआ, दिस वर्सेज दैट पूछ रहा हूँ मैं।
0: इट्स नॉट दिस वर्सेज दैट, इट इज रिजल्ट ऑफ माई बिलीफ सिस्टम।
1: मैंने क्या खो दिया?
0: रिजल्ट, जब मुझे देखना है ये बिलीफ सिस्टम है और ये उसका रिजल्ट है, तो नाउ आई विल चेक कि गुस्सा आउट, प्यार से, पेशेंस से, अंडरस्टैंडिंग से काम सारे हो जाते हैं। नाउ टेक, स्टार्ट वर्किंग, ठीक है। शुरू शुरू में ये भी हो सकता है कि काम पे हो सकता है, पॉसिबिलिटी, जैसे कोई दवाई हम लेते हैं, ठीक है, शुरू शुरू में बहुत कुछ होगा, कोई साइड इफेक्ट भी आ जाएगा, कोई दवाई थोड़ी सी रिएक्ट भी कर जाएगी, कोई कुछ भी, लेकिन आप अपनी डोज लेते रहेंगे, और फाइनली इतनी डोज लेने के बाद आपको अगर डॉक्टर को आप बोलो भी ना कि ये ऐसे ऐसे हो रहा है, बोलेगा वेट, कंटिन्यू टेकिंग एटलीस्ट फॉर 3 डेज, आप 3 दिन लो, उसके बाद देखते हैं कि आपको दवाई सूट कर रही है कि नहीं। ऐसे नहीं पहले दिन ही ली, पहली डोज ली और आपने कहा, क्योंकि बॉडी एक नई चीज ले रही है, उसको भी उसके साथ एडजस्ट होने में वो दवाई का अपना काम। सिमिलरली एक नया बिलीफ सिस्टम, पहले दिन प्यार से बात की, व्यक्ति ने काम ही नहीं किया मेरा, हम कहेंगे ये क्या है, ये थोड़ी वर्क करता है काम ऐसे, मैंने कांट गिव अप लाइक दिस। सो वी हैव टू फिक्स अ टाइम पीरियड कि इतने टाइम तो ये डोज लेनी है नई वाली, एंड फिर रिजल्ट की डेफिनेशन कि जब रिजल्ट को चेक करना है कि डिड दिस बिलीफ सिस्टम वर्क, तो ये सब पैरामीटर्स पे चेक करना है जो आपने अभी बताया। मन लाइट फील कर रहा है, शरीर तो ऑब्वियसली अच्छी तरह से रिस्पॉन्ड करेगा, मन खुश है तो लोगों के साथ मेरा रिश्ता बेटर होता जाएगा, काम डेफिनेटली होता जाएगा, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपने कहा, कार्मिक अकाउंट मेरे जो क्रिएट हो रहे हैं सबके साथ, आज काम होता गया, लेकिन हर आत्मा के साथ कैसा कार्मिक अकाउंट क्रिएट होता गया। दर्द देते गए, दर्द आता जाएगा, दर्द देते जाएंगे, दर्द आता जाएगा, काम होता गया।
1: ये जो दर्द देते गए और दर्द आता जाएगा, इस साइकिल में मेरा जब दर्द बढ़ता है तो मेरा और गुस्सा, फिर और इरिटेशन नहीं बढ़ेगा
0: नेचुरली।

0: वो पॉइंट तो सोचा ही नहीं
1: नेचुरली ना सपोज
0: मैंने दर्द आपको दिया फिर आया फिर दिया फिर आया सी, तो अगर फिर और चिड़चिड़ा हो जाऊंगा मैं और पकता जाएगा
1: क्यों क्योंकि अभी मैंने गुस्सा किया मोस्ट इम्पोर्टेंट मैंने अभी गुस्सा किया गुस्सा करते ही मेरी बैटरी थोड़ी कम हुई टर्बुलेंट एनर्जी यूज की फिर दर्द क्रिएट हुआ मतलब पावर आत्मा की पावर थोड़ी सी कम हुई फिर आपको दिया तो आपने भी मेरे बारे में कैसा सोचा फिर
0: आपको लौटाया अंदर से
1: लौटाया मीन आपने मेरे बारे में गलत सोचा गलत नहीं भी सोचा आप सिर्फ हर्ट ही हो गए उस बात से उदास ही हो गए तो आपकी वाइब्रेशन तो है व्हाट विल गो विल कम बैक तो आपने मेरे बारे में ऐसा सोचा तो मेरा थोड़ा सा और कम हो जाएगा अब मैंने आपके साथ किया फिर एक और के साथ किया फिर और के साथ किया धीरे धीरे वो मेरा बन गया संस्कार अब ये संस्कार बड़ी बातों में नहीं छोटी बातों में भी आने लगा अब हर बार जब ये आया हर बार ये मेरी पावर को कम किया अब ये एक और बात बहुत इम्पोर्टेंट है गुस्सा कर करके मेरी पावर जो कम होती है वो संस्कार की सिर्फ बात नहीं है वो ओवरऑल आत्मा की पावर कम होती है सी एक सोर्स ऑफ एनर्जी है ना एक ही सोर्स है ऐसा नहीं ये काम के लिए अलग ये काम के लिए अलग ये रिश्ते के लिए अलग चलो ये रिश्ते में मेरे को प्रॉब्लम है लेकिन मेरे बाकी रिश्ते ठीक है ये काम में प्रॉब्लम है बाकी सब चीजों में तो मैं ठीक हूं एनर्जी इज वन सपोज आपके अंदर 20 ब्यूटिफुल संस्कार है लविंग केयरिंग कंपैशनेट अंडरस्टैंडिंग हेल्पिंग एवरीथिंग और एक सपोज जेलसी का है या एक एंगर का है कोई भी एक ऐसा है लेकिन वो एक बहुत स्ट्रांग है तो वो मेरी बैटरी ये है लेकिन वो एक जैसे मेरी बैटरी को
0: डिप्लीट
1: डिस्चार्ज करता है बहुत एंड डिस्चार्ज जो होता है क्योंकि वातावरण बहुत पावरफुली नेगेटिव है इस टाइम तो जो लीकेज है कंपेयर टू द चार्जिंग बहुत फास्ट होती है अब एक बार ये लीकेज होने शुरू हो जाती है मतलब सोल पावर कम हो रही है इट्स पावर ऑफ द सोल दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड इट्स नॉट वन क्वालिटी ओनली जैसे हम कहेंगे गुस्सा किया तो शांति कम हो रही है राइट नफरत किया तो प्यार कम हो रहा है इट्स नॉट ओनली दैट इट्स लाइक ये किया तो आत्मिक शक्ति कम हो रही है
0: और कार्मिक अकाउंट भी बन रहा है
1: कार्मिक अकाउंट तो बन रहा है ये आत्मिक शक्ति कम होने से उसका इफेक्ट हमारी सारी पॉजिटिव क्वालिटीज पर आएगा पॉजिटिव क्वालिटीज को यूज करने के लिए आत्मा को शक्तिशाली होना होगा अब जब ये आत्मिक शक्ति कम होगी तो विल पावर पे भी इफेक्ट होगा आज क्यों लोग एडिक्शन नहीं छोड़ पाते हैं हम अपनी छोटी छोटी आदतें नहीं छोड़ पा रहे हैं यहाँ हम बात कर रहे हैं बड़े संस्कारों को छोड़ने का अभी तो हम छोटी आदत भी नहीं छोड़ पाते हैं क्योंकि सोल पावर कम है
0: इसलिए हिंदी में कहते हैं ना
1: आत्मिक बल सोल पावर इसलिए जब हम कहेंगे कि नए बिलीफ सिस्टम का रिजल्ट तो इतना लॉन्ग टर्म है कि वी विल बी सरप्राइज्ड विद द रिजल्ट दैट वी गेट एंड ये जो रॉन्ग बिलीफ सिस्टम चल रहा था उसका रिजल्ट भी कितने सारे एस्पेक्ट्स पर पड़ रहा था विच वी वर नॉट अवेयर तो इसीलिए फिक्स टाइम करते हैं एक नया बिलीफ सिस्टम एक्सपेरिमेंट करते हैं लेट्स सी द रिजल्ट ऑन अ बिग पिक्चर एंड एक बार हमें रिजल्ट मिलेगा हम अपने पुराने बिलीफ सिस्टम के पास नहीं जाएंगे वी विल लाइक द रिजल्ट तो ये जो आपने कहा कि हमने दो बिलीफ सिस्टम सुने और फिर भी हमने उसके ऊपर चिंतन ही नहीं किया वर्क नहीं किया अब तब क्या हुआ हम आउट ऑफ कन्वीनियंस दोनों में से किसी को भी यूज करते गए
0: जब मर्जी है उसको यूज कर ली जब मर्जी उसको यूज कर
1: जैसे अगर मैंने देखा कि मेरे पड़ोसी के साथ जीवन में कुछ गलत हो रहा है मैंने कहा कर्म ही ऐसे किए थे कर्म ऐसे किए थे क्या क्या उसने किया है होना ही था ऐसा मेरे साथ अगर कुछ गलत हुआ भगवान ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया
0: ना इंसाफी
1: अपने साथ नहीं बोलेंगे मैंने कर्म ऐसे किए थे सी सो वी स्टार्टेड यूजिंग बोथ फॉर वैलिड फॉर अस कि कब क्या यूज करना कब क्या अप्लाई करना अब हमें दोनों में से एक को चूज करना पड़ेगा एंड चेक कर लें कि कौन सा यूज करना है वो वाला यूज करें जो आपको एम्पावर करेगा आपको शक्तिशाली बनाएगा दोनों की चेकिंग कर लें भगवान हमारा भाग्य लिखता है गॉड राइट्स आवर डेस्टिनी इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क अगर परमात्मा हमारा भाग्य लिखे तो हमारा भाग्य ऐसा नहीं होगा इट विल बी अ ब्यूटिफुल डेस्टिनी परफेक्ट डेस्टिनी
0: एक सत्संग में सिस्टर एक आदमी ने बोला था

0: कि एक आदमी था जो बार बार बोलता था चोरी करता था, बोलते मैं क्या करूं, भगवान ने मेरा भाग्य बनाया, भगवान करवाता है मुझसे चोरी। फिर दूसरे दिन करते, तीसरे दिन, तो फिर उसको उसके सत्संग में बोला उसको कि ठीक है, जब पुलिस पकड़ के मारेगी, जेल में डालेगी, तब भी यही कहना कि देखो ये भी भगवान ने लिखा और वो भी एक्सेप्ट करना
1: है।
0: फिर वहां एक्सेप्ट नहीं करते हैं।
1: एक्चुअली ये क्यों सिखा है? सी दिस इज ऑल्सो के रिलीजन ने या फिलोसोफर्स ने हमें क्यों सिखा है, ये इतनी सुंदर बात आपने बताई है। जब कोई परिस्थिति हमारे सामने आती है, हमारा बहुत चिंतन चलता है कि क्यों क्यों क्यों। इम्पोर्टेंट, एक परिस्थिति को फेस करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज पहले चाहिए होती है, परिस्थिति को एक्सेप्ट करो। जब तक एक्सेप्टेंस नहीं आएगी ना, नेक्स्ट स्टेप्स टूवर्ड्स सोल्यूशन नहीं होता है, क्योंकि उलझन में होते हैं। परिस्थिति एज इट इज को एक्सेप्ट करना, जैसे लोगों को एक्सेप्ट करना, परिस्थिति को एक्सेप्ट करना होता है। अब हम कर नहीं पाते थे तो फिर किसी ने कहा भगवान ने की मर्जी, एक्सेप्ट कर लो, ताकि हम उसको एक्सेप्ट कर पाएंगे। फिर उसको और मोटिवेट करने के लिए हमें कहा भगवान ऐसी बात देता ही उसको है जिसके अंदर उसको फेस करने की पावर होती है। दिस वॉज ऑल बींग डन विथ चिल्ड्रन, यू नो, एक बच्चे के साथ। कैसे हम बोलते हैं बाहर नहीं जाना, रात को भूत है, क्योंकि शायद उसको उस समय, उस एज में उससे ज्यादा गहरी बात समझ में नहीं आएगी। इसीलिए इंटेंशन क्या है, बस वो जाए नहीं ना अंधकार में, इसलिए किसी भी तरह रोक दिया उसको, क्लैरिटी तो नहीं दी उसको। इसी तरह हमें गलत कर्म करने से बचाना था तो कहा भगवान हरेक के अंदर है, भगवान सब कुछ देख रहा है, भगवान की मर्जी से सब कुछ हो रहा है। तो ये सब करने से हमें प्रोटेक्ट करने की कोशिश की जा रही थी, इंटेंशन बहुत सुंदर था।
0: लेकिन मुझे आप वाली बात ज्यादा सूट करती है कि जब मैं कहता हूँ कि हाँ मैं आज जो चीज भी, जिस चीज से, सपोज मैं दुख वाला एग्जाम्पल लेता हूँ, सुख का नहीं, चलो आज मुझे कोई दुख दे रहा है, ठीक, मेरा पास्ट कार्मिक अकाउंट के साथ था, तो जैसे मैंने एक्सेप्ट किया उस पॉइंट को, तो दर्द तो हुआ, तकलीफ भी हुई, लेकिन मैंने बोला ठीक है भाई, पुराना कार्मिक अकाउंट है और मेरा ही किया हुआ है। मैं आपसे दोबारा कहूंगा कि मेरे से मेरी गाड़ी का कहीं लग जाए ना थोड़ा स्क्रैच, तो मैं लोग हाँ यार लग गया मुझसे, मेरी नई गाड़ी, मेरा ड्राइवर बोले दिखता नहीं, ये नहीं वो नहीं, निकाल दूंगा, पैसे काट दूंगा, कितना गुस्सा आता है। तो वैसे मुझे जब एक्सेप्टेंस हुआ कि हाँ भाई मैंने किया था, मुझसे गिर गया दूध, मुझसे नुकसान हो गया, मेरे से कांच टूट गया, मुझसे ये कपड़े मेरे खराब हो गए, एयर होस्टेस प्लेन में मुझ पर गिरा दी और मेरे से गिर जाए, चाहे कितना अंतर होता है। तो मुझे इतनी अच्छी लगी आपकी बात की भाई ठीक है मैंने किया, आज मैं भुगत रहा हूँ बोलू या फेस कर रहा हूँ बोलू या कम्प्लीशन कर रहा हूँ बोलू, जैसे मैंने लोन लिया बैंक से, आज चुका रहा हूँ।
1: एब्सोल्युटली, क्योंकि अगर
0: बहुत पसंद आया इंस्टेड ऑफ दैट फॉल्स बिलीफ से, तो ये मुझे क्लैरिटी देती है।
1: इट्स नॉट ओनली फॉल्स बिलीफ, इट इज डेस्टिनी चेंज हो जाती है ना। अगर हम ये बिलीफ लेकर चले कि परमात्मा मेरा भाग्य लिख रहा है, सब कुछ भगवान की मर्जी से हो रहा है, तो मेरा जीवन जीने का तरीका कैसा होगा? हर स्टेप पे बातें आएंगी, हम कहेंगे भगवान मेरे से खुश नहीं, भगवान की मर्जी से, वेट करो भगवान अच्छा करेगा ही, भगवान पर फेथ रखो, भगवान सब ठीक कर देगा, मतलब फिर भगवान को बोलेंगे सब ठीक कर दो, डेस्टिनी। और यही दूसरा बिलीफ सिस्टम कि मैंने, जैसे आपने कहा, मेरा कोई किया हुआ कर्म है जो मेरे सामने आया है, अब मुझे इसको प्यार से फेस भी करना है और आगे के लिए ठीक
0: भी करना है,
1: ठीक भी करना है। अब डेस्टिनी अलग, सो इट्स गोइंग टू बी टू कम्प्लीटली, जो भगवान की मर्जी से चल रहा है वो डेस्टिनी में आई एम गोइंग टू बी लाइक दिस, मेरे हाथ में कुछ नहीं, वेट करो भगवान ने प्रॉब्लम दी, इंतजार करो भगवान ठीक करे।
0: दुख भी,
1: दुख तो होगा ही, क्योंकि प्रॉब्लम ठीक भी तो नहीं हो रही, हम जब ठीक करेंगे नहीं तो वो ठीक होगी नहीं। आपका कंप्यूटर खराब हो जाए, आप ऐसे लेकर बैठ जाओ, हाय भगवान ने मेरा कंप्यूटर खराब कर दिया, ऐसा क्यों किया? फिर रोज उसको पूजा करो, प्लीज मेरा कंप्यूटर ठीक कर दो, प्लीज मेरा कंप्यूटर ठीक कर दो। नहीं, भगवान जरूर ठीक करेगा, हम उसके बच्चे हैं, वो जरूर ठीक करेगा, वेट एंड वॉच। और एक है, मेरा कंप्यूटर खराब हुआ है, मैंने गलत बटन दबाया था, अब मैं बेटर डू समथिंग टू इट एंड जल्दी उसको ठीक करूं, टू डिफरेंट थिंग्स। आई विल गेट सेट टू डूइंग इट राइट, क्योंकि मुझे मालूम है कि इसको ठीक मुझे करना है। हाँ, परमात्मा से शक्ति लेंगे, तरीका सीखेंगे, ज्ञान लेंगे,

0: लेकिन उसको ठीक मुझे करना है, तो फिर डेस्टिनी अलग। आपका चाहे आपके सामने कितने भी कार्मिक अकाउंट्स आए, बड़े बड़े आ जाए। आज सुबह मुझे एक बहन कह रही थी, एक प्रॉब्लम खत्म नहीं होती है, दूसरी पहले ही रेडी वेट कर रही है, कहते कब खत्म होगा। तो ये खत्म नहीं होना है, ये खत्म नहीं होना है, ये कार्मिक अकाउंट है जो सामने आएंगे। लेकिन इक्वेशन राइट है तो पता है जीवन की जर्नी क्या है, पुराने कार्मिक अकाउंट को सेटल करते जाना और नए करने वाले कर्म पर ध्यान रखना। अब इसमें भी देखो, जो कहेगा भगवान की मर्जी से, वो अपने नए कर्मों पर भी अटेंशन नहीं रखेगा। लेकिन जिसको ये अवेयरनेस होगी अब सारा दिन कि कार्मिक अकाउंट कितनी पावरफुल चीज है, तो वो पुराने को तो सेटल करेगा ही, लेकिन प्रेजेंट में कितना अटेंशन रखेगा कि अब ना मेरे से कुछ किसी को दुख मिले, अब ना मेरे से कोई ऐसी बात हो जाए जो मेरे सामने फिर बहुत भारी होकर आए, डेस्टिनी चेंज हो जाएगी।
1: ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट मिला सिस्टर, लेकिन हमें अगले एपिसोड में डिस्कस करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच।
0: ओम शांति।
1: ओम शांति। थैंक यू।
2: थॉट्स are influenced by information, past experiences, and belief systems. Every situation will be perceived through the belief system. Anger is necessary. Happiness is an achievement. Stress is natural. Life is a competition. Are some of our belief systems today. Even one wrong belief system reduces the power of the soul. If we hold the belief system, anger is necessary, then we will use anger to get work done. Even if we decide to work peacefully, it will be temporary. We need to create a new belief system. Anger is damaging. Love is the way to get work done. When we experiment with a belief system, check if we are feeling lighter, health is improving, relationships are becoming simpler, and karmic accounts are settling. Then that belief system is right for us.
3: Namaskar, aapan aikat ahat Radio Puneri Awaz 107.8 FM. मी स्मिता जयकर आनंदी रहा, आनंद वाटा।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: जब हम अपने आप को परमिशन देते हैं ना गुस्सा करने की, तो हम दिन में दो चार बार कर देते हैं। अब जितनी बार हम करेंगे वो संस्कार क्या होता जाएगा, वो संस्कार पक्का होता जाएगा। जैसे सपोज किसी को स्मोकिंग की आदत है तो वो कहते हैं दिन में सिर्फ दो, तो जब तक वो दिन में दो लेंगे वो कभी नहीं छूटेगी, क्योंकि जितनी बार की तो वो आदत क्या होती जाएगी, पक्का। लेकिन अगर अब उन्होंने कहा तीन दिन बिल्कुल नहीं, तो वो तीन दिन में उन्होंने उस आदत को कमजोर करना शुरू किया। तो कोई भी आदत को खत्म करने का एक ही तरीका है सिर्फ, कि उसको कर्म में आने नहीं देना। जितनी बार वो आएगी वो सिर्फ क्या होती जाएगी, स्ट्रेंथन होती जाएगी।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: अमर ना अकबर ना मैं एंथनी, ना अमर ना अकबर ना मैं एंथनी। अपना नसीब चुन लीजा रखवाला अपना अल्लाह, अपना नसीब चुन लीजा रखवाला अपना अल्लाह। ये मर के अल्लाह रखा तेरा तकवाला, हे हे अस्सलाम अलैकुम।
1: अस्सलाम वालेकुम।
0: ना अमर ना अकबर ना मैं एंथनी, ना अमर ना अकबर ना मैं एंथनी। अपना नसीब चुन लीजा रखवाला अपना अल्लाह, अपना नसीब चुन लीजा रखवाला अपना अल्लाह। ये मर के अल्लाह रखा तेरा रखवाला, अस्सलाम
1: वालेकुम। वालेकुम
0: अस्सलाम।
1: वालेकुम अस्सलाम।
0: ना अमर ना अकबर ना मैं एंथनी, ना अमर।

0: अल्लाह रखा तेरा सकवाल। होए होए होए अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम
0: जी अस्सलाम।

M02 बोरियत की एरर, नएपन की कमांड रिजेक्टेड। अब हर चीज हर जगह तो नहीं मिलती, कुछ नयापन चाहिए तो सुनिए पुनेरी आवाज़ 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: नो स्मोकिंग जोन जैसे बन गए हर जगह, वैसे नो एंगर जोन। इधर गुस्सा नहीं कर सकते, आया है तो बाहर जाओ, कर क्या यहाँ नहीं कर सकते। क्यों स्मोकिंग के लिए क्यों अलग जगह बनाई, क्यों नहीं कर सकते सबके बीच? क्योंकि कर आप रहे हैं, नुकसान हमारा हो रहा है। इसी तरह गुस्सा कर आप रहे हैं सारे वातावरण में और सब लोगों का नुकसान हो रहा है, तो आप जाइए, वहाँ वो कमरा है, उधर गुस्सा करिए, वापस आइए।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।
2: नमस्कार दोस्तों, ज्ञान की धारा इस कार्यक्रम में मैं ज्योत्सना MP छत्तीसगढ़ से आपका स्वागत करती हूँ और मैं आपके बीच ज्ञान की कुछ बातें लेकर आई हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और प्रसन्न भी होंगे। तो आज हम चर्चा करते हैं, आज का विषय है हमारा, क्या सर्वश्रेष्ठ परमात्मा सर्वव्यापी है? तो आज हम इसी पे चर्चा करते हैं। बात यह है कि एक दिन एक सुबह हमारे घर के आगे सड़क पर मैंने कुछ लोगों के इकट्ठे समूह को देखे, तो मैंने एक व्यक्ति से पूछा कि वहां पर क्या हो रहा है। पूछे जाने पर उस व्यक्ति ने मुझे जवाब दिया कि कुछ नहीं मैडम, उनकी 7 साल के बच्चे को किसी ने मजाक में बंदर गधा कह दिया, तो इसे वे क्या की गंभीरता से लेकर झगड़ा कर रहे हैं। तो इस घटना का उल्लेख यहाँ पर मैं इसके कर रही हूँ कि हमारे घर के छोटे से बच्चे को किसी ने मजाक में अगर बंदर या गधा संबोधित किया तो हम बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। और उस सर्वश्रेष्ठ सर्वेश्वर परम पवित्र परमपिता परमात्मा को हम हर जगह सभी जीव आत्माओं में, हम में, तुम में, सुअर में, मगरमच्छ में, कछुए में, सांप में और कण कण में हम व्याप्त मान लेते हैं। क्या ये उचित है? कई सवाल मन में उठते हैं, इस तरह के कई सवाल हमारे मन में उठते हैं। जरा सोचे, मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार पवित्र आत्मा, पाप आत्मा, महात्मा, धर्म आत्मा, पुरुष, हाँ यहाँ तक कि पुण्य आत्मा, देव आत्मा कहलाता है। यदि किसी व्यक्ति के अंदर एक सर्वोच्च भगवान है तो वो हत्या, लूटमार, बलात्कार, भ्रष्टाचार, व्यभिचार आदि

दुष्कृत्य कर सकता है क्या? प्रभु की महिमा सर्वोच्च है, सर्व के कल्याणी परमेश्वर द्वारा इस तरह के नीच कर्म संभव है क्या? यदि हम में परमपिता परमात्मा विराजमान है तो हम मंदिर, चर्च, मस्जिद, गुरुद्वारा आदि का निर्माण करके पूजा, प्रार्थना, नमाज, वंदना इत्यादि क्यों करते हैं? यदि ऋषियों के अंदर भगवान है तो उन्हें भगवान की तलाश क्यों करनी चाहिए? और मन की शांति के लिए हिमालय में भटकना ही क्यों चाहिए? अगर प्रभु हम में ही है तो दुख, दर्द, बीमारी आदि होने पर उनको याद करने की क्या आवश्यकता है? स्वास्थ्य, धन, रोजगार, परिवार की खुशी, शांति और संतोष के लिए हम प्रार्थना क्यों करते हैं? ऐसे कई सवाल मन में अवश्य उठते हैं। तो इसी के साथ हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद मैं आकर फिर आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए हंसते रहिए, गाते रहिए और गुनगुनाते रहिए।

तो स्वागत है आपका फिर से इस कार्यक्रम में और हम अपनी चर्चा इसी तरह जारी रखते हुए आगे बढ़ते हैं। तो भगवान को सर्वव्यापी मानना केवल एक अंधविश्वास ही है, फिर परमात्मा को सभी जीवों में उपस्थित मानकर और परमात्मा के कई अवतार मान लेना कहाँ तक उचित है? क्या वो परम पवित्र परमात्मा गंदगी खाने वाले सुअर में भी है, मांस खाने वाले मगरमच्छ में भी है, क्या वे जहरीले सांप में भी है? वास्तव में भगवान को सर्वव्यापी मानना केवल एक अंधविश्वास ही है। क्या वे कोटि कांटों पत्थरों और कण कण में है? हाँ, कण कण में भी है, जिन्हें रास्ते में हम खुद उठा के फेंकते हैं ताकि किसी को लग ना जाए। हाँ, ऐसे ही चर्चा करते हैं करते हाँ चिंतन करते चले तो यहाँ सिद्ध होता है कि सर्वश्रेष्ठ जो सर्वोच्च परमात्मा को सर्वव्यापी कहना उनका बहुत बड़ा अपमान करना है और उनके अस्तित्व के प्रति असम्मान है। तो यहाँ पर अगर माना जाए कि पंचभूत कहलाने वाले वायु अग्नि जल पृथ्वी आकाश में परमात्मा है तो यह वायु तूफान बनकर अग्नि एक ज्वाला बनकर जल एक सुनामी बनकर पृथ्वी भूकंप बनाकर और क्या करती है? आकाश तत्व प्रदूषण द्वारा दुख क्यों दे रहा है? भगवान कौन है और उनका निवास स्थान कहाँ है? तो उपरोक्त चिंतन में हमें यह एहसास होता है कि सर्वशक्तिमान भगवान सर्वव्यापी नहीं है। तो हमें यह जानना अति आवश्यक है सर्वोच्च भगवान कौन है और उसका निवास स्थान कहाँ है। वेद शास्त्र पुराण ग्रंथ बाइबल कुरान गुरु ग्रंथ साहब आदि सब का सार यही कहता है कि सर्व आत्माओं का एक ही सर्वोच्च परम ज्योति परमात्मा है, परंतु उनके नाम और स्मरण करने की विधियां अलग अलग है। हम त्रिलोकीनाथ भगवान को शांति सागर हाँ आनंद सागर दया सागर करुणा सागर गुणों के सागर शक्तियों के सागर कृपा सागर क्षमा सागर कहकर उनकी महिमा करते हैं। जैसे यह स्थूल जगत शरीरधारियों का घर है, वैसे ही अशरीरी अकाय अभोक्ता अयोनिज अजन्मी परमात्मा का निवास पांच तत्वों से परे सर्वोच्च घर परम धाम है, जिसे ब्रह्मा महातत्व या मूल वतन या शांति धाम भी कहा जाता है। हम सभी आत्माओं का

जबरदस्त उसका इंतजाम है। ये दुनिया बनाना और बना के फिर चलाना बस उसी का काम है। बड़ा जोरदार उसका इंतजाम है, वो बड़ा जबरदस्त।

क्या जबरदस्त उसका इंतजाम है, ये दुनिया बनाना और बना के फिर चलाना बस उसी का काम है। बड़ा जोरदार उसका इंतजाम है, वो बड़ा जबरदस्त।

0: بتلانے والا ہم کو چلے نہیں، جو اچھوت ہم کو سمجھے تو رکھیے چلے نہیں، جو اچھوت ہم کو سمجھے تو رکھیے چلے نہیں، جو اچھوت ہم کو سمجھے تو رکھیے چلے نہیں۔
1: तो स्वागत है आपका फिर से ज्ञान की धारा इस कार्यक्रम में और हम अपनी आगे की चर्चा इसी तरह जारी रखते हैं। क्या सर्वश्रेष्ठ परमात्मा सर्वव्यापी है? तो भगवान जानी जाना नार है। अगर पिता के गुण स्वभाव और व्यक्तित्व पुत्र में होते हैं तो पुत्र पिता जैसा कहा जाता है, मगर पुत्र को ही पिता कहना अमान्य है। अगर हम उस परमात्मा के सर्वगुण शक्तियों को धारण कर लेते हैं तो उन जैसे महिमा योग्य बन सकते हैं, परंतु हमको ही परमात्मा कहना अनुचित है। कहा जाता है कि वैद्यो नारायण हरि, इसका मतलब यह है कि एक चिकित्सक नारायण की तरह है जो बीमारी रूपी आपदा में व्यक्ति की इलाज करता है, मगर चिकित्सक को ही नारायण नहीं कह सकते हैं। जब एक गुरु ने अपने एक शिष्य को एक केला देकर कहा कि उसे उस जगह पर जाकर खाए जहाँ कोई देखने वाला न हो, तब शिष्य ने क्या कहा? भगवान न देखे ऐसा कोई भी स्थान नहीं है। मतलब भाव यही है कि सर्वोच्च भगवान सब कुछ जानने वाला है, जानी जाननहार है, सभी के कर्म विकर्म सुकर्म को जानने में सक्षम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वे सभी में विराजमान है। मतलब इसी तरह कहा जाता है जिंदगी हमेशा एक स्कूल की तरह है, एक ऐसा स्कूल जहाँ कोई किताब नहीं होती, न ही कोई शिक्षक होता है, या एक ऐसा स्कूल है जिसमें सभी शिक्षक भी होते हैं

सारे विद्यार्थी भी हैं, क्योंकि सभी एक दूसरे से कुछ न कुछ सीखते हैं और हमेशा सीखते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि जिंदगी की इस पढ़ाई में परीक्षा नहीं होती, परीक्षा भी होती है। हर परिस्थिति एक परीक्षा ही तो है, जिसमें हर कोई सफल नहीं हो पाता। इसमें सफल वही होते हैं जो अपनी सीखने की प्रक्रिया जारी रखते हैं। कुछ लोग परिस्थितियों से घबराकर क्या करते हैं, हार मान लेते हैं, क्योंकि उनमें सीखने की प्रक्रिया कम होती है, इसलिए हमेशा हारते रहते हैं। अपने आसपास रहने वाले को शिक्षक मानकर हर एक से सीखते रहना ही हमारी सफलता का राज है। हर एक में कोई न कोई विशेषता अवश्य होती है। आवश्यकता है स्वयं की और दूसरों की विशेषताओं को जानने की, और प्रत्येक व्यक्ति और परिस्थिति से कुछ न कुछ सीखने की। जब तक जीवन है, सीखने की प्रक्रिया जारी रखिए और जीवन में आने वाली हर परिस्थिति को सफलतापूर्वक पार करिए। जिंदगी की हर राह पर क्या है, एक दौड़ है। जिंदगी का ये तजुर्बा बेतुड़ और बेजोड़ है। तो इसी के साथ हम अपने आज के कार्यक्रम को यही समाप्त करते हैं, और तब तक के लिए नमस्कार। हंसते रहिए, गाते रहिए और गुनगुनाते रहिए।

0: खुशी को निरंतर बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के प्रेरणादायी विचार।
1: तो वो लोग जो हमें छोटी छोटी बातों पे डांटते हैं, जो हमारी गलतियां निकालते हैं, जो हमारी निंदा करते रहते हैं, जो हमारी की हुई मेहनत का क्रेडिट ले लेते हैं, जो हमें धोखा दे देते हैं, जो हमारे पीठ पीछे गलत फैलाते हैं, कुछ भी लोग, वो छोटी ब्लैक बॉल हो सकती है, ग्रे हो सकती है या बहुत बड़ी ब्लैक बॉल हो सकती है, क्या हमारे पास पावर है कि हम ब्लैक का रिटर्न व्हाइट से भेजेंगे? वो हमारे साथ गलत करेंगे, हम उनको दुआएं भेजेंगे, इज दैट पॉसिबल? पहली बात, ये मेरे साथ गलत क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैंने कभी ना कभी वो बॉल भेजी थी, तो गलती इनकी या मेरी? मेरी। तो इनके ऊपर से जो मैंने ब्लेम लगाया हुआ था वो पहले खत्म, वन। सेकंड, अब मैं अगर व्हाइट भेजूंगी तो किसके फायदे के लिए? उनके ऊपर एहसान नहीं, अपने फायदे के लिए व्हाइट भेजने में भी सोचना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। उनके लिए नहीं भेज रहे, अपने फायदे के लिए भेज रहे हैं। क्योंकि अब जब हम व्हाइट एनर्जी भेजेंगे, मतलब दुआएं देंगे अपने फायदे के लिए।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: चतुर घोड़ा, ये क्या रहा घोड़ा चतुर, घोड़ा चतुर एक पे रहना, या घोड़ा बोला या चतुर बोला का?
1: एक चतुर नार करके सिंगार, एक चतुर नार बड़ी होशियार, मेरे मन के द्वार ये घुसत जात, अपने ही जाल में फंसत जात, हम मरत

कंप्यूटर चल चल चल मेरे कंप्यूटर। कुछ चीजें ओरिजिनल ही अच्छी लगती हैं। सुनिए पूरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: अध्यात्म और मूल्यों से सजा कार्यक्रम रंग नवे जरूर सुने।
1: नमस्कार, आप ऐकतायत रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

मेरी वजह से वो गया गया गया गया किस्मत का।

मैं हूँ गीतांजलि राव, फिल्म एंड टेलीविजन एक्ट्रेस। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: अपने आप को देखे एंड प्रिपेयर माई सेल्फ फॉर टुडे। आज सारा दिन में बातें आएंगी, लोग कुछ कुछ ऐसा करेंगे या कहेंगे विच विल नॉट बी अकॉर्डिंग टू द वे आई वॉन्ट देम टू बी। आज सारा दिन अवेयरनेस एंड चेकिंग, कौन ज्यादा पावरफुल है, बातें, सिचुएशंस और मी, किसका प्रभाव किस

0: सकता है। आज सारा दिन सिर्फ चेकिंग, बात आई बात गई, मुझ पर उसका कितना प्रभाव पड़ा। दिस इज माई चेकिंग फॉर टुडे।
1: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
2: इतिहास से, भूगोल से,
3: समाज से, संस्कार से,
2: आधुनिकता से और विचार से,
3: खूबियों से भरा अनोखा है मेरा भारत।
2: एक महान राष्ट्र है मेरा भारत,
3: अतुल्य भारत। चलिए आपको बताते हैं
2: भारत की 69 ऐसी विशेषताओं के बारे में
3: जो बनाती हैं भारत को पूरी दुनिया से अलग
2: और प्रदान करती हैं हमें एक गर्वित भारतीय नागरिक होने का हक।
4: क्या आपको पता है कि किसी भी देश में कार से की गई लॉन्गेस्ट जर्नी यानी सबसे लंबी यात्रा 31,798.2 किलोमीटर है। यह यात्रा भारत में ही की गई है और इसे करने वाले 3 भारतीय हैं, जिनके नाम हैं आतिफ अब्दुल्ला, शीतल श्रीवास्तव और दीपक श्रीवास्तव। इस यात्रा को इन तीनों भारतीयों ने 30 अप्रैल 2015 से लेकर 7 जून 2015 तक संपन्न किया, जिसे वे ड्राइव अगेंस्ट कैंसर कहते हैं। इस यात्रा का उद्देश्य कैंसर डिटेक्शन और उसके ट्रीटमेंट के लिए फंड्स रेज करना था।
2: भारत की विशेषताओं को करते रहिए सलाम।
3: पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो। जय हिंद,
2: जय भारत।

मेरे कंप्यूटर चल चल चल मेरे कंप्यूटर। कुछ चीजें ओरिजिनल ही अच्छी लगती हैं। सुनिए पुनरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: अपने आप को आज देखते हैं, हर रोज कुछ बातों को हमने एक ही तरह से रिएक्ट किया और करते करते वो मेरी

0: आदत बन चुकी है। आज एक नया तरीका, अ न्यू वे ऑफ रिस्पॉन्डिंग, एक ऐसा रिस्पॉन्स जो मुझे खुशी, सेहत और सुंदर रिश्ते देगा, एक ऐसा रिस्पॉन्स जो मेरे लिए कंफर्टेबल एंड रॉयल होगा। आज अपनी किसी एक आदत, अपने किसी एक रिएक्शन को चूज करते हैं एंड देखें अपने आप को कि आज उसी परिस्थिति में अपने आप को एक नए तरह से रिस्पॉन्ड करते हुए देखें। धीरे धीरे अ न्यू वे ऑफ थिंकिंग, एक नया पैटर्न क्रिएट होना शुरू हो रहा है। दिस इज द पावरफुल बीइंग।
1: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

और प्यारे, दुनिया ये हरकत है और हरकत में बड़े को भी छोटे को भी खड़े को भी छोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है। और रिंग मास्टर के घोड़े पर थोड़ा जो भूख है, थोड़ा जो पैसा है, थोड़ा जो किस्मत है, सर पर नाच के दिखाना यहाँ पड़ता है, बार बार रोना और गाना यहाँ पड़ता है। हीरो से जोकर बन जाना पड़ता है।

संसार है आता है कूड़ा भी रहता है भूखा भी फिर भी वो मालिक से कहता नहीं बार है और इंसान ये माल जिसका खाता है प्यार जिसके पाता है चीज जिसके खाता है उसके ही पीने में भावता का डर है।

0: यही है वो मंदिर जो हमने अपनी देवी के लिए बनाया है। यही हमारी जिंदगी से बाहर आते रहेंगे। लता, ये प्रेम नगर है, हमारे प्यार की जीती जागती तस्वीर। अगर हमारे पंख होते तो हम उड़कर आसमान से चांद और सितारे तोड़ के ले आते इस महल में रोशनी करने के लिए।
1: लेकिन वो देवी कहाँ है जिसके लिए आपने इतना सुंदर प्रेम नगर बनवाया है?
0: तुमने अब तक देखा नहीं उसे? देखोगे भी कैसे, वो तुम्हारे दिल में रहती है।

बताऊं मुसीबतों से डरो नहीं, बुजदिल बन के मरो नहीं, रोते रोते क्या है जीना, नाचो दुख में तान के सीना, नाचो दुख में तान

देखे ना मेम साहब, बराबर पहुंचा दिया ना।

पक्षी बन के हो गए 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 इस मुश्किल में जान फंसी है अपने बज गए 12। होश हमारे पंछी बन के हो गए 9, 2, 11 इस मुश्किल में जान फंसी है अपने बज गए 12। रूप की गर्मी शोला बनकर दिल में आग लगाए, हित हित हित की आए तबीयत पिचकी जाए। अरे आज न जाने पागल मनवा काहे को घबराए, हित हित हित की आए तबीयत पिचकी जाए। दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला

कितना, यानी कि बाय गॉड कितना हसी मुहूर्त है, सेहरे की जरूरत है। दूल्हा मुझे बनाओ यारो, आओ लेकिन ठहरो।

बुजुर्ग ने कहा था बेटा जीना चाहे मरना 11 बजने से पहले कोई अच्छा काम न करना।

खींचा आ हा हा घबराहट में फिर अपना अपना हाथ उसने खींचा मैंने खींचा आ हा हा हमसे वो थी और हमारा रंगीन समझ गए ना जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना याने याने याने प्यार हो गया।